0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हाथ में घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से कोसों दूर तक इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां पर वायरल दावों की सच्चाई देखते हैं, हम सटीक जांच करते हैं, अफवाहों की पड़ताल करते हैं और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के इस सीसीटीवी फुटेज में वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ देखिए हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह वादा किया जा रहा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए हादसे का यह वीडियो है जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, अयोध्या के राम मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT मामले की जांच में जुटी हुई है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक CCTV वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखने में किसी मंदिर का वीडियो लग रहा है जिसमें कुछ लोग नोट गिन रहे हैं। इसमें कुछ लोग नोटों की गड्डियां छुपाकर दूसरे कमरे में ले जाते भी नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का है। एक यूजर ने इस CCTV फुटेज को शेयर करते हुए लिखा, राम मंदिर 200 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। CCTV ने खोली सबकी पोल। अयोध्या मंदिर के CCTV में पुजारी कथित तौर पर दान का पैसा छिपाते नजर आया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते के दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दान विवाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर 3 सदस्यीय SIT गठित कर दी गई है और SIT ने अयोध्या में 6 दिनों तक रहकर जांच की। मामले की 5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। देखिए, इसी बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग नोटों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं नोट की गड्डियां छुपाकर दूसरे कैमरे में ले जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना यह है कि ये अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे को कसौटी पर उतारा। तो देखिए, फैक्ट चेक की टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान देखने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी मंदिर का ही वीडियो है। इसके बाद देखिए, हमने वीडियो के कमेंट्स सेक्शन को खंगाला। यहां पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को कर्नाटक के बेंगलुरु का बताया था और इसके बाद हमने एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखा और इस दौरान हमें कुछ लोग धोती में नजर आए। इन लोगों ने जिस तरह से धोती को पहना हुआ था उससे ये इशारा हमको मिल रहा था कि वीडियो किसी दक्षिण भारत के राज्य का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई और राम मंदिर दान विवाद की जांच कर रही SIT टीम ने भी ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अब तक निकलकर क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 1 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो को पोस्ट किया गया मिला, जिसमें वायरल क्लिप भी मौजूद थी। यहां दी गई जानकारी के अनुसार वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है, जिसमें मंदिर के 2 सदस्यों को दान के रूप में उठाते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें 30 सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर में दान के पैसों की चोरी से संबंधित है। उस वक्त इस तरह के और भी कई वीडियो सामने निकल कर आए थे, जिसमें मंदिर के कर्मचारी दान के पैसों की चोरी करते हुए नजर आए थे। मामले को लेकर जुलाई 2024 में FIR हुई थी। उस वक्त मंदिर के मुख्य पुजारी रामचंद्र ने दावा किया था कि ये घटना तकरीबन 1 साल पुरानी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में मंदिर की प्रशासनिक समिति के 2 सदस्यों को निलंबित किया गया था और 2 रसोइयों को भी हटाया गया था। बाद में कर्नाटक सरकार ने अव्यवस्था और अनियमितताओं का हवाला देते हुए इस मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को पूर्व उत्तर प्रदेश CM अखिलेश यादव ने 7 जून को उठाया था, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। उसी दिन इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस के पास 3 शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से पहली धर्मसेना के संस्थापक अशोक दुबे की है, दूसरी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की और तीसरी करणी सेना की है। साफ है वायरल वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है। सितंबर 2024 में वहां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को रुपए उठाते हुए देखा गया था। इस वीडियो का अयोध्या के राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर को पहले टकराते और फिर क्रैश होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा लगातार कर रहे हैं कि 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स का ये वीडियो है, जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर के टकराने और क्रैश होने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में म्यूजिशियन ओलिवर ट्री शामिल थे, जो अपने वायरल हिट गानों एलियन बॉय और लाइफ गोज ऑन के लिए मशहूर थे, और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर प्रिम भी थे, जिन्हें ऑनलाइन गैस्पी के नाम से जाना जाता था। अब इसी हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में कई हेलीकॉप्टर कुछ ताड़ के पेड़ों के पास कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए नजर आते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय न्यूज आउटलेट्स ने भी रियो की घटना के संदर्भ में इस वीडियो के स्क्रीन ग्रैब का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सिंगर सॉन्गराइटर ओलिवर ट्री की 14 जून को ब्राजील में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। वो 32 साल के थे। इस हादसे में कुल 6 लोगों की जान चली गई, और अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई थी, उसी का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान दावे की पुष्टि कराती हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई उसका फुटेज भी सामने निकलकर आया था। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं। वायरल हो रहा है वीडियो और ओरिजिनल वीडियो को देखने से फर्क साफ साफ नजर आ जाता है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि हेलीकॉप्टर हादसे का ये वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया। पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 23 अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी की परेड की रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना पेराक राज्य के लुमुत नेवल बेस पर हुई और मारे गए सभी लोग क्रू मेंबर थे। इसमें शामिल हेलीकॉप्टर एक AW-139 और एक फेनिक हेलीकॉप्टर थे। इसी मिली जानकारी के आधार पर हमने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया, लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें कई और प्रामाणिक रिपोर्ट मिली, जिसमें यही जानकारी दी गई थी कि रॉयल मलेशियन नेवी की परेड के रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा फेक साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब रिहर्सल के दौरान मलेशियाई नौसेना के दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
4: फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच इस समय दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। अपनी बेहतरीन फुटबॉल स्किल्स की वजह से ये बच्चा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि बच्चे ने बिना जूते पहने जिस तरह फुटबॉल पर कंट्रोल दिखाया, उसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी पहने मैदान में मौजूद है। उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसके खेल में जो आत्मविश्वास दिखाई देता है, वो किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं लगता। वीडियो की शुरुआत में बच्चा मैदान के कॉर्नर एरिया में खड़ा नजर आता है। इसके बाद वो कॉर्नर किक लेने की तैयारी करता है और फिर गेंद को ऐसी दिशा में मारता है कि वो सीधे गोल पोस्ट के अंदर पहुंच जाती है। लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि कुछ सपने सिर्फ जवानी के लिए ही होते हैं, उम्र ढलने के बाद उन सपनों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दिल्ली की आयुषी नेगी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। दरअसल आयुषी ने अपने 90 और 80 साल के दादा दादी को उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाकर उनका वर्षों पुराना सपना पूरा किया। इस दौरान आयुषी अपने दादा दादी को ट्रिप के लिए लंदन ले गई। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा और हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधकर बिल्कुल तेज रफ्तार से खीरा काट रहा है। वीडियो में जिस तरह से शख्स खीरे को काट रहा है वो देख हर कोई हैरान है। बिना देखे बिजली की रफ्तार से चाकू चलाते हुए खीरे को काटना कोई आसान काम नहीं है। इसमें हाथ की उंगलियों के कटने का भी बहुत खतरा होता है। फिर भी शख्स को इस चीज का इतना अभ्यास है कि वो आंखें बंद कर भी काफी तेजी से खीरा काट ले रहा है। शख्स ने अपने इस कारनामे से विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम वॉलेस बोंग है, जिन्हें लोग सिक्स पैक शेफ के नाम से भी जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। हर देश के फुटबॉल फैंस अपने अपने अंदाज में अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से सामने आया ये वीडियो इस जुनून को एक अलग ही लेवल पर ले गया। इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पर एक भेड़ को लेकर चलता दिखाई दे रहा है। पहले नजर में ये एक नॉर्मल सा नजारा लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के साथ चल रही भेड़ का शरीर नीले और सफेद रंगों में रंगा हुआ है। ये रंग अर्जेंटीना की फुटबॉल टीमों का है, जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भेड़ उस व्यक्ति के पीछे पीछे शांति से चल रही है। उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे वो भी अर्जेंटीना की फैन हो। इस अनोखे नजारे को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो गए हैं। कुत्ते, बिल्ली, मछली, तोता और चिड़िया तक आपने न जाने कितने जानवरों और पक्षियों को घरों में प्यार मिलते देखा होगा। इनको लोग अक्सर अपना परिवार ही मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा ही लाड प्यार आपने किसी कौवे के लिए देखा है क्या? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठी है, उसकी गोद में कौवा है। उल्टे लेटे हुए कौवे को ये महिला गुदगुदी करते वैसे ही खिला रही है जैसे किसी बच्चे को प्यार दिखाया जाता है। इस दौरान कौवा भी प्रतिक्रिया ऐसे दे रहा है जैसे वो एक बच्चा ही हो। इस वीडियो में कौवे को पिंजरे में नहीं रखा गया है। अगर ऐसा किया जाता तो ये गैर कानूनी है। भारतीय प्रजाति के कौवे को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली मेट्रो से इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों को हैरान करने के साथ साथ खूब हंसने पर भी मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस बार यात्रियों के साथ बंदर भी मेट्रो ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर किसी तरह दिल्ली मेट्रो के अंदर पहुंच जाता है। आमतौर पर लोग ऐसे हालात में उम्मीद करते हैं कि जानवर थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही था। बंदर बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में मेट्रो के डिब्बे के अंदर घूमता नजर आया। उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रोजाना मेट्रो में सफर करता हो। मेट्रो में मौजूद यात्री भी पहले तो उसे हैरानी से देखते रहे। कुछ लोग उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे, जबकि कुछ ने तुरंत अपने मोबाइल निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बंदर आराम से एक सीट से दूसरी सीट के पास जाता रहा और यात्रियों को देखता रहा।

0: इसी दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और फिर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। वीडियो में दिखाई देता है कि बंदर सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है और बिना किसी झिझक के उसकी गोदी में जाकर बैठ जाता है। अचानक सामने आए इस नन्हे मेहमान से लड़की घबरा जाती है, वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: अब गर्मी में कूल कूल एहसास कैसे लिया जाए, उसको लेकर खूब उपाय घर घर आजमाए जाते रहे हैं। वहीं पर घर से बाहर भी सरकार और लोकल बॉडीज जो हैं गर्मी से परेशान लोगों को कई जरूरी सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में जयपुर में राज्य सरकार की तरफ से भी एक खास पहल की गई है, देखिए।
6: राजस्थान की गर्मी के बारे में हर कोई जानता है और अब मौसम बदलते बदलते प्री मॉनसून का समय भी आ चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल से जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहां पर अम्ब्रेलास टूरिस्ट के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब टूरिज्म काफी ज्यादा कम हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे में समर वेकेशन पे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने अम्ब्रेलास रखे हैं, जिससे कोई भी ना ही बारिश और ना ही तेज गर्मी धूप की चपेट से परेशान हो। कुछ टूरिस्ट मेरे पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने ये अम्ब्रेलास लिए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनको ये पहल कैसी लगी। सर, कहाँ से आए हैं आप?
7: हम नागपुर से आए हैं।
6: ये जो अम्ब्रेलास आपको मिले हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ये ऑप्शन जो है जो दिया जा रहा है घूमने के लिए कैसा लगा?
7: ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प होंगी थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, काफी अच्छी पहल है ये।
6: मैम, कितनी परेशानियां आती है जब आप शेड में नहीं होते हैं, धूप में घूम रहे होते हैं और ये ऑप्शन जब आपको मिला तो कितनी राहत मिली?
8: बहुत राहत मिली है और अच्छा लग रहा है धूप से बचने के लिए जो अम्ब्रेला दी गई है, अच्छी है पहल।
9: राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ये जो छतरी दे है ये बारिश में और इसमें भी धूप में भी बहुत ही अच्छी मतलब सुरक्षा हो रही है इसे, ये तो करना चाहिए क्योंकि पिंक सिटी है ये, लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं और धूप बहुत परेशान करती है धूप, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि राजस्थान सरकार ये छाता दे रही है।
10: असल में यहाँ पे गर्मी को ही देखने हम लोग आए थे क्योंकि लद्दाख में लोग सर्दियों में जाते हैं, तो गर्मियों में
6: बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो गर्मियां देखने जाते हैं, ये क्यों चुना गया? क्या था इसके पीछे?
10: असल में एक शादी भी थी यहाँ पे, उसी में आए थे, ठीक है। लेकिन
6: मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि अगर आप गर्मियों में घूमना चाह रहे हैं तो मतलब आपको गर्मियां पसंद है और आप चाह के गर्मियों में आए हैं।
10: हाँ, एक्चुअली में हमारे यहाँ रांची में बहुत ज्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है, तो हम लोग गर्मियाँ देखने भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं। हाँ,
6: यहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने जो अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए हैं उससे आपको कितनी राहत मिल रही है या फिर आपको नॉर्मल धूप में चलना भी मंजूर?
11: नहीं, राहत तो बहुत मिल रही है, धूप में आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन अगर एक सुझाव आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये कपल के लिए, 2-3 लोगों के लिए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी चाहत होती है कि मम्मी पापा ले रखे हैं तो मैं भी लूं, तो वो छोटे अम्ब्रेला भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं।
6: यहाँ पे ये देखते हुए कि कितने सारे अम्ब्रेलाज हैं और ऑलरेडी रखे गए हैं तो कोई भी टूरिस्ट परेशान नहीं नजर आता है, उनको सिर्फ एक चीज करनी है कि वो यहाँ आए और जहां उनको अम्ब्रेलाज नजर आ रहे हैं वहां जो व्यक्ति है उनसे उसकी डिमांड करे कि हमें ये अम्ब्रेला जो है वो चाहिए। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतने अम्ब्रेलाज प्रोवाइड किए जाएंगे, सिर्फ आपका नाम वहां पर रजिस्टर किया जाएगा और वापस जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको वो अम्ब्रेलाज जमा करवाने रहेंगे, बस इतनी सी बात है, निशुल्क सेवाएं हैं जो राजस्थान सरकार की तरफ से सभी टूरिस्ट को दी जा रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में राजस्थान की गर्मियां जितनी तेज होती हैं, जितनी प्रचंड होती हैं, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और ऐसे में यहाँ पे जितने पर्यटक आ सके उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये खास पहल इस जगह पे की गई है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
5: चलिए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें दिखाते हैं। देखिए, ब्रिटेन की राजधानी एक बार फिर से बदलाव के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, सत्ता बदलती है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर नए चेहरे नजर आते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इन राजनीतिक उठापटक का कोई असर नहीं पड़ता और वो है लैरी द कैट। डाउनिंग स्ट्रीट के मशहूर चीफ माउसर लैरी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं।
12: ब्रिटेन के सियासी बवंडर के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये ठिकाना चर्चा में है। चर्चा केवल यहाँ प्रधानमंत्रियों की जल्द आवाजाही को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले उस सदस्य की वजह से भी है जो 2011 से ब्रिटेन की हर सियासी उथल पुथल का गवाह रहा है। नाम है लैरी और काम है इस इमारत में चूहों पर लगाम लगाना। लैरी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेविड कैमरन से लेकर थ्रेसा तक और बोरिस जॉनसन से लेकर लिज ट्रस, ऋषि सुनक, कीर स्टारमर तक सबको आते जाते देखा है, मगर इतने सालों से इस इमारत में अगर कोई टिका रहा तो वो है खुद लैरी। इतने सालों में कई सरकारें बदली, कई चेहरे बदले, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का ये चार पैरों वाला अधिकारी नहीं बदला। लैरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 15 फरवरी साल 2011 को लैरी को लंदन के बेट्रेसी एनिमल शेल्टर से रेस्क्यू कर डाउनिंग स्ट्रीट लाया गया। उसका यहाँ मिशन था चूहों पर लगाम लगाना और इसी के साथ उसे मिला एक बेहद खास पद जो था चीफ माउजर टू द कैबिनेट ऑफिस, यानी कैबिनेट कार्यालय का मुख्य चूहा पकड़ने वाला अधिकारी। लैरी की जिम्मेदारी सिर्फ चूहे पकड़ने तक सीमित नहीं है। मजाक मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि वो वक्त वक्त पर विदेशी मेहमानों का स्वागत भी करता है, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखता है और कभी कभार तो इस ऐतिहासिक इमारत के फर्नीचर पर सोकर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करता है। कुल मिलाकर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मौजूद पत्रकारों के लिए भी लैरी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। लैरी की लोकप्रियता सिर्फ डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। एक्स पर उसके पैरोडी अकाउंट को करीब 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में इसी अकाउंट से मजाकिया अंदाज में लिखी पोस्ट खूब वायरल हुई। इसमें लिखा था, मैंने कीर स्टारमर का इस्तीफा अपने मुख्य सेवक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट में लैरी की जगह कोई ले नहीं सकता। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री से ज्यादा तो कैमरे लैरी का पीछा करते नजर आए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ब्रिटिश जनता लैरी को प्यार से गिफ्ट और ट्रीट भेजती है। जब नेता अपना सामान समेटकर यहां से विदा लेते हैं तब भी लैरी वहीं रहता है, उसी दरवाजे के पास, उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहा हो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

विमेंस टी20 इंटरनेशनल बॉल रैंकिंग में श्री चरणी बनी नंबर वन। बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना पांचवें स्थान पर बरकरार, छठवें नंबर पर शेफाली वर्मा। आज क्रिकेटर आकाशदीप की शादी, वाराणसी जाएगी बारात, अक्षिता के साथ लेंगे सात फेरे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

तो एक बात हमारे मन में आई कि माता रानी को दुर्गा क्यों कहा जाता है। जरा कोई सूचना भिजवाए, ये जो बज रहा है पूरा हॉल इसमें हिल रहा है। विचार करो, उतना दूर होकर के भी इतनी तेज आवाज है, नजदीक वालों का क्या हाल होता हो। और फिर भी हमने कई लोग देखे, वो ऐसे मटकते हैं जैसे ये जो है स्वर्ग जा रहा हो, वो पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हाँ, डीजे। तो आज सुबह जब हम विचार कर रहे थे तब सोच रहे थे कि भगवती का नाम दुर्गा क्यों पड़ा। एक बात समझ में आई, देवी भागवत में दुर्गम नाम के दैत्य का वर्णन, दुर्गम नाम का दैत्य। तो दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने के कारण देवी का नाम दुर्गा पड़ा। देवताओं ने कहा, आपने दुर्गम नाम के दैत्य को मारा है तो आपको आज से दुर्गा कहा जाएगा। सुनो, हमारी दृष्टि में दो लोग ऐसे हैं भगवानों में जो दुर्गम काज सुगम करते हैं। एक तो मां दुर्गा है, जो काम देवताओं से नहीं हो पाया वो दुर्गा माने करके दिखाया, और दूसरे हनुमान जी हैं।

दुर्गम काज को हनुमान जी ने भी सुगम किया और माँ दुर्गा ने भी दुर्गम काज को सुगम किया। आहा, एक दैत्य हुआ, बड़ा प्रतापी था, इतना प्रतापी था कि उसके सामने किसी का टिकना भी बड़ा कठिन था। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े देवता उसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाते थे, इतना बलशाली दैत्य था। आहा, देवी भागवत में उसकी कथा है, सुनो ध्यान से। देवी को दुर्गा क्यों कहा? देवी भागवत में वर्णन आया, दुर्गा

हिरण्याक्ष के वंश में इसका जन्म हुआ। दुर्गम के पिता का नाम था रुरु। क्या नाम था? जोर से बोलो, रुरु। रुरु नाम का पुत्र था दुर्गम। रुरु बहुत बलशाली था, लेकिन दुर्गम उससे ज्यादा बलशाली हुआ। इसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। कितने साल तक? 1000 सहस्त्र वर्ष पर्यंतम चकार परमम तपः। 1000 साल इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भए, बोले

आंख मूंद करके बैठ गया। अरे बोले भाई मांग, कुछ मांग। तो इसने हाथ जोड़ करके पूजित्वा वरम ब्रवे, आप हमको वर दो। क्या वर चाहिए? ब्रह्मा की वाणी सुनकर के दैत्य खड़ा हो गया दुर्गम और बोला महाराज और कोई वर नहीं, आपके चार मुख हैं, आपके हाथों में ये जो चार वेद हैं हमें दे दो। अब तपस्या की तो मना तो कर नहीं सकते क्योंकि तपस्या बहुत की। कई बार कोई आदमी बहुत सेवा करता है फिर मांग ले तो मना नहीं किया जाता। दुनिया का एक सिद्धांत है, हम बता दें आपको, तुम्हारे काम का है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी से कोई वस्तु मांगना हो तो वो डायरेक्ट नहीं मांगते, पहले तीन ऐसी वस्तुएं मांगते जो तुम दे ना पाओ। जैसे किसी को 10,000 रुपया उधार मांगना हो तो हमारे जैसे सीधे साधे लोग क्या कहते, भैया 10,000 रुपया दे दो बाद में चुका दे। पर जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसे नहीं मांगते, वो क्या कहते, भैया हम बहुत हैरान हैं, 1,00,000 रुपया की अभी जुगाड़ करो, 1,00,000 रुपया चाहिए, साल भर बाद दे। अरे भैया 1,00,000 रुपया हम पे नहीं है, बहुत ज्यादा होते। अच्छा 1,00,000 नहीं है, 50,000 है, 50 भी नहीं है, आए तो हैं 10,000 मांगने पर शुरू 1,00,000 से किया, 1,00,000 दे दो हम पे नहीं है भैया, 50,000 है, अरे भैया है नहीं, तो 10,000 तो दे ही दो, मरद से तो बच जाए। अब दो बार मना कर दी, तीसरी बार कौन करे, हाँ भैया लो 10,000 ले। बात बुद्धिमान ऐसे होते हैं, हमारे जैसे सीधे साधे जितने चाहिए उतने ही दे दो भैया। वही दैत्य है, तो दैत्य ने तपस्या की दुर्गम ने, ब्रह्मा जी बोले मांग। बोले महाराज आपके हाथों में ये जो चार वेद है ना इन्हीं को दे दो। चार वेद ले लिए। और कोई वरदान? एक और चाहिए। क्या? ब्राह्मणों के पास जितने मंत्र हैं वो हमें सब दे दो। ब्राह्मणों के मंत्र ले लिए दुर्गम ने। अब इसने वेदों को छिपा दिया, मंत्रों का लोप कर दिया, और जिस दिन वेद लोप हो जाएंगे धरातल पर हाहाकार मच जाएगा। वही हुआ। आहा, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, नदियां सूखने लगी, पानी बूंद नहीं बचा, पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया, पशु मरने लगे, समुद्र भी सूख गए, चारों तरफ चीत्कार मच गया, ब्राह्मण मंत्रहीन हो गए, देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राहीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणास्धीनम, मंत्र भी लुप्त हो गए दुर्गम दैत्य के कारण। तो मंत्र जब लुप्त हुए तो ब्राह्मणों के कर्म कांड भी लुप्त हो गए, पूजा पाठ भी बंद हो गई, भगवान का अर्चन बंदन भी बंद हो गया, वेद लुप्त हो गए, परंपराएं लुप्त हो गई। एकमात्र वेद के लुप्त हो जाने से पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। बुरा ना मानना, कुछ लोग वर्तमान में कहीं मनुस्मृति का विरोध करते, कहीं रामायण का विरोध करते, कहीं गीता का विरोध करते, कहीं भागवत का विरोध करते। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक वेद पृथ्वी पर हैं तब तक मानव सभ्यता है, जिस दिन वेद खत्म हो जाएंगे मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। हाँ, वेदों की परंपरा कम होने के कारण पृथ्वी में अभी ही न जाने क्या क्या होने लगा। अब बताओ इस साल नवरात्रि में भी बारिश हो रही, पूरे पितृपक्ष में तो नवरात्र, पूरे पितृपक्ष में तो जल बरसो ही बरसो, नवरात्रि में भी ऐसो पानी बरस रहो कि इस साल हमें ऐसो लग रहा हो कि रावण जल करके नहीं डूब के मरेगा। आओ, आओ, आओ, आओ, आओ। नवरात्रि में ही इतनी बरसा हो रही तो वो जल के थोड़ी मरे, डूब के मरे, डूब के। हाँ बताओ कहीं नवरात्रि में ऐसी बारिश देखी तुमने? हमने तो ना देखी, हमारी 27-28 साल उम्र कट गई, तो जितनी कट गई उतने की हमें ध्यान है, बाकी बड़े बूढ़े तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे समय के तो पेड़ भी सूख गए। आप लोग देख सकते, ऐसी कभी बारिश देखी? बताओ नवरात्रि, कारण क्या है? जगह जगह भूस्खलन हो रहा, भूकंप आ रहा, सुनामी आ रही,
इस बार पहली बार साल में कई तीर्थों के पट बंद भए। वैष्णो देवी अर्धकुंवारी में पहाड़ गिर गया तो बंद पट बंद हो गए, केदारनाथ में रास्ता बंद हो गया तो दर्शन बंद हो गए, बद्रीनाथ में यही हुआ पट बंद हो गए, अमरनाथ में भी यही हुआ पट बंद हो गए। विचार करो, ये जितनी भी उपद्रव मचे हैं इसका सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी वेद की परंपरा बार बार कम होना, वेद परंपरा पर कुठाराघात करना। हम भारत के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, मानव सभ्यता को यदि बचाना है तो पहले वेदों को बचाना पड़ेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात देवी भागवत में लिखी हुई है। भैया देवी भागवत का द्वितीय स्कंध आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि घोर उपद्रव होने लगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, जहां देखो कोपम संहर देवेशी, भयंकर कोप मच गया।

भयंकर उपद्रव हुआ, भयंकर हाहाकार मचा। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप हमको बचाओ। क्या हुआ? हाहाकार मच गया, ना तो पानी है ना भोजन है, पशु मर गए, दुर्गम नाम के दैत्य ने पूरे वेद लोप कर दिए, मंत्र लोप कर दिए, भयंकर उपद्रव मचा हुआ है। तो भगवान बोले दुर्गम को हम भी नहीं मार सकते। कौन मार सकता? कोई विशेष शक्ति ही दुर्गम नाम के दैत्य को मार सकती है। अब महाराज पर प्रार्थना करो। तो सब देवताओं ने मिलकर, भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने, इंद्रादि देवताओं ने, वरुण ने, सबने मिलकर देवी की स्तुति की।

हे भगवती आपकी जय हो, आप अखंड ब्रह्मांड की शक्ति हो। हे चिदारूपा देवी हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, हम देवताओं को बचा लो, मनुष्य जाति खत्म होने की कगार पर आ गई। हे ब्रह्मांड की अधीश्वरी माता नेति नेतेति वाक्य लिया, वेद आपको नेति नेति कहते हैं, आपकी कोई पार नहीं पा सकता। आप परांबा हो, आप जगदम्बा हो, आप महेश्वरी हो, आप भुवनेशी हो, आप भगवती हो, संपूर्ण ब्राह्मणों ने मिलकर के प्रार्थना की देवी की।

सभी कारणों की कारण हो, हमको दुर्गम नाम के दैत्य से बचा लो। जैसे ही इतना भगवती ने सुना, तत्क्षण सुन करके नीलांजन समप्रख्यम भगवती माँ चिदानंदमयी देवी त्रिपुर सुंदरी आद्य शक्ति माता परांबा माता जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना, जो तेजोमय है, जो ब्रह्ममय है, जो सहस्त्र भुजा वाली है, आठ भुजाएं तो केवल अष्ट भुजा एक रूप है, भगवती के हजारों भुजाएं हैं, अनेकों भुजाओं में अनेक अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए, किसी में खड़ग लिए हुए, किसी में शंख लिए हुए, किसी में चक्र लिए हुए, किसी में कपाण लिए हुए, भगवती माँ सहस्त्र भुजा वाली नीलांजन समप्रख्यम। भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी ब्राह्मणों की स्तुति करने के कारण तत्क्षण उनके सामने बाण आदि मुकुट लेकर के प्रकट हो गई। और जैसे ही देवी प्रकट हुई, देवी को देखकर प्रणाम किया। देवी ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मणों, आप सब रो क्यों रहे? देवता क्या बात है,

0: हे भूदेवो, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, कारण तो बताओ। देवी ने जब ब्राह्मणों से कारण पूछा तो रोते हुए ब्राह्मणों ने अपनी विपदा बतलाई। हे मातेश्वरी, दुर्गम नाम के दैत्य ने हमारे वेदों को छुड़ा लिया, लोप कर दिया, मंत्रों को भी लोप कर दिया। ना मंत्र बचे हैं, ना वेद बचे हैं, ना साधना बची है, ना उपासना बची है, ना कर्म कांड बचा है। साम वेद भी गया, यजुर्वेद भी गया, ऋग वेद भी गया, चारों वेद मां चले गए, लोप हो गए, हाहाकार मच गया, पशु मर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर सूखा इतना भयंकर पड़ा, पूछो मत माता, अब हम लोग भी मरने की कगार पर आ गए। हे माँ, कुपुत्रो जायते कुचदपि, कुमाता न भवती, पूत कपूत हो सकते लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, अब हम पर कृपा करो। जैसे ही माँ ने ब्राह्मणों की वाणी को सुना, देवताओं से और ब्राह्मणों से पृथ्वी के इस विचित्र परिस्थिति को सुना, माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। और आप सुनकर के चौंकेंगे, 9 दिन तक देवी रोई है, 9 दिन तक, इसलिए नवरात्रि का पर्व है। भगवती जब पृथ्वी की ये दुर्दशा देखी तो करुणावश होकर, माँ तो करुणामयी होती है, माँ तो ममतामयी होती है, माँ के अंदर तो ममत्व होता है, भले ही ये पराशक्ति है लेकिन दुर्गा माँ भगवती जब प्रकट हुई तो रोने लगी। 9 दिनों तक जैसे ही रोई तो पृथ्वी पर पुनः जल सिंचित होने लगा, नदी नद प्रवाहस्ते जले, सब नदियां भरने लगी, फिर से वनस्पति उगने लगी, पेड़ फिर से लहलहाने लगे, पृथ्वी फिर से हरी भरी दिखने लगी। 9 दिनों तक भगवती जब रोई तो ब्राह्मणों ने देवताओं ने कहा, भगवती आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो, और भगवती ने रो रो कर अपनी करुणा से पूरी पृथ्वी को पुनः हरा भरा कर दिया। अब कहा, चिंता मत करो, हम दुर्गम नाम के दैत्य का वध करेंगे। जैसे ही रोई भगवती हजारों नेत्रों से तो भगवती का नाम शताक्षी पड़ गया। आहा, भूख से अत्यंत व्याकुल ब्राह्मणों को देखकर भगवती ने फलों को उगाया, ब्राह्मणों को फल दिए तो भगवती का नाम शाकंभरी पड़ गया। साक उगाने के कारण देवी का नाम शाकंभरी पड़ गया। बोलो शाकंभरी माता की
1: जय हो,
0: शाकंभरी माता की
1: जय हो।
0: अब देवी माता दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने को आई, पर वो बड़ा बलशाली और मायावी था, तो भगवती भी कम नहीं है, परांबा है, देवी ने भी अपने शरीर से अनेक अन्य सिद्ध शक्तियों को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। किसको किसको प्रकट किया, आहा, इसका भी वर्णन देवी भागवत में बड़ा विस्तार पूर्वक है। कालिका तारिणी बाला, काली को प्रकट किया,

काली, तारा, माँ काली, माँ तारा, बाला मतलब बगला मुखी, बाल रूप में त्रिपुरा, बाला त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, ये भी दस महाविद्या में है मातंगी, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा, जंभनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुही काली, ऐसी भगवती ने 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की, 10,000 हाथों वाली, स्वयं हजारों लाखों हाथों वाली है, पर 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की। जब 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की अस्त्र शस्त्र लेकर के, और इतना ही नहीं, भगवती ने पुनः 32 के बाद 64 योगनियां उनको भी प्रकट किया, सबको प्रकट करके कहा, जाओ दुर्गम नाम के दैत्य के पास जितनी सेना है सबको मारो।

देवी की शक्तियां दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने लगी। भगवती भी युद्ध में मृदंग शंख वीणा लेकर के वाद्यों के साथ पहुंच उठी और 10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ दुर्गम नाम के दैत्य के साथ। और 10 दिनों में जितनी अक्षौहिणी सेना दुर्गम नाम के दैत्य के साथ थी, देवी ने एक एक करके सबको मार डाला। अंत में भगवती रथ पर आरूढ़ होकर उत्साह के साथ देवी भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य को पकड़ा और सभी वेदों को बाहर निकालकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंपकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। मंत्र जो लोप किए थे उनको भी बाहर निकालकर ब्राह्मणों को मंत्रों को सौंप दिया और दुर्गम नाम के दैत्य पर बैठकर भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य का वध कर डाला। और तीनों लोकों में भगवती ने शांति स्थापना की तो देवताओं ने कहा, हे भगवती, आपने दुर्गम नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए आज से आपको कलयुग में दुर्गा रूप में

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबर

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
2: Good news today, पर
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
11: चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 38 लाख के पार। अब तक 12.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के अंबुबाची मेले में लगा भक्तों का जमावड़ा। दूसरे दिन विधि विधान से होगी पूजा पाठ। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज। 16 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा का आयोजन, रथों को शानदार आकार देने में लगे हैं कारीगर। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को 4-3 से दी मात। लंदन के ली वैली में खेला गया मैच। पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने की शानदार वापसी। पिछले 10 साल से पाक से नहीं हारी है भारतीय टीम। विमेंस T20 इंटरनेशनल बॉलर रैंकिंग में श्री चरणी बनी नंबर 1। बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर बरकरार। 6वें नंबर पर शेफाली वर्मा। आज क्रिकेटर आकाशदीप की शादी, वाराणसी जाएगी बारात। अक्षता के साथ लेंगे 7 फेरे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
11: धर्मगिरी अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न। दिव्य समारोह का हुआ आयोजन। अयोध्या के 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज का किया पूजन। फिर मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा। भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे करीब 4000 राम भक्त। श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर श्री रामलला राम परिवार मंदिर और परकोटा क्षेत्र के सभी देव विग्रहों के दर्शन पूजन किए। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के निवासी जंग बहादुर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को सौंपी करीब 300 वर्ष पुरानी भगवान श्री राम से संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ की।

0: पांडुलिपि। चारधाम यात्रा के तहत दो महीने में अब तक बद्रीनाथ पहुंचे 12,52,000 से अधिक श्रद्धालु, भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। छप्पन हस्तियों को पद्मश्री, 7 को पद्म भूषण और 2 को पद्म विभूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा पद्मश्री से सम्मानित। साउथ सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण, टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण। जेएमएम के संस्थापक दिवंगत शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया पद्मश्री से सम्मानित। पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को पद्म भूषण, मलयालम पत्रकार पी नारायण पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में साल का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव कामाख्या धाम में अंबुबाची महायोग का भव्य महोत्सव जारी। अंबुबाची महायोग शुरू होते ही भक्ति के रंग में डूबा गुवाहाटी, नीलाचल पहाड़ी पर उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। मां कामाख्या के वार्षिक रज स्वला काल के कारण कपाट बंद, 26 जून की सुबह श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे मंदिर के कपाट। 25 जून तक लगातार महायज्ञ का आयोजन, विशेष धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ होंगे संपन्न। अंबुबाची मेले में देश विदेश से भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, 8,00,000 से 10 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। माता वैष्णो के दरबार से आई गुड न्यूज, रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन, इस साल 22 जून तक 50,70,000 भक्तों ने की पूजा। श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं से यात्रा बनी और अधिक सुगम, रोपवे और बैटरी कार सेवाओं से श्रद्धालुओं को मिली राहत। भीड़ प्रबंधन और डिजिटल सुविधाओं से यात्रा बनी आसान, वैष्णो देवी यात्रा में पिछले साल से 10,86,000 ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। आशादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाश दीप, अक्षिता राज संग लेंगे 7 फेरे, सासाराम से वाराणसी के लिए निकलेगी बारात। कानपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान बना देवदूत, सूझबूझ और तत्परता से बचाई यात्री की जान। प्रयागराज से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर, श्रृंगवेरपुर में बनकर तैयार हुआ राम वन गमन मार्ग। अयोध्या से सीधे जुड़ेगा प्रयागराज, जल्द राम वन गमन मार्ग का होगा उद्घाटन। गांधीनगर में अगरिया समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए गुजरात सरकार की अनोखी पहल, स्कूल ऑन व्हील्स रणशाला प्रोजेक्ट की शुरुआत। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 28 रणशाला बसों का किया लोकार्पण, बसों में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद। रणशाला में क्लासरूम में 43 इंच का स्मार्ट टीवी, डिश टीवी कनेक्टिविटी के जरिए एजुकेशनल चैनल, एफएम रेडियो, डिजिटल घड़ी, एलईडी लाइटिंग सिस्टम से बच्चों को पढ़ने में मिलेगी मदद। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। धूल भरी आंधी से दिल्ली एनसीआर का लुढ़का पारा, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, चारों तरफ उड़ी धूल की मोटी परत। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के बाद दिल्ली में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग का अनुमान, पूरे हफ्ते जारी रहेगी प्री मॉनसून एक्टिविटी, चल सकती है बारिश के साथ तेज हवाएं। IMD के मुताबिक अलनीनो की वजह से गुजरात में अब तक मानसून की शुरुआत नहीं हुई, अभी 3 से 5 दिनों तक करना होगा और इंतजार। गुजरात के वलसाड में भी अच्छी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में भरा पानी। सूरत में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोग हुए परेशान। डांग में दूसरे दिन रुक रुक कर बारिश जारी, लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापूतारा में मानसून ने अपनी खूबसूरती बिखेरी, पहाड़ों पर छाई धुंध और बादलों का नजारे ने पर्यटकों को आकर्षित किया। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी में बड़ा पानी, बिहार सुपौल सहरसा मधेपुरा समेत कोसी तटवर्ती इलाकों में प्रशासन अलर्ट। नेपाल के बैराज से छोड़ा गया 1,86,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी, कोसी नदी में पानी बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी भारी बारिश, कई इलाकों में जल जमाव, यातायात पर असर। साई बाबा की नगरी शिरडी में झमाझम बरसात, तापमान में आई गिरावट, रास्तों पर भरा पानी। भारतीय रेल की बड़ी पहल, पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे चला रही है परीक्षा स्पेशल ट्रेन। मॉस्को पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायिक ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान से जुड़े MOU पर दस्तखत। मॉस्को में CJI ने दिया भाषण, कहा भारत और रूसी न्याय प्रणालियों के बीच अकादमियों और ट्रेनिंग प्रोग्राम के आदान प्रदान, रिसर्च पार्टनरशिप और बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करने की काफी गुंजाइश। राजस्थान के कोटा के नरेंद्र अवस्थी ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका में आज कॉमरेड्स मैराथन 2026 की 86 किलोमीटर की चुनौती पूरी की। 9 घंटे 11 मिनट 54 सेकंड में पूरी की दौड़, शानदार प्रदर्शन के लिए रॉबर्ट बटशाली मेडल से सम्मानित। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग और डर्बन शहर के बीच आयोजित होता मैराथन, विश्व की सबसे कठिन अल्ट्रा रेस में शामिल। हॉकी टीम इंडिया से फिर पिटा पाकिस्तान, हॉकी प्रो लीग में हरमनप्रीत ब्रिगेड की रोमांचक जीत। FIH प्रो लीग 2025-26 में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया, लंदन के ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में खेला गया मैच। विमेन्स T20 इंटरनेशनल भारतीय टीम की क्रिकेटर 21 साल की श्री चरणी बॉलिंग रैंकिंग में बनी नंबर वन, इंग्लैंड की लीसी स्मिथ को पीछे छोड़ते हुए भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने हासिल किया पहला स्थान। श्री चरणी बॉलिंग रैंकिंग में नंबर वन बनने वाली भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है, उनसे पहले ये उपलब्धि दीप्ति शर्मा के नाम थी। भारत की 3 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, उपकप्तान स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर बरकरार, ओपनर शेफाली वर्मा 1 स्थान ऊपर चढ़कर 6ठे और कप्तान हरमनप्रीत कौर 10वें नंबर पर। पश्चिम बंगाल के नागराकाटा में भारी बारिश से बढ़ा सुकानी नदी का जलस्तर, कई इलाकों में जल जमा। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग में भारी भूस्खलन, लिकावाली बासार रोड पर आया मलबा। भूस्खलन के बाद प्रशासन अलर्ट, कई रास्तों को किया गया बंद, आवाजाही प्रभावित। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश से तीसा नदी का बड़ा जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। बांदा में फिर बढ़ने लगी गर्मी, तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार, लोग बेहाल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: अब कुंडली में सर्जरी के योग बन जाते हैं, कब आदमी सर्जरी से बच जाता है, सर्जरी से बचने के और सर्जरी को सफल बनाने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Hey Jack, could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में, यानी शल्य चिकित्सा के बारे में। इसका महत्व क्या है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शल्य चिकित्सा, सर्जरी यानी ऑपरेशन के बारे में। कुंडली में आपके सुरक्षा का कारक, सुरक्षा का स्वामी है मंगल, और स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की मजबूती मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी है और हिंसा भी करवाता है, वायलेंस भी करवाता है। लेकिन जब ये हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। यानी चीर फाड़ हिंसा व्यक्ति को बेहतर करने के लिए की जाती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। मुख्य रूप से मंगल ही ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के अलावा कभी कभी केतु और सूर्य भी शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए अग्नि की राशियां मेष, सिंह, धनु और अग्नि तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 12 राशियों में वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। जब किसी डॉक्टर की राशि वृश्चिक होती है तो ऐसा देखा गया है कि मंगल का प्रभाव होने से डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन होता है। लेकिन कुल मिला के ये बात जानिए कि अग्नि तत्व और मंगल ये मुख्यतः सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति का ऑपरेशन, सर्जरी जरूर होती है, शल्य चिकित्सा जरूर होती है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो व्यक्ति के जीवन में सर्जरी की नौबत आती है। अगर कुंडली में मंगल के ऊपर पाप प्रभाव हो, केतु का, शनि का, सूर्य का, राहु का, तो सर्जरी की संभावना बनती है। अगर शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो जाए तो ये सर्जरी और दुर्घटना दोनों संभावना जीवन में दिखाता है। कुंडली के छठे भाव में ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, खास तौर से अग्नि के ग्रह बैठें या अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति की सर्जरी होती है। हाथ में अगर तारा बनता हो या किसी रेखा पर द्वीप बनता हो तो इसका मतलब व्यक्ति की सर्जरी होगी। अगर किसी व्यक्ति की हथेलियों का रंग लाल हो, मंगल के समान हथेलियां हो,
तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति की सर्जरी होती है। अगर किसी व्यक्ति के नाखून टेढ़े मेढ़े हों तो इसका मतलब उसका मंगल बहुत अच्छा नहीं है, और अगर मंगल बहुत अच्छा नहीं है तो उसके जीवन में सर्जरी की, ऑपरेशन की संभावना बनेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की सर्जरी की तैयारी हो जाती है, आदमी रेडी हो जाता है कि मैं अब अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन बहुत बार होते होते आदमी सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से बच जाता है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल हो या शुक्र प्रबल हो, शुक्र मजबूत हो, तो ये आदमी की रक्षा कर लेते हैं और आदमी सर्जरी से बच जाता है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह अगर केंद्र में ना हो तो भी आदमी सर्जरी से बचता है। आपकी एकदम नकारात्मक दशा चल रही थी, सर्जरी के योग बने हुए थे, अचानक से जीवन में शुभ दशा आ गई तो आप सर्जरी से बच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या थोड़ी बहुत चोट चपेट लग जाती है तो सर्जरी का योग टल जाता है, व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। जिन लोगों का जन्म एकदम सुबह का होता है या एकदम संध्या काल का होता है, वो भी अक्सर सर्जरी होते होते बच जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपकी निगेटिव दशा में सर्जरी के योग बनते हैं, लेकिन अचानक से निगेटिव दशा खत्म हो गई और अचानक से पॉजिटिव दशा आ गई तो आप सर्जरी से बच जाते हैं। या गोचर में, यूनिवर्स में कोई ग्रह सर्जरी के योग बना रहा है, अचानक वो बदल जाता है तो आदमी सर्जरी से बच जाता है। अब अगर कुंडली में आपके सर्जरी के, शल्य चिकित्सा के योग बने हुए हैं तो क्या उपाय करें कि उससे बच सकें? लाल फूल से नृसिंह भगवान की रोज उपासना करिए। नृसिंह भगवान के मंत्र का नियमित रूप से लाल फूल अर्पित करने के बाद जप करिएगा।

0: मोर मृत्यु नमाम्यहम्। भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करिएगा, जब भी मौका मिले रक्त दान करिए। दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ अपना सर करके सोइएगा और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। अगर सर्जरी के योग ज्यादा प्रबल हैं तो सलाह लेकर एक पुखराज या एक ओपल धारण करिएगा। अगर नृसिंह भगवान की पूजा के साथ आप ये उपाय करेंगे तो सर्जरी को लंबे समय तक टाल पाएंगे। अगर भाई बहनों के साथ आप अपने संबंध ठीक करना चाहते हैं तो हर मंगलवार को मंदिर में या घर पर हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करिएगा और इसके बाद हनुमान जी के सामने कम से कम 27 बार या 108 बार राम नाम का जप करिएगा तो बहुत उत्तम होगा। कि अगर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी प्राप्त करने में समस्या हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और जब भी मौका मिले सार्वजनिक स्थान पर केले के पौधे पार्क में, सड़क में, मैदान में लगवा दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो पैतृक संपत्ति प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 38 लाख के पार। अब तक 12.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के अंबुबाची मेले में लगा भक्तों का जमावड़ा। दूसरे दिन विधि विधान से होगी पूजा पाठ, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज। 16 जुलाई को होने वाली है रथ यात्रा का आयोजन। रथों को शानदार आकार देने में लगे हैं कारीगर। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को 4-3 से दी मात। लंदन के ली वैली में खेला गया मैच। पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने की शानदार वापसी। पिछले 10 साल से पाक से नहीं हारी है भारतीय टीम। विमेंस टी20 इंटरनेशनल बॉल रैंकिंग में श्री चरणी बनी नंबर वन. बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना पांचवें स्थान पर बरकरार. छठवें नंबर पर शेफाली वर्मा. आज क्रिकेटर आकाशदीप की शादी. वाराणसी जाएगी बारात. अक्षिता के साथ लेंगे सात फेरे.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए.

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में, और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शल्य चिकित्सा के बारे में, यानी कि सर्जरी के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अचानक से सर्जरी के योग बन जाते हैं, तो क्यों बनते हैं योग और इनसे बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर भाई बहनों के साथ आप अपने संबंध ठीक करना चाहते हैं तो हर मंगलवार को मंदिर में या घर पर हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करिएगा, और इसके बाद हनुमान जी के सामने कम से कम 27 बार या 108 बार राम नाम का जप करिएगा तो बहुत उत्तम होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं 24 जून 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 24 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 6:12 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के बारे में ज्योतिष का क्या कहना है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शल्य चिकित्सा सर्जरी यानी ऑपरेशन के बारे में। कुंडली में आपके सुरक्षा का कारक, सुरक्षा का स्वामी है मंगल, और स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की मजबूती मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी है और हिंसा भी करवाता है, वायलेंस भी करवाता है, लेकिन जब ये हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। यानी चीरफाड़, हिंसा व्यक्ति को बेहतर करने के लिए की जाती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। मुख्य रूप से मंगल ही ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के अलावा कभी कभी केतु और सूर्य भी शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए अग्नि की राशियां मेष सिंह धनु और अग्नि तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 12 राशियों में वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। जब किसी डॉक्टर की राशि वृश्चिक होती है तो ऐसा देखा गया है कि मंगल का प्रभाव होने से डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन होता है। लेकिन कुल मिला के ये बात जानिए कि अग्नि तत्व और मंगल ये मुख्यतः सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन खर्च बढ़ा रहेगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि कब व्यक्ति की शल्य चिकित्सा होती ही है।
1: देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति का ऑपरेशन, सर्जरी जरूर होती है, शल्य चिकित्सा जरूर होती है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो व्यक्ति के जीवन में सर्जरी की नौबत आती है। अगर कुंडली में मंगल के ऊपर पाप प्रभाव हो, केतु का, शनि का, सूर्य का, राहु का, तो सर्जरी की संभावना बनती है। अगर शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो जाए तो ये सर्जरी और दुर्घटना दोनों संभावना जीवन में दिखाता है। कुंडली के छठे भाव में ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, खास तौर से अग्नि के ग्रह बैठें या अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति की सर्जरी होती है। हाथ में अगर तारा बनता हो या किसी रेखा पर द्वीप बनता हो, तो इसका मतलब व्यक्ति की सर्जरी होगी। अगर किसी व्यक्ति की हथेलियों का रंग लाल हो, मंगल के समान हथेलियां हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति की सर्जरी होती है। अगर किसी व्यक्ति के नाखून टेढ़े मेढ़े हो तो इसका मतलब उसका मंगल बहुत अच्छा नहीं है, और अगर मंगल बहुत अच्छा नहीं है तो उसके जीवन में सर्जरी की, ऑपरेशन की संभावना बनेगी।
0: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न महेंद्र जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 14 जून 1995। जन्म का समय रात में 11:45। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री विवाह के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो उसकी शादी की संभावना क्या है और उसका भविष्य क्या है। देखिए महेंद्र जी, आपकी पुत्री के विवाह होने में थोड़ा सा भी विलंब है। साल 2027 में इनका विवाह होगा, इनकी अपनी इच्छा के साथ जाने पहचाने लड़के से, और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है। तो दबाव मत बनाइए, थोड़ा सा इंतजार करिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और अगले साल इनका विवाह अवश्य होगा। आपकी बेटी का करियर और स्वास्थ्य बेहतर रहे, विवाह जल्दी हो सके, इसके लिए आप रोज सुबह और शाम अपनी बेटी के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिए, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ये उपाय करें तो बेटी के जीवन में सुधार अवश्य होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी प्रश्न योगिता ने हमें लिखा है और योगिता हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1983। जन्म का समय सुबह 8:25। जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। योगिता कह रही हैं कि मैं अपनी नौकरी बदलना चाहती हूं। वर्तमान नौकरी में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? योगिता, आपकी कुंडली में नौकरी बदलने का समय चल रहा है। साल 2026 के अंत तक आते आते आपकी नौकरी बदलेगी और आपको तरक्की मिलेगी। करियर आपका बेहतर दिख रहा है, करियर में कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी 2029 के पहले किसी तरह के व्यवसाय में जाने का प्रयास मत करिएगा। आपके लिए अभी नौकरी करना ही उत्तम होगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि कब व्यक्ति शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से बच जाता है।
1: बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की सर्जरी की तैयारी हो जाती है, आदमी रेडी हो जाता है कि मैं अब अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन बहुत बार होते होते आदमी सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से बच जाता है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल हो या शुक्र प्रबल हो, शुक्र मजबूत हो, तो ये आदमी की रक्षा कर लेते हैं और आदमी सर्जरी से बच जाता है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह अगर केंद्र में ना हो, तो भी आदमी सर्जरी से बचता है। आपकी एकदम नकारात्मक दशा चल रही थी, सर्जरी के योग बने हुए थे, अचानक से जीवन में शुभ दशा आ गई, तो आप सर्जरी से बच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या थोड़ी बहुत चोट चपेट लग जाती है, तो सर्जरी का योग टल जाता है, व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। जिन लोगों का जन्म एकदम सुबह का होता है या एकदम संध्या काल का होता है, वो भी अक्सर सर्जरी होते होते बच जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपकी निगेटिव दशा में सर्जरी के योग बनते हैं, लेकिन अचानक से निगेटिव दशा खत्म हो गई और अचानक से पॉजिटिव दशा आ गई, तो आप सर्जरी से बच जाते हैं। या गोचर में, यूनिवर्स में कोई ग्रह सर्जरी के योग बना रहा है, अचानक वो बदल जाता है, तो आदमी सर्जरी से बच जाता है।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होते दिख रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई जोखिम कोई रिस्क ना लें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए जानते हैं कि कुंडली में अगर शल्य चिकित्सा के योग हों तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय हैं जो करने चाहिए।
1: अब अगर कुंडली में आपके सर्जरी के शल्य चिकित्सा के योग बने हुए हैं तो क्या उपाय करें कि उससे बच सकें। लाल फूल से नृसिंह भगवान की रोज उपासना करिए। नृसिंह भगवान के मंत्र का नियमित रूप से लाल फूल अर्पित करने के बाद जप करिएगा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम्। भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करिएगा। जब भी मौका मिले रक्त दान करिए। दक्षिण दिशा की तरफ साउथ की तरफ अपना सर करके सोइएगा और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। अगर सर्जरी के योग ज्यादा प्रबल हैं तो सलाह लेकर एक पुखराज या एक ओपल धारण करिएगा। अगर नृसिंह भगवान की पूजा के साथ आप ये उपाय करेंगे तो सर्जरी को लंबे समय तक टाल पाएंगे।
0: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ होगा,

0: कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और आज चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न अभिनव ने हमें लिखा है और अभिनव हमें भोपाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई सन 2002। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है सीहोर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अभिनव, आपकी कुंडली के हिसाब से आप सरकारी नौकरी की तैयारी जैसे कर रहे हैं करते रहिए। साल 2027-28 का अच्छा समय है और अगर आप ठीक से प्रयास करें तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और इसी के साथ गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम और चौथे प्रश्न का। तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का अंतिम प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अंतिम प्रश्न मधु जी ने हमें लिखा है और मधु जी मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1980। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है मुंबई। मधु जी कह रही हैं कि हम लोग, मैं और मेरे पति मिल करके एक नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो हम कब तक प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे और क्या मुंबई छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना लाभकारी होगा। मधु जी, आपकी कुंडली में इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, तो ज्यादातर संभावनाएं यही हैं कि आप अपनी जगह बदलेंगी, स्थान परिवर्तन होगा और साल के अंत में आप एक प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगी। स्थान परिवर्तन करना आपके लिए अनुकूल है, प्रॉपर्टी का लाभ भी दिख रहा है और आने वाला समय भी ठीक है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा

0: पाठ करें और मंगलवार को निर्धनों को गुड़ का या किसी मिठाई का अगर दान करें तो काफी बेहतर होगा।
1: पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सर्जरी के बारे में, तो जिसकी सर्जरी है उसे सर्जरी से पहले ऐसा क्या उपाय करना चाहिए ताकि उसकी सर्जरी जो है वो सफल हो जाए?
0: जी देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी सर्जरी इनएविटेबल हो, टाली ना जा सकती हो, सर्जरी कराना जरूरी हो, और अगर सर्जरी कराना जरूरी है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, तो उनकी बात मानिए। लेकिन आप कुछ उपाय ऐसे सर्जरी के पहले जरूर कर सकते हैं जिसको करने से आपकी सर्जरी अवश्य ही सफल होगी। देखिए, पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर जीने मरने का प्रश्न ना हो, सर्जरी की डेट डिसाइड कर सकते हो तो शनिवार के दिन सर्जरी मत करवाइएगा। हाँ, अगर जीवन मरण का प्रश्न है तब फिर आप दिमाग मत लगाइए, लेकिन अगर आप डेट समझ सकते हो, डेट आगे पीछे कर सकते हो, तो शनिवार को सर्जरी मत करवाइएगा। सर्जरी जिस दिन होनी है उसके एक दिन पहले एक नारियल ले लें, जटा वाला नारियल, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को समर्पित कर दें और हनुमान जी से प्रार्थना कर लें कि आपकी सर्जरी सफल हो। अब मान लिया जिस व्यक्ति की सर्जरी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो मंदिर नहीं जा सकता, तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके नाम से एक नारियल लेकर के हनुमान जी को अर्पित कर सकता है और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सफल सर्जरी के लिए प्रार्थना कर सकता है।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 24 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, करियर के मामले में सुधार और उन्नति होगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन इस साल पैसे के इन्वेस्टमेंट में, धन के निवेश में सावधानी रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, अक्सर हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जो पुजारी होते हैं वो भगवान के गले की माला हमें दे देते हैं, भगवान के चरणों के फूल हमें दे देते हैं, तो मंदिर से मिली हुई माला और फूल का क्या करना चाहिए? मंदिर से मिली हुई माला और फूल वास्तव में प्रसाद स्वरूप हैं। इसको घर लाकर अपने काम करने की जगह पर या अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए, और अगर ये सूख जाता है तो इसको जल प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें, इधर उधर ना फेंकें।
1: और आइए अब जानते हैं 24 जून 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 24 जून 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और मन की चिंताएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 24 जून बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: आज की गुडलक राशि है सिंह राशि। सिंह राशि ऊर्जा की, एनर्जी की सबसे बड़ी राशि है। सिंह राशि का संबंध आपके शरीर में हृदय से, लिवर से, लोअर एब्डोमिन से और रीढ़ की हड्डी से होता है।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि पंडित जी आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी प्राप्त करने में समस्या हो तो क्या करेंगे, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और जब भी मौका मिले सार्वजनिक स्थान पर केले के पौधे पार्क में, सड़क में, मैदान में लगवा दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो पैतृक संपत्ति प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा।
1: पंडित जी तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या आपकी कुंडली में शल्य चिकित्सा के योग हैं? क्या आप सर्जरी की स्थितियों से बचना चाहते हैं? ज्योतिष में कौन है सर्जरी के लिए जिम्मेदार और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
3: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: और चलिए बात कर लेते हैं क्लीन गंगा के मकसद से शुरू हुए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कानपुर के जोजबाऊ में चल रहे CETP की सफलता की। ये प्लांट यहाँ उद्योगों, टेनरीज और फैक्ट्रीज के जहर से गंगा को मुक्त करा रहा है। गंगा के प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में सफल रहा है। पहले जहां ये जहरीला पानी गंगा में मिल जाता था, अब वाटर ट्रीटमेंट से न सिर्फ किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है बल्कि गंगा भी साफ हो रही है।
2: हिंदुस्तान में गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा एक संस्कार है, पर्व है, गीत है, पुण्य का आधार है, या यूं कहें कि धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा। यहाँ परंपरा है गंगा, विवेक है गंगा, गंगा ही सत्य है और गंगा ही सहारा है। वो गंगा ही है जिससे हरिद्वार है, काशी और प्रयाग है। गंगा ही घर की देहरी है और गंगा ही चिराग है। गंगा ही ऊर्जा है, गंगा ही आग है, गंगा ही दूध पूत है तो गंगा ही सुहाग है। लेकिन आज यही मैली गंगा उदास भी है, इसलिए गंगा की उदासी को महसूस करते हुए उसकी पवित्रता सहेजने की संवेदना ने क्लीन गंगा मिशन का आगाज किया। गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए नित नए कदम उठाए गए, उसी में से एक बड़ा कदम है कानपुर के जाजमऊ इलाके में 28 एकड़ में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के मकसद से लगाया गया कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP।
3: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के जाजमऊ इलाके में बने 20 MLD कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसे बनाया गया था ताकि इंडस्ट्रीज और टैंडरी से निकलने वाला दूषित पानी और केमिकल का पानी सीधे गंगा नदी में ना जाने पाए और उसका पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए और उसे साफ किया जाए।
2: 650 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने 20 MLD कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में रोजाना 20 मिलियन लीटर यानी करीब 2 करोड़ लीटर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का केमिकल वाला पानी साफ होता है। केमिकल युक्त गंदे पानी को साफ करने की ये प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। इसमें पहले प्राकृतिक, फिर ऑर्गेनिक और फिर रासायनिक चरण शामिल है। जाजमऊ की करीब 340 से 400 टेनरीज से निकलने वाले केमिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्देश्य गंदा पानी गंगा में न जाने देने का है। ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ कर पानी को 16 किलोमीटर लंबी इरिगेशन पाइपलाइन में भेजा जाता है, जहां से किसान अपने अपने खेतों में उस पानी से सिंचाई करते हैं।
4: ये काफी हद तक हमारा साफ पानी सिंचाई के लिए जा रहा है, लेकिन हमारी अभी फाइनल स्टेज नहीं है। हमारी एक स्टेज और प्लांट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन UF प्रोसेस, वो अभी हमने किसी कारण बस अभी स्टार्ट नहीं किया है। अगर वो स्टार्ट कर देंगे तो इस पानी का जो हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी।
3: इसमें भी आपका और इसको आप लोग टेस्टिंग भी करते हैं पैरामीटर्स में कि कितने?
4: एक लैब बनी हुई बहुत अच्छी और हाईली एजुकेटेड हमारे लेबोरेटरी पर्सन है। डेली बेसिस पे हमारे सारे पैरामीटर टेस्ट होते हैं कि क्या BOD है, क्या COD, क्या क्रोमियम है, सब में हम डेली बेसिस पे सब टेस्ट कर सकते हैं।
2: यही नहीं, सरकार ने काफी पहले से हर लेदर फैक्ट्री में एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाना जरूरी कर दिया है, जिससे फैक्ट्री के अंदर ही खतरनाक रसायन सॉलिड फॉर्म में अलग कर दिए जाते हैं और बाकी पानी ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है। सॉलिड वेस्ट को डंपिंग साइड में दबा दिया जाता है।
3: जो पानी साफ करके ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकलता है, उसे इस चैनल के जरिए किसानों के पास पहुंचाया जाता है ताकि वे फसल सींचने पाए और यह पानी उनके प्रयोग में ला पाए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वो चैनल है, ये वो पाइपलाइन है जहाँ से पानी इस इरिगेशन चैनल में आ रहा है और इस पाइपलाइन को सामने जो ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है वहाँ से जोड़ा गया है ताकि वहाँ से जब पानी साफ होता है तो इस तरीके से सीधा गंगा नदी में ना जाने पाए बल्कि किसानों के खेतों में जाने पाए और वहाँ से जो पानी बचने पाए वो कहीं ना कहीं आखिरी में जाकर गंगा नदी के पास जाने पाए।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत लगाए गए इस प्लांट के चलते आज गंगा नदी में पहुंचने वाले औद्योगिक प्रदूषण में जबरदस्त कमी आई है। साल 2017 की तुलना में इस प्रदूषण में करीब 60% की गिरावट दर्ज की गई है।
5: पहले क्या था कि नाले डायरेक्ट अपना गंगा नदी में जा रहे थे, फिर हमारे पास STPs बने और उन नालों को टैप करके डाइवर्ट किया गया STP में, तो STP से आफ्टर ट्रीटमेंट वो पानी फिर गंगा में जा रहा, तो उससे क्वालिटी इंप्रूव हुई गंगा जी की। अभी भी हमारे पास एक 15 MLD का नया प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, और इसके साथ साथ हमारे पास फरुखाबाद में 2 STP लगे हुए हैं जबकि ये भी बाद में ही बने हैं, उसमें करीब एक 14.5 MLD का है और एक करीब 12 MLD का है।
2: लंबे समय तक जाजमऊ से निकलने वाला दूषित पानी गंगा प्रदूषण की अहम वजह माना जाता रहा, लेकिन 2023 में लगाए गए सीईटीपी से सबसे बड़ा बदलाव आया है। इस दौरान गंगा में सीधे गिरने वाले सीसामऊ नाले को भी इंटरसेप्ट किया गया। ये नाला पहले हर रोज लगभग 140 एमएलडी गंदा पानी सीवेज और उद्योगों की गंदगी गंगा में प्रवाहित करता था, मगर अब कानपुर इलाके में पानी की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। कानपुर में सीईटीपी की सफलता को देखते हुए अब मथुरा और उन्नाव में भी प्लांट लगाए गए हैं।
3: कानपुर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का ये दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट है। पहला जिसकी क्षमता 1.5 एमएलडी की है वो भी बन रहा है, अपने विस्तार की ओर है। कानपुर के आसपास ऐसे कई इलाके हैं, फरुखाबाद, मथुरा, जहां पर ऐसे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि गंगा का जो अपने आप में एक साफ सुथरा जो पानी है वो बना रहे और केमिकल्स का जो पानी है वो किसी तरीके से उसे खराब ना करने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।
1: और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
6: गर्मी से राहत पाने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई होगा। भीषण धूप और बढ़ते तापमान के बीच ये भालू तालाब के ठंडे पानी में उतर कर खूब आनंद ले रहा है। पानी में इसकी मस्ती देखकर ऐसा लगता है मानो इसे तैराकी की पूरी ट्रेनिंग मिली हो। कभी आराम से तैरता है तो कभी पानी में खेलता नजर आता है। ये नजारा न सिर्फ सुकून देता है बल्कि बताता है कि जानवर भी मौसम के हिसाब से खुद को ढालना अच्छी तरह जानते हैं। स्कूल में बच्चों की चहल पहल नहीं थी, लेकिन इस प्यारी बिल्ली ने माहौल को खास बना दिया। अपने नन्हे बच्चों के साथ स्कूल पहुंची ये बिल्ली सभी का ध्यान खींच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो भी चाहती हो कि उसके बच्चे कुछ नया सीखें। मासूम बच्चों और उसकी माँ की ये मौजूदगी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इसे ममता और स्नेह का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं। सफलता की नींव बचपन में ही रख दी जाती है और इसमें माँ की भूमिका सबसे अहम होती है। सुबह सुबह बच्चों को जगाना, उन्हें पढ़ाई और अभ्यास के लिए तैयार करना आसान काम नहीं है। ये माँ भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का पाठ सिखाकर वो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। ये नजारा बताता है कि माँ का त्याग और समर्पण ही बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। आमतौर पर सीधी दीवार पर चढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन इस मेढक को देखकर हर कोई हैरान है। ये बिना रुके और बिना फिसले लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसकी फुर्ती और संतुलन देखकर लोगों को स्पाइडरमैन की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवार नहीं बल्कि कोई सामान्य रास्ता हो। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस छोटे से जीव की अद्भुत क्षमता और दृढ़ता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्यार और दया की कोई उम्र नहीं होती, ये नन्ही बच्ची इसका सुंदर उदाहरण पेश कर रही है। अपने छोटे छोटे हाथों से वो बड़े प्यार से मोर को खाना खिला रही है। मोर भी बिना डरे उसके पास खड़ा होकर दाना खा रहा है। दोनों के बीच का ये स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। ये नजारा इंसानों और पक्षियों के बीच भरोसे और अपनापन की अनोखी तस्वीर पेश करता है। सोशल मीडिया पर लोग बच्चे की मासूमियत और संवेदनशीलता की खूब सराहना कर रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या आपकी कुंडली में शल्य चिकित्सा के योग हैं? क्या आप सर्जरी की स्थितियों से बचना चाहते हैं? ज्योतिष में कौन है सर्जरी के लिए जिम्मेदार और क्या हैं इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
8: यू शुडन्ट हैव टू चूज बिटवीन स्पीड, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू। विद स्पेक्ट्रम फाइबर पावर्ड इंटरनेट यू गेट ऑल थ्री फॉर जस्ट $40 अ मंथ। नो कॉन्ट्रैक्ट्स, नो कमिटमेंट, जस्ट फास्ट एंड रिलायबल फाइबर पावर्ड इंटरनेट यू कैन काउंट ऑन।
9: Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
12: खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: मॉनसून की पहली बारिश में जमकर भीगी मुंबई, रात भर बरसे बादल, जगह जगह भरा पानी, बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन, अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों में दिख रहा भारी उत्साह। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को होने वाली है रथ यात्रा, रथों को शानदार आकार देने में लगे हैं कारीगर। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे 2 गोल, फीफा वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 1 से ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, मेसी का तोड़ा रिकॉर्ड। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग पाकिस्तान को हराया 4-3 से, दर्ज की जीत, 13 मैचों में से 3 जीत के साथ सातवें स्थान पर भारत, अंक तालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे। विमेंस T20 इंटरनेशनल बॉलर रैंकिंग में श्री चरणी बनी नंबर 1, बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर बरकरार, 6वें नंबर पर शेफाली वर्मा।
0: अल्ट्रा गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशभरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: बादल बरस रहे हैं और धीरे धीरे मॉनसून का इंतजार खत्म होता जा रहा है। फिलहाल मुंबई की जल परीक्षा चल रही है, वहां मॉनसून की दस्तक के साथ जमकर बारिश हो रही है। कैसा है मायानगरी का हाल और आज कैसा रहेगा मौसम, आगे आपको बताएंगे।
4: तो वहीं दिल्ली में प्री मॉनसून की फुहार शुरू हो गई है, कल दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई और आंधी भी चली और इन सबके बीच सबकी नजर मॉनसून पर टिकी हुई है। आखिर कब आएगा दिल्ली में मॉनसून, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा जल्द ही, बस बने रहिए हमारे साथ।
3: राजकोट में भारी बारिश से एक अंडरपास में पानी भर गया, पानी में वहां से गुजर रही यात्रियों से भरी एक बस वहां फंस गई, कुछ पल के लिए बस सब बेबस हो गए, फिर हुआ चमत्कार और बस में सवार यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, कैसे हुआ ये सब आगे आपको बताएंगे।
4: साथ ही पंचायत वाले विधायक जी को आपसे मिलवाएंगे, एक बार फिर से विधायक का ठेठ देहाती अंदाज दिखाएंगे। असल में विधायक जी की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, लेकिन क्या है ये तस्वीर, ऐसे में खास जो चर्चा का विषय बनी हुई है ये तस्वीर, वो भी आपको बताएंगे।
3: तो इमरान हाशमी एक बार फिर से हॉरर फिल्म के साथ फैंस के बीच आने वाले हैं, अब तक 5 हिट हॉरर फिल्में दे चुके इमरान रूह लेकर आ रहे हैं, खौफनाक रहस्य और रोमांस से भरी इस फिल्म पर विस्तार से करेंगे हम बात, लेकिन अभी वक्त हो गया फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
4: माता वैष्णो देवी के दरबार से एक गुड न्यूज आई है, इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, इस साल 22 जून तक 50,70,000 भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई।
3: गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर इन दिनों शक्ति उपासकों की भारी भीड़ जमा है, यहां अंबुबाची मेले में रौनक के ढेरों रंग बिखरे हुए हैं। मां कामाख्या के पावन धाम पर लगने वाले इस महापर्व में शामिल होने के लिए पूरे भारत से लाखों की तादाद में देवी के भक्त, साधु, सन्यासी और तीर्थयात्री यहां पहुंचे हैं।
4: राम मंदिर परिसर में स्थित शेष अवतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम संपन्न हो गया है। भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी को समर्पित इस मंदिर पर राम नगरी के प्रमुख साधु संतों ने ध्वज फहराया। करीब 7,000 आमंत्रित श्रद्धालुओं और अतिथियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धा और उत्साह का विशेष माहौल देखने को मिला। पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ में इन दिनों भक्तों की रौनक देखने को मिल रही है। 22 किलोमीटर कठिन ट्रैकिंग पर श्रद्धालु इस पवित्र धाम तक पहुंच रहे हैं। रुद्रनाथ धाम में भगवान शिव के मुख्य दर्शन होते हैं। हालांकि यहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से ठंड का असर भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं गांधीनगर में अगरिया समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए गुजरात सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। ये शुरुआत रणशाला प्रोजेक्ट के तहत किया गया, जिसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 28 रणशाला बसों का लोकार्पण किया। इन बस में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं।

0: कोटा के धावक नरेंद्र अवस्थी ने दक्षिण अफ्रीका में आज प्रतिष्ठित कॉमरेड्स मैराथन 2026 में 86 किलोमीटर की कठिन अप रन को 9 घंटे 11 मिनट 54 सेकंड में पूरा कर रॉबर्ट मटशाली मेडल हासिल किया। 1750 मीटर की ऊंचाई चढ़ाई वाले इस चुनौतीपूर्ण दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा कर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा का नाम रोशन किया।
1: फीफा इंडियन हॉकी प्रो लीग 2025-26 में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले में 4-3 से हरा दिया है। ये मुकाबला लंदन के ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। भारत रॉटरडैम लीग में ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स पर जीत हासिल करने के बाद इस मैच में उतरा था।
0: शादी के बंधन में क्रिकेटर आकाशदीप बंधेंगे, जहां आज वाराणसी में अक्षितारा संग वो साथ फेरे लेंगे। विवाह समारोह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न होगा। वहीं उनकी शादी में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी।
1: फिल्म मेधा का टीजर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। ये फिल्म महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक कलाकार विठाभाई भाऊ मांग नारायण गावकर के जीवन पर आधारित बायोपिक है। फिल्म में उनके संघर्ष, कला और सफलता की प्रेरणादायक कहानी दिखाई जाएगी। ईथा 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

और चलिए शुभ समाचार में सबसे पहले बात मॉनसून की कर लेते हैं। सुस्त पड़ा दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों समेत मुंबई में मॉनसून की झमाझम बारिश हो रही है तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों तक मॉनसून ने पहुंच बना ली है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चार से पांच दिनों में यूपी में भी प्रवेश कर जाएगा। जहां तक दिल्ली की बात है तो अभी दिल्ली वालों को मॉनसूनी बारिश के लिए इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा, लेकिन मुंबई में मॉनसून का असर दिखने लगा है। एक दिन पहले मुंबई में मॉनसून ने एंट्री मारी और अब वहां जमकर बारिश हो रही है। आलम यह है कि माया नगरी के ज्यादातर इलाके पानी से भर चुके हैं। कई जगह लोग अपनी गाड़ियों को धक्का निकालकर पानी से निकालते हुए भी दिखे, जबकि कई जगह घुटनों तक पानी से लोग अपने दफ्तर जाते हुए भी नजर आए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मॉनसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और उसने मुंबई में एंट्री ले ली है और लगातार झमाझम बारिश मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रही है।

0: 13 दिन की देरी से ही सही मॉनसून आखिरकार मुंबई पहुंच ही गया। आमतौर पर मॉनसून 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है। मंगलवार को मॉनसून के मुंबई पहुंचते ही कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के काफी हिस्सों तक पहुंच गया है। 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश में भी एंट्री ले लेगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। यही नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों में गुजरात और मध्य प्रदेश भी पहुंच सकता है, क्योंकि मॉनसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इस समय देश में मौसम के 2 अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ मॉनसून की फुहारें गर्मी से राहत दे रही हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाकों, विदर्भ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। दिल्ली में मंगलवार दोपहर को धूल भरी आंधी चली और कुछ इलाकों में तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जिससे दिल्ली वासियों ने गर्मी से राहत महसूस की। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में मॉनसून को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है, क्योंकि 25 से 30 जून तक सामान्य तौर पर मॉनसून पहुंचता है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून दिल्ली में एंट्री कर सकता है। उसके बाद ही हरियाणा में मॉनसून की बारिश होगी। हालांकि उससे पहले दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में प्री मॉनसून एक्टिविटी जारी रहेगी और पूरे हफ्ते दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश होती रहेगी।
1: मॉनसून की रफ्तार पहले से थोड़ी बड़ी है, जिसके कारण उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंत तक और जुलाई के पहले सप्ताह में जो मॉनसून है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में दस्तक दे सकता है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मॉनसून के कारण ओडिशा, केरलम, कर्नाटक, तेलंगाना, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, झारखंड, ओडिशा में भी तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में प्री मॉनसून एक्टिव रहने से आंधी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में और विदर्भ में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मॉनसून की देरी के लिए मौसम वैज्ञानिक अल नीनो को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी चेतावनी जारी कर कहा है कि प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका 80% है और नवंबर तक इसके 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है, जिससे एशिया के कई देशों में कम बारिश हो सकती है, जिसका असर फसल उत्पादन पर दिख सकता है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, मॉनसून में किस कदर बारिश होती है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पहले से तैयारी की गई हो तो मॉनसून में मिलने वाली चुनौती से पार पाया जा सकता है। अब ये तस्वीर आप देखिए गुजरात के राजकोट की है, जहां पर एक बस बारिश के बाद अंडरपास में फंस गई। बस चारों तरफ से पानी से घिर गई, ना आगे बढ़ सकती थी और ना ही पीछे हो सकती थी। बस में सवार यात्री घबराने लगे, तुरंत खबर प्रशासन तक पहुंच गई। फिर राहत बचाव के लिए जेसीबी को बुलाया गया। जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला जा सका, लेकिन ये रेस्क्यू इतना आसान नहीं था जो इन तस्वीरों में लग रहा है।
3: और अब बात राजकोट की, तो राजकोट में हुआ ये कि तेज बारिश के बाद एक अंडरपास से बस जो है वो गुजरने लगी, तभी बस अंडरपास में जमा 5 फीट पानी में फंस गई। बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसके बाद सभी की धड़कनें बढ़ गई। ऐसे में कुछ लोग कमर तक के पानी में उतरे और बस को धक्का लगाने लगे, मगर लोगों के धक्का लगाने से बस इंच भर भी आगे नहीं बढ़ी। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था और सभी मदद के लिए इंतजार में थे। और देखिए किस कदर ये बस जो है वो पानी के बीचों बीच फंस गई है, घुटनों तक पानी हुआ है और लोग जो हैं बस को धक्का लगाकर बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
2: तो वहीं राजकोट नगर निगम को बस के अंडरपास में पानी में फंसे होने की खबर मिली, जिसके बाद तुरंत सभी टीमें हरकत में आई, फायर ब्रिगेड को खबर दी गई और फिर राहत बचाव के लिए जेसीबी के साथ टीम मौके पर पहुंची। बस 5 फीट तक के पानी में फंसी हुई थी और उसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। ऐसे में बस को आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो गया था। रेस्क्यू के लिए सबसे पहले बस में सवार यात्रियों को नीचे उतारा गया, फिर पानी से बाहर उनको निकाला गया, फिर जेसीबी की मदद ली गई और बस को पीछे की तरफ खींचा गया। कुछ देर की मेहनत रंग लाई और बस अंडरपास से सुरक्षित बाहर निकल पाई।
3: देश के ज्यादातर हिस्सों में स्कूल की छुट्टियां हैं और लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने इस साल नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 6 महीने में 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने मां के दर्शन किए और अभी भी भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भवन, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और रोपवे की सुविधाएं लगभग पूरी तरह से बुक चल रही हैं।
4: श्री माता वैष्णो देवी धाम, जहां पूरी होती है हर आस, हर मुराद, हर मन्नत। तभी तो आस्था की डोर से बंधे भक्त खींचे चले आते हैं। सालों भर माँ के दरबार में रौनक रहती है। भक्तों की लंबी कतार माँ की महिमा का बखान करती है और इस साल तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते 6 महीनों में तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। 22 जून तक कुल 50,70,000 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, जबकि पिछले साल यानी 22 जून 2025 तक करीब 39,84,000 तीर्थयात्रियों ने मंदिर के दर्शन किए थे। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 10,86,000 यानी 27% ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। ये उपलब्धि केवल एक नंबर रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की इस पवित्र मंदिर के प्रति अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का सशक्त प्रमाण भी है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की उपलब्धि की एक बड़ी वजह यात्रा प्रबंधन और सुविधाओं में हुए सुधार को भी माना जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यात्रियों की भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुवाहाटी के विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन है। ऐसे में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। परंपरा के मुताबिक मंदिर के कपाट 26 जून को खोले जाएंगे और इस बीच मंदिर परिसर में साधु संतों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। देश दुनिया से आए लाखों साधक मंदिर परिसर में देवी कामाख्या का साधना में जुटे हुए हैं।

0: माँ कामाख्या मंदिर में शक्ति उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। परंपरा के मुताबिक मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। आज महायोग का दूसरा दिन है। माँ गर्भगृह में विश्राम कर रही हैं। बाहर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, क्योंकि ये वक्त माँ की प्रतीक्षा का है, साधना का है, माँ की आराधना का है, उनकी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने की है।
1: और हम भी अपना भजन कर रहे हैं, माता रानी हमें भी शक्ति और भक्ति दे कि हम जगत का कल्याण कर सकें। जितने भी यहाँ पे साधु संत आए वो संसार के लिए भजन करते हैं, भजन के लिए तप करते हैं और सभी भक्तों के लिए सुख शांति मांगते हैं।
2: ये जो माँ कामाख्या का पीठ है, 51 पीठों में से शक्ति पीठ ये प्रधान पीठ कहा गया है। अम्बुबासी मेले में के साधु संत सभी आ रखे हैं, सभी अपनी साधना में लगे हुए हैं, माँ कामाख्या का भजन कर रहे हैं। माँ महामाई ऐसी सभी पे कृपा बनाए रखे, ऐसे भगवती सभी में है मेहर बनाए रखे। जय माँ कामाख्या।
3: कहने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है ना कि माँ की गोदी में आके बैठे हैं और जो यहाँ पे आके जो यहाँ पे जो माँ की ऊर्जा मिलती है उसकी तो बात ही निराली है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है।
0: आदि शक्ति के 51 शक्ति पीठों में सबसे प्रमुख माँ कामाख्या के दरबार में अम्बुबाची मेला लगा है और इस मेले का हिस्सा बनने के लिए कोई दिल्ली से आया है तो कोई मुंबई से, कोई हरिद्वार से तो कोई गुजरात से। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु माँ की आराधना में लीन हैं। कोई नाम जप कर रहा है तो कोई ध्यान में मग्न है, कोई माँ की भक्ति में लीन भाव विभोर है। यहाँ अम्बुबाची मेले में देश विदेश से पहुँचे लाखों साधु संत और श्रद्धालु मंदिर परिसर में डेरा डाले हुए हैं, साधना और भजन कर रहे हैं, माँ के धाम में बैठकर उनकी पवित्र ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं।
4: मतलब जैसे उसकी तो महिमा परंपरा है, हर बार बुलाती है, हर बार बहुत प्रेम से बुलाती है, तो माता की कृपा है। बिल्कुल,
5: बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है माँ के इस मेले में आना और इस समय में आना। और उनका आप देख रहे हैं विभिन्न पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से साधु संत आए हैं और एक अलग तरह की ऊर्जा मैं कहूँगा माँ कामाख्या के प्रमाइसेज में आपको मिलती है। और माई सब पर दया रखें और सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, देश को समृद्धि दें।
0: वैसे तो माँ के इस पवित्र धाम में सालों भर रौनक रहती है, लेकिन अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। मानो सारी सकारात्मक शक्तियाँ मंदिर के वातावरण को अद्भुत एहसास से भर देती है, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं।
6: जो फील हो रहा है, जो एनर्जी है, उसे कोई शब्द से महसूस सिर्फ करने में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। हम जितना भी बोले वो उतना कम है कि जो फीलिंग है, जो उनकी वाइब्रेशन है, जो वाइब फील होती है, जो लोगों की वाइब्स है, क्योंकि सब पॉजिटिव लोग हैं और एनर्जी भी पॉजिटिव है, तो जो फील हो रहा है ना वो जितने भी कहा जाए उतना कम है, वो फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं पहली बार आया हूँ, मेरी एज होगी 40 की, लेकिन 40 साल में जो पहली बार आया हूँ, जितने भी धाम घूम चुका हूँ, जो फील यहाँ पे हुआ वो मुझे अभी तक कहीं पे नहीं हुआ।
7: हर साल आते हैं पर अम्बुबाची में दूसरी बार आ रहे हैं, पर हर साल कामाख्या तो अभी तो पीक एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन गॉडेस की। सो फॉर साधना, साधक के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे होना फॉर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। इस समय मंदिर बंद होना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो मंत्र जाप है वो इसी समय सिद्ध होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा सब जगह है इस समय। सो जरूरी नहीं है कि गर्भगृह में दर्शन हो, शी इज एवरीवेयर राइट नाउ।
0: इनमें से कई ऐसे हैं जो कई बार माता के धाम आ चुके हैं, लेकिन अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ आना उनके लिए खास है। असल में अम्बुबाची मेला देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला यानी मासिक धर्म और सृजन शक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसके प्रतीक के तौर पर माँ कामाख्या गर्भगृह में 3 दिनों तक एकांत में विश्राम करती हैं। मान्यता है कि इस दौरान माँ की आराधना से साधकों को सिद्धि मिलती है, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं और साधुओं के साथ साथ अलग अलग अखाड़ों से जुड़े नागा सन्यासी और आध्यात्मिक संत भी माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। 26 जून को पूरे विधि विधान से धाम के कपाट खुलेंगे और माँ के दर्शन से साधकों की आस पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और चलिए अब बात एक अनूठी पाठशाला की कर लेते हैं। गुजरात में अगरिया परिवार के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार ने एक अनूठी पहल की है। सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके तहत गुजरात के रेगिस्तानी और नमक उत्पादन वाले इलाकों में रहने वाले अगरिया परिवारों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए 28 बसों को चलते फिरते स्कूल में बदल दिया गया है।
9: शिक्षा से कोई वंचित न रह जाए, उसकी रोशनी हर किसी तक पहुंचे, इसी मकसद से गुजरात सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, खासकर उन बच्चों के लिए जो दूर दराज या नमक उत्पादन करने वाले इलाकों में रहते हैं। इस पहल के तहत करीब 28 बसों को चलते फिरते स्कूल में बदल दिया गया है और अलग अलग इलाकों में जाकर ये बसें उन बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं जिनकी पहुँच स्कूल तक नहीं है।
10: तो गुजरात एसटी द्वारा खास तौर पे एक बहुत ही इनोवेटिव प्रयास के माध्यम से दूर दराज के नीमक के जो अगरिया क्षेत्र है और उनके परिवार के बच्चों के लिए वेस्ट यानी के जो बसेस बंद हालत में पड़ी थी, भंगार परिस्थितियों में थी, वो वेस्ट में से बेस्ट के कंसेप्ट को हाथ में लेके 28 बसेस को रणशाला में बदल के आज ये बसेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुपुर्द की गई है।
9: गुजरात में इन स्कूल ऑन व्हील्स बसों को रणशाला नाम दिया गया है। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बसों में स्कूल वाली फील देने के लिए कड़ी मेहनत की गई है। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है। इन बसों में 3.8 केवीए का ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगा है जो 48 घंटे तक चल सकता है। इसके अलावा इनमें स्मार्ट टीवी, डिजिटल लर्निंग टूल्स, पोर्टेबल स्टडी टेबल, लाइब्रेरी और पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था है। पढ़ाई के साथ साथ इनमें बच्चों के खेलने के लिए लूडो, स्लाइड, झूले और आउटडोर खेल के सामान भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकें।
10: बस को देखोगे तो पूरी तरह से स्कूल क्लासेस में जैसी व्यवस्था होती है, ऐसी ही हर बस में 20 बच्चे को बैठ के वो पढ़ पाए ऐसी व्यवस्था की गई है। पीने के पानी की बात हो, हाथ धोने की बात हो, चप्पल रखने की बात हो, या फिर बच्चों को एंटरटेन कर पाए ऐसे स्विंगिंग हो, या फिर अलग अलग खेलने की व्यवस्था की बात हो, बस के चारों ओर फसाट में खेलते खेलते पढ़ने की व्यवस्था भी की गई है।
9: समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के संयुक्त प्रयासों से शुरू की गई इस परियोजना का मकसद नमक

0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: मानसून की पहली बारिश में जमकर भीगी मुंबई, रात भर बरसे बादल, जगह जगह भरा पानी, BMC ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद।
7: गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन, अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों में दिख रहा भारी उत्साह।
6: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को होने वाली है रथ यात्रा, रथों को शानदार आकार देने में लगे हैं कारीगर।
7: रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे 2 गोल, फीफा वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में एक से ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, मेसी का तोड़ा रिकॉर्ड।
6: भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग पाकिस्तान को हराया, 4-3 से दर्ज की जीत, 13 मैचों में 3 जीत के साथ 7वें स्थान पर भारत, अंक तालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे।
7: विमेंस T20 इंटरनेशनल बॉलर रैंकिंग में श्रीचरणी बनी नंबर 1, बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर बरकरार, 6वें नंबर पर शेफाली वर्मा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ समाचार में। और चलिए आपको लेकर चलते हैं माया नगरी मुंबई, जहां बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने बाबा बागेश्वर से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर इन दिनों मुंबई में सनातन मठ में पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों के बीच समाज सेवा और जनकल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। टाइगर श्रॉफ और बाबा बागेश्वर ने गरीब बेटियों के लिए कैंसर हॉस्पिटल और बागेश्वर धाम में चल रही माँ अन्नपूर्णा प्रसादम रसोई भंडारे जैसी सेवाओं के बारे में बातचीत की। वैसे आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर माया नगरी पहुंचे तो यहां केवल टाइगर ही नहीं बल्कि और सितारे भी बाबा से मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। और देखिए, मुंबई में बाबा बागेश्वर का दरबार सज चुका है। मुंबई में बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। और इस बीच टाइगर श्रॉफ, एक्टर टाइगर श्रॉफ भी बाबा बागेश्वर नाथ से मिलने के लिए पहुंचे। और देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।
1: क्रिकेट की दुनिया में एक कहावत है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में इसे चरितार्थ किया है 41 साल के रोनाल्डो ने। कल पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया और इस जीत में सबसे बड़ा नाम रोनाल्डो का रहा, जिन्होंने 2 गोल कर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। खास बात यह रही कि इस दौरान रोनाल्डो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। वो दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 6 अलग-अलग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल किया है।
0: और टोरंटो में क्रोएशिया के फैंस ने जबरदस्त जश्न मनाया, डांस किया, गाने गाए और झंडे लहराए, क्योंकि उनकी टीम ने वर्ल्ड कप के ग्रुप एल मैच में पनामा को 1-0 से हराया। क्रोएशिया और पनामा टूर्नामेंट में पहले पॉइंट्स की तलाश में उतरे थे। उन्हें पता था कि हारने पर उन्हें जल्दी घर लौटना पड़ सकता है, क्योंकि इसी ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड और घाना का मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा था। लेक ऑन्टारियो दोनों देशों के झंडों के रंगों से पटा था। मैच शुरू होने से पहले क्रोएशिया के फैंस ने रैले सॉन्ग मोजा डोमोवेना को दिल को छू लेने वाले अंदाज में गाया, जिससे एक रोमांचक मैच का माहौल बन गया। और फैंस को टीम क्रोएशिया ने निराश नहीं किया। पनामा को पस्त कर क्रोएशिया ने फैंस के जश्न में जीत की मिठास खोल दी।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं हॉकी की। FIH प्रो लीग 2026 के लिए बेहद ही रोमांचक मैच में कल भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। मैच की शुरुआत में पाकिस्तान के अहमद नदीम ने गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन इसके बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की। दूसरे क्वार्टर में अभिषेक और नीलकांत शर्मा के गोल के दम पर भारत ने मैच में 2-1 की बढ़त बनाई, जिसे तीसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह ने शानदार गोल दागा। फिर चौथे क्वार्टर में रजिंदर सिंह के गोल ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया और ली वैली हॉकी सेंटर पर भारत ने पाकिस्तान पर एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 4-3 से एक यादगार और रोमांचक जीत अपने नाम कर ली।
0: क्या पंचायत वाले विधायक जी आपको याद है? भाई जरूर याद होंगे विधायक जी, क्या पंचायत का तो हर किरदार लोगों को बखूबी याद होगा। खैर, हम यहां बात विधायक जी की कर रहे हैं, जिनकी ठेठ देहाती अंदाज में सब्जी खरीदते एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे खुद विधायक जी मतलब पंकज झा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट किया। और हम इस तस्वीर को आपके लिए डीकोड कर रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट।

0: खीरे टमाटर सब्जी के इस ढेर के बीच नजर आ रहे इस शख्स को तो आप भूले नहीं होंगे, भूल भी कैसे सकते हैं, आखिर ये पंचायत वाले विधायक जी हैं। हाँ, यहाँ पर इनका अंदाज थोड़ा देसी शुद्ध गांव वाला है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन गौर से देखने पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। मशहूर ओटीजी सीरीज पंचायत के विधायक जी यानी पंकज झा ने खुद इस तस्वीर को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। इस तस्वीर में वो शॉर्ट्स, बनियान और गले में झोला लटकाए सड़क पर सब्जियां खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी में आम लोगों की तरह खीरा सब्जी छांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी का सादगी भरा अंदाज इंटरनेट पर वायरल है और लोगों का दिल जीत रहा है। पंकज झा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर कर कैप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि ये तस्वीर कहां और कब की है। वैसे इस तस्वीर को देखकर दो बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि पंकज झा गांव में फुर्सत के पल बिता रहे हैं और शायद सब्जी खरीदते देख आसपास खड़े लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं है। दूसरी ये कि शायद ये शूटिंग का हिस्सा है और विधायक जी पंचायत सीजन 5 की शूटिंग कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या विधायकी जाने के बाद इनके इतने बुरे दिन आ गए कि ऐसी हालत में सब्जी खरीदनी पड़ रही है। खैर, हकीकत जो भी हो, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने विधायक जी की इस तस्वीर को देखकर मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी है। एक यूजर ने लिखा, विधायक जी पंचायत के अगले सीजन में वोट जीतने के लिए एक मजबूत संगठन बनाने के लिए जमीनी स्तर से काम शुरू कर रहे हैं। तो किसी ने कहा, विधायक की जाने के बाद इनका हालत बहुत खराब चल रहा है। एक और यूजर ने फिरकी लेते हुए कहा, पूरे सीजन लौकी का ही प्रमोशन हुआ, अब होगी खीरा टमाटर की एंट्री। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, और इन सारी बातों का सार एक ही है कि यूजर्स को पंचायत के नए सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। सादगी, देसी कॉमेडी और दिल छू लेने वाली कहानी के दम पर इस पंचायत सीरीज ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजन 5 की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। मसलन गांव के चुनाव की गर्मी अब और तेज होने वाली है। सचिव जी और रिंकी के रिश्ते में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। वहीं प्रधान जी पर हुए हमले का रहस्य भी इस बार कहानी का बड़ा हिस्सा बन सकता है। जानकारी के मुताबिक पंचायत सीजन 5 की शूटिंग जोर शोर से चल रही है और इसके जुलाई या अगस्त तक पूरे होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। हमेशा की तरह इस बार भी सीजन में कुल 8 एपिसोड्स होने की बात सामने आ रही है। मतलब ये कि चंद महीनों का इंतजार और फिर फुलेरा गांव की पंचायत ओटीटी पर आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए फिर हाजिर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बॉक्स ऑफिस पर स्त्री बनकर सबका दिल जीतने वाली श्रद्धा कपूर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर ऐसा किरदार निभाने जा रही हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस बार श्रद्धा कपूर ईटा बनी है और जिसका टीजर अब रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विट्ठा भाई की जिंदगी पर बेस्ड है और उन्हें लोक कला के प्रति असीम समर्पण के लिए भी 2 बार राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया था।
2: पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।
0: बॉलीवुड में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ चुकी श्रद्धा कपूर अब ईटा के किरदार में नए अंदाज और नए तेवर के साथ हाजिर हैं। पैरों में घुंघरू की छनक है तो आंखों में जीत का जुनून। श्रद्धा कपूर का ये इंटेंस अवतार पहले ही झलक के साथ दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। मैडॉक फिल्म्स की मच अवेटेड फिल्म ईटा का टीजर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुका है और चर्चा में है ईटा के किरदार में श्रद्धा कपूर की दमदार अदाकारी, जिसने हल्की सी झलक में ही दिलों को झकझोर कर रख दिया है। ईटा में श्रद्धा एक ऐसी मिसाल पेश करने जा रही हैं जो इतिहास के पन्नों में पहले से ही दर्ज है। श्रद्धा ने महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर के किरदार को पर्दे पर साकार किया है। विठाबाई नारायण गांवकर महाराष्ट्र के एक बेहद लोकप्रिय और महान लोक कलाकार, लावणी नर्तकी और लोक गायिका थी। वो लावणी गवलन और वैदिक जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों और गीतों को प्रस्तुत करने में बेहद माहिर थे। उनकी अद्भुत कला को देखते हुए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला था। लोक कला के क्षेत्र में उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए दो बार 1957 और 1990 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी कला का लोहा मानते हुए उन्हें तमाशा साम्राज्ञी की उपाधि दी थी। विठाबाई की स्मृति को संजोए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2006 से लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की। विठाबाई की जिंदगी संघर्षों, हिम्मत और लावण्य के प्रति पागलपन की एक ऐसी मिसाल है जिसे पर्दे पर उतारना किसी भी एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धा कपूर ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और विठाबाई के दर्द को अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया है। विठाबाई के जीवन की सबसे प्रसिद्ध और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना 1967 में शिखर श्रृंगणापुर में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हुई थी, जिसे टीजर में दिखाया भी गया है। बताया जाता है कि विठाबाई तब 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और स्टेज पर नाच रही थी। परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें अचानक लिवर पेन शुरू हो गया। तब उन्होंने मंच के पीछे जाकर बच्चे को जन्म दिया और दर्शकों की मांग पर कुछ ही मिनटों बाद फिर से स्टेज पर आकर नाचने लगी।
2: पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।
0: कला के प्रति उनके इस अनोखे और अटूट समर्पण की कहानी आज भी महाराष्ट्र के लोक इतिहास में गर्व से याद की जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि विठाबाई की जिंदगी के हर एक लम्हे को उसी शिद्दत के साथ पर्दे पर उतार कर श्रद्धा कपूर ने वाकई अभिनय के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। मेकर्स ने साफ कर दिया है कि ईठा में लावणी सिर्फ एक नाच गाना नहीं है, बल्कि ये विठाबाई की कला, उनके स्वाभिमान और विरासत की एक कभी न मिटने वाली कहानी है। ईठा 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: चलिए अब बात कर लेते हैं कला और हुनर के सम्मान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड के दूसरे फेज में 65 हस्तियों को सम्मानित किया। इस विशेष कार्यक्रम में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री दिए गए।
1: तो सम्मान पाने वाले लोगों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, एक्टर आर माधवन, सिंगर अलका याग्निक, साउथ एक्टर ममूटी, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज जैसी जानी मानी हस्तियां शामिल थी।
0: जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन को भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस को जन सेवा के लिए पद्म विभूषण से भी नवाजा गया।
1: तो हम आपको बता दें, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान, चिकित्सा, खेल और साहित्य जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं
0: और हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। साल 2026 के पद्म पुरस्कारों के लिए 131 लोगों को चुना गया था। इससे पहले 25 मई को पहले चरण में भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र समेत 66 हस्तियों को पद्म अवार्ड दिए गए थे।
1: टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि रोहित को उसी दिन पद्मश्री से नवाजा गया जिस दिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ ODI मैच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जर्नी की शुरुआत की थी। अब 19 साल बाद ये खिताब मिलना हिटमैन के लिए बेहद खास पल था।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा।
1: वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को भी पद्मश्री से नवाजा गया। इस सम्मान पर सविता पुनिया ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का बेहद ही खास पल है, बेशक ये उनके लिए गर्व का पल है। तो सविता पुनिया को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 65 हस्तियों को सम्मानित किया गया और हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को ये पद्मश्री मिला। ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये पल उनके लिए बेहद ही खास है।
2: डेफिनेटली खुशी तो बहुत है क्योंकि एक हॉकी में लंबी जर्नी रही है मेरी और काफ़ी हार्डवर्क किया है और टीम की बहुत हमेशा सपोर्ट रही है, फैमिली की सपोर्ट रही है। तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो भी हूँ अपनी टीम की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से हूँ। जब भी आप कोई बड़ा मेडल जीतते हो या जब भी आपकी जर्नी में कोई अवार्ड्स मिलता है, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें ऐड होती है, तो आपको हमेशा वो जर्नी याद आती है कि आपने खेलना क्यों स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया। तो एक वो टाइम था कि मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, हॉकी खेलना तो बहुत दूर की बात। हमेशा मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और जितना हो सका मैं भी टीम के साथ अपना एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर इन्वॉल्व रहती हूँ क्योंकि टीम गेम है तो डेफिनेटली आप फैमिली से ज़्यादा टाइम टीम के साथ स्पेंड करते हो। तो अभी हम रिसेंटली नेशन कप में थे तो सभी यही बार बार बोल रहे थे हमें ये टूर्नामेंट जीतना है, जाना है, मेडल के साथ जाना है क्योंकि सभी दीदी जाते ही सेरेमनी है तो हमें वो बेस्ट बनाना है। तो सब बहुत खुश हैं और मेरी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात है।
1: और कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए आर माधवन को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसके बाद माधवन ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया और सरकार और अपने फैंस को शुक्रिया भी अदा किया। आर माधवन ने इंस्टा पर लिखा, मुझे पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। इस बड़े सम्मान के लिए मैं भारत सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं महाराष्ट्र सरकार का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस पुरस्कार के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाया और मुझ पर भरोसा किया। ये दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा।

0: श्री माधवन रंगनाथन कला अभिनय।
1: बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अलका पिछले 4 दशक से गायकी की दुनिया में छाई हुई हैं। उनके गाने बहुत ही लोकप्रिय रहे और वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप सिंगर्स में भी शामिल रही हैं।

0: और चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था संभालने में बिताया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद खुद को बेजुबान जीवों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तमिलनाडु के मदुरई की 76 वर्षीय अमालती अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा बंदरों को खाना खिलाने में खर्च करती है। उनके बंदरों के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि ये जानवर उन्हें देखते ही उनके पास दौड़े चले आते हैं।
1: हफ्ते में एक बार मालती देवी इसी तरह अपनी कार से निकलती है, बहुत से फल और ढेर सारी मूंगफलियाँ लेकर। ये फल और मूंगफलियाँ उनके खास बेजुबान दोस्तों के लिए हैं, जो मालती देवी को पहचानते हैं और उनका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। और जैसे ही उनकी कार रुकती है, मालती देवी के बेजुबान दोस्त उन्हें घेर लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है दावत का दौर। पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली 76 साल की मालती ने जानवरों की सेवा को अपना मिशन बना लिया है। 2015 से वो अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा त्रिवपरन कुंद्रम के जंगलों और पहाड़ियों में रहने वाले बंदरों को खाना खिलाने में लगा रही हैं। आज उनकी एक आवाज पर 400 से ज्यादा बंदर दौड़े चले आते हैं। मालती देवी का मिशन आज मिसाल बन चुका है। वो खुद गांधीग्राम यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन की डायरेक्टर रह चुकी हैं। उन्होंने कोडाईकनाल के एक इंटरनेशनल स्कूल में भी अपनी सर्विस दी है। यही नहीं, उन्होंने पूरे 33 साल तक तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर देश की सेवा की है। साल 2010 में वो अपनी नौकरी से रिटायर हुई।
2: In 2010, I retired from my job.
1: मैं 2010 में नौकरी से रिटायर हुई। मुझे हर महीने एक अच्छी पेंशन मिल रही है जो मेरे खर्चे से बहुत ज्यादा है। मैं उस अमाउंट को इन बंदरों पर खर्च कर रही हूँ जिनको समाज नजरअंदाज कर देता है। ये बंदर जंगल और हिल स्टेशंस पर रह रहे हैं और खाने के लिए तरस रहे हैं। मैं पिछले 13 सालों से इन बंदरों को तिरुपरन कुंड्रम में खाना खिला रही हूँ। जानवरों के लिए मालती देवी उनकी ऐसी दादी माँ हैं जो उनका ख्याल रखती हैं, उनके लिए ढेर सारा फल लेकर आती हैं। हालांकि बढ़ती उम्र और शरीर की बंदिशों ने उन्हें थका दिया है, लेकिन बावजूद इसके उनका जज्बा कायम है। मालती देवी का मानना है कि इन बेजुबानों की सेवा करने से जो सुकून मिलता है उनको शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए अब वक्त हो गया इंस्टा स्टोरी का। आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो कि अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए रितेश देशमुख की एक फनी इंस्टा स्टोरी।
3: बेबी मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है।
4: तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी।
0: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
7: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
6: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
8: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
0: कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
0: मॉनसून की पहली बारिश में जमकर भीगी मुंबई, रात भर बरसे बादल, जगह जगह भरा पानी, BMC ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले का दूसरा दिन, अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों में दिख रहा है भारी उत्साह। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा का आयोजन, रथों को शानदार आकार देने में लगे हैं कारीगर। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे 2 गोल, फीफा वर्ल्ड कप में किसी एक मैच में एक से ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, मेसी का तोड़ा रिकॉर्ड। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग पाकिस्तान को हराया, 4-3 से दर्ज की जीत, 13 मैचों में 3 जीत के साथ 7वें स्थान पर भारत, अंक तालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे। विमेंस T20 इंटरनेशनल बॉलर रैंकिंग में श्री चरणी बनी नंबर 1, बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर बरकरार, 6वें नंबर पर शेफाली वर्मा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में, यानी शल्य चिकित्सा के बारे में। इसका महत्व क्या है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, इस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जून 2026, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 6:12 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शल्य चिकित्सा, सर्जरी यानी ऑपरेशन के बारे में। कुंडली में आपके सुरक्षा का कारक, सुरक्षा का स्वामी है मंगल, और स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की मजबूती मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी है और हिंसा भी करवाता है, वायलेंस भी करवाता है, लेकिन जब ये हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। यानी चीर फाड़ हिंसा व्यक्ति को बेहतर करने के लिए की जाती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। मुख्य रूप से मंगल ही ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के अलावा कभी कभी केतु और सूर्य भी शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए अग्नि की राशियां मेष सिंह धनु और अग्नि तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 12 राशियों में वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। जब किसी डॉक्टर की राशि वृश्चिक होती है तो ऐसा देखा गया है कि मंगल का प्रभाव होने से डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन होता है। लेकिन कुल मिला के ये बात जानिए कि अग्नि तत्व और मंगल ये मुख्यतः सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन खर्च बढ़ा रहेगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति का ऑपरेशन, सर्जरी जरूर होती है, शल्य चिकित्सा जरूर होती है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो व्यक्ति के जीवन में सर्जरी की नौबत आती है। अगर कुंडली में मंगल के ऊपर पाप प्रभाव हो, केतु का, शनि का, सूर्य का, राहु का, तो सर्जरी की संभावना बनती है। अगर शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो जाए तो ये सर्जरी और दुर्घटना दोनों संभावना जीवन में दिखाता है। कुंडली के छठे भाव में ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, खास तौर से अग्नि के ग्रह बैठें या अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति की सर्जरी होती है। हाथ में अगर तारा बनता हो या किसी रेखा पर द्वीप बनता हो, तो इसका मतलब व्यक्ति की सर्जरी होगी। अगर किसी व्यक्ति की हथेलियों का रंग लाल हो, मंगल के समान हथेलियां हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति की सर्जरी होती है। अगर किसी व्यक्ति के नाखून टेढ़े मेढ़े हो, तो इसका मतलब उसका मंगल बहुत अच्छा नहीं है, और अगर मंगल बहुत अच्छा नहीं है तो उसके जीवन में सर्जरी की, ऑपरेशन की संभावना बनेगी। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होते दिख रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी,
गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई जोखिम कोई रिस्क ना लें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की सर्जरी की तैयारी हो जाती है, आदमी रेडी हो जाता है कि मैं अब अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन बहुत बार होते होते आदमी सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से बच जाता है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल हो या शुक्र प्रबल हो, शुक्र मजबूत हो, तो ये आदमी की रक्षा कर लेते हैं और आदमी सर्जरी से बच जाता है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह अगर केंद्र में ना हो, तो भी आदमी सर्जरी से बचता है। आपकी एकदम नकारात्मक दशा चल रही थी, सर्जरी के योग बने हुए थे, अचानक से जीवन में शुभ दशा आ गई तो आप सर्जरी से बच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या थोड़ी बहुत चोट चपेट लग जाती है तो सर्जरी का योग टल जाता है, व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। जिन लोगों का जन्म एकदम सुबह का होता है या एकदम संध्या काल का होता है, वो भी अक्सर सर्जरी होते होते बच जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपकी निगेटिव दशा में सर्जरी के योग बनते हैं, लेकिन अचानक से निगेटिव दशा खत्म हो गई और अचानक से पॉजिटिव दशा आ गई तो आप सर्जरी से बच जाते हैं। या गोचर में, यूनिवर्स में कोई ग्रह सर्जरी के योग बना रहा है, अचानक वो बदल जाता है तो आदमी सर्जरी से बच जाता है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
अब अगर कुंडली में आपके सर्जरी के शल्य चिकित्सा के योग बने हुए हैं तो क्या उपाय करें कि उससे बच सकें? लाल फूल से नृसिंह भगवान की रोज उपासना करिए। नृसिंह भगवान के मंत्र का नियमित रूप से लाल फूल अर्पित करने के बाद जप करिएगा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम। भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करिएगा। जब भी मौका मिले रक्त दान करिए। दक्षिण दिशा की तरफ साउथ की तरफ अपना सर करके सोइएगा और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। अगर सर्जरी के योग ज्यादा प्रबल हैं तो सलाह लेकर एक पुखराज या एक ओपल धारण करिएगा। अगर नृसिंह भगवान की पूजा के साथ आप ये उपाय करेंगे तो सर्जरी को लंबे समय तक टाल पाएंगे। अगर भाई बहनों के साथ आप अपने संबंध ठीक करना चाहते हैं तो हर मंगलवार को मंदिर में या घर पर हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करिएगा और इसके बाद हनुमान जी के सामने कम से कम 27 बार या 108 बार राम नाम का जप करिएगा तो बहुत उत्तम होगा। कि अगर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी प्राप्त करने में समस्या हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और जब भी मौका मिले सार्वजनिक स्थान पर केले के पौधे पार्क में, सड़क में, मैदान में लगवा दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो पैतृक संपत्ति प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: can never have too many tools. Shop DeWalt Deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: No.
3: Oh, no.
4: Welcome to Get Real.
2: I got something to say.
4: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh, my God.
2: It's got to be deliciously desperate.
3: Why do these girls forgive him?
5: She has a soft spot for troubled men.
2: Boo bloody hoo.
4: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
3: Love runs deeper than we know.
4: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
6: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.

एक बात हमारे मन में आई कि माता रानी को दुर्गा क्यों कहा जाता है। जरा कोई सूचना भिजवाए, ये जो बज रहा है पूरा हॉल इसमें हिल रहा है। विचार करो, उतना दूर होकर के भी इतनी तेज आवाज है, नजदीक वालों का क्या हाल होता हो। और फिर भी हमने कई लोग देखे, वो ऐसे मटकते हैं जैसे ये जो है स्वर्ग जा रहा हो, वो पीछे पीछे चले जा रहे हैं। डीजे। तो आज सुबह जब हम विचार कर रहे थे तब सोच रहे थे कि भगवती का नाम दुर्गा क्यों पड़ा। एक बात समझ में आई, देवी भागवत में दुर्गम नाम के दैत्य का वर्णन, दुर्गम नाम का दैत्य। तो दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने के कारण देवी का नाम दुर्गा पड़ा। देवताओं ने कहा, आपने दुर्गम नाम के दैत्य को मारा है तो आपको आज से दुर्गा कहा जाएगा। सुनो, हमारी दृष्टि में दो लोग ऐसे हैं भगवानों में जो दुर्गम काज सुगम करते हैं। एक तो मां दुर्गा है, जो काम देवताओं से नहीं हो पाया वो दुर्गा माने करके दिखाया, और दूसरे हनुमान जी हैं।

दुर्गम काज को हनुमान जी ने भी सुगम किया, माँ दुर्गा ने भी दुर्गम काज को सुगम किया। आहा, एक दैत्य हुआ

था रूरू, क्या नाम था जोर से बोलो, रूरू। रूरू नाम का पुत्र था दुर्गम। रूरू बहुत बलशाली था लेकिन दुर्गम उससे ज्यादा बलशाली हुआ। इसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। कितने साल तक? 1000 सहस्त्र वर्ष पर्यंतम चकार परमं तपः। 1000 साल इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भए, बोले मांग। ये आंख मूंद करके बैठ गया। अरे बोले भाई मांग, कुछ मांग। इसने हाथ जोड़ करके पूजित्वा वरं ब्रवे, आप हमको वर दो। क्या वर चाहिए? ब्रह्मा की वाणी सुनकर के दैत्य खड़ा हो गया दुर्गम और बोला महाराज और कोई वर नहीं, आपके चार मुख हैं, आपके हाथों में ये जो चार वेद हैं हमें दे दो। अब तपस्या की तो मना तो कर नहीं सकते क्योंकि तपस्या बहुत की। कई बार कोई आदमी बहुत सेवा करता है फिर मांग ले तो मना नहीं किया जाता। दुनिया का एक सिद्धांत है, हम बता दें आपको, तुम्हारे काम का है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी से कोई वस्तु मांगना हो तो वो डायरेक्ट नहीं मांगते, पहले 3 ऐसी वस्तुएं मांगते जो तुम दे ना पाओ। जैसे किसी को 10,000 रुपया उधार मांगना हो तो हमारे जैसे सीधे साधे लोग क्या कहते, भैया 10,000 रुपया दे दो बाद में चुका दे। पर जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसे नहीं मांगते, वो क्या कहते, भैया हम बहुत हैरान हैं, 1,00,000 रुपया की अबई जुगाड़ करो, 1,00,000 रुपया चाहिए, साल भर बाद दे। अरे भैया 1,00,000 रुपया हम पे नहीं है, बहुत ज्यादा होते। अच्छा 1,00,000 नहीं है, 50,000 है, 50 भी नहीं है, आए तो हैं 10,000 मांगने पर शुरू 1,00,000 से किया, 1,00,000 दे दो, हम पे नहीं है भैया, 50,000 है, अरे भैया है नहीं, तो 10,000 तो दे ही दो, मरद से तो बच जाए। अब 2 बार मना कर दी, तीसरी बार कौन करे, हाँ भैया लो 10,000 ले। वाह, बुद्धिमान ऐसे होते हैं। हमारे जैसे सीधे साधे जितने चाहिए उतने ही दे दो भैया, वही दैत्य है। तो दैत्य ने तपस्या की दुर्गम ने, ब्रह्मा जी बोले मांग। बोले महाराज आपके हाथों में ये जो चार वेद है ना इन्हीं को दे दो। चार वेद ले लिए। और कोई वरदान? एक और चाहिए। क्या? ब्राह्मणों के पास जितने मंत्र हैं वो हमें सब दे दो। ब्राह्मणों के मंत्र ले लिए दुर्गम ने। अब इसने वेदों को छिपा दिया, मंत्रों का लोप कर दिया, और जिस दिन वेद लोप हो जाएंगे धरातल पर हाहाकार मच जाएगा। वही हुआ। आहा, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। नदियां सूखने लगी, पानी बूंद नहीं बचा, पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया, पशु मरने लगे, समुद्र भी सूख गए, चारों तरफ चीत्कार मच गया, ब्राह्मण मंत्रहीन हो गए, देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राहीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणास्दीनम, मंत्र भी लुप्त हो गए दुर्गम दैत्य के कारण। तो मंत्र जब लुप्त हुए तो ब्राह्मणों के कर्म कांड भी लुप्त हो गए, पूजा पाठ भी बंद हो गई, भगवान का अर्चन बंदन भी बंद हो गया, वेद लुप्त हो गए, परंपराएं लुप्त हो गई। एकमात्र वेद के लुप्त हो जाने से पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। बुरा ना मानना, कुछ लोग वर्तमान में कहीं मनुस्मृति का विरोध करते, कहीं रामायण का विरोध करते, कहीं गीता का विरोध करते, कहीं भागवत का विरोध करते। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक वेद पृथ्वी पर हैं तब तक मानव सभ्यता है, जिस दिन वेद खत्म हो जाएंगे मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। हाँ, वेदों की परंपरा कम होने के कारण पृथ्वी में अभी ही न जाने क्या क्या होने लगा। अब बताओ इस साल नवरात्रि में भी बारिश हो रही, पूरे पितृपक्ष में तो जल बरसो ही बरसो, नवरात्रि में भी ऐसो पानी बरस रहो कि इस साल हमें ऐसो लग रहा हो कि रावण जल करके नहीं डूब के मरेगा। आओ, आओ, आओ,

दिखाओ, जब नवरात्रि में ही इतनी वर्षा हो रही तो वो जल के थोड़ी मरे, डूब के मरे, डूब के। हाँ बताओ, कहीं नवरात्रि में ऐसी बारिश देखी तुमने? हमने तो ना देखी, हमारी 27-28 साल उम्र कट गई, तो जितनी कट गई उतने की हमें ध्यान है, बाकी बड़े बूढ़े तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे समय के तो पेड़ भी सूख गए। तो आप लोग देख सकते, ऐसी कभी बारिश देखी? बताओ नवरात्रि, कारण क्या है? जगह जगह भूस्खलन हो रहा, भूकंप आ रहा, सुनामी आ रही। इस बार पहली बार साल में कई तीर्थों के पट बंद भए। वैष्णो देवी अर्धकुंवारी में पहाड़ गिर गया तो पट बंद हो गए, केदारनाथ में रास्ता बंद हो गया तो दर्शन बंद हो गए, बद्रीनाथ में यही हुआ पट बंद हो गए, अमरनाथ में भी यही हुआ पट बंद हो गए। विचार करो, ये जितनी भी उपद्रव मचे हैं इसका सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी वेद की परंपरा बार बार कम होना, वेद परंपरा पर कुठाराघात करना। हम भारत के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, मानव सभ्यता को यदि बचाना है तो पहले वेदों को बचाना पड़ेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात देवी भागवत में लिखी हुई है। भैया देवी भागवत का द्वितीय स्कंध आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि घोर उपद्रव होने लगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, जहां देखो कोपम संहर देवेशी, भयंकर कोप मच गया।

उपद्रव हुआ, भयंकर हाहाकार मचा। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप हमको बचाओ। क्या हुआ? हाहाकार मच गया, ना तो पानी है ना भोजन है, पशु मर गए, दुर्गम नाम के दैत्य ने पूरे वेद लोप कर दिए, मंत्र लोप कर दिए, भयंकर उपद्रव मचा हुआ है। तो भगवान बोले दुर्गम को हम भी नहीं मार सकते। कौन मार सकता? कोई विशेष शक्ति ही दुर्गम नाम के दैत्य को मार सकती है। अब महाराज पर प्रार्थना करो। तो सब देवताओं ने मिलकर, भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने, इंद्रादि देवताओं ने, वरुण ने, सबने मिलकर देवी की स्तुति की।

हे भगवती आपकी जय हो, आप अखंड ब्रह्मांड की शक्ति हो। हे चिदारूपा देवी हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, हम देवताओं को बचा लो, मनुष्य जाति खत्म होने की कगार पर आ गई। हे ब्रह्मांड की अधीश्वरी माता नेति नेतेति वाक्य लिया, वेद आपको नेति नेति कहते हैं, आपकी कोई पार नहीं पा सकता। आप पराम्बा हो, आप जगदम्बा हो, आप महेश्वरी हो, आप भुवनेशी हो, आप भगवती हो, संपूर्ण ब्राह्मणों ने मिलकर के प्रार्थना की देवी की।

सभी कारणों की कारण हो, हमको दुर्गम नाम के दैत्य से बचा लो। जैसे ही इतना भगवती ने सुना, तत्क्षण सुन करके नीलांजन समप्रख्यम भगवती माँ चिदानंदमयी देवी त्रिपुर सुंदरी आद्य शक्ति माता परम्बा माता जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना, जो तेजोमय है, जो ब्रह्ममय है, जो सहस्त्र भुजा वाली है, आठ भुजाएं तो केवल अष्ट भुजा एक रूप है, भगवती के हजारों भुजाएं हैं, अनेकों भुजाओं में अनेक अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए, किसी में खड़ग लिए हुए, किसी में शंख लिए हुए, किसी में चक्र लिए हुए, किसी में कपाण लिए हुए, भगवती माँ सहस्त्र भुजा वाली नीलांजन समप्रख्यम। भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी ब्राह्मणों की स्तुति करने के कारण तत्क्षण उनके सामने बाण आदि मुकुट लेकर के प्रकट हो गई। और जैसे ही देवी प्रकट हुई, देवी को देखकर प्रणाम किया। देवी ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मणों, आप सब रो क्यों रहे? देवता क्या बात है,

हे भूदेवो, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, कारण तो बताओ। देवी ने जब ब्राह्मणों से कारण पूछा तो रोते हुए ब्राह्मणों ने अपनी विपदा बतलाई। हे मातेश्वरी, दुर्गम नाम के दैत्य ने हमारे वेदों को छुड़ा लिया, लोप कर दिया, मंत्रों को भी लोप कर दिया। ना मंत्र बचे हैं, ना वेद बचे हैं, ना साधना बची है, ना उपासना बची है, ना कर्म कांड बचा है। साम वेद भी गया, यजुर्वेद भी गया, ऋग वेद भी गया, चारों वेद मां चले गए, लोप हो गए, हाहाकार मच गया, पशु मर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर सूखा इतना भयंकर पड़ा, पूछो मत माता, अब हम लोग भी मरने की कगार पर आ गए। हे माँ, कुपुत्रो जायते कुचदपि, कुमाता न भवती, पूत कपूत हो सकते लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, अब हम पर कृपा करो। जैसे ही माँ ने ब्राह्मणों की वाणी को सुना, देवताओं से और ब्राह्मणों से पृथ्वी के इस विचित्र परिस्थिति को सुना, माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही रोई भगवती हजारों नेत्रों से, तो भगवती का नाम सताक्षी पड़ गया।

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: To right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ballgame.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
11: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
7: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
12: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
10: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
13: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
14: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
10: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
15: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
10: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
16: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
10: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
17: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
17: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
15: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
19: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
13: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
20: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में। फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
21: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
10: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
22: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
10: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
23: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
10: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक ठीक करता है और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
7: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
2: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
5: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
12: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
24: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
25: Tune in is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports and more all in one place and hear all the audio you love. Whether you're a music lover,
26: this must be just, 'cause we all just wanna be big.
25: interested in what's going on around the world?
3: I have no idea how this election is going to play out.
25: Or want to catch up on your team's live play-by-plays? It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
25: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
25: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: मुंबई में रात भर बरसे से बादल, जगह जगह भरा पानी। BMC ने सुरक्षा के मद्देनजर सब्वे किए बंद, रेड वार्निंग के साथ दिन भर तेज बरसात की चेतावनी। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन, अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों में दिख रहा भारी उत्साह। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को होने वाली है रथ यात्रा का आयोजन, रथों को शानदार आकार देने में लगे हैं कार्यक्रम। रोनाल्डो ने उज़्बेकिस्तान के खिलाफ दागे 2 गोल, फीफा वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 1 से ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, मेसी का तोड़ा रिकॉर्ड। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग पाकिस्तान को हराया 4-3 से दर्ज की जीत, 13 मैचों में 3 जीत के साथ 7वें स्थान पर भारत, अंक तालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे। महाराष्ट्र में मॉनसून की एंट्री के बाद
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: महाराष्ट्र में मॉनसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश, महाराष्ट्र के लिए अगले 5 दिन बेहद अहम। मॉनसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी, अगले 3 दिनों के लिए ठाणे और मुंबई होगी जोरदार बारिश। मुंबई में भारी बारिश से यातायात हुआ प्रभावित, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से अंडरपास में भरा पानी, आवाजाही पर रोक। मुंबई के गांधी मार्केट में भी भरा पानी, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। मुंबई के गांधी मार्केट में भरा बारिश से कई इलाकों में पानी, कई वाहन पानी में फंसे। मुंबई के अंधेरी में भी बारिश से अंडरपास में भरा पानी, यातायात किया गया बंद। मुंबई के दादरी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित। नवी मुंबई में भारी बारिश से जल भराव, पानी में चलने को मजबूर दिखे लोग। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मॉनसून होगा और मजबूत, 25 से 26 जून को मूसलाधार बारिश की संभावना। ठाणे में भारी बारिश जारी, कई इलाकों में जल भरा। भारी बारिश का आनंद लेते नजर आए बच्चे, पानी में जमकर की मस्ती। वाशिम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। अकोला में भी भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सतारा के कोयना नगर में पहली बारिश से दिखा प्रकृति का खूबसूरत नजारा, ओझरे झरने का बड़ा जलस्तर। राजकोट में तेज बारिश से रेलवे अंडरब्रिज में भरा पानी, पैसेंजर से भरी एसी बस फंसी। JCB की मदद से बाहर निकाली गई बस, सभी यात्री सुरक्षित। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन से सड़कें बंद। भूस्खलन से सड़क पर आया मलबा, यात्रियों की बड़ी परेशानी। पुंछ में आपदा से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का मॉक ड्रिल, SDRF, पुलिस सेना, CRPF और अन्य एजेंसियां आपदा ने सुरक्षा को परखा। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोशी नदी में बड़ा पानी, बिहार सुपौल, सहरसा, मधेपुरा सहित कोसी तटवर्ती इलाकों में प्रशासन अलर्ट। नेपाल के बैराज से छोड़ा गया 1,86,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी, कोशी नदी में पानी बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी भारी बारिश, कई इलाकों में जल जमाव, यातायात पर असर। साईं बाबा के नगर शिरडी में झमाझम बरसात, तापमान में गिरावट, रास्तों पर भरा पानी। भारतीय रेल की बड़ी पहल, पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे चला रही है परीक्षा स्पेशल ट्रेनें, समस्तीपुर से शुरू होगी ये ट्रेन। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकाली जाएगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, 200 कारीगर बना रहे हैं ये रथ। रथों के निर्माण में तकनीकी और कलात्मक दोनों पहलुओं पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान, सेवक रथों के जोड़ स्थानों के लिए लोहे के उपकरण कर रहे हैं तैयार। 29 जून को प्रभु जगन्नाथ की होगी पूर्णिमा स्नान, 15 दिनों तक भगवान का रहेगा एकांतवास। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है ये पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन रॉक स्क्वाड से होगी सुरक्षा, सीसीटीवी से होगी यात्रा की निगरानी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान, आने जाने वाले लोगों पर पुलिस रख रही है विशेष नजर। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। धर्मनगरी अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में शेष अवतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न, दिव्य समारोह का हुआ आयोजन। अयोध्या के 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज का किया पूजन, फिर मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा। भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे करीब 4,000 राम भक्त, श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर श्री रामलला राम परिवार मंदिर और परकोटा क्षेत्र के सभी देव विग्रहों के दर्शन पूजन किए। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के निवासी जंग बहादुर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को सौंपी करीब 300 वर्ष पुरानी भगवान श्री राम से संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ की पांडुलिपि, संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगी यह धार्मिक धरोहर। चारधाम यात्रा के तहत 2 महीने में अब तक बद्रीनाथ पहुंचे 12,52,000 से ज्यादा श्रद्धालु, भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में सीएम विजय के जन्मदिन पर अरिलमिगु सुब्रमण्यम मंदिर में विशेष पूजा, भगवान के निकाली गई भव्य रथ यात्रा, लोगों को दिया गया अन्न। रायपुर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे में सीएम विष्णुदेव साय ने किया पौधारोपण, खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। अगरतला में ऑल त्रिपुरा इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का हुआ आगाज, सीएम माणिक साहू इसमें शामिल। रांची में T20 फाइनल देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़, फैंस ने मैच का जमकर लिया आनंद। गोवा के पारुल विश्वविद्यालय में ग्रैंड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने की इसमें शिरकत। माता वैष्णो देवी के दरबार से सामने आई गुड न्यूज, रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन, इस साल 22 जून तक 50,70,000 भक्तों ने की पूजा। श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं से यात्रा बनी और भी अधिक सुगम, रोप वे और बैटरी कार सेवाओं से श्रद्धालुओं को मिली राहत। भीड़ प्रबंधन और डिजिटल सुविधाओं से यात्रा बनी आसान, वैष्णो देवी यात्रा में पिछले साल से 10,86,000 ज्यादा श्रद्धालु इस बार पहुंचे। आज शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाश दीप, क्षितराज संग लेंगे 7 फेरे, सासाराम से वाराणसी के लिए निकलेगी बारात। कानपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान बना देवदूत, सूझबूझ और तत्परता से बचाए यात्री की जान। मॉस्को पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायिक ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान से जुड़े एमओयू पर दस्तखत। मॉस्को में सीजीआई ने दिया भाषण, कहा भारत और रूसी न्याय प्रणालियों के बीच अकेडमी और ट्रेनिंग प्रोग्राम के आदान प्रदान, रिसर्च पार्टनरशिप और बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करने की काफी गुंजाइश। राजस्थान के कोटा के नरेंद्र अवस्थी ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कॉमरेड्स मैराथन 2026 की 86 किलोमीटर की चुनौती पूरी की। 9:11:54 में पूरी की ये दौड़। शानदार प्रदर्शन के लिए रॉबर्ट मर्चाली मेडल से हुए सम्मानित। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग और डर्बन शहरों के बीच आयोजित होता है ये मैराथन, विश्व के सबसे कठिन अल्ट्रा रेस में है शामिल। वेलकम टू द जंगल का नया गाना हुआ रिलीज, फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अक्षय कुमार के वेलकम टू द जंगल पर लगे 18 कट्स, फिल्म को CBFC ने UA16+ सर्टिफिकेट के साथ दी मंजूरी, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू। श्रद्धा कपूर की ईथा का टीजर हुआ रिलीज, फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे टाइगर श्रॉफ, लोगों की सेवा और गरीब बेटियों पर की बातचीत। जून के आखिरी वीकेंड पर एंटरटेनमेंट की बारिश, थिएटर और OTT पर एक साथ रिलीज होगी 13 नई फिल्में और सीरीज। हॉकी टीम इंडिया से फिर पिटा पाकिस्तान, हॉकी प्रो लीग में हरमनप्रीत ब्रिगेड की रोमांचक जीत। FIH प्रो लीग 2025-2026 में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। लंदन के ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में खेला गया ये मैच। वुमेन्स T20 इंटरनेशनल भारतीय टीम की क्रिकेटर 21 साल की श्री चरणी बॉलिंग रैंकिंग में बनी नंबर वन, इंग्लैंड की लिंसी स्मिथ को पीछे छोड़ते हुए भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने हासिल किया पहला स्थान। श्री चरणी बॉलिंग रैंकिंग में नंबर वन बनने वाली भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बन गई है, उनसे पहले की उपलब्धि दीप्ति शर्मा के नाम थी। भारत की 3 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, उपकप्तान स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर बरकरार, ओपनर शेफाली वर्मा 1 स्थान ऊपर चढ़कर 6ठे और कप्तान हरमनप्रीत कौर 10वें नंबर पर। चीन की अनोखी ड्रैगन बोट ड्राफ्टिंग रेस में दिखा न्यूजीलैंड का दम, 10,000 किलोमीटर का सफर पार करके चीन पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। फुशान में ड्रैगन बोट सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि तीखे मोड़ों पर भी हुई ड्रिफ्ट, तीखे मोड़ों ने बढ़ाया ड्रैगन बोट ड्रिफ्टिंग रेस का रोमांच।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई

0: ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
8: मुंबई में जमकर बरसे बादल, जगह जगह भरा पानी, BMC ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद, रेड वार्निंग के साथ दिन भर तेज बरसात की चेतावनी। दिल्ली में मॉनसून से पहले जल भराव और बाढ़ से निपटने की तैयारी, बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ कैंप भी किए जा रहे हैं तैयार, MCD, PWD, DDA और DGB को खास निर्देश। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन, अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों में दिख रहा है भारी उत्साह। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को होने वाली है रथ यात्रा का आयोजन, रथों को शानदार आकार देने में लगे हैं कारीगर।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। और आज जीएनटी स्पेशल में बात करेंगे शक्ति के सबसे बड़े रहस्यमय धाम कामाख्या की। देखिए, जहां चार दिनों के अंबुबाची मेले की शुरुआत हो चुकी है और इसमें शामिल होने के लिए देश भर से करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालु गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। इसमें सामान्य लोग तो है ही, साधु साधक तांत्रिक और अघोरे भी शामिल हैं। देखिए, शक्ति परंपरा के इस उत्सव को देवी शक्ति के जागरण और सृजन की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इस दौरान मंदिर के कपाट बंद हैं, पर मंदिर परिसर में भक्तों का रेला है। दरअसल कामाख्या मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। कई किंवदंतियां इस मंदिर की ऐतिहासिकता को बताती हैं। सबसे मशहूर कहानी तो यही है कि सती के शरीर का एक हिस्सा कटकर यहाँ गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पर 52 शक्ति पीठों में एक इसे माना जाता है। देवी का ये दिव्य धाम बहुत ही प्राचीन है। मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। क्या है अंबुबाची उत्सव और कामाख्या मंदिर में इसका क्या महत्व है, चलिए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में।

0: की, जगत जननी माता की, जय जय माता की।
1: कोई मन से पूजता है, कोई मंत्र से, कोई भावना से तो कोई तंत्र से। राह अलग है पर लक्ष्य एक, माँ की आराधना। तभी तो किसी के लिए भावना सर्वोपरि है, तो किसी के लिए कठिन साधना। अम्बुवाची मेले का अवसर बड़ा है, इसलिए कामाख्या देवी मंदिर में जमावड़ा है। हजारों की भीड़ माँ के आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़ी है। ये तस्वीर इस मायने में अनूठी है क्योंकि यहाँ भावना और साधना का अद्भुत संगम है। यही कामाख्या देवी मंदिर की विशेषता है। यहाँ सिर झुकाने आए सामान्य लोग भी हैं और तंत्र मंत्र की पद्धति से माँ को पूजने वाले साधक भी। कोई पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव को देखने समझने आया है, तो कोई मंदिर परिसर में मौजूद ऊर्जा को आत्मसात कर दी।
2: माँ तो मतलब जैसे उसकी तो महिमा परंपरा है, हर बार बुलाती है, हर बार बहुत प्रेम से बुलाती है, तो माता की कृपा है। बिल्कुल कल्चर अलग है, लेकिन हम यही है कि हम सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के कल्चर से लेते हैं, इंस्पायर होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, तो ऐसा है कल्चर हमारा।
3: यहाँ पे आने से आप हमारे मदर गॉडेस जो हिंदुइज्म में डिवाइन फेमिनिन, यहाँ काली एंड त्रिपुर सुंदरी दोनों का वास है, तो हम माँ की कंपनी में आते हैं, उनकी ऊर्जा में आते हैं। मनोकामना का तो क्या है ना, मनोकामना है कि अभी हम यहाँ है ना, बाकी तो वो दे देंगी, उनका नाम लेना काफी है।
1: गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर मौजूद कामाख्या देवी मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है, शाक्त परंपरा और तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र। साल का कोई भी दिन हो, भीड़ जरा भी कम नहीं होती, पर अम्बुवाची मेले की बात ही कुछ और है। मान्यता है कि इस वार्षिक मेले के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला से गुजरती है, इसी वजह से इस दौरान देवी माँ को पूरा आराम दिया जाता है और मंदिर के मुख्य कपाट 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। बेशक कपाट बंद है, पर भक्तों के लिए इस वक्त पूरे परिसर में माँ की मौजूदगी है। अम्बुवाची उत्सव की शुरुआत सोमवार को हुई। सोमवार की रात 9:08 और 42 सेकंड पर महायोग की प्रवृत्ति से जुड़े अनुष्ठान किए गए और फिर 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। अब 26 जून को सुबह निर्वृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद भक्तों के लिए कपाट फिर से खोले जाएंगे।
4: दिन 3 रात को अम्बुवासी महायोग रहेगा। ये सबसे शक्तिशाली समय है और ये जागतिक समय है। सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीचों-बीच में 3 दिन और 3 रात रहता है। क्योंकि ये इतना दुर्लभ समय है, ये समय में हर कोई जो भी प्रार्थना करे अपना मन से, अपना नियम से, जो भी जैसा चाहता है वो ऐसा प्रार्थना करे, क्योंकि ये समय और साल भर में एक बार ही आता है और दोबारा नहीं मिलेगा। ये समय बहुत दुर्लभ समय है।
1: कपाट खुलने के बाद यानी 4th दिन कामाख्या देवी को शुद्ध स्नान कराने की परंपरा है। इसके बाद देवी की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा का प्रसाद प्राप्त करना सभी की मनोकामना होती है, खासकर जो साधक हैं या तांत्रिक हैं, उनके लिए तो ये उत्सव और प्रसाद बेहद अहम होता है।
5: रानी सभी भक्तों की सबकी मनोकामना पूरी करे और जो भी भगत श्रद्धा से आए उनकी यात्रा सफल हो और सभी श्रद्धालुओं का काम अच्छा हो और हम भी अपना भजन कर रहे हैं, माता रानी हमें भी शक्ति और भक्ति दे।
1: अंदाजा है कि इस अम्बुवाची मेले में देश भर से करीब 8 लाख भक्त शामिल हो रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद तांत्रिकों, अघोरियों और साधु संतों की है, जो इस दौरान मंदिर के आसपास गुप्त साधना और ध्यान करते हैं। तांत्रिक परंपरा में रजस्वला अवस्था को सृजन शक्ति और प्रकृति के पुनर्जागरण का प्रतीक माना गया है। इसे देवी की दिव्य शक्ति के जागरण का काल माना जाता है। इसलिए शाक्त परंपरा में इस मेले का सबसे ज्यादा महत्व है।
6: किन्नर जहाँ है वहाँ पूजा पाठ होती है। हमारा संसार तो नहीं होता है, यदि संसार होना होता था तो माता ने हमें मेल या फीमेल बनाते थे। इस जन्म में शायद से हमें पूजा ही करना है, इसलिए माता ने ये जन्म दिया है।
7: लास्ट टाइम भी आया था यहाँ कामाख्या मंदिर में, लेकिन मुझे जो वाइब फील हुई अब की बार अम्बुवाची मेला में आने के बाद में 2026 के, मैं बहुत पहले भी प्रयास कर रहा था, सोचा था कि आऊँगा एक बार, लेकिन अब की बार जब आया तो ऐसा फील हो रहा है कि बार बार आना चाहिए, क्योंकि जो वाइब्रेशन है यहाँ की, जो एनर्जी है, वो जब अभी ये निकल रहे थे, वो परिक्रमा कर रहे थे और डमरू के साथ में पूरा जो तांत्रिक लोग थे और जितने भी साध्वी यहाँ पे आए थे, पूरा अलग ही माहौल था। और वो देख करके, वो फील करके कोई भी यहाँ पे आने के बाद में यही सोचेगा कि अब की बार तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा।
8: मैं अम्बुवाची मेले में हूँ, पहले अम्बुवाची मेले में आया था, नॉर्मल डेज में आया था। और दूसरी बात है कि भी जब आज हमने दूसरी बार दर्शन करे घर पे रह के, और जब दूसरी बार दर्शन करे घर पे रह के तो वो भी बहुत अनप्लान्ड हुए। हम कम से कम 3-4 बजे आए और फिर हमारे 6 बजे तक दर्शन भी हो गए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ये बोलूंगा कि मैं दूसरी बार आया हूँ अम्बुवाची मेले में और मैं आऊँगा भी आगे भी, तो मैं जो लोग घर से देख रहे हैं चीज़, उनसे बोल रहा हूँ एक बार आप आके एक बार प्लीज़ एक्सपीरियंस करें, बहुत सही एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है।
1: कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है, लेकिन शाक्त परंपरा में इसका महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। मान्यता है कि भक्तिभाव से पूजा के बाद जो भी मनोकामना होती है माँ उसे पूरा जरूर करती है। तंत्र मंत्र या साधना जरूरी नहीं, जो भी सच्ची भावना से सिर झुकाता है आशीर्वाद पाता है।
9: ये जो माँ कामाख्या का पीठ है, 51 पीठों में से शक्तिपीठ ये प्रधान पीठ कहा गया है। अम्बुवासी मेले में के साधु संत सभी आ रखे हैं, सभी अपनी साधना में लगे हुए हैं, माँ कामाख्या का भजन कर रहे हैं। माँ महामाई ऐसी सभी पे कृपा बनाए रखे, ऐसे भगवती सभी में है मेहर बनाए रखे। जय माँ कामाख्या।
10: बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है माँ के इस मेले में आना और इस समय में आना, और उनका आप देख रहे हैं विभिन्न पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से साधु संत आए हैं, और एक अलग तरह की ऊर्जा मैं कहूँगा माँ कामाख्या के प्रमाइसिस में आपको मिलती है। और माई सब पर दया रखें और सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, देश को समृद्धि दें।
11: माँ की गोदी में आके बैठे हैं और जो यहाँ पे आके जो माँ की ऊर्जा मिलती है उसकी तो बात ही निराली है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है।
1: मन में मुराद लिए, देवी माँ से आस लिए, भक्तों का रेला कामाख्या देवी मंदिर पहुँच रहा है। माँ का हर तरफ जयकारा गूंज रहा है। गुवाहाटी से अचिंत्य पतंगिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: 52 शक्ति पीठों में से कामाख्या देवी का दर बहुत ही चमत्कारी है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक कुंड में देवी के प्रकृति स्वरूप की पूजा का विधान है। यहाँ बड़ा ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है और माना जाता है कि इन 3 दिनों में यहाँ एक चमत्कार होता है। यहाँ एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है।
13: नीलांचल पर्वतमाला पर बसा मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ, जो सती के 52 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है, जहां भगवती महा मुद्रा स्वरूप में विराजमान हैं, जिस धाम में जगदम्बा के गर्भगृह से रक्त बहने की मान्यता है। कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे गुफा में बना हुआ है। गुफा में माता की कोई छवि या मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक पत्थर है, यही भगवती की महामुद्रा स्थिति है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप मां भगवती का कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में मां कामाख्या साक्षात वास करती हैं, जिसके ऊपर लाल रंग के गेरू का घोल गिराया जाता है। मान्यता है कि देवी का ये धाम ही सृष्टि का सूत्राधार है।
14: ये पहला ये प्रयाग ज्योतिषपुर बोल करके था। आदि समय में भगवान शिव जी का जब शादी हुआ था सती देवी से, जब सती देवी का दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, जब अपमान करने से ये जब वहाँ यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया तो सती देवी ने अपना अंग को त्याग किया, देहत्याग किया। उस देहत्याग करने के बाद में भगवान शंकर जी बड़ा विलाप करने लग गए। उस विलाप का समय वो सारा संसार अपना कांध में लेकर के माता सती देवी को लेकर के घूमने लगे। तो उस समय 52 शक्तिपीठ हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ महाभावम कामाख्या योनि मंडला, सर्वश्रेष्ठ है तो ये आदि अनादि सर्वश्रेष्ठ जहाँ से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, ये कामाख्या शक्तिपीठ है।
13: देवी के हर शक्तिपीठ की तरह ही विधि विधान से यहाँ माता का श्रृंगार किया जाता है। फूल, साड़ी, चुनरी, सिंदूर के साथ यहाँ माँ भगवती की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में माता कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है।
15: ये एक कुमारी एक पाठ है पूजा का, क्योंकि कामाख्या में माँ कुमारी रूप से है और माँ दुर्गा जब पहले जो आविर्भाव हुए थे तो कुमारी रूप से आविर्भाव हुआ था।
13: मान्यता है कि जो भी भक्त इस शिला का पूजन दर्शन करते हैं और माता को स्पर्श करते हैं, वो देवी कृपा और मोक्ष के साथ भगवती का सानिध्य भी पा लेते हैं। यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है, इसे सौभाग्य कुंड कहते हैं।
16: और एक यहाँ जैसे आप लोग दर्शन करते हैं, यहाँ दर्शन नहीं, यहाँ स्पर्शन है। मुख्य तरफ से यहाँ स्पर्शन है। एक जो मेन जो मूल स्थान है, मुख्य स्थान है जहाँ गर्भगृह है माता का, उसी स्थान एक मुकुट से ढका रहता है। उस स्थान को हम लोग कहते हैं महामुद्रा। मुद्रा से जल आता है, ये जल स्पर्श करने के लिए माता का अंग है। जल स्पर्श करने के लिए माता आता है और यहाँ माना जाता है दर्शन नहीं स्पर्शन है। स्पर्श करने से आदमी को मोक्ष प्राप्ति होता है, निर्वाण प्राप्ति होता है। इसलिए इस स्थान का महत्व थोड़ा सा अलग अलग तीर्थ स्थानों से अलग है।
13: एक ओर जहाँ ये समाज महिलाओं के लिए कई वर्जनाएं स्थापित करता है, समाज में धार्मिक पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने के लिए उनको मनाही होती है, वहीं दूसरी ओर शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है।
16: जिस दिन मंदिर खुलता है, हमारा जो धर्मीय रीति रिवाज है वो करते हुए, वो पालन करते हुए जो मंदिर का पथ खोल दिया जाता है, तो माता का जो वस्त्र, ये वस्त्र का जो सूता सूता टुकड़ा, जितना लोग आते हैं सभी लोग एक एक एक टुकड़ा ले जाते हैं, घर में ले जाते हैं। वो एक सौभाग्य उसी ने घर में, घर का अपना अपना परिवार में सुशाली लाते हैं। और माना जाता है उसी वस्त्र लेके जहीं पे भी हो माँ को जप तप करने से माता का स्थान में बैठ के जो पुण्य मिलेगा वहीं पे उन आदमी को वही पुण्य मिलेगा।
13: मान्यता है कि देवी के 3 दिनों में समस्त देवगण यहाँ मौजूद रहते हैं और मंदिर में दिखता है माता रानी का चमत्कार।
16: उस समय माता का जो मंदिर है पूरा मंदिर पट बंद कर दिया जाता है और जो मूल पीठ स्थान है उसको लाल वस्त्र से ढक के रखते हैं। 3 दिन माता का जो स्थान है ये बंद रहता है। 3 दिन जो माता जो जो जो श्रद्धालु आते हैं सारे मंदिर परिक्रमा करके यहीं पे कोई बैठते हैं, कोई घूम के जाते हैं, चारों तरफ लाखों लोग आ जाते हैं और सब आके माता माँ को स्तुति करते हैं। और माना जाता है उसी स्थान उस समय अम्बुवासी प्रवृत्ति से निवृत्ति तक इतना पवित्र हो जाता है जो सारे जो देव देवता है यहीं पे विराजमान होते हैं। और एक शुभ शक्ति जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है, जो कोई भी यहीं आता है माता का मंदिर भी एक बार परिक्रमा करते उसका उस शुभ शक्ति का शुभ फल लाभ करते हैं।
13: माता सबका मंगल करने वाली है, सबके पाप हरने वाली है, शक्ति स्वरूपा तीनों लोकों की जननी है, इसीलिए माता को जगत जननी भी कहते हैं।
17: वेलकम बैक टू अ या दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
18: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
17: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
19: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
20: Today. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
24: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
23: अविश्वास में विश्वास बसता है
20: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
17: गुड न्यूज टुडे
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
24: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
23: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से ऐसे हैं कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर देंगे, तो कुछ आपको सोचने पर मजबूर भी कर देंगे।
4: आमतौर पर सीधी दीवार पर चढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन इस बैठक को देखकर हर कोई हैरान है। ये बिना रुके और बिना फिसले लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसकी फुर्ती और संतुलन देखकर लोगों को स्पाइडरमैन की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवार नहीं बल्कि कोई सामान्य रास्ता हो। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस छोटे से जीव की अद्भुत क्षमता और दृढ़ता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्यार और दया की कोई उम्र नहीं होती, ये नन्ही बच्ची इसका सुंदर उदाहरण पेश कर रही है। अपने छोटे छोटे हाथों से वो बड़े प्यार से मोर को खाना खिला रही है। मोर भी बिना डरे उसके पास खड़ा होकर दाना खा रहा है। दोनों के बीच का ये स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। ये नजारा इंसानों और पक्षियों के बीच भरोसे और अपनापन की अनोखी तस्वीर पेश करता है। सोशल मीडिया पर लोग बच्चे की मासूमियत और संवेदनशीलता की खूब सराहना कर रहे हैं।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: A burst pipe. A dead water heater. The AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
25: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
26: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
21: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: मुंबई में जमकर बरसे बादल, रेड वार्निंग के साथ दिनभर तेज बरसात की चेतावनी। बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद। दिल्ली में मॉनसून से पहले जलभराव और बाढ़ से निपटने की तैयारी। बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ कैंप भी किए जा रहे हैं तैयार। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन। अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों में दिखाई दे रहा भारी उत्साह। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज। 16 जुलाई को होने वाला है रथ यात्रा का आयोजन। रथों को शानदार आकार देने में लगे हैं कारीगर। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे 2 गोल। फीफा वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में एक से ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। मेसी का तोड़ा रिकॉर्ड।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: सच गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पाराशर।
2: खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा ही नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं आज की 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
1: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से होगी सुरक्षा, सीसीटीवी से होगी यात्रा की निगरानी। धर्मनगरी अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर में शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न, दिव्य समारोह का हुआ आयोजन।
2: माता वैष्णो देवी के दरबार से आई गुड न्यूज रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन, इस साल 22 जून तक 50,70,000 भक्तों ने की पूजा अर्चना। मॉस्को पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायिक ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान से जुड़े एमओयू पर किए साइन। आचादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, अक्षिता राज संग लेंगे साथ फेरे, सासाराम से वाराणसी के लिए निकलेगी बारात। राजस्थान के कोटा के नरेंद्र अवस्थी ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कॉमरेड्स मैराथन 2026 की 86 किलोमीटर की चुनौती पूरी की। हॉकी टीम इंडिया से फिर से पिटा पाकिस्तान, हॉकी प्रो लीग में हरमनप्रीत ब्रिगेड की रोमांचक जीत।
1: तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में सीएम विजय के जन्मदिन पर अरुलमिगु सुब्रमण्यम मंदिर में विशेष पूजा, भगवान की निकाली गई भव्य रथ यात्रा, लोगों को दिया ज्ञान। रायपुर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे, सीएम विष्णुदेव साय ने किया पौधारोपण, खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। तो वहीं अगरतला में ऑल त्रिपुरा इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ, सीएम मानिक साहू हुए शाम। रांची में J20 फाइनल देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़, फैंस ने मैच का जमकर लिया आनंद। गोवा के पारुल विश्वविद्यालय में ग्रैंड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत।
2: महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश, महाराष्ट्र के लिए अगले 5 दिन खास। मानसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी, अगले 3 दिनों के लिए ठाणे और मुंबई में होगी जोरदार बारिश। मुंबई के गांधी मार्केट में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए, कई वाहन पानी में फंस गए। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भर गया पानी, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सतारा के कोयना नगर में पहली बार बारिश से दिखा प्रकृति का खूबसूरत नजारा, ओचते झरना का बढ़ा जलस्तर।
1: वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज, फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल पर लगे 18 कट, फिल्म को सीबीएफसी ने यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट के साथ दी मंजूरी, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू। श्रद्धा कपूर का एथा का टीजर रिलीज हुआ, फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे टाइगर श्रॉफ, लोगों की सेवा और गरीब बेटियों पर की बातचीत। जून के आखिरी वीकेंड पर एंटरटेनमेंट की बारिश, थिएटर और ओटीटी पर एक साथ रिलीज होगी 13 नई फिल्में और सीरीज।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए, खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। माता वैष्णो देवी के दरबार में आस्था का नया कीर्तिमान, 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन, मेले में पहुंचे 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। पुरी में जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई से शुरू होगी रथ यात्रा, आकार लेने लगे हैं भगवान के रथ। मुंबई में दिखने लगा मानसून का असर, लगातार बारिश से पानी पानी हुई माया नगरी।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए आज आस्था के कीर्तिमान के साथ इस खबर की शुरुआत करते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं ने दर्शन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 6 महीने में 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए और अभी भी भक्तों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है।
1: दरअसल श्रद्धालुओं की बढ़ी हुई संख्या माँ वैष्णो देवी में लगातार बढ़ती आस्था का प्रमाण है। इस बार गर्मी से सीजन में भी भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। पूरी यात्रा के दौरान भक्तों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने के लिए दोनों रास्तों पर भक्तों की भीड़ दिख रही है। भवन तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और रोपवे की सुविधाएं लगभग पूरी तरह से बुक चल रही हैं।
2: श्री माता वैष्णो देवी धाम, जहां पूरी होती है हर आस, हर मुराद, हर मन्नत। तभी तो आस्था की डोर से बंधे भक्त खींचे चले आते हैं। सालों भर माँ के दरबार में रौनक रहती है। भक्तों की लंबी कतार माँ की महिमा का बखान करती है और इस साल तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते 6 महीनों में तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। 22 जून तक कुल 50,70,000 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, जबकि पिछले साल यानी 22 जून 2025 तक करीब 39,84,000 तीर्थयात्रियों ने मंदिर के दर्शन किए थे। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 10,86,000 यानी 27% ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। ये उपलब्धि केवल एक नंबर रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की इस पवित्र मंदिर के प्रति अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का सशक्त प्रमाण भी है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की उपलब्धि की एक बड़ी वजह यात्रा प्रबंधन और सुविधाओं में हुए सुधार को भी माना जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यात्रियों की भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए कटरा से हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील जी, देखिए अभी तक ही रिकॉर्ड टूट चुका है, 50 लाख से ज्यादा भक्त माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं, हाजिरी लगा चुके हैं। क्या लग रहा है आंकड़ा अभी और कितना बढ़ने वाला है?
3: जिस समय मैं मौजूद हूं धर्मनगरी कटरा में, जो कि बेस कैंप है माता वैष्णो देवी यात्रा का, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनी द्योड़ी। दर्शनी द्योड़ी जो है वो प्रवेश द्वार है यात्रा मार्ग का, और यहीं से यात्रा जो है शुरू होती है। अगर हम देखें तो यहां कटरा में जो है श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, और कल ही जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बयान जारी किया है, और उस बयान के अनुसार उन्होंने आंकड़े दिए हैं, इस वर्ष के श्रद्धालुओं के आंकड़े दिए हैं, और 22 जून तक, इस वर्ष 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने यहाँ पहुंच चुके हैं। यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें, इस समय तक यानी कि जून के महीने तक 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या 39.84 लाख थी। यानी कि इस वर्ष अगर हम देखें तो पहले 6 महीने में 10.5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं, और ये अगर हम देखें तो श्राइन बोर्ड ने कहा है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल के महीनों में यहां सुविधाओं में सुधार हुआ है, सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, और यही कारण है कि श्रद्धालु इतनी भारी संख्या में यहां लगातार पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए। अगर हम पिछले कुछ महीनों की भी बात करें तो पिछले कई महीनों से हम देखें तो श्रद्धालु यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं माता के दर्शनों के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये दर्शनी द्योड़ी है और यहीं पर प्रवेश द्वार है यात्रा मार्ग का, और वहां देखिए वो त्रिकूट पर्वत है। इसी त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी का दरबार है, माँ वैष्णो देवी का धाम है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अधकुंवारी की तस्वीरें, आप देखिए मेरे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अधकुंवारी की तस्वीरें हैं। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है यात्रा मार्ग में, और अगर हम देखें तो श्रद्धालु जो है भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। पिछले कई महीनों से अगर हम देखें तो श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, और यही अब जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी आंकड़े जारी किए हैं और कहा है कि 22 जून तक इस वर्ष 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। आप देखिए यहां पर श्रद्धालुओं की कितनी भारी भीड़ है। यहां दर्शनी ज्योड़ी के पास भी अगर हम देखिए श्रद्धालु कितनी भारी संख्या में मौजूद है। कुछ श्रद्धालु जो है वो दर्शन करके आ चुके हैं, अब वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और कईयों को अभी दर्शन करने पहुंचना है। जी आप बताइए आपका नाम।
4: मेरा नाम भागचंद जांगिड़ है।
3: कहाँ से आए हैं?
4: और मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ।
3: और मन में कितनी प्रसन्नता है यात्रा के लिए?
4: मेरी प्रसन्नता इतनी है कि मैं इतना प्रफुल्लित हो रहा हूँ कि मुझे खुद को मालूम नहीं था कि मैं वैष्णो देवी के आया हूँ। एक्चुअली हकीकत है मैं कश्मीर जाने के लिए आया था और मुझे खुद को पता नहीं कटरा की बस मिल गई और कटरा बस मिलने मेरे को इतना खुश हुआ कि माता ने मेरे को मतलब इतना बिना बुलाए बुलावा आया है तो मेरे को ज़रा से ज्यादा खुशी महसूस हो रही है।
3: अच्छा, अभी आप माता जी के दर्शन करने जब जाएंगे यात्रा पूरी करेंगे क्या मांगेंगे माता से?
4: सर सबकी सब पूरे विश्व की शुभकामनाएं मांगूंगा। अकेला तो स्वयं के लिए क्या, पूरे सबका संसार का परिपूर्ण इच्छा हो, समृद्ध हो, सारी हो, खुशी हो।
3: जी, जी। ये यहाँ पर कुछ और श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी आप बताइए आपका नाम।
5: अमित शर्मा।
3: कहाँ से आए?
5: पंजाब से।
3: एक बार जय घोष लगा।
5: जय माता दी, जय माता दी।
3: पहली बार आए यात्रा?
5: नहीं नहीं, बहुत बार आए।
3: मन में कितनी प्रसन्नता है?
5: बहुत बहुत।
3: क्या भाव है मन में?
5: मन में बहुत खुशी का भाव है, माता रानी सबको बुलाए।
3: एक बार जयकारा लगे तुझे तभी?
5: जयकारा माँ चिंता रानी दा बोल सचे
6: दरबार की जय।
3: आप भी दर्शन के लिए आए?
6: जी सर, मेरे घर के आ गया।
3: दर्शन हो गए?
6: हो गए।
3: कैसे हुए दर्शन? अच्छे हुए?
6: अच्छे दर्शन हुए।
3: क्या मांगा माता?
6: माता से मांगा, मैंने देखो चार पाँच साल से रहा हूँ मैं, पहले तो हम दो तीनों भाई आते थे लेकिन मैंने मांगा था, मैं मेरे मम्मी पापा को चार धाम यात्रा करवाना चाहता था।
3: अच्छा,
6: तो इस वर्ष लेके आ गया मैं, मेरी ये मन्नत पूरी हो गई।
3: अच्छा, माता पिता को साथ में लेकर?
6: हाँ। अच्छा, अभी आगे निकल गए।
0: सुनील जी एक बात बताइए। सुनील जी देखिए 50 लाख तक आंकड़ा जा सकता है जिस बारे में जिक्र लगातार आप कर रहे हैं। एक और चीज बताइए, वल्नरेबल कैटेगरी जो है जिसमें हम श्रद्धालुओं को काउंट करते हैं, बच्चों को काउंट करते हैं, बड़े बुजुर्गों को काउंट करते हैं, उनके लिए विशेष तौर से क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं?
3: देखिए अगर हम देखें तो ये यात्रा मार्ग है, लगभग 14 किलोमीटर लंबा यात्रा मार्ग है और जो लोग चलने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है उनके लिए यहाँ पर कई व्यवस्थाएं हैं। यहाँ घोड़ा है, पिट्ठू रहते हैं, पिट्ठू की सुविधा रहती है, पालकी की सुविधा रहती है और बाकी यहाँ चॉपर सर्विस तो रहती है दिन में कि जो लोग चॉपर के जरिए पहुँचना चाहते हैं चॉपर की भी यहाँ पर सुविधा रहती है। और अधकुमारी से, देखिए अधकुमारी जो है लगभग 6 किलोमीटर दूर है यहाँ प्रवेश द्वार, जो यात्रा मार्ग है जहाँ यात्रा मार्ग शुरू होता है यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर अधकुमारी है और अधकुमारी से बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है भवन तक, यानी कि अधकुमारी से भवन तक बैटरी कार की भी सुविधा है। लेकिन कई श्रद्धालु जो है वो चाहते हैं कि वो पैदल ही पूरी यात्रा करें और इसीलिए इसी भाव से जो है बड़ी श्रद्धा के भाव से लोग यहाँ आते हैं माता के दर्शनों के लिए। और यहाँ देखिए लगातार जो है कतारें हम देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें।
7: जोर से बोलो बोलो।
8: हम लोग उत्तराखंड रुड़की से आए हैं।
3: आप आते रहते हैं? पहली बार आए?
8: नहीं, हम सेकंड टाइम आए हैं।
3: सेकंड टाइम आए। मन में कितनी प्रसन्नता?
8: बहुत ज्यादा।
3: भाव है मन में?
8: आप मेरी प्लम्बिंग से समझ ही सकते हो कि मैं कितनी एक्साइटेड।
3: भजन गीत गा सकते हैं?
8: जी मेरे हस्बैंड।
9: चलो बुलावा, चलो बुलावा, चलो बुलावा आया, सानू माता ने बुलाया है, चलो जी आओ।
8: जोर से बोलो
7: जय माता दी,
8: सच्चे
7: दरबार की जय, जयकारा शेरा वालिदा जय।
10: बड़े जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, आवाज नहीं आई
11: जय माता दी।
10: जोर से बोलो
11: जय माता दी।
10: अरे बाण गंगा
11: जय माता दी, जय माता दी,
10: जय माता दी, जय माता की,
12: जय माता दी।
3: जय कुछ लगा दीजिए। कहाँ से आए आप?
12: उज्जैन।
3: उज्जैन से आए?
12: महाकाल
3: धरती से। क्या भाव है मन में? आप दर्शनों के लिए आए हैं माता जी के?
12: बहुत एक्साइटमेंट थी बचपन से।
3: अच्छा, पहली बार आ रहे हैं?
12: पहली बार।
3: अच्छा, तो एक बार जयघोष लगा दीजिए माता रानी का।
13: जोर से बोलो
14: जय माता दी,
15: जोर से बोलो
14: जय माता दी,
15: सारे बोलो
14: जय माता दी।
3: तो आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। बड़े ही भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से श्रद्धालु जो है समूचे देश से यहाँ पहुँच रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से पहुँच रहे हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो पूरी व्यवस्था है। देखिए यहाँ
0: सुनील जी, आपने व्यवस्था बताई कि काफी अच्छी व्यवस्था है। जो भक्त पैदल इस यात्रा को नहीं कर पा रहे, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, वो घोड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइएगा कि पहले से ही सबकी बुकिंग करनी पड़ेगी, या जो भक्त वहां पहुंचकर थोड़ा थक जा रहे, क्या वहां जाकर ये सुविधा उनको मिल पा रही है, वहां पर बुकिंग कर पा रहे हैं, या फिर आंकड़ा इतना ज्यादा है श्रद्धालुओं की संख्या का कि वो बुकिंग भी नहीं हो पा रहे?
3: देखिए आंकड़ा तो काफी अधिक है। अगर हम चॉपर की बात करें तो उसकी बुकिंग पहले से करनी पड़ती है। जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है उस पर जाना पड़ता है, श्रद्धालुओं को वहां पर देखना पड़ता है कि किस दिन ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध होगी, किस दिन बुकिंग होगी। तो जो श्रद्धालु यहां आते हैं वो पहले से ये चेक करते हैं, और जिनको चॉपर से जाना है वो कई दिन पहले से ही बुकिंग कराते हैं। यहां बैटरी कार की सुविधा लेनी है। हालांकि अगर हम घोड़ों की बात करें, खच्चर की बात करें, वो तो यहां पर भी हो जाती है बुकिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर श्रद्धालु काफी अधिक हैं तो थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। लेकिन माता के दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु आते हैं वो हर पीड़ा को सहते हैं, और यही मन में भाव रहता है कि माता रानी के दर्शन करें। देखिए ये दर्शनी ज्योड़ी है, यही प्रवेश द्वार है यात्रा मार्ग का। देखिए यहां पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या है, यहां पर एक एक करके श्रद्धालु जाते हैं। वहां पर एक्सरे स्कैनिंग मशीन है, यहां पर उनके सामान की जांच होती है, और इनका जो पंजीकरण की जो स्लिप होती है, पर्ची होती है, उसकी जांच होती है, और साथ ही में आरएफआईडी कार्ड। मैं आपको बता दूं, देखिए ये श्रद्धालु है, ये आरएफआईडी कार्ड है। जैसे ही श्रद्धालु पंजीकरण कराते हैं उसके बाद उनको ये आरएफआईडी कार्ड भी लेना होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, और ये काफी अनिवार्य है। जिसके पास ये कार्ड नहीं होगा उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलती है। और इसका फायदा ये रहता है कि इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग रहती है कि श्रद्धालु कहां पर कितने हैं, किस समय हैं, और इससे क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलती है। तो ये मॉनिटरिंग रहती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग रहती है, और हर श्रद्धालु के गले में आप देखोगे कि ये आरएफआईडी कार्ड होता है। यहां पर देखिए श्रद्धालु देश के अलग अलग भागों से पहुंचे। एक बार जयघोष लगा दीजिए माता रानी का।
0: बिल्कुल, चलिए सुनील जी, ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई अनंत आस्था की तस्वीरों के साथ आपको ये खबर दिखाते हैं। पुरी में हर साल होने वाली जगन्नाथ यात्रा का भक्त पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। पुरी में यात्रा का उत्साह दिखने लगा है। भगवान के रथ का निर्माण तेजी से चल रहा है, और भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ आकार लेने लगे हैं। जैसे जैसे रथ का निर्माण आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। रथ यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई से होने जा रही है।
16: जगन्नाथ जिनको विश्व का देवता माना जाता है, विश्व में एक ही देवता जिनका रथ यात्रा के लिए हर प्रांतों से लोग पुरी में आते हैं। सालों में एक बार ये यात्रा होता है, और ये यात्रा के लिए कई दिनों से काम शुरू होता है, और ये यात्रा में जुड़ने के लिए लाखों लोग यहाँ रथ यात्रा के दिन जुड़ते हैं। इस साल 2026 जुलाई 16 तारीख को रथ यात्रा मनाया जाएगा, और इसके लिए पुरी में पूरी तैयारी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं, मैं अब जहां पर रथ बनाया जाता है, भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा होगा, इस रथ यात्रा के लिए जो रथ, तीनों रथ बनाया जाता है, ये तीनों रथ का काम अब शुरू हो चुका है। मैं यहां आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये काम अभी शुरू हो गया है। काम में अब पूरे जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं।
0: चलो देखिए, अक्षय कुमार की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म वेलकम टू द जंगल के रिलीज होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है, और रिलीज से पहले फिल्म की टीम प्रमोशन में पूरा जोर लगा रही है। कल मुंबई में फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया। खास बात यह है कि इस गाने के साथ दर्शकों के लिए एक सरप्राइज भी जुड़ा है। क्या है ये सरप्राइज, देखिए इस रिपोर्ट में।
17: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
18: एक जबरदस्त कहानी है।
19: और टाइटल क्या है फिल्म का?
18: वेलकम टू द जंगल।
20: पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है कॉमेडी की सुपर डोज वेलकम टू द जंगल। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज की तारीख करीब आ रही है, दर्शकों की बेसब्री और फिल्म का प्रमोशन दोनों बढ़ता जा रहा है। अक्षय कुमार इस फिल्म के मुख्य किरदार में है, लेकिन फिल्म में काम कर रहे 30 से ज्यादा स्टार्स ने इसे बेहद खास बना दिया है।

0: पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो।
1: रोलिंग, तो पैसों की बात कौन करेगा? बताइए कैसा दिया?
0: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या?
2: जितना जोर इस फिल्म को बनाने पर दिया गया उतना ही जोर इसके प्रमोशन पर भी दिया जा रहा है। अक्षय और उनकी टीम लगातार फिल्म के प्रमोशन के इवेंट्स में शामिल हो रही है। अब फिल्म के रिलीज में सिर्फ 2 दिन का फासला है, तो अक्षय ने फिल्म से जुड़ा एक नया सरप्राइज भी दे दिया।
0: हमारे फिल्म आर्मी वाली,
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
2: मुंबई में एक मल्टीप्लेक्स में एक इवेंट के दौरान फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया। इस कार्यक्रम में अक्षय कुमार, फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव और कीकू शारदा के साथ फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान और प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला भी मौजूद थे।
4: सबके सब चिपके हुए थे, अगर ये नहीं होता तो कोई नहीं चिपकता।
2: इस गाने से जुड़ा सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि इस गाने को अक्षय ने अपनी आवाज दी है।
5: पैसा पैसा, याद सब पैसा, माजा पैसा पैसा पैसा, याद सब पैसा, माजा पैसा पैसा पैसा।
2: गाने की शूटिंग भी बड़े ही मजेदार अंदाज में की गई है। गाने में फिल्म के स्टार्स की जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिल रही है।
6: अपने घर
7: इसको काचो रोल दे दिया तो हमें खा जाएगी।
8: अरे वो पुरानी चावल है।
9: मैं किस लिए फिल्म में?
8: ग्लैमर क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या?
10: तो कैसे करेंगे? विलन चाहिए, गुंडे चाहिए, कहाँ से लाएंगे?
2: इस इवेंट के दौरान अक्षय ने फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान की तारीफ भी की। 30 से ज्यादा स्टार्स के साथ फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं था। एक्टर्स के बीच तालमेल बैठाते हुए पूरी कहानी को शूट करना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती थी। अक्षय ने इस इवेंट के दौरान कहा कि ये डायरेक्टर अहमद खान की वजह से ही मुमकिन हो पाया।
4: कि हमारे मैग्नेट खान हमारे सीनियर हैं और इन्हीं की वजह से ये फिल्म बनी है। बाकी किंग ऑफ द जंगल थे ही फिरोज साहब, और इन सब दोनों की वजह से पूरे हम सब के सब जुड़े रहे। और भले 1-1.5 साल लग गया है इस फिल्म को, क्योंकि इतने बड़े एंसेंबल को साथ में लाना, बार बार सबके डेट्स मैच करना एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम था, लेकिन कैसे ना कैसे करते गए करते गए करते गए और आज ये दिन आ गया है कि 2-3 दिन के अंदर फिल्म रिलीज होने वाली है।
2: अक्षय और उनकी पूरी टीम इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में जी जान से जुटी हुई है। हर प्रमोशनल इवेंट में एक से बढ़कर एक स्टार्स भी हिस्सा ले रहे हैं।
11: इनको असलियत बतानी पड़ेगी कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं हैं।
12: हमें जाने दो मालिक, हम सब भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं।
13: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है,
14: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?
2: दर्शकों को भी फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ अक्षय की ही नहीं बल्कि 30 से ज्यादा एक्टर्स की कॉमेडी देखने को मिलेगी।
15: मेरी साली का नाम शर्मिली है, उससे बेहतरीन लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। तन बड़ा शौक ना दिलेर बनता, जब तू बन जा दिलेर, तो मैं मेहंदी।
16: कंग्रेचुलेशन।

0: बनकर सबका दिल जीतने वाली श्रद्धा कपूर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर ऐसा एक दमदार किरदार के साथ आप सबके सामने आने वाली हैं। इस बार श्रद्धा कपूर ईठा बनी है, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठा भाई नारायण गांवर की जिंदगी पर बनी है,
1: जिन्हें लोक कला के प्रति असीम समर्पण के लिए 2 बार राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा जा चुका है।
2: पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।
3: बॉलीवुड में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ चुकी श्रद्धा कपूर अब ईठा के किरदार में नए अंदाज और नए तेवर के साथ हाजिर हैं। पैरों में घुंघरू की छनक है तो आंखों में जीत का जुनून। श्रद्धा कपूर का ये इंटेंस अवतार पहले ही झलक के साथ दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। मैडॉक फिल्म्स की मच अवेटेड फिल्म ईठा का टीजर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुका है और चर्चा में है ईठा के किरदार में श्रद्धा कपूर की दमदार अदाकारी, जिसने हल्की सी झलक में ही दिलों को झकझोर कर रख दिया है। ईठा में श्रद्धा एक ऐसी मिसाल पेश करने जा रही हैं जो इतिहास के पन्नों में पहले से ही दर्ज है। श्रद्धा ने महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर के किरदार को पर्दे पर साकार किया है। विठाबाई नारायण गांवकर महाराष्ट्र के एक बेहद लोकप्रिय और महान लोक कलाकार, लावणी नर्तकी और लोक गायिका थी। वो लावणी, गवलन और भेदिक जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों और गीतों को प्रस्तुत करने में बेहद माहिर थीं। उनकी अद्भुत कला को देखते हुए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला था। लोक कला के क्षेत्र में उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए 2 बार 1957 और 1990 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी कला का लोहा मानते हुए उन्हें तमाशा साम्राज्ञी की उपाधि दी थी। विठाबाई की स्मृति को संजोए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2006 से लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की। विठाबाई की जिंदगी संघर्षों, हिम्मत और लावणी के प्रति पागलपन की एक ऐसी मिसाल है जिसे पर्दे पर उतारना किसी भी एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धा कपूर ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और विठाबाई के दर्द को अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया है। विठाबाई के जीवन की सबसे प्रसिद्ध और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना 1967 में शिखर श्रृंगणापुर में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हुई थी, जिसे टीजर में दिखाया भी गया है। बताया जाता है कि विठाबाई तब 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और स्टेज पर नाच रही थी। परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें अचानक लीवर पेन शुरू हो गया। तब उन्होंने मंच के पीछे जाकर बच्चे को जन्म दिया और दर्शकों की मांग पर कुछ ही मिनटों बाद फिर से स्टेज पर आकर नाचने लगी।
2: पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।
3: कला के प्रति उनके इस अनोखे और अटूट समर्पण की कहानी आज भी महाराष्ट्र के लोक इतिहास में गर्व से याद की जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि विठाबाई की जिंदगी के हर एक लम्हे को उसी शिद्दत के साथ पर्दे पर उतार कर श्रद्धा कपूर ने वाकई अभिनय के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। मेकर्स ने साफ कर दिया है कि ईठा में लावणी सिर्फ एक नाच गाना नहीं है, बल्कि ये विठाबाई की कला, उनके स्वाभिमान और विरासत की एक कभी न मिटने वाली कहानी है। ईठा 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हॉरर फिल्मों से इमरान हाशमी का कनेक्शन काफी ज्यादा पुराना रहा है। अब तक वो 5 हिट हॉरर फिल्में दे चुके हैं और अब 5 साल बाद एक और हॉरर फिल्म लेकर आने वाले हैं। फिल्म का नाम है रूह,
0: जिसका टाइटल अनाउंसमेंट टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में कहानी को लेकर हालांकि कुछ साफ तो नहीं है, लेकिन इतना हिंट जरूर मिला है कि फिल्म खौफनाक रहस्य और रोमांच से भरपूर होगी।

0: डर का साया अब और भी गहरा होगा, खौफ का मंजर अब और भी भयानक होगा। कल्पना से परे रोमांच और रहस्य से भरे सागर में गोते लगाने के लिए इमरान हाशमी ने एक बार फिर कमर कस ली है। 5 साल बाद इमरान हाशमी ने रूह के साथ हॉरर जॉनर में वापसी की है। इमरान हाशमी ने अपनी अपकमिंग हॉरर फिल्म रूह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। मंगलवार को रूह का अनाउंसमेंट टाइटल टीजर रिलीज किया गया। 52 सेकंड का ये फर्स्ट लुक वीडियो बेहद डरावना और सस्पेंस से भरा है। वीडियो की शुरुआत में घने और सुनसान जंगल में एक रहस्यमय लड़की दिखाई देती है। इसके बाद एक धुंधला शीशा नजर आता है जिस पर बहुत ओस जमी होती है। अचानक एक डरावना हाथ उस शीशे को साफ करता है और शीशे के अंदर इमरान हाशमी का चेहरा दिखाई देता है। देखते ही देखते इमरान की आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं और स्क्रीन पर फिल्म का नाम लिख कर आता है रूह। रूह के बारे में बात करते हुए इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू में कहा, रूह एक ऐसी फिल्म है जिसने मुझे तुरंत अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये नए जमाने के हॉरर इमोशन और म्यूजिक को बहुत दमदार तरीके से एक साथ लाती है। ये एक ऐसा जॉनर है जिसे ऑडियंस हमेशा मुझसे जोड़कर देखते रहे हैं और मयंक जो दुनिया बना रहे हैं वो बहुत जबरदस्त इमोशनल और सिनेमाई लगती है। रूह के साथ इमरान हाशमी 5 साल बाद भूत प्रेत की दुनिया में वापसी करने जा रहे हैं। उनकी आखिरी हॉरर फिल्म डिब्बुक थी जो 2021 में OTT पर रिलीज हुई थी। हालांकि हॉरर जॉनर की फिल्मों से उनका नाता 2009 से ही शुरू हो गया था। 2009 में रिलीज हुई राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज इमरान हाशमी की पहली हॉरर फिल्म थी। इसमें वो एक ऐसे पेंटर बने थे जिसे बुरे सपने आते हैं। 2012 में आई राज 3 बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही थी। अगले ही साल 2013 में उन्होंने एक थी डायन फिल्म की। इसमें उन्होंने एक जादूगर का रोल किया था जो बचपन की डायन से परेशान रहता है। 2016 में राज रिबूट के साथ इमरान ने एक बार फिर पर्दे पर खौफ का तलस्म रचा था। अब रूह के साथ इमरान हाशमी हॉरर जॉनर का एक नया दौर शुरू करने जा रहे हैं। इमरान हाशमी की हॉरर फिल्मों की एक और USP इसका बेहतरीन संगीत होता है। बताया जा रहा है कि रोमांच और रहस्य के साथ साथ रूह की दुनिया भी म्यूजिकल होगी। रूह के डायरेक्टर मयंक शर्मा हैं, जबकि फिल्म की कहानी मयंक शर्मा और विशाल कपूर ने लिखी है। रूह के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो के साथ ही मेकर्स ने साफ कर दिया है कि ये फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। हिंदी के साथ ही इसे तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई में मानसून के तेवर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: मुंबई में जमकर बरसे बादल, रेड वार्निंग के साथ दिन भर तेज बरसात की चेतावनी, BMC ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद। दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव और बाढ़ से निपटने की तैयारी, बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ कैंप भी किए जा रहे तैयार, MCD, PWD, DDA और DJB को खास निर्देश। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन, अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों में दिख रहा भारी उत्साह। तो 16 जुलाई से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में, रथों को शानदार आकार देने में लगे हैं कारीगर। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे 2 गोल, फीफा वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 1 से ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, मेसी का तोड़ा रिकॉर्ड।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: पंचायत वाले विधायक जी तो आपको जरूर याद होंगे, पंचायत का तो हर किरदार लोगों को बखूबी याद होगा। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विधायक जी की, जिनकी ठेठ देहाती अंदाज में सब्जी खरीदते एक तस्वीर वायरल हो रही है,
3: जिसे खुद विधायक जी मतलब पंकज झा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, और हम इस तस्वीर को आपके लिए डीकोड कर रहे हैं, देखिए।

0: खीरे टमाटर सब्जी के इस ढेर के बीच नजर आ रहे इस शख्स को तो आप भूले नहीं होंगे, भूल भी कैसे सकते हैं, आखिर ये पंचायत वाले विधायक जी हैं। हाँ, यहाँ पर इनका अंदाज थोड़ा देसी शुद्ध गांव वाला है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन गौर से देखने पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। मशहूर ओटीजी सीरीज पंचायत के विधायक जी यानी पंकज झा ने खुद इस तस्वीर को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। इस तस्वीर में वो शॉर्ट्स, बनियान और गले में झोला लटकाए सड़क पर सब्जियां खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी में आम लोगों की तरह खीरा सब्जी छांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी का सादगी भरा अंदाज इंटरनेट पर वायरल है और लोगों का दिल जीत रहा है। पंकज झा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर कर कैप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि ये तस्वीर कहां और कब की है। वैसे इस तस्वीर को देखकर दो बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि पंकज झा गांव में फुर्सत के पल बिता रहे हैं और शायद सब्जी खरीदते देख आसपास खड़े लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं है। दूसरी ये कि शायद ये शूटिंग का हिस्सा है और विधायक जी पंचायत सीजन 5 की शूटिंग कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या विधायकी जाने के बाद इनके इतने बुरे दिन आ गए कि ऐसी हालत में सब्जी खरीदनी पड़ रही है। खैर, हकीकत जो भी हो, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने विधायक जी की इस तस्वीर को देखकर मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी है। एक यूजर ने लिखा, विधायक जी पंचायत के अगले सीजन में वोट जीतने के लिए एक मजबूत संगठन बनाने के लिए जमीनी स्तर से काम शुरू कर रहे हैं। तो किसी ने कहा, विधायक की जाने के बाद इनका हालत बहुत खराब चल रहा है। एक और यूजर ने फिरकी लेते हुए कहा, पूरे सीजन लौकी का ही प्रमोशन हुआ, अब होगी खीरा टमाटर की एंट्री। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, और इन सारी बातों का सार एक ही है कि यूजर्स को पंचायत के नए सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। सादगी, देसी कॉमेडी और दिल छू लेने वाली कहानी के दम पर इस पंचायत सीरीज ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजन 5 की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। मसलन गांव के चुनावों की गर्मी अब और तेज होने वाली है। सचिव जी और रिंकी के रिश्ते में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। वहीं प्रधान जी पर हुए हमले का रहस्य भी इस बार कहानी का बड़ा हिस्सा बन सकता है। जानकारी के मुताबिक पंचायत सीजन 5 की शूटिंग जोर शोर से चल रही है और इसके जुलाई या अगस्त तक पूरे होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। हमेशा की तरह इस बार भी सीजन में कुल 8 एपिसोड्स होने की बात सामने आ रही है। मतलब ये कि चंद महीनों का इंतजार और फिर फुलेरा गांव की पंचायत ओटीटी पर आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए फिर हाजिर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मॉनसून की।

0: और चलिए अब बात मानसून की कर लेते हैं। देखिए, सुस्त पड़ा दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों समेत मुंबई में मानसून की झमाझम बरसात हो रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों तक मानसून ने पहुंच बना ली है और उम्मीद यह है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में ये यूपी में प्रवेश कर जाएगा। जहां तक दिल्ली की बात है तो अभी दिल्ली वालों को मानसूनी बारिश के लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा।
1: लेकिन मुंबई में मॉनसून का असर दिखने लगा है। एक दिन पहले मुंबई में मॉनसून ने एंट्री मारी और अब वहां जमकर बारिश हो रही है। आलम यह है कि मायानगरी के ज्यादातर इलाके पानी से भर चुके हैं। कई जगह लोग अपनी गाड़ियों को धक्का निकाल कर पानी से निकालते हुए दिखे।
2: तेरह दिन की देरी से ही सही मॉनसून आखिरकार मुंबई पहुंच ही गया। आमतौर पर मॉनसून 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है। मंगलवार को मॉनसून के मुंबई पहुंचते ही कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के काफी हिस्सों तक पहुंच गया है। 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश में भी एंट्री ले लेगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। यही नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों में गुजरात और मध्य प्रदेश भी पहुंच सकता है, क्योंकि मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इस समय देश में मौसम के 2 अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ मानसून की फुहारें गर्मी से राहत दे रही हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाकों, विदर्भ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। दिल्ली में मंगलवार दोपहर को धूल भरी आंधी चली और कुछ इलाकों में तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जिससे दिल्ली वासियों ने गर्मी से राहत महसूस की। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में मॉनसून को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है, क्योंकि 25 से 30 जून तक सामान्य तौर पर मॉनसून पहुंचता है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून दिल्ली में एंट्री कर सकता है। उसके बाद ही हरियाणा में मॉनसून की बारिश होगी। हालांकि उससे पहले दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में प्री मॉनसून एक्टिविटी जारी रहेगी और पूरे हफ्ते दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश होती रहेगी।
3: मॉनसून की रफ्तार पहले से थोड़ी बड़ी है, जिसके कारण उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंत तक और जुलाई के पहले सप्ताह में जो मॉनसून है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में दस्तक दे सकता है।
2: मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मॉनसून के कारण ओडिशा, केरलम, कर्नाटक, तेलंगाना, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, झारखंड, ओडिशा में भी तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में प्री मॉनसून एक्टिव रहने से आंधी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में और विदर्भ में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मॉनसून की देरी के लिए मौसम वैज्ञानिक अल नीनो को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी चेतावनी जारी कर कहा है कि प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका 80% है और नवंबर तक इसके 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है, जिससे एशिया के कई देशों में कम बारिश हो सकती है, जिसका असर फसल उत्पादन पर दिख सकता है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबर लगातार जा रही है, आप देखते रहिए GNT।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: Order for Jennifer C.
7: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
6: Yeah. Can you handle that much caffeine?
7: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
6: Oh, really? That's great.
7: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
6: Yeah, you just said that.
7: Did you say I just said that?
6: Yeah, I'm cutting you off.
7: I can't have any more? Why not?
8: You earn, we match. Discover Cashback Match. See terms at discover.com/creditcard.
9: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: देखिए क्रिकेट की दुनिया में ना एक कहावत है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, और 2026 फीफा वर्ल्ड कप में इसे चरितार्थ किया है 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। कल पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। इस जीत में सबसे बबड़ा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रहा, जिन्होंने 2 गोल करके अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। खास बात यह रही कि इस दौरान रोनाल्डो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, वो दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 6 अलग अलग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल किया। टोरंटो में क्रोएशिया के फैंस ने जबरदस्त जश्न मनाया, डांस किया, गाने गाए और झंडे लहराए, क्योंकि उनकी टीम ने वर्ल्ड कप के ग्रुप एल मैच में पनामा को 1-0 से हराया। क्रोएशिया और पनामा टूर्नामेंट में अपने पहले पॉइंट्स की तलाश में उतरे थे। उन्हें पता था कि हारने पर उन्हें जल्द ही घर लौटना पड़ सकता है, क्योंकि इसी ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड और घाना का मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा था। लेक ओंटारियो दोनों देशों के झंडों के रंगों से पटा था। मैच शुरू होने से पहले क्रोएशिया के फैंस ने रैली सॉन्ग को गाया, जो कि दिल छू लेने वाले अंदाज में गाया, जिससे एक रोमांचक मैच का माहौल बन गया। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।

0: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
1: और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: मुंबई में जम के बरसे बादल, रेड वार्निंग के साथ दिन भर तेज बरसात की चेतावनी। बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद। दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव और बाढ़ से निपटने की तैयारी, बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ कैंप भी किए जा रहे तैयार। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और डीजेबी को खास निर्देश। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले का दूसरा दिन, अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों में दिख रहा है भारी उत्साह। सोलह जुलाई से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में, रथों को शानदार आकार देने में लगे कारीगर। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे दो गोल, फीफा वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में एक से ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, मेसी का तोड़ा रिकॉर्ड।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: महाराष्ट्र में मॉनसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश, महाराष्ट्र के लिए अगले 5 दिन अहम। मॉनसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट, अगले 3 दिनों के लिए ठाणे और मुंबई में होगी जोरदार बारिश। मुंबई में भारी बारिश से यातायात प्रभावित, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से अंडरपास से भरा पानी, आवाजाही पर रोक। मुंबई के गांधी मार्केट में भी भरा पानी, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। मुंबई के गांधी मार्केट में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, कई वाहन पानी में फंसे। मुंबई के अंधेरी में भी बारिश से अंडरपास में भरा पानी, यातायात किया गया बंद। मुंबई के दादरी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। नवी मुंबई में भारी बारिश से जल भराव, पानी में चलने को मजबूर दिखे लोग। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मॉनसून होगा और मजबूत, 25-26 जून को मूसलाधार बारिश की संभावना। ठाणे में भारी बारिश जारी, कई इलाकों में जल भराव। भारी बारिश का आनंद लेते नजर आए बच्चे, पानी में जमकर की मस्ती। बारिश में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। अकोला में भी भारी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतारा के कोयना नगर में पहली बारिश से दिखा प्रकृति का खूबसूरत नजारा, ओझरडे झरना का बड़ा जलस्तर। दिल्ली में बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट, दिल्ली सरकार ने मॉनसून 2026 के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया। बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, 15 जून से 15 अक्टूबर तक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम रहेगा सक्रिय। यमुना और अजबगढ़ ड्रेन के लिए 3 स्तरीय चेतावनी प्रणाली लागू, 20 से अधिक संवेदनशील तटबंधों और पंपिंग स्टेशन की विशेष निगरानी। बाढ़ को लेकर 13 जिलों में राहत व्यवस्था और हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू, वाटर लॉगिंग हेल्पलाइन नंबर जारी। नेपाल में भारी बारिश से बागमती नदी का बड़ा जलस्तर, मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात। राजकोट में तेज बारिश से रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरा, पैसेंजर से भरी एसटी बस फंसी। जेसीबी की मदद से बाहर निकाली गई बस, सभी यात्री सुरक्षित। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन से सड़कें हुई बंद। भूस्खलन से सड़क पर आया मलबा, यात्रियों की बड़ी परेशानी। पुंछ में आपदा से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसीज का मॉक ड्रिल, एसडीआरएफ, पुलिस सेना, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसीज आपदा में सुरक्षा को उन्होंने परखा। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी में बड़ा पानी, बिहार सुपौल सहरसा मधेपुरा सहित कोसी तटवर्ती इलाकों में प्रशासन अलर्ट। नेपाल के बैराज से छोड़ा गया 1,86,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी, कोसी नदी में पानी बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी भारी बारिश, कई इलाकों में जलजमाव, यातायात पर हुआ असर। साईं बाबा की नगरी शिरडी में झमाझम बरसात, तापमान में आई गिरावट, रास्तों पर भरा पानी। भारतीय रेल की बड़ी पहल, पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे चला रही है परीक्षा स्पेशल ट्रेन, समस्तीपुर से शुरू होगी ये ट्रेन। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, 200 कारीगर बना रहे हैं रथ। रथों के निर्माण में तकनीकी और कलात्मक दोनों पहलुओं पर दिया जा रहा विशेष ध्यान, सेवक रथों के जोड़ स्थानों के लिए लोहे के उपकरण कर रहे हैं तैयार। 29 जून को प्रभु जगन्नाथ का होगा पूर्णिमा स्नान, 15 दिनों तक भगवान का रहेगा एकांतवास। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनीज। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से होगी सुरक्षा, सीसीटीवी से होगी यात्रा की निगरानी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान, आने वाले लोगों पर पुलिस रख रही है विशेष नजर। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ की यात्रा, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। धर्मनगरी अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न, दिव्य समारोह का हुआ आयोजन। अयोध्या के 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज का किया पूजन, फिर मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा। भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे करीब 4,000 राम भक्त, श्रद्धालुओं ने भाव्य भोर होकर श्री रामलला राम परिवार मंदिर और परकोटा क्षेत्र के सभी देव विग्रहों के दर्शन पूजन किए। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के निवासी जंग बहादुर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को सौंपी करीब 300 वर्ष पुरानी भगवान श्री राम से संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ की पांडुलिपि। चारधाम यात्रा के तहत 2 महीने में अब तक बद्रीनाथ पहुंचे 12,52,000 से ज्यादा श्रद्धालु, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में सीएम विजय के जन्मदिन पर अरुलमिगु सुब्रमण्यम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भगवान की निकाली गई भव्य रथ यात्रा, लोगों को दिया गया अन्न। रायपुर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे, सीएम विश्वदेव साय ने किया पौधारोपण, खिलाड़ियों को किया सम्मानित। अगरतला में ऑल त्रिपुरा इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज, सीएम माणिक साह हुए शामिल। रांची में J20 फाइनल देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़, फैंस ने मैच का जमकर आनंद लिया। गोवा के पारुल विश्वविद्यालय में ग्रैंड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की। माता वैष्णो के दरबार से आई गुड न्यूज, रिकॉर्ड श्रद्धालु ने की माता के दर्शन, इस साल 22 जून तक 50,70,000 भक्तों ने पूजा की। श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं से यात्रा बनी और अधिक सुगम, रोपवे और बैटरी कार सेवाओं से श्रद्धालुओं को मिली राहत। भीड़ प्रबंधन और डिजिटल सुविधाओं से यात्रा बनी है आसान, वैष्णो देवी यात्रा में पिछले साल से 10,86,000 ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। आशादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, अक्षिता राज संग लेंगे साथ फेरे, सासाराम से वाराणसी के लिए निकलेगी बारात। कानपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान बना देवदूत, सूझबूझ और तत्परता से बचाई यात्री की जान। मॉस्को पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायिक ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान से जुड़े एमओयू पर दस्तखत। मॉस्को में सीजेआई ने दिया भाषण, कहा भारत और रूसी न्याय प्रणालियों के बीच एकेडमी ट्रेनिंग प्रोग्राम के आदान प्रदान, रिसर्च पार्टनरशिप और बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करने के काफी गुंजाइश। राजस्थान के कोटा के नरेंद्र अवस्थी ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कॉमरेड्स मैराथन 2026 की 86 किलोमीटर की चुनौती पूरी की। 9 घंटे 11 मिनट 54 सेकंड में पूरी की दौड़, शानदार प्रदर्शन के लिए रॉबर्ट मटशाली मेडल से सम्मानित। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग और डर्बन शहर के बीच आयोजित होता है ये मैराथन, विश्व की सबसे कठिन अल्ट्रा रेस में शामिल। वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज, 26 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल पर लगे 18 कट, फिल्म को सीबीएफसी ने यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट के साथ दी मंजूरी, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू। श्रद्धा कपूर इथा का ट्रेलर रिलीज हुआ, फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे टाइगर श्रॉफ, लोगों की सेवा और गरीब बेटियों पर की बातचीत। जून के आखिरी वीकेंड पर एंटरटेनमेंट की बारिश, थिएटर और ओटीटी पर एक साथ रिलीज होगी 13 नई फिल्में और सीरीज। फिल्म दुल्हनिया ले आएंगे फर्स्ट लुक जारी, 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया गाना जारी, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फरहान अख्तर की पीरियड फिल्म में नजर आएंगे सलमान, साल 2027 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। कमल हसन की फिल्म धर्मन में रजनीकांत का फर्स्ट लुक जारी, डेडली डॉक्टर बने रजनीकांत। फिल्म कॉकटेल 2 का नया गाना रिलीज, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की शानदार कमाई।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
7: somebody save me,
6: to timeless favorites,
7: life is like a song,
6: and new discoveries.
8: So much more than a history. Wake up.
6: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: आमतौर पर सीधी दीवार पर चढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन इस बेढक को देखकर हर कोई हैरान है। ये बिना रुके और बिना फिसले लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसकी फुर्ती और संतुलन देखकर लोगों को स्पाइडरमैन की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवार नहीं बल्कि कोई सामान्य रास्ता हो। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस छोटे से जीव की अद्भुत क्षमता और दृढ़ता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्यार और दया की कोई उम्र नहीं होती, ये नन्ही बच्ची इसका सुंदर उदाहरण पेश कर रही है। अपने छोटे छोटे हाथों से वो बड़े प्यार से मोर को खाना खिला रही है। मोर भी बिना डरे उसके पास खड़ा होकर दाना खा रहा है। दोनों के बीच का ये स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। ये नजारा इंसानों और पक्षियों के बीच भरोसे और अपनापन की अनोखी तस्वीर पेश करता है। सोशल मीडिया पर लोग बच्चे की मासूमियत और संवेदनशीलता की खूब सराहना कर रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: all sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
1: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
2: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
0: and
2: down.
0: Talk sports.
3: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
4: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: शिमला में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, बदला मौसम का सैलानी ले रहे हैं आनंद। शिमला में आज दिन भर रुक रुक कर होती रही बरसात। मुंबई में जम के बरसे बादल, रेड वार्निंग के साथ दिन भर तेज बरसात की चेतावनी। बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद। दिल्ली में मॉनसून से पहले जल भराव और बाढ़ से निपटने की तैयारी, बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ कैंप भी किए जा रहे तैयार। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और डीजेपी का खास निर्देश। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले का दूसरा दिन, अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों में दिख रहा है भारी उत्साह। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे 2 गोल, फीफा वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 1 से ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, मेसी का तोड़ा रिकॉर्ड।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड आफ्टरनून, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एक और बार एंटरटेनमेंट जोरदार। आज तो एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज के साथ साथ हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फैशन एक्सेसरी के बारे में जो है हमारी स्टाइलिंग का अहम हिस्सा। जी हाँ, ये कलरफुल स्कार्व्स, और जिस तरह ये स्कार्व्स लगाते हैं हमारे लुक पर चार चांद, उसी तरह एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज लगाती है हमारे शो सास बहू और बेटिया पर भी चार चांद। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, किडनैप होगा अंगद, अनु बनेगी रक्षक। एक तरफ विक्रांत करेगा लड़ाई, तो वहीं दूसरी तरफ मन्नत होगी इमोशनल। राधिका की होगी चूड़ी की रस्म,

हमारे रीत और राघव के पास तो है एक दूसरे के लिए फॉरएवर लव वाला स्कार्फ। कितनी प्यारी है ना इन दोनों की ये जोड़ी, लेकिन तभी तो लग जाती है इन्हें किसी ना किसी की बुरी नजर। वैसे रीत और राघव आपके पास ना कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको साथ देकर चलते हैं, या पता नहीं उन्हें क्या ही दिक्कत है आप दोनों के साथ होने से। खैर, सबकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान तो होते ही हैं, बेटर टू जस्ट इग्नोर इट एंड मूव ऑन। तो क्या कुछ हो रहा है इन दोनों की कहानी में, आज लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर।

0: और राघव के रिश्ते में दरार। फिर राघव पर भड़की रीत।
1: तो कोई अपने बच्चे को लेके हम पे भरोसा क्यों करेगा? ना पूरा भाभी गलत है, ना भी भैया गलत है। अगर कोई गलत है तो वो शायद मैं। तू रही मुझसे? आप मतलब रही है मुझे राघव? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझसे मेरा प्यार छीना है।
0: शुरू हुई रीत की नफरतें।
1: आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं हर रोज चुप रहती हूँ, खुद को समझाती हूँ, खुद से झूठ बोलती हूँ।
0: जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में जब से रीत ने अपना बच्चा खोया है, उसके बाद से ही रीत और राघव के रिश्ते में काफी गलत फहमियाँ शुरू हो चुकी है। रीत को लगता है कि राघव की ही वजह से उसने अपना बच्चा खोया है, इसीलिए जब भी वो इस कमरे में आती है उसे वो यादें सताने लगती है, और जब राघव उसे मनाने आता है तो उसका गुस्सा फूट जाता है। ऐसे में आज फिर एक बार देखिए कैसे राघव को रीत खरी खोटी सुना रही है।

0: पाए ना अपने बच्चे को, बचा पाए उसे, नहीं ना तो कोई अपने बच्चे को लेके हम पे भरोसा क्यों करेगा? ना पूरा भाभी गलत है, ना भी भैया गलत है, अगर कोई गलत है तो वो शायद मैं। मुझे भूल जाना चाहिए था मैं कभी माँ भी थी।
1: ऐसे मत करो, तुम्हें खुद को दुख देने की जरूरत नहीं।
0: क्यों ना कहूँ राग, यही सच है, हम दोनों माँ बनने लायक ही नहीं है। हम अपने बच्चे को नहीं संभाल पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसका ध्यान नहीं रख पाए, उसे जिंदा नहीं रख पाए। हम
2: देखना चाहिए।

0: प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सबकी तरह, दुनिया की तरह, किस्मत की तरह, बस बस अकेला छोड़ दीजिए मुझे। मुझे सिर्फ अपने रियाज को याद करना है, उसे उसे महसूस करना है और मुझे उसके लिए रोना है। प्लीज चले जाइए।
1: ऐसे में अकेले में देखिए कैसे रीत आंसू बहा रही है अपने खोए हुए बच्चे की, खिलौने और कपड़े गले से लगाकर।

0: असल में पी हुई थी रीत का सहारा, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती थी। तभी तो देखिए कैसे डाइनिंग टेबल पर वो बेहोशंग खेल रही है। लेकिन पूनम की गलत फहमी की वजह से भी अब पूनम ने रीत को पीहू से दूर रहने के लिए कह दिया है।
1: और ये रही पीहू की पहली बार। रेडी पीहू?
2: यस कूल चाची।
1: अरे पीहू कहाँ गई? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पीहू
2: चाची मैं यहाँ छुपी हूँ, पर आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगी।
1: कहाँ यहाँ पीहू, आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो, कहीं आप फेरी की तरह उड़ तो नहीं गए?
2: कहाँ उड़ तो नहीं गया?
0: राघव रीत के लिए कुछ करना चाहता है ताकि वो इस परेशानी से बाहर निकल पाए। इसीलिए वो पहुंच गया है सीमा के पास, जहां वो इस बच्चे को गोद लेना चाहता है। और देखिए कैसे इस बच्चे को हाथ में लेकर राघव को लग रहा है कि ये उसी का बच्चा है।

0: उसकी दादी फोन ही नहीं उठा रही है, ऐसे ही वो बीच बीच में गायब हो जाती है। अब जब उनसे बात होगी तभी टेस्ट करवा पाऊंगी।
1: दादी का टेस्ट से क्या कनेक्शन?
0: आप रहने दीजिए सर, मैं देख लूंगी।
1: नहीं, मुझे जानना है दादी और टेस्ट से क्या कनेक्शन।
0: अरे सर, दादी मिलेंगी तभी तो पैसे मिलेंगे। आपको पता है सर टेस्ट कितने महंगे हैं? कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे और अभी मेरे पास 1 रुपये नहीं है।

वहीं दूसरी तरफ बुआ जी को भी ये बात पता चल गई है, इसलिए तो वो सीमा को ढूंढ रही है, लेकिन बच्चे के साथ सीमा गायब है।

0: जहाँ एक तरफ रीत और राघव की जिंदगी में परेशानियाँ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्नति और ध्रुव की लाइफ भी आसान नहीं। विक्रांत जिंदा है, ये बात उन्नति को पता चल चुकी है और विक्रांत की याददाश्त भी जा चुकी है, इसीलिए वो उससे मिलने गई थी। लेकिन यहाँ जब ध्रुव आता है तो उन्नति ध्रुव से झूठ बोल देती है।
1: मुझे
2: ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा, पता नहीं जैसे डिजीनेस हो रही थी मुझे, मुझे डर लग गया कि कहीं बीपी तो नहीं फ्लक्चुएट हो रहा, और मैं ना बता के परेशानी जाती थी। तो उसके बाद फिर शुगर टेस्ट, फिर ये टेस्ट, तो इन सब में काफ़ी टाइम लगा डॉक्टर के पास। फिर मैं इतना ज़्यादा थक गई, मैंने ध्यान नहीं दिया।
1: क्या मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तू मुझे सब बताया कर, तुम्हारी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता था उन्नति वो तुमसे छुड़ा हुआ है, और
3: सिचुएशन ऐसी है जो भी उनके बेबी के साथ हुआ एंड एवरीथिंग, दे बोथ आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली सैड। और रीत को लगता है कि राघव की वजह से हुआ है, राघव अपने आप को इस चीज़ का जिम्मेदार मान रहा है। दोनों की सिचुएशन ही ऐसी थी कि कुछ वर्कआउट ही नहीं हो पाया, और अब फिर उनमें थोड़ा सेपरेशन है अभी इस पॉइंट पे। और फिर इधर ये चल रहा है कि अब उन्नति पे वापस भूत सवार है कि विक्रांत ने जो कुछ भी उसके साथ किया वो उस चीज़ का बदला लेगी, ये बुआ जी ने बैक देन मेरे दिमाग में डाला था। तो अब मुझे पता चलता है कि विक्रांत की याददाश्त चली गई है, और वो ध्रुव की वजह से एक्चुअली एक्सीडेंट हैपेंड, तो अब याददाश्त चली गई है। और फिर कौशल्या मेरे पास आई हैं कि मैं हेल्प करूं कि विक्रांत की याददाश्त वापस आए और ये सब कुछ, तो मैं जानबूझ के अब हेल्प कर रही हूँ उनकी, ताकि मैं विक्रांत से बदला ले सकूं। और मैं विक्रांत से मिलने गई थी ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, और मैंने ऐसे घर की एक पूजा मिस कर दी। देन ध्रुव कम्स और मुझसे पूछता है क्या, फिर मैं बहाने लगाती हूँ कि डॉक्टर के पास है, डॉक्टर के पास है।
0: तो भाई रीत राघव हो या हो उन्नति ध्रुव, दोनों ही जोड़ियाँ काफी परेशान है। अब देखना होगा कि इनकी परेशानियों का हल कैसे मिलता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: जब बात करें हम स्कार्फ्स की, तो देखें इनमें है कितनी सारी वैरायटी। कॉटन स्कार्फ, सिल्क स्कार्फ, सैटिन स्कार्फ, प्रिंटेड स्कार्फ, एनिमल प्रिंट स्कार्फ, नेट स्कार्फ, ओ माय गॉड। और इसी तरह है हमारे पास एंटरटेनमेंट की वैरायटी, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहू और बेटिया की मनोरंजन वाली एयरलाइन। तो आप भी हो जाइए इस पर सवार, लेकर चलेंगे हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट

दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में दिन ब दिन राध्या की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब तो परेशानी इतनी बड़ी हो गई है कि राध्या उसे संभाल कर भी नहीं संभाल पा रही, क्योंकि वो तो वर्तमान में है लेकिन उसका पूरा परिवार पहुंच गया है 10 साल पहले। ऐसे में परिवार का एक भी सदस्य राध्या को जानता नहीं है, इसीलिए राध्या बेचैन है। और तो और वो पहुंच गई है घर के मंदिर के पास महादेव के आगे हाथ जोड़ने और उनसे गुजारिश करने कि जो भी उसके और उसके परिवार के साथ बुरा हो रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि चलने लगती हैं तेज हवाएं जिसे देखकर राध्या डर गई है। अब देखना होगा भोलेनाथ राध्या की मदद कर पाएंगे या नहीं।

0: केबल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी का दिल टूट चुका है। ऐसे में उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता और चेहरे की स्माइल तो उसकी कोसों दूर जा चुकी है। ऐसे में वो काम करके जब घर लौटी तो देखा कि उसकी माँ अपनी समधन यानी कुसुम से बात कर रही है, जो कि अपने बेटे गुरु की शादी में सभी को न्योता दे रही है। ऐसे में रूहानी ने अपनी माँ से फोन लेकर उस शादी में आने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, हताश होकर वो अपने कमरे में गई और उसे आया उसके जेठ और जेठानी का कॉल। दोनों ने मिलकर रूहानी को समझाया कि गुरु जो भी कर रहा है वो झूठ कर रहा है और उसने जो भी कसम खाई है झूठ ही खाई है। लेकिन रूहानी उनकी बात मानने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि गुरु तेजू से शादी करना चाहता है।
1: साबित करना था वो गुरु कर चुका है, कुछ साबित करने की हिम्मत है ना बेचे मरने की। गुरुदेव की जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और मैं भी
0: भाई। जेठ जिठानी से बात कर रूहानी ने अपना फोन काटा और जैसे ही पलटी तो उसके सामने उसकी बहना नजर आई, जो रूहानी का दर्द दिल बखूबी समझ रही है। ऐसे में रूहानी ने आंखें नम लिए, अपनी बहन से अपना दुख बयां किया और चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन रूहानी की बहन को पता है कि रूहानी के साथ क्या चल रहा है।
2: जब भी कोई रेगुलर आउटफिट होता है ना और मैं उसे स्टाइल करना चाहती हूँ, उस पर लगाना चाहती हूँ चार चांद, ऐसा सोचती हूँ कि उसमें भी आए कि एक्स्ट्रा स्टाइलिंग स्वैग, तब मैं अपने स्कार्फ से यही कहती हूँ कि थैंक गॉड तुम हो ना। अब देखिए ये स्कार्फ कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन कर देते हैं हमारे लुक में एब्सोल्युटली मैजिक। और बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहाँ हम लेकर चल रहे हैं आपको सीधा तुम हो ना के सेट पर, जिसे होस्ट कर रहे हैं हम सबके फेवरेट राजीव खंडेलवाल। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग।
3: आज इस मंच पर जो हमारी सुपरस्टार्स आई हैं, वो भी अभी हाल ही में माँ बनी है या फिर बनने वाली है। जोरदार तालियां हमारी आज की सुपरस्टार्स के लिए। एक महिला जब माँ बनना चाहती हो और जब माँ बनने की संभावना बहुत ही कम हो, अथक प्रयासों के बाद में जब वो माँ बन जाती हैं, तब उनका जीवन कैसे बदलता है, ये मैं पूछूंगा हमारी अगली सुपरस्टार से। जोरदार तालियां मुंबई से संभावना सेठ जी के लिए।
4: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
3: तो कितने समय के बाद में आपके आंगन में फूल खिले?
4: 10 साल के बाद अब जाकर ये खुशी आई है हमारे
3: जी। ट्विंस हैं आपके?
4: ट्विंस हुए हैं।
3: कितने छोटे हैं?
4: 10 दिन के हैं।
3: इस खुशी के क्षण तक पहुँचने से पहले का जो सफर था, कितने साल तक वो चुनौतीपूर्ण था?
4: 10 साल हमारी शादी को हो गए, लेकिन कहते हैं ना जब ऊपर वाले की मर्जी जब होती है ना, तो उसके सामने किसी की नहीं चलती। एक फेलियर, दूसरा फेलियर लगा, तीसरा हो जाएगा, फिर दोबारा से IVF कराने लगे, फिर तीसरा साइकिल, फिर चौथा साइकिल, 7 साइकल्स मैंने IVF के कराए हुए। मेरे हस्बैंड ने मुझे उस समय सपोर्ट किया, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, तुम क्यों करना चाह रही हो, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन ये मेरी फाइट थी कि मैं करना चाहती हूँ, मुझे बच्चों से प्यार है, मुझे चाहिए बच्चा। I carried on and we carried on actually and we fought together कि हमें ये इस जर्नी को कैसे भी अंजाम तक पहुंचाना है। 2 साल पहले सब लोगों ने मेरा मिसकैरेज, सबको पता है, जब हम जिस दिन अनाउंस करने वाले थे, हमारा फोटो शूट हुआ था कि वी आर प्रेगनेंट, हम जिस दिन डालने वाले थे उस दिन मॉर्निंग में मेरा स्कैन था एंड स्कैन मालूम पड़ा कि 15 दिन पहले बच्चे की हार्ट बीट खत्म हुई।

0: सब लोग बहुत लकी हैं जिनके सर पे माँ बाप का साया होता है, और वो लोग रिलेट कर सकते हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है। मेरे पेरेंट्स बहुत खराब सिचुएशन में दुनिया से गए हैं, सो आई कैन वेरी वेल रिलेट कि जो आप गाना गा रहे हो मेरा दिल सिर्फ छू नहीं रहा, चीर रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव माई पेरेंट्स विद मी।
1: ये जो हमारी सुपरस्टार हैं, 10 महीने का इनका बेटा है ना, उसे एक निवाला खिलाने के लिए इन्हें घंटों लग जाते हैं, पर उन घंटों में ये उसे निवाला तो खिलाती हैं, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हैं, पढ़ाई करते करते अपने बच्चे का पालन पोषण भी करती हैं। जोरदार तालियां भोपाल से आई हमारी सुपरस्टार खुशी प्रजापति जी के लिए भी।
2: थैंक यू सर।
1: फ्यूचर का प्लान क्या है आपका?
2: मेरा बचपन से सपना था कि मैं या तो आर्मी में जाऊं या फिर एक पुलिस ऑफिसर बनूं।
0: अरे यार मेरी तरह ही हो गया। सेम सेम।
2: यही सपना था मेरा, बट जैसे कि मैंने बताया फैमिली प्रॉब्लम थी मेरे यहाँ पे, तो जॉब करनी पड़ी। मैं पेट्रोल पंप पे जॉब करती थी, जिस वजह से फिर मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर पढ़ाई बीच में छूट गई, हमारी लव मैरिज हुई, फिर मैंने अब पढ़ाई जारी रखी है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम्हें जो करना है वो करो, पर अब मेरा यही है कि मेरे बेबी का सिक्योर करना है मुझे, पूरी लाइफ उसका करियर, और मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। और जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए पढ़ाई के लिए जो डबल ड्यूटी करते थे जो भी, अब उनको नहीं करने देना है। मुझे कुछ ऐसा करना है, छोटी मोटी जॉब भी कर लूंगी, बट अब मैं पढ़ाई अपने खुद के पैसों से करना चाहती हूँ।
3: वेरी गुड।
0: मुझे ना बहुत प्राउड फील हो रहा है जब मैं यहाँ पे खड़ी होकर बात सुन रही हूँ कि ये करना चाहती हूँ और इनके हस्बैंड के पीछे हैं। ये इजी बात नहीं है, ये जो कपल कर रहा है ये नामुमकिन चीजें हैं। सलूट है सर आपको।
4: स्कार्फ्स को ट्विस्ट करके बनती हैं इंटरेस्टिंग नॉट्स, और इसी तरह यहाँ भी लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की वो तमाम खबरें जो मचा रही हैं एंटरटेनमेंट का शोर। क्योंकि देखिए अब जितनी सारी खबरें हैं हमारे पास उतने ही सारे हैं ना उनमें आए हुए ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट ही लेकर आते हैं इन खबरों में एंटरटेनमेंट का मसाला, बदल देते हैं इन कहानियों का मोड। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ।
5: ए? मेरी बेटी को अभी के अभी यहाँ से लेकर जाऊंगा।
6: स्टार्प्लस के सीरियल अनुपमा में गौतम पहुंच गया है शाह हाउस बवाल मचाने के लिए, और तो और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन अनुपमा ने उसकी बोलती बंद करनी चाहिए, लेकिन गौतम वो तो बगावत पर उतर आया है, सभी पर भड़क रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसे में अनुपमा भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने गौतम के सामने कुछ सवाल रख दिए जिसका जवाब गौतम दे ना सका।
7: एग्जैक्ट उम्र क्या है बोलो? सगा बाप अपनी बेटे की उम्र, चलो बोलो बोलो। नहीं पता? अच्छा चलो, प्रांशी को कितने टीके लगे हैं और उसका अगला वैक्सीनेशन कब है ये तो पता ही होगा ना? अरे ये भी नहीं पता? तो चलो इतना बता दो कि प्रांशी के अब तक कितने दांत आए हैं और उसका पहला दांत कब आया था। ये भी नहीं पता? तो चलो इतना ही बता दो कि प्रांशी को खाने में क्या क्या पसंद है और उसे किस चीज से एलर्जी है, बताओ बताओ। नहीं पता? अरे सगा बाप हर चीज में मेरी बेटी करते रहते हो, अपनी बच्ची के बारे में कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना? Nonsense।
6: अनुपमा ने गौतम की बोलती बंद तो कर दी, लेकिन गौतम की अकड़ अब भी कम नहीं हुई। खैर अंश ने तो अपने पिता होने का फर्ज बता दिया और ये भी बता दिया कि उसे उसकी बेटी के बारे में क्या क्या पता है। खैर उससे गौतम को क्या फर्क पड़ता है, गौतम तो बस किसी भी हालत में अपनी बेटी को ले जाने के लिए आया है। ऐसे में वो सभी पर चिल्ला ही रहा था कि तभी दिग्विजय आ गए और उन्होंने गौतम के चिल्लाने पर ब्रेक लगा दिया।
8: शांत हो जाइए गौतम जी, शांत हो जाइए। बंकू वो पोर्टेबल इसी दे जरा। बहुत गर्मी हो गई है दिमाग में, ठंडा करने के काम आएगा। तुम्हारे लिए तीन सलाह है मेरे पास। पहली, इस घर से दूर रहना, से दूर रहना, से दूर रहना। दूसरी, अंश से दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना। और तीसरी, अनुपमा जी से बहुत बहुत बहुत दूर रहना, दूर रहना।
6: भाई आज तो गौतम को अच्छा खासा सबक मिला है। चुपचाप मुंह उठाकर वो वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल गया है, लेकिन सभी को अल्टीमेटम देकर गया है कि वो किसी को छोड़ेगा नहीं। और ऐसे में अनुपमा को भी एहसास हो चला है कि जल्द ही उसके घर में नई मुसीबत आने वाली है।
3: आज ये एंट्री क्यों? कल के लिए रखनी चाहिए ना।
9: पार्टी करने चले? बैचलर पार्टी है बा।
10: क्या बोला? उन्हीं वाले दूल्हा और दुल्हन एक साथ पार्टी कर रहे हैं।
11: अंशी, अंशी की बच्ची
12: राही प्रिंस।

0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान अभीरा के साथ मुक्ति और मायरा सॉरी और फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच गए हैं पोदार हाउस ऋषभ से माफी मांगने के लिए। ऐसे में सभी घर वाले अरमान अभीरा को देखकर हैरान हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि अरमान और अभीरा अपने मकसद से यहां पर आए हैं। तभी तो क्या अरमान क्या अभीरा उन्होंने एक एक कर ऐसी ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी कि ऋषभ के अंदर का पेशेंस गायब हो गया और उसके अंदर का गुस्सा भड़कने लगा। और जैसे ही गुस्सा सर के पार हुआ, ऋषभ ने खुद ही अपना सच सभी के सामने बक दिया।
1: क्या बेचारा बेचारा लगा रखा है, मैंने मायरा का ऐसा हाल किया था कि वो डर के कांप रही थी। और फिर वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी ताकि मैं उससे दूर हो जाऊं। उसको मैंने इतना रुलाया कि वो अपने स्कैरी स्टॉकर को जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ, मैं हूं मायरा का स्टॉकर। और ये उसकी खुशकिस्मती है कि मैंने उसे स्टॉप किया, क्योंकि मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूं। और इसका घमंड इतना ज्यादा है ना कि इसने मुझे बिना जाने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे रिजेक्ट किया, इसलिए मैंने इसे सबक सिखाया।
2: सच सुन लिया बुआ जी, कांग्रेचुलेशंस।
0: आखिरकार अरमान और अभीरा ने ऋषभ का सच तो सभी के सामने ला दिया। ये सुनकर सभी घर वाले हैरान भी हैं, लेकिन साथ ही साथ दिशा का सच भी आ गया है कि दिशा ने झूठ बोला था कि अरमान ने उसके ऊपर हाथ उठाया। ऐसे में दिशा की आंखों में भी आंसू है, इसलिए देखिए कैसे सभी के सामने वो भी माफी मांग रही है।
3: कॉलेज जाने का टाइम आ गया ऋषभ, और तुम्हारे नए कॉलेज का नाम है जेल। तुम जैसे क्रिमिनल्स के लिए वही कॉलेज बेस्ट है।
1: नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वापस कोई भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज।
4: भीख मांगना बंद कर दे।
1: अरे मुझे बात करने
4: का।
1: मायरा मुझे प्लीज माफ कर दो। मायरा मुझे जेल मत भेजो प्लीज। तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत बुरा हूँ मायरा, पर प्लीज मुझे जेल मत भेजो, मैं जेल नहीं जा सकता। मायरा
2: हाथ पीछे,
1: वरना तेरा वो हाल करूंगा कि पुलिस वालों को तुझे थाने ले जाने से पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
0: पुलिस से बचने के लिए ऋषभ वहाँ से भाग तो निकलता है, पर उसे पता नहीं कि अरमान अभीरा क्या चीज है। अभीरा ने अपनी बच्चियों की मदद से ऋषभ को जाने से रोक लिया और ऐसा सबक सिखाया कि ऋषभ जिंदगी भर याद रखेगा।
5: हम सब अपनी केबर फ्रेंड शर्मिंदा है, मनोज जी ने रोकना।
6: अरमान हमारी बात तो सुन ले बेटा प्लीज।

आज तो स्कार्फ्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। और अगली एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज तो जुड़ी है आपके फेवरेट सितारे से। जी हाँ, जिनसे की है हमारी टीम ने खास मुलाकात। अब यहाँ तो हमने जाना है इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल। जी हाँ, बिल्कुल करीब से। कैसे? ऐसे।

0: विवाना की रियल दुनिया। गांधारी के किरदार में आएंगी नजर। विवाना का आशियाना। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है विवाना सिंह, जिन्हें आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं। भाई इन्होंने मॉडलिंग और फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद ये नजर आ चुकी है कई सीरियल्स में, जैसे कि कहता है दिल, जीले जरा, महाभारत जिसमें उन्होंने माँ गंगा का किरदार निभाया था, इसके अलावा कुमकुम भाग्य, तितली, शुभ शगुन, ऐसे कई सीरियल्स में वो नजर आ चुकी है। और अब फिर एक बार वो माइथोलॉजिकल शो हस्तिनापुर के वीर में नजर आ रही है गांधारी के किरदार में। तो आज हम विवाना के साथ पूरा एक दिन बिताने वाले हैं, जानेंगे उनके बारे में कई बातें, देखेंगे उनका दिनचर्या, जानेंगे कि वो रियल लाइफ में कैसी है, देखेंगे उनका डांसिंग और कुकिंग टैलेंट, इसके अलावा जानेंगे उनका सफरनामा, करेंगे उनके होम स्वीट होम की सैर। तो चलिए बिना देरी किए सीधा चलते हैं विवाना सिंह के घर पर करने ये खास मुलाकात।
1: आज की मेहमान है विवाना सिंह, और जो आंखों पे पट्टी बांध के सब कुछ जान रही है फिलहाल, लेकिन आज विवाना है, आज गांधारी नहीं है साथ। तो विवाना क्या करती है, क्या कुछ जानती है और क्या कुछ सिखाना चाहती है आज, तो वो सब आज हम करेंगे। तो पहले तो वेलकम टू सासबू बेटी।
2: थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। आप आई हैं और मैं अपने बारे में, कैसे मैं जीती हूँ, क्या मेरे शौक हैं, उनके बारे में आपसे बात करूँगी और सभी दर्शकों को बताऊँगी अपना लाइफ स्टाइल।
1: तो चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं। तो कैसे होती है जब शूट नहीं करते हो? तो
2: दिन की शुरुआत होती है थोड़ी से वार्म अप से, योग से और फिर थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं।
0: तो भाई आज विवाना को मिला है छुट्टी वाला दिन, और ये दिन सास बहू और बेटिया संग वो बिता रही हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं उनके घर की सैर और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपना आशियाना सजाया है और इनके घर में क्या कुछ खास है।
2: तो मतलब मेरे सब कुछ है, ये एक्चुअली फ्रेम के अंदर गुरुजी के पूरा जो ये डेकोरेट किया बिंदियों से, ये मैंने उनका ऑरा क्रिएट करने की, मैं क्या करूँगी क्रिएट, मतलब दिस इज़ मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, मैंने ये खुद किया है। और ये कैलेंडर्स नहीं ऑन नहीं होता, बस ये बिंदियाँ मैंने, हाँ मतलब ये मैंने फ्रेम बाद में किया, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जो भी घर में आता है वो बोलता है कि दीदी ये आप है या विवाना ये आप हो, शी लुक सो सिमिलर टू मी। तो ये एक नॉर्मल पेंटिंग है जो मैंने नहीं की है, मुझे मिली थी गिफ्ट में और मैंने यहाँ ये लगाई हुई है। मैं शिव भक्त हूँ। मेरी छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत है। आई मीन दिस इज व्हाट, ये मेरा एक छोटा मंदिर है जिसमें मैं यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ, और मैं बात करने में विश्वास रखती हूँ भगवान से। मुझे लगता है कि वो आपके मित्र भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, माता पिता भी हैं। मैं फियर में विश्वास नहीं करती, आई बिलीव इन लव। तो मैं बहुत बातें करती हूँ, इसको मैं छोटे मंदिर कहती हूँ। ये मेरे गुरुदेव हैं, इनको गुरुजी कहते हैं, वैसे इनका नाम श्री निर्मलजीत सिंह जी है, बट नाम से इन्हें कोई नहीं पुकारता है। ये शिव जी और पार्वती जी का परिवार, इसमें एक मिसिंग है उनकी बेटी, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं, ये मेरे दूसरे गुरु जी हैं जो हिमाचल में हैं, उनका चित्र है, ये गुरु जी की चरण कमल हैं। ये मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है, बट वो मेरी मतलब ज़िंदगी का कहते हैं ना सबसे खास इंसान, वो मेरी माँ है, और ये मेरा छोटा भाई है। तो ये मेरा छोटा मंदिर है, यहाँ मैं बैठती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, कुछ शब्द कुछ भजन मैं अपने टीवी पर लगाती हूँ, एंड दिस इज़ ऑल्सो माय चिलिंग एरिया। मतलब ये मेरा जो हॉल है, यहाँ मैं सभी कुछ कर रही होती हूँ। आइए मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ है, और ज्यादातर एलोवेरा है जो मैं अपने चेहरे पर इस्तेमाल करती हूँ।

तो मैंने अपने प्लान्स तो आपको दिखा दिए, आइए मैं आपको अपने घर की और चीजें दिखाती हूँ, कुछ स्पेशल। ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, ये मेरे पहले पोर्टफोलियो से है जो कि काफी साल पुराना है, और ये 2007 का है। मेरी फिल्म कर रही थी मैं, जिमी फिल्म कर रही थी मैं, मिथुन चक्रवर्ती जी के बेटे के ऑपोजिट मीमो के, तो उस टाइम मैंने ये पोर्टफोलियो कराया था। वो फिल्म नहीं चली बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड हियर इट इज। ये जो फोटो है ये पहला पिक्चर है जो इस पर्पस से लिया गया था कि मैं एक्टिंग शुरू करूँगी। आई थिंक मैं कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तो एक जान पहचान के फोटोग्राफर ने ये फोटो खींचा था मेरा। दिस इज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पोर्टफोलियो में।

0: पीछे वो मेरी दीदी है, मेरी रियल सिस्टर ही समझ लीजिए, मेरे मामा जी की बेटी है बट बचपन से हम साथ में रहे हैं और उनके साथ उनकी बेटी है। जी मैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, खाली ये बुक्स नहीं है, कबर्ड्स में भरी हुई हैं, ये मेरी कुछ बुक्स हैं जो मैं करेंटली रीड कर रही हूँ। मतलब मैं एक टाइम में एक किताब नहीं, दो तीन किताबें पढ़ रही होती हूँ, बिकॉज आई रीड मोस्टली स्पिरिचुअल बुक्स। तो एक किताब काफ़ी बार पढ़ते पढ़ते आपको हैवीनेस होने लगती है, सो आई प्रिफर डिफरेंट बुक्स, कि एक किताब में थोड़ी हैवीनेस हो गई तो बुक मार्क डालो और दूसरा पढ़ो। सो दिस इज माई करेंट कलेक्शन ऑफ बुक्स। ये जो बुक है ये कर्मा है, और कर्म में मेरी बहुत रुचि है, क्योंकि पहले मैं सोचती थी जब छोटी थी कि कोई गरीब क्यों है, कोई अमीर क्यों है, कोई स्वस्थ क्यों है, कोई अस्वस्थ क्यों है, कोई जल्दी क्यों मर जाता है, तो कोई पूरा जीवन व्यतीत करता है, और इतना संघर्ष क्यों है। तो मैं बचपन से ही बहुत सारे सवालों के साथ मैं समझती हूँ कि जी रही थी, बट धीरे धीरे मेरी अध्यात्म में रुचि बढ़ी और इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया। ये कर्मा की थ्योरी को किस तरह से, जो उलझी हुई थ्योरी मुझे समझ में आती थी, उसने कैसे सुलझाया। ये किताब लिखी है सद्गुरु ने, उनके द्वारा लिखी गई है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। मैं रेकमेंड करूँगी सभी को जो कर्म ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअली कर्मा क्या है और कैसे हम इस जीवन में जो भी हमारा प्रारब्ध है उसको किस तरह से हम कितनी ग्रेसफुली जिएंगे, वही कर्म है। जो कर चुके हैं वो तो हो गया, बट इस लाइफ में हम उसको कैसे जिएंगे, जो भी घट रहा है आपके जीवन में, अच्छा बुरा, उसको आप कैसे ग्रेसफुली जी रहे हो, उसको कैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज़ योर रियल कर्मा। सो दिस बुक इज़ वेरी ब्यूटिफुल, मैं रिकमेंड करूँगी, जितने लोग पढ़ सकते हैं पढ़िए। This is a book written by Om Swami and this is The Legend of Goddess. ये लक्ष्मी जी के ऊपर किताब है और इतनी सुंदर लिखी है, ऐसा लग रहा है जैसे वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। और जिस तरह से लिखी है ये किताब लक्ष्मी माता के बारे में, कैसे वो पूरा मंथन हुआ, किस तरह से वो निकली और उनसे पहले क्या क्या, जब मंथन शुरू हुआ शिव जी ने कैसे विष को पिया एंड कैसे लक्ष्मी जी को देखकर सब मोहित हो गए, और उसके बाद जो लक्ष्मी स्तुति स्तोत्रम वो सब लिखे गए, किसने लिखे, तो उस तरह की ये किताब है, बहुत सुंदर किताब है। मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, आई हैव रेड सम, जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ती हूँ फिर रख देती हूँ, क्योंकि जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं मुझे लगता है वो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो ग्रहण की जाती हैं। तो जब कोई चीज़ आप ग्रहण करते हो तो उसमें आपको समय लगता है, समय देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी किताबें मैं पढ़ती रहती हूँ, पहले बहुत फिक्शन पढ़ती थी बट अब बस यही पढ़ती हूँ। ये मेरे विटामिन्स का बॉक्स है जिसमें मैं अपनी सारी विटामिन्स रखती हूँ। ये मीरा की का चित्र है, ये बुद्धा है, ये मैं बैंकॉक से लेकर आई थी, ये मुझे इतने सुंदर लगे थे। मैं एक शूट के लिए बैंकॉक गई थी, एक एड फिल्म के लिए, और इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है आप देखिए, जो नियॉन कलर्स हैं, ऐसे गणपति यूजली दिखते नहीं हैं, तो इनको ये बस मेरी आंखों में बस गए थे, तो इनको मैं वहाँ से, ये बैंकॉक से आए हैं, मतलब वहाँ के गणेश जी हैं। तो अब हम थोड़ा योग करेंगे और आप हमें फॉलो कीजिए।
1: तो भाई हमने विवाना संघ घर की सैर तो कर ली, अब बारी उनके मॉर्निंग रूटीन की, यानी वो एक भी दिन योगा करना मिस नहीं करती। भाई यही तो है उनके फिट रहने का राज, और आज भी वो कर रही हैं योगा, साथ ही अपने फैंस को दे रही हैं कुछ खास टिप्स भी। तो आइए शुरू करते हैं ये योगा सेशन।
0: मैं अपने आप को फिट रखने के लिए अधिकतम सूर्य नमस्कार करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ और सुदर्शन क्रिया करती हूँ। तो आइए अब मैं शुरू करती हूँ।

अभी मैंने सूर्य नमस्कार किया, जो कि मैं डेली करती हूँ, और अनुलोम विलोम किया ब्रीदिंग के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए। इसके साथ में सुदर्शन क्रिया करती हूँ, जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने सिखाया है हमारे पूरे देश को और विश्व को। तो मैंने उसका कोर्स किया हुआ है, और ये बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज कह लीजिए या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह लीजिए इसको। इससे आपका डीएनए भी करेक्शन होता है, आपके ब्रेन को शांति मिलती है, रिलैक्सेशन होता है, और अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो जो मैंने सुना है कि यहाँ तक कि आपकी कार्मिक चीज़ें क्लियर आउट होती हैं। सो आई डोंट नो हाउ फार दैट इज़ ट्रू, बट दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम श्री श्री जी के जो संगत है या जो भक्त हैं उनसे मैंने ये सुना है। बट मुझे बहुत हेल्प मिली है, ये डिप्रेशन को दूर करता है, आपके एंग्जाइटी को दूर करता है, और ये मेरे रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए थोड़ी सी सुदर्शन क्रिया करते हैं।

0: तो जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने सुदर्शन क्रिया किया, अपना योग किया, क्योंकि मैं आज घर में हूँ और मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। इस सब के बाद मैं कॉफ़ी पीती हूँ और थोड़ा नाश्ता। चलिए किचन में चलते हैं, अब मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ और अपना हुनर दिखाती हूँ नाश्ता बनाने का। आइए।
1: तो भाई योगा सेशन तो हो गया पूरा, अब चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि पेट पूजा भी तो जरूरी है। और आज विवाना अपने हाथों से कुछ स्पेशल बनाने वाली है, यानी कि कॉफी के साथ स्पेशल वाला नाश्ता। तो आइए सीधा चलते हैं इनके रसोई में और देखते हैं आज ये मास्टर शेफ बन क्या स्पेशल बनाएंगी।
0: आइए मैं अब आपको अपने किचन में लेकर जाती हूँ और मेरी हाउस हेल्प है रेशमा, इनसे मिलवाती हूँ। इनके बिना मैं किचन में कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो हम कॉफी बनाएंगे। मैं जैगरी पाउडर में कॉफी पीती हूँ, तो मैं जैगरी पाउडर के साथ उसको बीट करती हूँ।

मैं अच्छी हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। इसमें क्योंकि आज हम उपमा बना रहे हैं तो घी डालेंगे थोड़ा। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल ले। अब इसमें राई डालूंगी थोड़ी सी। हाथ चुरा के मैं तेरा चल। ये पहले से ही प्याज कटा हुआ है, साथ में मिर्च है और अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। ये हमारी प्यारी रेशमा ने काटा है। ये मेरी सिर्फ हाउस हेल्प नहीं है, ये मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। थैंक यू रेशमा। अब मैं थोड़ा गाजर और

अगर ये अच्छा नहीं बनेगा तो उसका पूरा क्रेडिट जाएगा रेशमा को, और अच्छा बना तो भी पूरा क्रेडिट रेशमा को जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया स्प्रिंकल करूंगी क्योंकि ये इसमें बहुत टेस्टी लगता है। ये दिल है मेरा।

0: सबको मेरे हाथ का बना हुआ अपना पसंद है।
1: भाई गर्मा गर्म कॉफी और नाश्ता तो बन गया, अब बारी इसे चखने की।
2: वेल, मुझे पता नहीं कि उपमा और कॉफी कितने लोगों को पसंद है, बट ज़्यादातर लोग उपमा के साथ चाय पीना पसंद करते हैं। बट बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ साउथ इंडियंस एंड दिस इज वन ऑफ द साउथ इंडियन डिश एज वेल, महाराष्ट्रियंस भी बहुत खाते हैं, तो कॉफ़ी के साथ इसका अलग ही मज़ा आता है। मैं अपने सभी ऑडियंस को बोलूंगी, हैव कॉफी विद मी एंड एंजॉय सम उपमा। वैसे आप खा तो सकते नहीं, बट मैं ऑफर कर रही हूँ। नॉट बैड, अच्छा बना है। वैसे मैं पहले पूजा करती हूँ, पर आज मैं पहले नाश्ता कर रही हूँ।

0: तो पेट पूजा तो हो गई, अब बारी फ्रेशन अप होने की।
1: चलिए अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं फटाफट जाती हूँ, चेंज करती हूँ और आपको वापस मिलती हूँ। आ गई हूँ मैं फ्रेश होकर। सबसे पहले मैं अपने घर में ही शिवलिंग है वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ।
0: विवारा ने चेंज कर लिया है और फ्रेश भी हो गई है, अब बारी पूजा करने की। महादेव की ये बड़ी भक्त है और देखिए कैसे भगवान जी की पूजा करती है पूरी लगन के साथ। चिंगारी

अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने घर में सबसे खास जगह, मेरे गुरुजी का दरबार, जो स्पेशल रूम है जहाँ मैं मेडिटेट करती हूँ और जहाँ उनकी गद्दी है वो मेरे साथ यहाँ इस घर में रहते हैं। एक्चुअली घर तो उनका है, मैं उनके साथ रहती हूँ। प्लीज आइए, प्लीज वेलकम द मोस्ट स्पेशल प्लेस, सबसे खास जगह, ये है मेरे गुरुजी का रूम। ये गुरु महाराज की गद्दी है और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे भगवान विराजमान हैं। क्योंकि मैं सरदारनी आ तो मेरे घर विच आप पाएंगे गुरु नानक देव जी की फोटो, और मैंने साईं बाबा को भी बहुत माना है अपने जीवन में। कहते हैं एक गुरु से आप दूसरे गुरु के पास पहुंचते हैं, सो ये साईं बाबा। मैं हिंदू गॉड्स और सिख गॉड्स और सभी में मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक, बट जो भी मेरे जीवन में जिन जिन रूप में भगवान ने मुझे आगे बढ़ाया है ऑन माय स्पिरिचुअल जर्नी, अधिकतम सभी के स्वरूप मेरे घर में है। और ये है मेरा सबसे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट गुरु जी का स्वरूप। अब मैं गुरु जी को जल प्रसाद का भोग लगाऊंगी और साथ में दिया करूंगी। और ये स्पेशल कपूर, ये ऑलमोस्ट 2 hours in the morning और 2 घंटे शाम को मैं जलाती हूँ।

0: भगवान जी की पूजा तो हो गई, अब बारी वो कमरा देखने की जो है विवाना का हैप्पी स्पेस यानी कि उनका बेडरूम।
1: अब चलते हैं मेरे बेडरूम में। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये अध्यात्म करती हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता बना लेती हैं और एक्सरसाइज करती हैं, बट वेयर इज द फन एलिमेंट। आइए मैं अपनी प्राइवेट स्पेस में आपको लेकर जाती हूँ और दिखाती हूँ मैं कितनी मस्ती करती हूँ। दिस इज माई बेडरूम, माई मोस्ट प्राइवेट एंड स्पेशल प्लेस। तो यहाँ हम चिल करते हैं। जब छुट्टी वाला दिन होता है मैं थोड़ा म्यूजिक लगाती हूँ, डांस करती हूँ, आपको दिखाऊँ?

0: तो विवाना ने कुछ इस तरह अपना बेडरूम सजाया है, तो यहाँ वो डांस करती है और होती है रिलैक्स। अब बारी जानने की विवाना का सफरनामा, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कैसे वो यहाँ तक पहुँची।
1: मैं अमरोहा को बिलोंग करती हूँ उत्तर प्रदेश से, और मैं पिछले कुछ 18-19 सालों से मुंबई में हूँ। वैसे मेरा आना शुरू हो गया था यहाँ बॉम्बे में 2007 में, मैंने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया, बहुत बड़े बड़े एड्स किए, थम्स अप अक्षय कुमार जी के साथ, वीट कमर्शियल कैटरीना के साथ और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, डोनियर विद विवेक ओबेरॉय। एंड उसके बाद मैं एक पिक्चर में लॉन्च हुई मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के ऑपोजिट, मीमू के ऑपोजिट। फिल्म ज़्यादा नहीं चली पर एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिल्मों में काम नहीं मिला, इस वजह से मैंने टेलीविज़न का रास्ता पकड़ा और मेरा पहला शो था महाभारत, स्टार प्लस की महाभारत। उसमें मैंने गॉडेस गंगा का रोल निभाया था। मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि अब मैं गांधारी कर रही हूँ सोनी सब पर, हमारा शो आ रहा है हस्तिनापुर के वीर रात 9 बजे सोमवार से शनिवार। तो आज जब मुझे गांधारी मिला है, ये पहली बार नहीं है, मैंने ऑडिशन पहली महाभारत जो स्टार प्लस पर आई थी गांधारी के कैरेक्टर के लिए दिया था। And I was selected. मुझे बुलाया गया और बोला गया कि चैनल चाहता है आप गंगा प्ले करें। आज मैं गांधारी कर रही हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे भाग्य में कहीं ना कहीं लिखा हुआ था ये रोल करना। एंड उसके बीच में मैंने बहुत सारे शोज़ किए, जिसमें से मेरे कुछ फेमस शोज़ रहे, कुमकुम भाग्य जिसमें मैंने सिमोनिका का किरदार निभाया, अपना टाइम भी आएगा जिसमें मैं रानी सा बनी जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, और एक मेरे दिल के बड़े करीब शो है तितली। क्योंकि इसके पीछे एक बात है मैं बताना चाहूँगी, मैं मेरे गुरुजी का साइन कहते हैं पीकॉक एंड बटरफ्लाई, तो जब वो शो मुझे मिला मेरे माताजी का देहांत हो गया था और मैं थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट में थी और काम नहीं करना चाह रही थी। मेरे पिताजी ने कहा कि अब और कितना दिन, गो बैक टू योर सेल्फ, आप हमेशा दुखी होकर नहीं बैठ सकते हैं। और मैंने ऑडिशन किया, उस वक्त मुझे पता भी नहीं था मैं सेलेक्ट हो गई और शो का नाम तितली है। तो हाउ ग्रेस वर्क्स इन योर फेवर, मुझे उन्हीं के साइन वाला नाम का शो मिला। कहते हैं ना ये प्रभात स्तोत्र निधि, इसको भी पढ़ा जस्ट टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज, और ये मेरी तैयारी रही गांधारी बनने के लिए।
0: तो भाई हो जाइए तैयार विवाना को हस्तिनापुर के वीर में गांधारी के रोल में देखने के लिए, क्योंकि वहां होगा एंटरटेनमेंट भरपूर। अब वक्त हो चला है विवाना को बाय बाय कहने का।
1: जैसे आपने मेरे हर किरदार को इतना प्यार दिया है, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ रह पाई इतने साल, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे शो हस्तिनापुर के वीर को भर भर के प्यार दें और आशीर्वाद दें, और मेरे किरदार गांधारी को बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।
0: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब मन्नत और विक्रांत की ये कहानी तो पहनाती ही है हमें एंटरटेनमेंट का स्कार्फ, क्योंकि कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो लेकर आता है हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। तो किस तरफ रुक कर रही है अब मन्नत की ये कहानी, क्या आएगी यहाँ से कोई गुड न्यूज या फिर से आएगा कहानी में कोई नया ड्रामा, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स सीधा मन्नत के सेट पर।
0: एक तरफ गुंडों से भिड़ता अभिमन्यु, तो दूसरी तरफ विक्रांत की याद में तड़पती मन्नत।

0: एक तरफ घर में मच गया बवाल। तो दूसरी तरफ रिश्तों में उठ गए सवाल।
1: बोलिए ना, क्या कीमत लगाई है आपने मेरे पति के सपने की।
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में आज मान्यता के घर में कुछ गुंडों ने बोल दिया है हमला। असल में ये वही गुंडे हैं जिनके पास किडनैपिंग बच्चों की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन बच्चों की डिलीवरी हुई नहीं, इसीलिए वो लोग बदला लेने के लिए घर पहुंच गए हैं। और देखिए कैसे उन्होंने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी है। इस पर सम्राज्ञी आकर सवाल उठाती है, लेकिन वो गुंडे सम्राज्ञी को ही पकड़ लेते हैं। ऐसे में मान्यता अपनी बहन को बचाने के लिए उस गुंडे के सामने हाथ भी जोड़ती है, लेकिन वो गुंडा मानने को तैयार नहीं है। उसने तो अपना हाथ भी उठाने की कोशिश की, वो भी मान्यता पर उसे ये नहीं मालूम कि यहाँ पर मान्यता का रक्षक अभिमन्यु मौजूद है।
2: समझ नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ? देख, मेरी दीदी कुछ नहीं।

0: हमें अभी भी नहीं पता, पर साम्राज्ञी जी को पता चलता है कि बच्चों की डिलीवरी जो होनी थी वो हुई नहीं। इस चक्कर में उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि जहां उन्हें डिलीवरी करनी थी वहां से बहुत प्रेशर आता है। उनके गुंडे हमारे घर पे आ जाते हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। फाइट होगी, विक्रांत हमें बचाने की कोशिश करेगा जब गुंडे मुझे मारने के लिए आएंगे, तो वो तो होना लाजमी है, हीरो की फाइट तो हम दिखाने ही वाले हैं। इसके अलावा आगे बहुत अच्छी स्टोरी लाइन आने वाली है, मन्नत और विक्रांत मिलने वाले हैं। विक्रांत की याददाश्त चली गई है, पर कहीं ना कहीं उसे मन्नत के साथ एक कनेक्ट फील हो रहा है।
1: भाई अभिमन्यु ने कोशिश तो की उन गुंडों को सबक सिखाने की, लेकिन गुंडे बहुत सारे हैं। ऐसे में उन्होंने विक्रांत को पकड़ लिया और मान्यता को ले जाने लगे। अब देखना होगा कि विक्रांत मान्यता को बचा पाएगा। वहीं दूसरी ओर अपने विक्रांत की याद में तड़प रही है मन्नत। एक साल से ऊपर होने को जा रहा है, लेकिन मन्नत को अपना विक्रांत मिला नहीं है।

0: नहीं, बीस करोड़, 40, 50, 100 करोड़ क्या कीमत लगाई है मेरे पति के सपने की, बताइए ना। मेजबानी डूब रहा है, डूबा नहीं है, और जब तक मैं सांस ले रही हूं ना, मैं इसे डूबने भी नहीं दूंगी, और किसी के हाथों तो नीलाम भी नहीं होने दूंगी।
1: भाई मन्नत ने तो धैर्य से वादा कर दिया है कि वो विक्रांत को किसी भी हाल में ढूंढ कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और धैर्य ने मन्नत की इन बातों को चुनौती के तौर पर ले लिया है। वहीं दूसरी ओर सम्राज्ञी और उसका देवर मिलकर कर रहे हैं प्लानिंग। इससे पहले कि वो षड्यंत्र सामने आता, वहाँ पर पहुँच जाता है अभिमन्यु और देखिए कैसे सम्राज्ञी और उसका देवर सारी बातों को बदल देता है।
2: कैसा मकसद भाई? एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर, तो मैं भाभी से वही कह रहा था कि क्यों ना हम स्पॉन्सर बन जाएं, अनाथ आलय को पैसे भी मिल जाएंगे, सारे बच्चों को एक नई दिशा, मकसद भी। भाई जी क्या चंगा ख्याल, वाह जी वाह, अनाथ बच्चों का पेट उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करने से बढ़िया और कौन सा ख्याल हो सकता है भाई जी। इसलिए मैं विदा हूँ, वैसे ही दिलदार फूल पड़ना है, पता है क्या मैम, बहुत खुशी होगी सुनील, आप मिलवाना जरूर।
1: अब जो नए रेस्टोरेंट के ओपन की बात हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि जल्द से जल्द अभिमन्यु और मन्नत की मुलाकात जरूर होगी। देखना होगा कि ये मुलाकात कैसी रहेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अनु, आज तो स्कार्फ्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, और देखिए मैंने चूज किया है आपके लिए खूबसूरत पोल्का डॉट, आप पर कितना अच्छा लगेगा। आप ना इसे एक हेयर बैंड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जस्ट लाइक दी 70s, एंड उसके साथ साथ एक विंग्ड लाइनर, ओ माय गॉड, आपके लुक में आ जाएगा एक खूबसूरत स्वैग। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अनु और आर्यवर्धन के पास, और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में आज।
4: खतरे में चरण की जान, चरण को किडनैप करने की कोशिश, अनु बनी रक्षक, जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर चरण को किडनैप किया जा रहा है, और देखिए कैसे चरण भी कुछ कर नहीं पा रहा। चरण को बेहोश कर ये मास्क मैन उसे ले जाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है, और उसकी तो पूरी प्लानिंग है कि वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, चरण को किडनैप कर ले जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब सही समय पर अनु वहाँ पहुँच जाती है, और देखिए कैसे वो इस मास्क मैन से लड़ रही है और चरण को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। चरण को किडनैप करने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि केशव कर रहा है, लेकिन सही समय पर अनु आकर चरण को बचा लेती है और केशव का चेहरा देखने की भी कोशिश करती है, लेकिन केशव गाड़ी लेकर भाग जाता है और अनु केशव का चेहरा नहीं देख पाती।

0: बहुत गर्मी है, बारिश अभी शुरू हुई नहीं है लेकिन हम बहुत ज़्यादा गर्मी में शूट कर रहे हैं, और फाइट सीक्वेंस है ऊपर से, मेरा नहीं है टचवुड इस बार, मेरा नहीं है इस बार, हीरो बन के अन्नू आई है मुझे बचाने के लिए, तो काफ़ी डिफिकल्ट है सीक्वेंस और लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत फाइट करती है अन्नू और मुझे बचाने के लिए आती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किडनैपिंग का सीन है, बहुत राज हैं जो अभी खुलेंगे और बहुत डेप्थ है इस कैरेक्टर में क्योंकि चरण के साथ बहुत कुछ हो रखा है, तो धीरे धीरे करके जो राज हैं वो सबके सामने आएंगे।
1: खैर, अनु ने चरण को बचा लिया लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। इसी के साथ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आएगा जब अनु के सामने होगा एक बड़ा खुलासा।
2: चरण भैया,
3: और एक राज जो सब कुछ बदल देता है।
4: मैंने तुझे कहा था झंडे, हम माँ का भरोसा नहीं तोड़ सकते।
5: मैंने वही किया जो जरूरी था।
4: हमें माँ को सच बताना होगा कि चरण ही उनका खोया हुआ बेटा यश है। यश है, यश है।
2: क्या? क्या?
3: जब सच सामने आता है
2: चरण भैया, यशवर्धन, यशवर्धन,
3: तो रिश्तों का हर चेहरा बदल जाता है।
1: ये तो रही सीन की बात, बात करें बिहाइंड द सीन की तो देखिए कैसे सभी इस गर्मी में हो रहे हैं परेशान, और अनु तो फैन लेकर शूट कर रही है, भाई दर्शकों को एंटरटेन करना है, गर्मी हो या हो तूफान, शूट तो करना ही है।

0: से अंगद हजीजा ने भी बताया कि उन्हें चरण का किरदार निभाने में कितना मजा आ रहा है।
1: एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत चैलेंजिंग है ये कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो, बहुत राज के साथ उसके अंदर राज दफन हो रखे हैं, लेकिन वो याददाश्त भूला हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एज अ एक्टर आई एम सो ब्लेस्ड कि फिर से मुझे इतने सालों के बाद ये कैरेक्टर करने को मिला। जब मुझे ब्रीफ किया गया था तो मुझे मालूम नहीं था कि वापस से मुझे 15 साल बाद आलेख करना पड़ेगा, जो आज तक आलेख को कोई भूल नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं यश जो है वो आलेख ही है, उसको बस नाम चेंज हुआ है। बाकी जब मैंने इस शो साइन, जब मुझे ब्रीफिंग हुई थी इस शो की, इस कैरेक्टर की, तो मुझे यही बोला था कि आलेख वापस आ रहा है, यू नो। तो एक बहुत मेरे लिए बहुत अलग चीज़ थी वो, क्योंकि इतने सालों बाद आप सेम चीज़ कर रहे हो, तो वो बहुत, यू नो, बहुत मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और कहीं ना कहीं जब भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे मेरे सारे कोस्टार्स की याद आ रही है, क्योंकि वो मेरा बचपन का टाइम था जब मैंने आलेख किया था।
0: चाहिए तैयार, क्योंकि सीरियल में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जो देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अरे श्रीनिवास जी, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर इस बार लक्ष्मी रूठ गई ना आपसे, तो उन्हें ले जाइएगा आप शॉपिंग। इनफैक्ट आप यहाँ भी आ सकते हैं इस खूबसूरत स्कार्फ शॉप में। देखिए यहाँ पर है स्कार्फ की कितनी खूबसूरत वैरायटी, मेरा तो मन कर रहा है कि सभी घर ले जाऊँ। इनफैक्ट सभी अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, सबको गिफ्ट कर दूँ, इतनी खूबसूरत वैरायटी है। वैसे ही स्कार्फ लगाते हैं हमारे लुक पर चार चांद, वैसे चार चांद तो लगाती है आपकी कहानी भी हमारे टीवी स्क्रीन पर। लेकर चलते हैं आप सबको लक्ष्मी निवास के सेट पर।

शुरू हुई राधिका की चूड़ी की रस्म। राधिका की आंखों में आंसू तो वीर के चेहरे पर खुशी।

सके। जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में जल्द होने वाली है वीर और राधिका की शादी, और आज हो रही है राधिका की चूड़ी की रस्म, जहां पर वीर के सभी दोस्त लेकर आए हैं राधिका के लिए चूड़ियां। भाई वीर तो बहुत खुश है क्योंकि उसे उसका प्यार मिलने वाला है, लेकिन राधिका उसकी आंखें अब भी नम है क्योंकि ये सब वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रही है। वो तो वीर से बेहद नाराज है। खैर अब शादी होने वाली है, ऐसे में चूड़ी की रस्म तो अदा करनी ही होगी। ऐसे में देखिए कैसे राधिका को एक एक कर घर वाले आकर चूड़ियां पहना रहे हैं।

फाइनली चूड़ी की रस्म हो रही है राधिका की. इतने टाइम से शादी नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. फाइनली चूड़ी की रस्म हो रही है जहाँ पे ऑब्वियसली घर की बेटी विदा हो रही है, तो सब लोग बहुत इमोशनल हैं काफ़ी ज़्यादा. और सो इज़ राधिका. बट राधिका इज़ इन अ मूड जहाँ पे शी इज़ गिवन अप कि ठीक है, शादी हो रही है फाइन. वो ऐसे ब्राइड ब्राइड वाली खुशी तो उसकी नहीं है अंडर सो मेनी सर्कमस्टांसेस. तो घर वाले सब इमोशनल है. और अभी जो मम्मी के साथ सीन किया वहाँ पे, अब हम हल्दी के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ऐसा है कि बेटी की खुशियाँ फाइनली शायद अब आ जाए, तो मम्मी का वो इमोशनल टच है.

0: अब मन मार के ही सही। राधिका अपनी माँ की खुशी के लिए ये सब कर रही है और वीर राधिका की कश्मकश देख सब समझ रहा है। खैर उसे पता है कि आज नहीं तो कल उसके प्यार की जीत होगी और राधिका उसे माफ कर देगी। फिलहाल तो वीर ने सभी घर वालों के सामने हाथ जोड़कर अपने दिल की बात सामने रख दी है कि इसके बाद की शादी की रस्में उसके घर की तरफ से हो।
1: देखिए हम जानते हैं एक माँ बाप का सपना होता है क्योंकि बिटिया उनके घर से मिली है, उनकी डोली उनके आंगन से मिली है। अगर हम आप दोनों से दरखास्त करें आप दोनों भरे शादी हमारे घर से हो सकती है। देखिए हमारे मम्मी पापा हमारी दादी हमसे बहुत नाराज है, अगर ये शादी उनके हिसाब से होए तो उनकी नाराजगी थोड़ी कम हो सकती है। काका काकी समझने की कोशिश कीजिए, मेहमान उनके मेहमानी उनकी और फिर बाद में उनको शिकायत करने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। वो खुश हम सुन
2: हाँ हल्दी वही होने वाली चौहान हाउस, सब खुश रहेंगे, हम खुश वो खुश दुनिया खुश ऑडियंस खुश, सो वी आर जस्ट डूइंग दैट।
0: वीर और उसके घर वालों की बात मानते हुए राधिका का पूरा परिवार निकल चुका है चौहान परिवार की ओर। ऐसे में लक्ष्मी अपनी बेटी राधिका के साथ पहुंच गई है घर के मंदिर के पास हाथ जोड़ने और आशीर्वाद लेने।

0: लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सभी चले जाते हैं लेकिन राधिका की बेटी राध्या वो घर में रह जाती है और फूट फूट कर रोती है। इतना ही नहीं, वो तो माता रानी के सामने हाथ जोड़कर विनती भी करती है। माता रानी ने तो राधिका की बात सुन ली और देखिए कैसे घर में आ गया राधिका का भाई और अपने मामा को देख राधिका हो गई खुश। भगवान का धन्यवाद कर वो पहुंच गई अपने मामा के पास अपनी मम्मी की शादी में शामिल होने के लिए। देखना होगा अब कहानी में और कौन से नए ट्विस्ट आएंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कलरफुल स्कार्फ को अलग अलग तरीके से स्टाइल करना, ये तो होता है बहुत ही रॉकिंग, लेकिन अगर हो जाएगी ना ये गांठ ज्यादा टाइट तो डेफिनेटली हो जाएगा आपके लिए शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: इतने साल हो गए अपने बच्चों से मिले हुए, अब वक्त आ गया है वापस उनके पास जाने का।
3: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी टू की। बड़ी खबरें तो आ रही हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी टू का सफर खत्म होने जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये खबर सच है या फिर है प्रमोशन। वैसे इसी के साथ देख लीजिए ये प्रोमो जहां पर तुलसी की जिंदगी में कई सारी मुश्किलें आने वाली हैं। तो भाई क्या है सच, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
2: इतने साल हो गए अपने बच्चों से मिले हुए, अब वक्त आ गया है वापस उनके पास जाने का।
4: लाइन के इस तरफ ना तुम आ सकते हो ना तुम्हारा ये शो, तुम्हारा ये शो बंद करो ये सब।
5: जितनी प्रॉब्लम है तो बंद कर लो अपने कान, कर लो अपने कान।
4: आप अब किसको गोली मारने आएंगे, किसको गोली मारने आएंगे? हर दिन मैंने यही दुआ मांगी कि आप जैसी माँ कभी किसी को नहीं, कभी किसी को नहीं।
2: ये बात
4: रुक जाइए, शांति निकेतन में अब आपके लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं।
6: भागा बेटा, पावरी से दूर जाने के लिए।
3: नजर डाल लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस नए प्रोमो पर जहां भागा जाएगा बावरी से दूर, जिसके लिए वो करेगा प्लान।
6: भागा बेटा, पावरी से दूर जाने के लिए क्या प्लान?
7: सही नहीं कर रहे।
8: भागा इज इन लव विद अनदर गर्ल, छोड़ दो भागा।
9: बस तो फिर नटू काका, मिशन BBB प्लान इज ऑन।
3: अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में शुरू हो चुकी है शादी की रस्में और बीती शाम हुई माता की चौकी जो कि ऑर्गेनाइज की रोहन के घर वालों ने। देख लीजिए इसके वीडियोस और तस्वीरें।

एक्ट्रेस कांची सिंह पहुंची बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए, जहां से उन्होंने शेयर की हैं ये तस्वीरें। टेलीविजन एक्ट्रेस आसिया काजी और उनके हस्बैंड गुलशन नैन मम्मी पापा बन गए हैं। ऐसे में उनके घर आई है नन्ही परी। 20 जून को हमारी तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाइयां।

0: ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ଯେମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କ କଥା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ଏଠି ସଭି ନୁହନ୍ତି ମଧା।
1: ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ
2: ଏ ମ୍ୟାଡାମ ନୁହେ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ।
0: ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁଅ।
3: जी टीवी के सीरियल वसुधा का ओरिया रीमेक होने वाला है और ओरिया में इस सीरियल का नाम श्रावणी होगा, जिसमें श्रावणी का किरदार निभाएंगी सार्थक सोनाली, तो वहीं चंद्रिका का किरदार निभाएंगी राजेश्वरी।
2: राजेश्वरी और नए कले सस्ती दिए।
4: अरे वाह नानी, इत्ते बड़ा घर।
0: एक कठोर शासन रे स्नेह और संजीवनी सुखिला भूई रे बे बरसी बस रावणी।
3: जल्द आने वाली है श्रद्धा कपूर की फिल्म एथा, सामने आया है इसका टीजर।
5: पान में पान चखना हो तो मीठा, और तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा।
3: दंगल टीवी लेकर आ रहा है नया सीरियल जिसका नाम है कैसी तेरी दिल लगी, और खबरों की माने तो इसमें नजर आएंगी आमी डाकिनी में नजर आ चुकी चारू त्रिखा, और साथ ही इसकी कास्ट को ज्वाइन किया है रंगबाजी दिलों की फेम एक्ट्रेस दीक्षा सिंह ने,

अर्जुन रामपाल जल्द नजर आने वाले हैं एक नई ओटीटी ड्रामा सीरीज में, जिसका नाम है बिलियनेयर, जो कि Amazon MX Player पर आएगी। ये होगी बायोपिक विजय माल्या पर, ऐसा सुनने में आ रहा है।

0: तो कैसे लगी आपको हमारी ये स्टाइलिंग टिप्स, स्पेशली स्कार्व्स को लेकर? आप इन्हें जरूर आजमाइएगा और हमें जरूर बताइएगा। अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
2: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
10: ठंड और बर्फबारी के बावजूद बड़ी संख्या में बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब पहुंच रहे भक्त बद्रीनाथ धाम में अब तक 12,67,000 से ज्यादा, तो हेमकुंड में 1,32,000 भक्त कर चुके दर्शन। शिमला में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, बदले मौसम का सैलानी ले रहे मजा, शिमला में आज दिन भर रुक रुक कर होती रहेगी बरसात। मुंबई में जमकर बरसे बादल, रेड वार्निंग के साथ दिन भर तेज बरसात की चेतावनी, बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद। दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव और बाढ़ से निपटने की तैयारी बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ कैंप भी किए जा रहे तैयार, एमसीडी पीडब्ल्यूडी डीडीए और डीजेबी को खास निर्देश। लुई विटों के पेरिस मेंस वेयर फैशन वीक शो में अजब गजब डिजाइन के साथ रैंप पर उतरे मॉडल्स, रैंप के बैकड्रॉप में दिखा कृत्रिम झरना।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
10: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा भाव के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, 200 कारीगर बना रहे रथ। रथों के निर्माण में तकनीकी और कलात्मक दोनों पहलुओं पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। सेवक रथों के जोड़ स्थानों के लिए लोहे के उपकरण कर रहे तैयार। 29 जून को प्रभु जगन्नाथ की होगी पूर्णिमा स्नान। 15 दिनों तक भगवान का रहेगा एकांतवास। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से होगी सुरक्षा। सीसीटीवी से होगी यात्रा की निगरानी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान। आने जाने वाले लोगों पर पुलिस रख रही विशेष नजर। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करवा रहे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ यात्रा ने रचा इतिहास। 63 दिनों में 13 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 12,70,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। खराब मौसम के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 1,35,000 भक्तों ने टेका मत्था। मुंबई में फिल्म वेलकम टू जंगल की सफलता की कामना के लिए सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंचे अक्षय कुमार और फरीदा जलाल। विधि विधान के साथ की पूजा। धर्मनगरी अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न हुआ। दिव्य समारोह का हुआ आयोजन। अयोध्या के 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ध्वज का किया पूजन। फिर मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा। भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे करीब 4,000 राम भक्त। श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर रामलला राम परिवार मंदिर और परकोटा क्षेत्र के सभी दिव्य ग्रहों के दर्शन पूजन किए। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के निवासी जंग बहादुर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को सौंपी करीब 300 वर्ष पुरानी भगवान श्री राम से संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ की पांडुलिपि। माता वैष्णो के दरबार से आई गुड न्यूज। रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए माता रानी के दर्शन। इस साल 22 जून तक 50,70,000 भक्तों ने की पूजा अर्चना। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार। सुबह से भक्तों की लगी लंबी लंबी कतारें। राजस्थान के कोटा में दुनिया के इकलौता विभीषण मंदिर। भगवान राम के भक्त विभीषण की यहां पर पूजा की जाती है। 5,000 साल पुरानी पौराणिक मान्यता के अनुसार होली के बाद हिरण्यकश्यप दहन की अनूठी परंपरा। कोटा के शासक महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था मंदिर का निर्माण। मंदिर के आसपास कई भगवान की प्रतिमाओं को स्थापित किया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में सीएम विजयन के जन्मदिन पर अरुल मिगु सुब्रमण्यम मंदिर में विशेष पूजा। भगवान की निकाली गई भव्य रथ यात्रा। रायपुर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे में सीएम विष्णुदेव साय ने पौधारोपण किया। खिलाड़ियों को किया सम्मानित। अगरतला में ऑल त्रिपुरा इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। सीएम माणिक साह शामिल हुए। रांची में JT20 फाइनल देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। फैंस ने मैच का जमकर मजा लिया। गोवा के पारुल विश्वविद्यालय में ग्रैंड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम प्रमोद सावंत ने इसमें शिरकत की। मॉस्को पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। न्यायिक ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान से जुड़े MOU पर साइन किए। मॉस्को में CGI ने दिया भाषण। कहा भारत और रूसी न्याय प्रणालियों के बीच में अकेडमियों ट्रेनिंग प्रोग्राम के आदान प्रदान पर जोर रहेगा। राजस्थान के कोटा के नरेंद्र अवस्थी ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कॉमरेड्स मैराथन 2026 की 86 किलोमीटर की चुनौती पूरी की। 9 घंटे 11 मिनट 54 सेकंड में पूरी की दौड़। शानदार प्रदर्शन के लिए रॉबर्ट मटशाली मेडल से सम्मानित। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहरों के बीच में आयोजित होता है यह मैराथन, विश्व की सबसे कठिन अल्ट्रा रेस में शामिल। महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश हुई, महाराष्ट्र के लिए अगले 5 दिन अहम। मानसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी, अगले 3 दिनों के लिए ठाणे और मुंबई में होगी जोरदार बरसात। मुंबई में भारी बारिश से यातायात प्रभावित हुआ, कई इलाकों में भर गया पानी। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से अंडरपास में भर गया पानी, आवाजाही पर रोक। मुंबई के गांधी मार्केट में भर गया पानी, वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार। मुंबई के गांधी मार्केट में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, कई वाहन पानी में फंस गए। मुंबई के अंधेरी में बारिश से अंडरपास में भर गया पानी, यातायात बंद हुआ। मुंबई के दादरी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भर गया पानी, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। नवी मुंबई में भारी बारिश से जलभराव हुआ, पानी के चलते लोग मजबूर हुए। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मानसून होगा और भी मजबूत, 25 से 26 जून को मूसलाधार बारिश की संभावना। ठाणे में भारी बारिश जारी, कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश का आनंद लेते नजर आए बच्चे, पानी में जमकर की मस्ती। वाशिम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हुए, कई इलाके पानी में डूबे। अकोला में भी भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली यहां पर राहत। सतारा के कोयना नगर में पहली बारिश से दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा, यहां पर झरने का बढ़ा जलस्तर। दिल्ली में बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर, दिल्ली सरकार ने मानसून 2026 के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया। बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, 15 जून से 15 अक्टूबर तक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। यमुना और नजफगढ़ ड्रेन के लिए 3 स्तरीय चेतावनी प्रणाली लागू, 20 से ज्यादा संवेदनशील तटबंधों और पंपिंग स्टेशनों की विशेष निगरानी। बाढ़ को लेकर 13 जिलों में राहत व्यवस्था और हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू, वाटर लॉगिंग हेल्पलाइन नंबर जारी। नेपाल में भारी बारिश से बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। राजकोट में तेज बारिश से रेलवे अंडरपास में भर गया पानी, पैसेंजर से भरी एसटी बस फंस गई। जेसीबी की मदद से बाहर निकाली गई बस, सभी यात्री सुरक्षित हैं। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन हुआ, भूस्खलन से सड़कें बंद हुई। भूस्खलन से सड़क पर आया मलबा, यात्रियों की बड़ी परेशानी। पुंछ में आपदा से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का मॉक ड्रिल, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, अन्य एजेंसियों को आपदा से निपटने के लिए तैयार किया गया।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
2: है। निर्जला एकादशी पर कोई विशेष दान किया जाता है, निर्जला एकादशी का जल से क्या संबंध है और निर्जला एकादशी का गायत्री जयंती से क्या संबंध है, क्या है निर्जला एकादशी की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
3: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: No.
5: Oh, no.
6: Welcome to Get Real.
7: I got something to say.
6: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
5: Oh my God.
8: It's going to be deliciously desperate.
5: Why do these girls forget?

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
2: I have no idea how this election is going to play out,
1: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: Raat sachai ki, raat 9 baje.
4: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
5: Aur durbhagya kehta hai
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है.
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
11: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in.
12: ठंड और बर्फबारी के बावजूद बढ़ी संख्या में बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब पहुंच रहे भक्त. बद्रीनाथ धाम में अब तक 12,67,000 से ज्यादा तो हेमकुंड में 1,32,000 भक्त कर चुके दर्शन. शिमला में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, बदले मौसम का सैलानी ले रहे मजा. शिमला में आज दिन भर रुक रुक कर होती रहेगी बरसात. मुंबई में जम के बरसे बादल, रेड वार्निंग के साथ दिन भर तेज बरसात की चेतावनी. बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद. दिल्ली में मानसून से पहले जल भराव और बाढ़ से निपटने की तैयारी. बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ कैंप भी किए जा रहे तैयार. एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और डीजेबी को खास निर्देश. लुई विटों के पेरिस मेंस वेयर फैशन वीक शो में अजब गजब के डिजाइन के साथ रैम पर उतरे मॉडल्स. रैम के बैकड्रॉप में दिखा कृत्रिम झरना.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन.
13: नमस्कार, स्वागत है आपका. मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार. देखिए एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना जाता है, उसमें भी निर्जला एकादशी को परम कल्याणकारी कहा जाता है. निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में ना तो जल ग्रहण करते हैं और ना ही भोजन. ये व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है. देखिए मान्यता है कि इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है. कहते हैं इस दिन व्रत, उपवास और हरि कीर्तन से महापुण्य की प्राप्ति होती है. इसीलिए आज हम आपको निर्जला एकादशी

0: निर्जला एकादशी पर हर कामना होगी पूर्ण। भीमसेनी एकादशी है दिव्य प्रभावों से परिपूर्ण। भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना से मिलेगा वरदान। धर्म अर्थ काम और मोक्ष से होगा आपका उत्थान। माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं, जिससे जुड़ी है द्वापर युग की कथा, जब महाबली भीम ने भी अपने भूख को तप से अपने वश में कर लिया था। माना जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को बताया था। इस व्रत की पौराणिक मान्यता यही है कि निर्जला एकादशी का व्रत करके साल की बाकी एकादशी के व्रत का पुण्य पाया जा सकता है।
1: निर्जला एकादशी इस वर्ष 25 जून 2026 को पड़ रही है। यह ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इस एकादशी का महत्व यह है कि बिना जल के, बिना अन्न के व्रत किया जाता है, और अब आजकल के समय में तो जल और बहुत ही जरूरी हो गया है, नहीं रहते, लेकिन पहले के समय में निर्जल रहते हैं, बिना जल तक नहीं ग्रहण करते हैं। यह 24 एकादशियों में, पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है, इसमें जिसमें से निर्जला एकादशी सबसे कठिन और सबसे प्रभावशाली यह एकादशी मानी जाती है।
0: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीम ने एकमात्र उसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के इस व्रत का पारण द्वादशी की तिथि पर किया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि निर्जला एकादशी व्रत अगर आप करने वाले हैं, तो क्या है इसकी सही विधि और कौन सी है?
1: पूरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपको कुछ भी अन्न, जल, फल, फूल, मीठा कुछ भी नहीं ग्रहण करना है। भगवत भजन करना है, भगवान श्री विष्णु का मंत्रों का जाप करना है। उसमें नमो भगवते वासुदेवाय है, ये मंत्र सबसे सरल और आसान है। अधिक से अधिक समय में आप भगवत भजन करिए और व्रत रखिए।
0: सुबह स्नान के निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। किसी गरीब को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या छाता दान करें। जरूरत पड़ने पर इस दिन जलीय या फलाहार लिया जा सकता है।

मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत के दौरान अन्न जल का त्याग कर देना चाहिए, जबकि इस व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किए जाने का विधान है। माना जाता है कि ये वो शुभ दिन है जब नारायण भक्तों पर महाकृपा बरसाते हैं, इसलिए इस दिन को ज्योतिष में इतना महत्व दिया जाता है।

0: निर्जला एकादशी पर उपवास या व्रत करके आप हरि के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा के भागी बन सकते हैं। धर्म ग्रंथ और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। निर्जला एकादशी की विशेष साधना के अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, इससे श्री हरि भी आपका कल्याण करेंगे। तो आज की दिव्य एकादशी पर आप क्या करें, गौर से देखिए।
1: अब निर्जला बहुत कम लोग रहते हैं, जल ग्रहण करते हैं, फल फूल अन्न खाते हैं, अन्न नहीं खाते, फल फूल फलार खाते हैं, तो उसमें जो भी चीज आप खाने का विचार हो या खाने का मन हो, वही चीज आप उसको दान करके, मन संकल्प करके किसी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। उसमें फल फूल है, मिष्ठान है, चीनी है, पानी है, पंखा है, ये मुख्य रूप से है।
0: इस दिन केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। प्रातः और सायंकाल अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें। रात्रि में जागरण करके श्री हरि की उपासना अवश्य करें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। जल और जल के पात्र का दान करना विशेष शुभकारी होगा। ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं, जिनका पालन करना भी बेहद आवश्यक है। तो आखिर वो कौन सी सावधानियां और उपाय हैं, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ।
2: कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस दिन कुछ खास प्रयोगों से आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। यही नहीं, इस दिन एक महा उपाय करने से आप धन से जुड़ी बाधा को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्रत के नियम और सावधानियों को ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी है। कौन सी है ये सावधानियां, आइए आपको बताते हैं।

0: जप तप और दान की पुण्यतिथि। हर संकट को दूर करेगी निर्जला एकादशी। जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने वाला व्रत। विधि विधान से किए पूजन से मनोरथ होंगे सफल। माना जाता है कि इसी प्रतापी व्रत से भीम को धैर्य और अनुशासन मिला। सुखों को त्याग कर संकल्प को पूर्ण करने की सिद्धि मिली। महर्षि वेद व्यास और मधुसूदन का मार्गदर्शन मिला। इस व्रत से जुड़ी जो सबसे प्रामाणिक कथा मिलती है वो कहती है, महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा बताई थी। कथा कहती है कि भीम कभी भी भूखे नहीं रह सकते थे, उनका शरीर अत्यधिक भोजन से ही तृप्त होता था। इस पर भीम ने वेदव्यास से पूछा कि मैं तो एक प्रहर भी भूखा नहीं रह सकता। तब महर्षि ने भीम से कहा कि आप साल में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जल व्रत करें तो साल की सभी एकादशी का पुण्य फल मिलेगा। भीम ने न केवल व्रत का संकल्प किया बल्कि बिना खाए व्रत भी किया। अगले दिन सूर्योदय होने पर भीम पांडवों को मूर्छित मिले। व्रत में भोजन न करने और जल ग्रहण न करने से भीम मूर्छित हो गए, जिसके बाद पांडवों ने भीम को तुलसी दल, गंगा जल और पंचामृत पिलाकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं।
1: महाभारत काल में भीम पांडु पुत्र भीम सेठ की जटराग्नि शुरू हुई थी, उसकी तीव्रता को भूख सहन नहीं कर पाए रहे थे। उनकी भूख की तीव्रता को सहन करने के लिए माता कुंती और पांडवों ने एकादशी का व्रत किया और उसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इनकी जो जठराग्नि थी, जो इनकी भूख थी, वह शांत हुई। इसी दिन से इस यह कथा का महत्व बढ़ने लगा।
2: शांताकारं भुजगशयनम्।
0: हर उपवास और व्रत की अपनी महिमा है। माना जाता है कि इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसके प्रभाव से आपके जीवन की तमाम दिक्कतों का अंत हो सकता है। सनातन संस्कृति में माना जाता है कि किसी भी खास दिन को ईश्वर के नाम समर्पित करके उपवास करना एक खास धार्मिक और शारीरिक प्रक्रिया है। निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन इस दौरान कुछ सावधानियों का ध्यान भी आपको रखना होगा। इस दिन अन्न का सेवन ना करें। स्वास्थ्य की समस्या है तो सात्विक आहार लें। अगले दिन बिना दान किए व्रत ना खोलें। गुस्सा, निंदा और आलस से बचें। चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी में नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल ना दें।
1: निर्जला एकादशी में सर्वोत्तम दान की विधान है, एक घड़ा होना चाहिए, उसमें शीतल स्वच्छ जल होना चाहिए, कुएं का जल हो या आपके हैंडपंप का जल हो। उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो नल का भी जल चले, साफ सुथरा होना चाहिए। उसके ऊपर कुछ मिष्ठान होता है, मौसमी फल आजकल के समय आम है, खरबूजा है, ये सब उसके रख करके, और पंखा, हवा करने के लिए पंखा, ये सब चीजें निर्जला एकादशी में दान की जाती हैं।
0: माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर एक खास उपाय से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरस सकती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ये दिव्य एकादशी आपकी धन संबंधी बाधाओं को भी दूर कर सकती है। गौर से देखिए उपाय। एकादशी के दिन एक सफेद रंग का शंख खरीदें। इसमें गंगा जल भर लें और श्री हरि के चरणों में डालें। इसके बाद उस शंख से 3 बार ध्वनि करें। शंख को धोकर पूजा के स्थान पर रख दें। घर में धन आता भी रहेगा और बचत भी होती रहेगी। निर्जला एकादशी पर श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। जानकार ये दावा करते हैं कि जिसने लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लिया उसे फिर जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता, क्योंकि श्री हरि जगत के पालनहार हैं, वो सर्वव्यापी हैं, हमारे अंतर मन को जानने वाले हैं, तो क्यों ना इस शुभ तिथि पर उनकी कृपा का लाभ उठाया जाए, जिससे आपका जीवन परमेश्वर की छत्र छाया में बीत सके।
2: हम आपको निर्जला एकादशी की महिमा और इसके दिव्य प्रयोग बता रहे हैं। देखिए, एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर पूरा होता है, तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं निर्जला एकादशी व्रत का समापन आखिर कैसे करें।

0: व्रत करने से शुद्ध होता है तन और मन। व्रत रखने से होती है आध्यात्मिक उन्नति। मान्यता है कि निर्जला एकादशी मन को निर्मल करने वाली है, मन को नियंत्रित कर कर्तव्यों के प्रति सचेत करने वाली है। हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन पूजा होती है श्रीमन नारायण और मां लक्ष्मी की। धर्मशास्त्री बताते हैं कि अगर आपने साल भर में एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया और मात्र निर्जला एकादशी का व्रत आप विधि विधान से कर लेते हैं, तो इससे न केवल आपको सभी एकादशी का फल मिल जाता है, साथ ही आपके जीवन के पाप संताप भी मिट जाते हैं।
1: निर्जला एकादशी के दिन सबसे सरल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का ही जप किया जाता है। उसके बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का मंत्र का जाप किया जाता है, राम राम का मंत्र का जाप किया जाता है, और ओम नमो नारायण विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, ये नारायण का बीज मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इसका मंत्र का भी जाप किया जाता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पूर्णिमा के बाद एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है, और निर्जला एकादशी सबसे फलकारी मानी गई है। इस व्रत से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि इसका समापन भी एक खास तरीके से किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करें इस परम प्रतापी व्रत का समापन।
1: व्रत 24 घंटे का होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई व्रत की मान्यता होती है, तो एकादशी का व्रत भी सूर्योदय से पूर्व से शुरू होता है और दूसरे दिन सूर्यास्त के सूर्योदय के बाद इसकी पारण किया जाता है। सूर्य उदय हो जाए दूसरे दिन तब आप उसको स्नान ध्यान करके कुछ अन्य भगवान को अर्पित करके फिर अपने ग्रहण करें, तब इस प्रकार उनका पारण किया जाता है।
0: व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ दें, गरीबों को अन्न वस्त्र और जल का दान करें, फिर नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। पहले हल्का भोजन करें तो उत्तम होगा। ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है। माना जाता है कि इस एकादशी पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने से भी लाभ होता है, साथ ही इस दिन किए गए कुछ विशेष महा उपायों से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। तो आप भी इस मंगलकारी तिथि पर जीवन की समस्याओं का समाधान कर लीजिए और अपने जीवन को धन्य कर लीजिए।
2: तो चलिए, हम तो यही आशा करते हैं कि श्री हरि की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: क्या निर्जला एकादशी पर कोई विशेष दान किया जाता है? निर्जला एकादशी का जल से क्या संबंध है और निर्जला एकादशी का गायत्री जयंती से क्या संबंध है? क्या है निर्जला एकादशी की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
5: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
6: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
7: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: घर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह हजारों मॉडल कारें सजी हों, जहां गैराज किसी ऑटोमोबाइल म्यूजियम से कम ना लगे? तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही आशियाने में लेकर चलते हैं जो एक ऑटोमोबाइल की अनोखी दुनिया में आपको लेकर जाएगा। एक शख्स का बाइक और कारों के प्रति ऐसा जुनून आपको यकीनन कुछ खास करने के लिए इंस्पायर जरूर करेगा।
9: अक्सर कहा गया है कि शौक भी बड़ी चीज है, वरना कौन रातों की नींद छोड़कर सपनों को सजाता है। कुछ ऐसे ही सपनों के घर को सजाने में जुटे हैं संदीप गज्जर, जो सनी के नाम से भी मशहूर हैं। तो वहीं इनका घर कुछ बेहद अनोखी और खास वजहों से मशहूर है।
10: घर तो आपने काफी देखे होंगे, बंगले भी आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर देखा है जो किसी म्यूजियम से कम आपको ना लगे? घर के गैराज की बात की जाए तो वो एकदम म्यूजियम लगे, घर के किचन से लेके बेडरूम तक की बात की जाए तो हर जगह आपको एक मोटरसाइकिल, मोटर की जितनी भी चीजें हैं उसका जुनून नजर आए। डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और वही दिखाने के लिए आज मैं आपको नोएडा लेकर आई हूँ।
9: नोएडा में बना ये घर भले ही बाहर से एकदम सामान्य ही नजर आएगा, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल होते ही एक नई दुनिया से आप रूबरू होंगे। घर की दीवारें करीब 2000 हॉट व्हील्स कारों से सजी है। छोटे छोटे मॉडल्स का ये बड़ा कलेक्शन सनी के ऑटोमोबाइल प्रेम को बखूबी दर्शा भी रहा है। यानी दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह सजी लगभग 40 साल पुरानी ये हजारों रियल मॉडल्स की कारें, स्पोर्ट्स बाइक्स आपको किसी मोटो विला का ही एहसास कराएंगी। यही नहीं, सनी के कलेक्शन में ही मैन से लेकर बैटमैन जैसे सुपर हीरोज के साथ कई और कॉमिक कैरेक्टर्स भी उनके आशियाने को बेहद पैशनेट और पावरफुल फील दे रहे हैं।
10: जैसे अंदर एंटर करोगे आप ये देखिए, आपको हर एक कोने में हर एक चीज नजर आने वाली है। और जिस तरीके से हमने इसको मोटो विला बोला है, यहाँ पर सिर्फ बाइक्स या फिर कार्स का कलेक्शन ही, आपको कुछ इस तरीके की चीजें भी दिखने वाली है जो लोग इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है।
9: सनी ने अपने घर के हर कोने को ऑटोमोबाइल कल्चर की चाशनी में भिगोया हुआ है। यहाँ किचन से लेकर मल्टी लेवल मॉडल गैराज, वेपन वॉल, बस ये मानिए कि इस घर का हर कोना सनी की पसंद और व्यक्तित्व की एक नई कहानी को बयां कर रहा है।
10: फ्रिज को भी नहीं छोड़ा आपने?
11: नहीं छोड़ दिया एक्चुअली, मैं अगर मैं मेरा पास चलता तो मैं बहुत कुछ करता उसके ऊपर।
10: और एक बारी मैं दिखाना चाहूंगी, ये फ्रिज है जो ये आप देख रहे हैं, बट इसको भी किस तरीके से इन्होंने कस्टमाइज किया है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक जो है वो दिखने वाली है।
9: यही नहीं, सनी हेलमेट डिजाइनिंग का भी शौक रखते हैं। उनके डिजाइन किए गए कई हेलमेट्स और रग्स उनकी क्रिएटिविटी पैशन को ही झलका रहे हैं, और ये सब कुछ करना उन्हें सुकून ही देता आया है।
11: मेरा प्रोफेशन जो है, आई थिंक इट्स टू इंस्पायर पीपल अल्टीमेटली कि यू कैन लिव द लाइफ द वे यू वांट डिस्पाइट आपके पास कोई भी रेस्ट्रेंट्स हो। बिकॉज ये जो आप देख रहे हो 3 फ्लोर का, इससे पहले मैं जहाँ पे था वो सिर्फ एक कमरा था, और उस एक कमरे को भी मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि किसी ने नहीं देखा होगा। सो इट्स जस्ट अबाउट योर थिंकिंग। लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे चीजें मिलती जाएगी, लेकिन थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए।
9: आर्ट, क्रिएटिविटी और ऑटोमोबाइल की दुनिया समेटे इस खूबसूरत और अनोखी क्रिएटिव गैलरी में फोटोग्राफी का पैशन भी सनी के दिल के बेहद करीब रहा है।
11: आई थिंक फोटोग्राफी एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, विच इज वेरी बेसिक।
9: आज के दौर में जहां लोग अपने शौक को समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं, वहीं सनी ने अपने जुनून और सपने को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। उसकी एक झलक उनके बेडरूम में भी नजर आ रही है। कहते भी हैं कि शौक वो नहीं जो वक्त काटने के लिए किया जाए, शौक वो है जिसके लिए वक्त निकाला जाए, क्योंकि यही शौक इंसान की पहचान को और भी खूबसूरत और कलात्मक बना देता है। और जिसे अपने शौक से मोहब्बत हो जाए उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
10: तो सनी के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि उनका जुनून है, जिसे बेहद ही खूबसूरती के साथ सनी ने डिजाइन किया है। बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सारी कंट्रीज का सफर किया है, और उसके बाद ये पूरा घर जिसे हम मोटो विला बोल रहे हैं ये पूरा बनाया गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे वीडियोस के जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
12: गर्मी से राहत पाने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई होगा। भीषण धूप और बढ़ते तापमान के बीच ये भालू तालाब के ठंडे पानी में उतरकर खूब आनंद ले रहा है। पानी में इसकी मस्ती देखकर ऐसा लगता है मानो इसे तैराकी की पूरी ट्रेनिंग मिली हो। कभी आराम से तैरता है तो कभी पानी में खेलता नजर आता है। ये नज़ारा ना सिर्फ सुकून देता है बल्कि बताता है कि जानवर भी मौसम के हिसाब से खुद को ढालना अच्छी तरह जानते हैं। स्कूल में बच्चों की चहल पहल नहीं थी, लेकिन इस प्यारी बिल्ली ने माहौल को खास बना दिया। अपने नन्हे बच्चों के साथ स्कूल पहुंची ये बिल्ली सभी का ध्यान खींच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो भी चाहती हो कि उसके बच्चे कुछ नया सीखें। मासूम बच्चों और उसकी माँ की ये मौजूदगी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इसे ममता और स्नेह का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं। सफलता की नींव बचपन में ही रखती जाती है और इसमें माँ की भूमिका सबसे अहम होती है। सुबह सुबह बच्चों को जगाना, उन्हें पढ़ाई और अभ्यास के लिए तैयार करना आसान काम नहीं है। ये माँ भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का पाठ सिखाकर वो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। ये नज़ारा बताता है कि माँ का त्याग और समर्पण ही बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। आमतौर पर सीधी दीवार पर चढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन इस मेढक को देखकर हर कोई हैरान है। ये बिना रुके और बिना फिसले लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसकी फुर्ती और संतुलन देखकर लोगों को स्पाइडरमैन की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवार नहीं बल्कि कोई सामान्य रास्ता हो। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस छोटे से जीव की अद्भुत क्षमता और दृढ़ता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्यार और दया की कोई उम्र नहीं होती, ये नन्ही बच्ची इसका सुंदर उदाहरण पेश कर रही है। अपने छोटे छोटे हाथों से वो बड़े प्यार से मोर को खाना खिला रही है। मोर भी बिना डरे उसके पास खड़ा होकर दाना खा रहा है। दोनों के बीच का ये स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। ये नज़ारा इंसानों और पक्षियों के बीच भरोसे और अपनापन की अनोखी तस्वीर पेश करता है। सोशल मीडिया पर लोग बच्चे की मासूमियत और संवेदनशीलता की खूब सराहना कर रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर। That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
14: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
16: गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
18: अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां। श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए लगाए गए शेड। 3 जुलाई को शुरू होगी पवित्र यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 12.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब भी पहुंचे करीब 1.5 लाख श्रद्धालु। शिमला में में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, बदले मौसम का सैलानी ले रहे आनंद। शिमला में आज दिन भर रुक रुक कर होती रहेगी बरसात। मुंबई में जमकर बरसे बादल, रेड वार्निंग के साथ दिन भर तेज बरसात की चेतावनी। बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर सबवे किए बंद। दिल्ली में मॉनसून से पहले जलभराव और बाढ़ से निपटने की तैयारी। बनाया गया फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ कैंप भी किए जा रहे तैयार।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मथुरा की गलियों से लेकर काशी के घाटों तक, अयोध्या की भव्यता से लेकर चारधाम की दुर्गम चोटियों तक, अमरनाथ की बर्फीली गुफा से लेकर मानसरोवर की दिव्य शांति तक, भारत के इन पवित्र धामों में एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर उस युवा भारत की है जो सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि अनुभव की तलाश में निकला है। कभी तीर्थ यात्राएं बुजुर्गों की आस्था का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन आज इन यात्राओं में सबसे ज्यादा उत्साह युवाओं का दिखाई दे रहा है। हर साल श्रद्धालुओं की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। काशी, अयोध्या, केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसी तीर्थ स्थलों पर युवाओं की बढ़ती मौजूदगी एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत दे रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो युवाओं को इन कठिन रास्तों, ऊंचे पहाड़ों और लंबी यात्राओं की ओर खींच रहा है? क्या ये रोमांच का आकर्षण है? क्या ये अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ने की चाह है, या फिर भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में शांति, सुकून और आत्मिक ऊर्जा की तलाश? असल में ये यात्राएं सिर्फ धार्मिक पर्यटन की कहानी नहीं है, ये उस पीढ़ी की कहानी है जो एडवेंचर में आध्यात्म और आध्यात्म में जीवन का अर्थ खोज रही है, जो पहाड़ों की ऊंचाइयों में साहस तलाश रही है, मंदिरों की घंटियों में सुकून सुन रही है और तीर्थ यात्राओं के माध्यम से स्वयं को जानने की कोशिश कर रही है। बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी और सोशल मीडिया ने इन यात्राओं को पहले से अधिक सुलभ बना दिया है, लेकिन असली ताकत कहीं और है। वो ताकत है विश्वास की, आत्मिक जुड़ाव की, अपनी सभ्यता को करीब से जानने की और जीवन को एक नए नजरिए से देखने की। और यही वजह है कि मथुरा, काशी, अयोध्या, चारधाम, अमरनाथ और मानसरोवर जैसे तीर्थ आज सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं रहे बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा, ऊर्जा, साहस और आत्मखोज के सबसे बड़े पड़ाव बनते जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि इन पवित्र यात्राओं में हर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि युवा सिर्फ यात्रा नहीं कर रहा, वो स्वयं की तलाश में निकल पड़ा है। लिहाजा हर साल आस्था के तमाम धाम श्रद्धा भक्ति का नया कीर्तिमान रच रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु शांति और सुकून की तलाश में इन धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा का भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक करीब 39 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा का आध्यात्मिक लाभ उठा चुके हैं। मौसम के दुश्वारियों के बावजूद बड़ी संख्या में भक्त बद्री विशाल के दर्शन को पहुंच रहे हैं। तो महीने भर पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब 12,52,000 श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन कर चुके हैं। इन दिनों भी रोजाना तकरीबन 15,000 से 20,000 श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। माता वैष्णो देवी की अगर बात करें तो इस धाम में अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि इन तीर्थयात्रियों में बड़ी संख्या युवाओं की है। जानकारों का कहना है कि धार्मिक पर्यटन में करीब 53% भागीदारी युवाओं की है। इससे पहले कि हम स्पिरिचुअल वेकेशन के इस नए ट्रेंड पर चर्चा करें, पूर्वोत्तर में आस्था भक्ति के उल्लास की एक और तस्वीर देख लीजिए। गुवाहाटी के विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में इन दिनों अंबुबाची मेला लगा हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। इनमें साधु संतों के अलावा बड़ी तादाद में युवा श्रद्धालु भी मां का आशीष ले रहे हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या के पवित्र धाम में कोई दिल्ली से आया है तो कोई मुंबई से, कोई हरिद्वार से तो कोई गुजरात से। देश के कोने कोने से आए युवा श्रद्धालु मां की आराधना में लीन है। कोई नाम जप कर रहा है तो कोई ध्यान में मगन है। तनाव और भागदौड़ की जिंदगी से दूर आदिशक्ति के धाम में ये भक्त साधना कर रहे हैं, नई ऊर्जा हासिल कर रहे हैं।
1: माँ तो मतलब जैसे उसकी तो महिमा परंपरा है, हर बार बुलाती है, हर बार बहुत प्रेम से बुलाती है, तो माता की कृपा है। बिल्कुल,
2: बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है माँ के इस मेले में आना और इस समय में आना, और उनका आप देख रहे हैं विभिन्न पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से साधु संत आए हैं, और एक अलग तरह की ऊर्जा मैं कहूंगा माँ कामाख्या के प्रमाइसेज में आपको मिलती है।
3: पी तो पीक एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन गॉडेस की, सो फॉर साधना साधक के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे होना फॉर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी।
0: और चलिए, लगातार जिस तरह से ये आध्यात्मिक टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, सच्चाई इसके पीछे की क्या है ये जानने की हम कोशिश करते हैं आज की अपनी चर्चा में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें उनसे। महंत सीताराम दास जी, प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें कि आरजे प्रतीक भरद्वाज, जो कि रेडियो जॉकी हैं और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, आपका भी स्वागत है। और पवन कोठियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि को फाउंडर हैं, ट्रैवल चिली और टूरिज्म एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन महंत जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जो हम देख रहे हैं, इसको हम ट्रेंड कहें या जो कहें, आज की भाषा में हम इसे ट्रेंड कह सकते हैं, लेकिन मैं तो बस आपसे इतना कहूंगी कि जो मेरी आंखों देखी है, क्योंकि प्रभु की कृपा से पिछले 3 बार से मैं यात्रा पर जा रही हूं, जब भी बाबा के कपाट खुलते हैं केदारनाथ, वहां मैं रहती हूं, खुद बद्री विशाल के दर्शन मैंने किए हैं, और मैं खुद जो अनुभूति कर चुकी हूं वो ये है कि वहां पर एक बड़ी तादाद में जो भक्त, पहले हम कहते थे ना कि ये जितने तीर्थ होते हैं बुजुर्गों के होते हैं, लेकिन वहां मुझे बड़ी तादाद में कम उम्र के लोग मिल रहे हैं, परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, ये एक भ्रांति है कि बुजुर्गों को ही तीर्थयात्रा में जाना चाहिए या बुजुर्गों को ही भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे बीच में एक व्यवस्था गढ़ी गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्र में लिखा है, प्रहलाद जी महाराज अपने मित्र बालकों से कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। कौमार आचरित माने कुमार अवस्था से, कुमार अवस्था माने लगभग 7-8 वर्ष की अवस्था से ही भगवान के भजन में, आराधना में, साधना में, तीर्थ यात्रा में लग जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बचपन से लगेंगे तभी हमारा दीर्घकालीन जो अभ्यास होगा, जो कहते हैं अंत भला तो सब भला, भागवत में कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए। तो जब तक हम बचपन से भगवान की आराधना में नहीं लगेंगे, युवावस्था से भगवान की आराधना में नहीं लगेंगे, तब तक वृद्धावस्था में बहाना भले ही बना लो भजन करने का, या तीर्थ यात्रा में जाते थे पुराने जमाने जो बुजुर्ग जाते भी थे तो लोग बाग रोग आकर के भेजते थे कि पता नहीं वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे।
0: मैंने तो यहां तक सुना है कि गांव में भोज हो जाया करता था, एक तरीके से कि पता नहीं ये वापस अगर नहीं आए तो ये आखिरी भोज हुआ उनकी तरफ से।
4: उसका कारण ये था कि उस समय व्यवस्थाएं भी नहीं थी, कहीं ना कहीं अब कारों ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, विकास हुआ है, आने जाने की सुगमता हुई है, वो भी एक कारण है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा भारत देश आस्था प्रधान देश है, श्रद्धा प्रधान देश है, आराधना प्रधान देश है। हमारा देश संपूर्ण विश्व को बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, हमारा मार्ग क्या है। तो वही हमारे युवा वर्तमान में पूरे विश्व को बता रहे हैं कि युवाओं को ही भगवान की आराधना करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आरजे प्रतीक भरद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी कुछ समय पहले तक हम बात कर रहे थे कि हमारा जो युवा है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जेन ज़ी जो है उसे आध्यात्म से या फिर पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एकदम से आज अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि हम कुछ समय से देख रहे हैं कि भजन क्लबिंग हो रही है, बड़ी तादाद में जो युवा है भजन क्लबिंग में जा रहे हैं पूजा पाठ करने। जो मैंने आपको बताया कि 39 लाख का जो आंकड़ा है चार धाम में, वो बुजुर्गों का आंकड़ा नहीं है, उसमें 51% लगभग 50-51% जो है उसमें युवा भागीदारी अपनी निभा रहे हैं।
5: डेफिनेटली, बिल्कुल श्वेता जी, राधे राधे आपको, महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और ये आप, सबसे पहले तो मैं गुड न्यूज टुडे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इन विषयों पर चर्चा कर रहा है। और डेफिनेटली जैसे आपने बोला भजन जैमिंग, भजन क्लबिंग, तो हम खुद भी भजन जैमिंग क्लबिंग इसका एक हिस्सा है। और एक भजन की जो लाइन है जो कहती है कि श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो वृंदावन को, काशी को, मथुरा को कहीं ना कहीं लोगों ने जोड़ दिया है, या हमारे आसपास की जो बोलचाल में आ जाता है कि अरे तुम्हें अभी क्यों जा रहे हो, बुढ़ापे में जाना। लेकिन जैसे कि महाराज जी ने कहा कि ध्रुव जी ने भी बाल्यकाल से प्रभु को भजना शुरू किया, सेम वैसे प्रहलाद जी ने भी बाल्यकाल से करना शुरू करा, हमारे स्वयं आराध्य ठाकुर जी ने भी अपनी सारी लीलाएं बाल्यकाल से ही दिखाई हैं। और कहीं ना कहीं आज भी अगर आप देखेंगे तो जब माता पिता अपने बच्चों को, क्योंकि जून जुलाई का सीजन चल रहा है, जब जून में वेकेशन की बात होती है और जब माता पिता अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं ऐसी जगहों पे, मथुरा वृंदावन काशी या यात्राओं पे जाते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इनरूट होती है सारी चीजें। और आज का जो सोशल मीडिया, इसका बहुत बड़ा योगदान जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यमों से हम लोग चाहे कथावाचक हों, चाहे आचार्य संत हों, रसिक संत हों, हम उनकी जीवन शैली को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कितनी फालतू की चीजों में इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, कितने अलग अलग तरीकों के नशों में या अलग अलग बातों में, अलग अलग शौकों में अपने आप को हम ढूंढ रहे थे, पूरी दुनिया में इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन ये वही हो गया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी ना भाई। तो मुझे लगता है श्वेता जी, सोशल मीडिया को भी इसका इम्पैक्ट जाता है और कहीं ना कहीं आप जैसे अच्छी आचरण वाले लोग, अच्छा कॉन्टेंट को प्रचार और प्रसारित करने वाली मीडिया, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा योगदान जाता है। मैं थोड़े दिनों पहले किसी से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बोला कि क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों को सबको अपनी विशलिस्ट को टिक करना होता है, इसलिए लोग भक्ति भाव में जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं अच्छी बात है, अगर विशलिस्ट को टिक करने के लिए भी अगर हमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो रहे हैं, केदारनाथ जी की यात्रा जा रहे हैं, हम ठाकुर बिहारी जी राधारमण लाल को पा पा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या ही हमें लगता है सोशल मीडिया का आज के समय में बेनिफिट होगा।
0: बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा है। ऐसे ही कई अनुभूति, कई एक्सपीरियंसेस मुझे भी हुए हैं इस तरह के, जितने भी स्पिरिचुअल टूरिज्म कह लीजिए, कि हम तो अपने काम से गए थे लेकिन जो लोग हमें मिले हैं उनकी भी इसी तरह की भावना रही है। पवन जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, यूं तो ना जाने आपने कितने ही ट्रैवल और टूर प्लान्स बनाए होंगे लोगों के, लेकिन इन दिनों क्या आप ऐसा देख रहे हैं या आपको भी ऐसा लग रहा है कि एकाएक हम देख पा रहे हैं जितने भी हमारे देश में धार्मिक स्थल है, तो धार्मिक पर्यटन एकदम से बढ़ता जा रहा है, लोग धार्मिक जो अलग अलग क्षेत्र है वहां के पैकेजेस बनवा रहे हैं? पवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पवन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन महन जी, यहां पर आपसे ही समझते हुए, बद्रीनाथ धाम इस बार ही जब कपाट वहां पर खुले थे और मेरा वहां जाना हुआ सौभाग्य से, तो वहां एक परिवार मुझे मिला और उस परिवार में बहुत लोग थे। परिवार में जितने लोग होते हैं, माता पिता, खुद पति पत्नी अपने, उनके बच्चे, तमाम लोग थे। उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि ये आप पहली बार आए हैं, तो उनका कहना था कि हम हर बार कोशिश करते हैं यहां पर आने की, और आप ये समझ लीजिए कि घर में वेकेशन यानी छुट्टी की अगर बात होती है कि हम छुट्टी होने वाली है या छुट्टी हम ले रहे हैं तो कहां जाएंगे, तो किसी ना किसी जो हमारे तीर्थ स्थल है वहां का नाम लिया जाता है और हम सब परिवार वहां जाते हैं। ये सुनकर मैं तो अचंभित रह गई।
4: देखिए क्या है, हमारा देश, हमारे देश की जनता धर्म प्राण जनता है, निश्चय ही ये सब लोग धर्म की तरफ पहले से ही आकर्षित रहे हैं। लेकिन जो बीच में एक माहौल बनाया गया था, जो वामपंथियों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, जो उस समय का माहौल था, उससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं अभी जो माहौल सरकारों के द्वारा भी बनाया गया, शासन के द्वारा भी बनाया गया है, और जो मूल रूप से जो कथावाचक अभी जो कथाएं हो रही हैं, मैं कहूंगा कि इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो जगह जगह जाकर के हम लोग कथा कहते हैं, और चाहे धाम की वृंदावन की महिमा हो, राधारमण जी की महिमा हो, राधा वल्लभ जी की महिमा हो, वृंदावन की महिमा हो, या अयोध्या श्री राम की महिमा हो, सरयू जी की महिमा हो, यमुना जी की महिमा हो, ये जो हम लोग जगह जगह जाकर के जनता को बताते हैं, उससे कहीं ना कहीं आस्था जगती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, हमारे देश की जनता पहले से ही धर्म प्राण है, उनको भटकाया गया था, अब सही मार्ग में जनता आ रही है, और इसके लिए निश्चय ही भारत की जनता और भारत के युवा बंदनी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर दर्शन करने तो लोग जाते हैं, लेकिन दर्शन करने में जो सावधानियां रखनी चाहिए वो बहुत आवश्यक है। हम गुटखा खा करके और वृंदावन जा रहे हैं, जिस ब्रज रज की इतनी महिमा है कि जा रज को शिव ब्रह्मादिक ललचत सौरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, व्यास जी कहते हैं। ऐसे ब्रजरज में कोई गुटखा खा करके जा करके थूक है, तो उसको दर्शन करने से कितना पुण्य मिलेगा, तीर्थ यात्रा से कितना पुण्य मिलेगा, ये समझने की बात है। कोई बीड़ी पी करके पीछे कोई श्रद्धालु भक्त, भगवान का परम भक्त संत जो है अपना नाम जप करते हुए आ रहा है, और कोई आगे आगे कोई व्यक्ति बीड़ी पी करके धुआं उड़ा दे, हम भुक्त भोगी इस मामले के, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो वो उस समय जो पीड़ा होती है वो असह्य नहीं होती। तो जो तीर्थ यात्रा जाए तो वहां किसी तीर्थ यात्री को या तीर्थवासी को कहीं किसी को ठेस ना पहुंचे, उसे समस्या ना हो, उसका अपमान ना हो, तिरस्कार ना हो, तीर्थ की भूमि का तिरस्कार ना हो, वहां के पर्यावरण का नुकसान ना हो, इन चीजों पर विशेष युवाओं को, मैं
0: बिल्कुल
4: बुजुर्गों की तो ठीक है बेचारे जैसे जा ही रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी युवाओं की है, युवाओं को ये बातें समझना चाहिए। कम से कम जब तीर्थ यात्रा जाते हैं तो वहां इन चीजों से बचे।
0: बिल्कुल, और तीर्थ यात्रा तो विशेष करके, लेकिन हमारे देश में भी इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, साफ सफाई का विशेष करके, क्योंकि जब आप विदेश जाते हैं तो आप उतने ही कल्चर्ड हो जाते हैं, और वो देखा भी गया है और कई बार ये बात भी सामने आई है। प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, चूंकि कई लोगों से आपका इंट्रैक्शन होता होगा, आपकी बातचीत होती होगी, उसमें युवा वर्ग विशेष करके, चूंकि आज हम जिक्र ही उन्हीं का कर रहे हैं, जेन ज़ी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें आपको क्या लगता है कि ये जो एकाएक शिफ्ट हम देख रहे हैं या फिर ये जो हम बदलाव देख रहे हैं, इस बदलाव के पीछे की वजह आपको क्या लगता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या इंसान इतना परेशान है कि वो सुकून की तलाश में धर्म की ओर लौट रहा है, अगर ये कहूं तो गलत होगा?
5: ये बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जंजीज को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बिस्कोट किया गया है, बट बिकॉज आई एम अ मिलेनियल, बट मैं जिनके सामने परफॉर्म करता हूँ या मैं जहां पर भी जो मेरे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, स्पिरिचुअल कंटेंट को या हम ठाकुर जी की भक्ति से रिलेटेड जो भी बातें बताते हैं, गीता जी से रिलेटेड जो भी चीजें बताते हैं, मेजरली उसको जेंजी कनेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं जेंजी की एक फितरत जो हमने देखी है कि वो दे आर वेरी क्लियर, अगर उनको चाहे वो एक नौकरी हो, चाहे वो पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी एक जगह हो, पहले तो उनको बांधना बहुत मुश्किल है, वो विचरण करने में बहुत ज्यादा अपना बिलीव रखते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें एक बार किसी चीज पे ट्रस्ट हो गया, जैसे राधारमन लाल का मंदिर हमारे वृंदावन में, या बिहारी जी हैं या राधा वल्लभ लाल जी हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितना युवा ऐसा है रात में संतों का मतलब दर्शन करने के लिए या फिर राधारमन जी में कीर्तन संकीर्तन करने के लिए, वो आगे से आगे बढ़कर के ना सिर्फ हिस्सा ले रहा है बल्कि नाम जप कर रहा है। वो आप देखेंगे, आप वृंदावन के अंदर जैसे ही आप पैर रखते हैं या आप काशी जाते हैं या फिर आप अयोध्या जी जाते हैं, आप बस चरण रखते हैं और वहां पे देखते हैं चारों तरफ युवा आ रहा है, और युवा अपने दिल की सोच रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव लाने की सोच रहा है। और महाराज जी ने भी जैसे बताई जो बात कही कि सावधानियां बरतने वाली बात है, एक तरफ हम कहते हैं कि पबिंग का कल्चर, क्लबिंग का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तादाद में ऐसे युवा हैं जिन्होंने प्याज लहसुन भी खाना छोड़ दिया है। ये बदलाव नहीं तो ये क्या है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको प्याज लहसुन छोड़ने के पीछे का जो साइंस है, जो लॉजिक बिहाइंड तमस है, वो भी उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, तो वो इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं। और एक चीज हम आपको और बताएं,
0: अच्छा मुझे ऐसा लगता है, प्रतीक आपको बीच में रोकना चाहूंगी, चूंकि आपने जेंजी की बात की और आप उन्हीं को खास करके आप उनके बीच परफॉर्म भी करते हैं जो आपने कहा, आप ये बताइए कि अपनी परफॉर्मेंस में खास करके आपके जो भजन होते हैं वो किस तरह के भजन होते हैं कि आज की युवा जो है उसको बहुत पसंद करती है, अगर आप हमें कुछ दो चार पंक्तियां को सुना पाए।
5: देखिए मैं बिल्कुल सुना पाऊंगा आपको, और हमारे जो भजन होते हैं ज्यादातर तो कवित्व शैली पे होते हैं, और खास तौर से युवाओं के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है या फिर हॉर्न बॉक्स है, ड्रम्स हैं, हम उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं। और एक कवित्व है जो मैंने राधारमन जी पे लिखा था, जो वो काफी वायरल भी सोशल मीडिया पे हुआ, तो आपने मुझे मंच दिया है और बोलने का मौका दिया है, तो मैं चाहूंगा कि राधारमन लाल की हाजिरी यहाँ पर भी लगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
5: कि चंचल छपल नैने राधा के रमण के हैं, चंचल छपल नैने राधा के रमण के हैं, ठाड़ा बाकी अदा से दुनिया घुमाता है। राधारमन लाल छोटे से ठाकुर जो शालीग्राम से स्वयंभू प्रकट हुए, ठाड़ा बाकी अदा से दुनिया घुमाता है, दतुइया दिखाए कभी मुंह को फुलाए कभी, दतुइया दिखाए कभी मुंह को फुलाए कभी, कुलिया का प्रेमी भैया भरे भरे खाता है। और छोटो सोए ठाकुर है नयन के मारे तीर, छोटो सोए ठाकुर है नयन के मारे तीर, लंगोटी लपेटे कभी सिंगार डराता है। गोपाल भट्ट स्वामी जी पे कृपा भई रमन मिले, छोटो सो ये ठाकुर भैया बड़ा ही नचाता है, छोटो सो ये ठाकुर भैया बड़ा ही नचाता है। बोले राधा रमन लाल की
0: जय। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित तौर पर जब आप अपने पूरे बैंड के साथ इसको परफॉर्म करते होंगे तो एक अलग ही समा वहां पर बंद जाता होगा, वो भी कभी आपसे हम सुनना चाहेंगे। पंडित राजकुमार शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें इस चर्चा में हम शामिल करते हैं। राजकुमार शास्त्री जी, ये चर्चा हमारी जो शुरू हुई है, आज हम बात कर रहे हैं विशेष करके जेन जी का झुकाव, जो युवा हमारी है वो किस तरह से धर्म की तरफ जो है वो झुकती हुई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये हम लगाव या झुकाव देख रहे हैं, और आरजे प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी उन्होंने जैसा बताया, आपको नहीं लगता है कि आज की जो युवा है वो बहुत ही लॉजिकल है? उनको अगर आप तर्क देंगे तो वो समझेंगे, और समझते हैं तो फिर वो पूरी श्रद्धा से विश्वास भी करते हैं उस पर, और यही बड़ी वजह है कि आजकल के जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर आप उन्हें कह लीजिए या आप उनको टीचर कह लीजिए, शिक्षक कह लीजिए, कि वो बताते अपनी बात इस तरह से है युवाओं को कि एकदम उन्हें समझ में आता है और वो पूरी तरह से श्रद्धा से उसको फॉलो करते हैं।
6: देखिए श्वेता, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने जो कार्यक्रम किया है ये इस संबंध डायरेक्टरों से है, क्योंकि संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और संस्कार हमें कहाँ से हैं, संस्कार हमें समाज से हैं, माता पिता से मिलता है और संस्कार हमें, और सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हर मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों के निर्माण कार्य में सहयोग करते हैं, और जिन मंदिरों की स्थिति खराब है, जैसे राम मंदिर की बात करें या काशी विश्वनाथ की बात करें, तो जो देश का
0: बिल्कुल महन जी, आप इस पर क्या कहेंगे?
4: सही जो पंडित जी कह रहे हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। यथा राजा तथा प्रजा,
0: बिल्कुल
4: ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। जो राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा के ऊपर निश्चय उसका प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से मठ मंदिरों में जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ जी में जाकर समाधि लगाना हो, चाहे राम जन्मभूमि में जाकर के ध्वजारोहण करना हो या प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना हो, चाहे मथुरा आदि जाना हो, चाहे दक्षिण के साउथ के सभी मंदिरों में जा जा करके पूजा करना हो, और वो स्वयं नित्य प्रति जिस प्रकार से अपनी आराधना साधना में संलग्न रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पूरी प्रजा में जरूर जा रहा है। हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तीर्थ है,
0: बिल्कुल
4: तीर्थ जो है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो महात्मा हैं, साधु हैं, तो निश्चय ही उसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व पर, पूरे भारत पर पड़ता है, पूरी जनता पर पड़ता है, और उससे जनता दौड़ दौड़ करके धार्मिक स्थलों पर जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी जैसे महापुरुष का भी बहुत बड़ा योगदान है, श्री बागेश्वर वाले महाराज जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। कोई हमसे एक बार कहीं सोशल मीडिया में कह रहा था, ऐसे चर्चा हो रही थी कि ये बाबा लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैंने कहा भाई तुमने क्या किया बाबा लोगों के जैसा, ये बाबा लोग जो प्रेमानंद जी महाराज, बागेश्वर वाले महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे महापुरुषों ने लाखों लोगों की मदिरा छुड़वा दी, लाखों लोगों की, और युवाओं की, वृद्धों की नहीं, लाखों युवा जो भटक रहे थे उनको ऐसे मोड़ा कि उन्होंने शराब छोड़ दिया, अभी भैया कह रहे थे प्याज लहसुन तक छोड़ दिया। ऐसे कितने लोग मेरे संपर्क में हैं जो मुझसे कहते हैं आकर के, ऐसे लोग जो समझाए नहीं जा सकते थे, जो आकंठ माने प्रातः काल होते ही कहो कुल्ला, वो जो शराब सी करते थे, ऐसे लोग बागेश्वर सरकार की बात सुन करके वो नशा छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सुन करके प्रवचनों को लोग नाम जप में लग गए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। क्योंकि एक बात है, अभी जो भैया कह रहे थे हमारे यहाँ प्रत्येक चीज साइंटिफिक है, अभी आप कह रही थी कि उनको लॉजिकली समझाना चाहिए, तो जब लॉजिकली समझाने की बात यह है कि हमारा कोई भी सनातन धर्म का कार बिना लॉजिक के कोई है ही नहीं है, बिना
0: सभी साइंटिफिक है, सभी लॉजिकल
4: सब कार साइंटिफिक है। जैसे अब आजकल योग को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा, अभी योग दिवस में पूरे विश्व ने, माने यहाँ तक कि जो कहते थे कि ये काफिरों का काम है, ये सब आपके चैनल के हिसाब से नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं स्वीकार करते थे वो लोग भी अभी कौन मौलाना जो है बरेली के कहाँ के, वो भी योग करते हुए नजर आए।
0: पूरा विश्व कर रहा है
4: तो क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो साइंटिफिक है, उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए यदि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारे फेफड़े सही रहेंगे, लीवर सही रहेगा, किडनी सही रहेंगी, हमारे घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, सारी चीजें ठीक रहेंगी, तो लोग योग को स्वीकार कर रहे हैं। और योग में जो सबसे पहला कार्य है वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें सबसे पहले खान पान पर जोर दिया जाता है, तो खान पान के प्रति भी पवित्र अपने आप होते चले गए लोग। और जब खान पान पवित्र हो गया तो चित्त वृत्ति शुद्ध होगी। आपने सुना होगा लोग कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, आपने सुना होगा। तो लोगों का खान पान पवित्र होने पर चित्त वृत्ति पवित्र हो गई, और चित्त वृत्ति पवित्र होते ही तीर्थों में धामों में महाराज भजन पूजन में लोग
0: बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी आपने बहुत सही बात कही। प्रतीक आप ये बताइए कि अभी जो महंत जी कह रहे हैं, जो उनसे चर्चा चल रही है कि भाई जैसा आप खाते हैं वैसा ही आपकी आपका चित्त होता है, आपका मन होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बीच में दौर आया था जब कुछ ज्यादा ही लोग रिबेलियस हो गए थे, कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। आप धर्म की बात कर रहे थे, अब सनातन की बात अगर करने तो सनातन कल परसों का तो है नहीं, सनातन तो आदि है, प्राचीन है, अनंत है, उसका तो कहां से शुरुआत उसकी हुई है वो कह पाना मुश्किल है। ऐसे में अचानक से जो आप ये अब देख रहे हैं, अभी भी कोई फोर्स नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं पर जाकर बोलते होंगे कि मेरे मुझसे भजन सुन लीजिए या मेरा भजन सुन लीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए। अपने आप ये झुंड आ रहा है, ये हुजूम आ रहा है और ईश्वर की साधना में लीन होना चाहता है, मगन होना चाहता है और हर तरह की चिंता परेशानी उस समय के लिए वो भूल जाना चाहता है युवा।
5: बिल्कुल सही कह रही है। और देखिए युवाओं के लिए अगर बात करें तो खासतौर से युवा वर्ग और जिस जेंजी या हम मिले

0: बात करें तो खास तौर से युवा वर्ग और जिस जेंजी या हम मिलेनियल जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे युवा जो 16-17 साल की उम्र से लेकर के 27-28 साल की उम्र, इनके लिए क्या होता है, ये युवा ज्यादातर आश्रित होता है अगर आप देखेंगे तो अपनी पॉकेट मनी पे, या फिर अगर थोड़ा बहुत वो कमा लेते हैं पिताजी से ले लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल वेकेशन जो है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली भी है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉस्ट फ्रेंडली होना भी युवाओं के लिए बहुत ज्यादा एक इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। अगर आप वृंदावन धाम की बात करें तो मुझे नहीं लगता है वृंदावन धाम में, अगर आप यदि किसी आश्रम में रुकते हैं तो बहुत सारे आश्रम तो निःशुल्क चल रहे हैं, इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे आश्रम भी हैं जहां पे आपको धर्मशालों में 100-150 रुपए में एक अच्छा कमरा मिल जाता है, आप बिलीव करिए इस बात पे। उसके साथ में वृंदावन में जब आप जाते हैं तो आपको हर जगह प्रसादी मिल रही है, जिस प्रसादी को आप पा रहे हैं, संतों द्वारा बनाई गई प्रसादी आप पा रहे हैं, आपका मन, आपका जो कहीं ना कहीं आपका तन, ये सब कुछ, मनोसुखा तनोसुखा सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट फ्रेंडली भी, और लोगों को ये लग रहा है कि भाई वर्ल्ड टूर नहीं करना है। अब मैं ऐसे ऐसे युवाओं से जुड़ा हुआ हूं जो कहते हैं कि मुझे पूरे विश्व के जितने शिव मंदिर हैं उनके दर्शन करने, कितने ऐसे युवा हैं जो कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने, कितने ऐसे युवा हैं जिन्होंने वृंदावन की सेवा प्रणाली को अपने घर में ला करके अपना घर ही वृंदावन बना लिया। अब ऐसे में बहुत सारे हमारे ऐसे महाराज जी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी का मान जी ने जिक्र किया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मलुकपीठ वाले महाराज जी का जिक्र करूं, तो जिस तरीके से वो गौ पालन को उन्होंने जीवन की शैली से जोड़ दिया है, कहीं ना कहीं आज युवा चाहते हैं कि भाई हमारे घरों में इतनी व्यवस्था हो जाए कि हम गौ पालन कर पाए। या फिर दशांश निकालना, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी अच्छी अच्छी जो हैबिट हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंचाना। और देखिए मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं तो मुझे मालूम है, ये बात तो सही है, मुख्यमंत्री जी का संत होना और संत का मुख्यमंत्री होना, इसका एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है जो कहीं ना कहीं युवाओं को अंदर से ये लग रहा है कि हाँ हम कहीं पर भी चले जाएं और कहीं पर भी दर्शन करें, जो आनंद मिल रहा है ना वो तो केदारनाथ की ट्रैकिंग में मिल रहा है, वो हमको नहीं मिल रहा है थम्स की किनारे बैठकर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आचार्य। शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हालांकि थोड़ा विलंब हुआ है इस कार्यक्रम में आपको जुड़ने में, लेकिन आपसे हम चर्चा करेंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे अचानक से युवाओं का जो ये रुझान हम देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं अचानक से इन श्रद्धालुओं का, केदारनाथ बद्रीनाथ जो कि इतनी दुर्गम पहाड़ियां हैं वहां पर वो जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये आपसे हम जानेंगे। लेकिन यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

गुड न्यूज टुडे पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आस्था ट्रैकिंग और जिस तरह से युवाओं का बढ़ता जोश और बढ़ता हुजूम हम देख रहे हैं धार्मिक यात्राओं को लेकर, उसको हम जानने की और समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि हमारे साथ महंत जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितने तमाम हमारे मेहमान हैं उनको हम बता दें कि आरजे प्रतीक भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रेडियो जॉकी भी है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी है, और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ महंत सीताराम दास जी भी बने हुए हैं। शैलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। शैलेश जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे आपसे, हम जानना चाह रहे थे कि

0: ये जो अचानक से हमने देखा है, क्योंकि बीच में उस दौर की भी हमने बात की कि आप जितना भी युवाओं को, किसी को भी उस एक खास युवा वर्ग को जब आप कहते थे, समझाते थे धर्म को लेकर के, कोई सुनने को तैयार नहीं था, एकदम से रिबेलियस उनका वो रूप, वो अवतार हमें देखने को मिला था। लेकिन ये जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में, अभी भी चारधाम की यात्रा का हमने जिक्र किया था, लगभग 51% युवाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी है। दुर्गम रास्ते, दुर्गम परिस्थितियां, लेकिन उसके बावजूद जोश में कोई कमी नहीं और बहुत कम उम्र के लोग वहां जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं?
1: धन्यवाद। जय श्री राम। श्वेता जी, सबसे सुखद बात यह है कि आज का युवा वर्ग जो है वह सनातन की ओर पूरी तरह से जुड़ चुका है। उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि जब से हमारे भारत में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों की उन्होंने यात्रा की, यात्रा करने के बाद कहीं ना कहीं एक आइकॉन के रूप में देश का प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके बाद 2017 से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने। इन दो देश के राजनेताओं ने जिस प्रकार से सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम किया, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अयोध्या राम मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल कॉरिडोर हो, और इन सबको मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया, इन सबको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया। और साथ ही साथ श्वेता जी, आपने देखा कि जब कोरोना काल आया 2020 से कोरोना शुरू हुआ, तो कोरोना काल में लोगों के पास घर से बाहर निकलने का कोई समय नहीं हुआ, सब लोग घर में रहे, और घर में रहने के बाद लोगों को मृत्यु भय बार बार दिखता था, पूरे लोग परिवार एक साथ रहते थे, और उस समय रामायण, महाभारत और अलग अलग तरह के जो सनातन धर्म के धारावाहिक वगैरह दिखाए गए, धर्म से जुड़ा हुआ, उससे युवा लोग आकर्षित हुआ, उस पर समय दिया, और इसके बाद धीरे धीरे आपने देखा सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया के माध्यम से युवा वर्ग धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गया। और लोगों को यह भी लगता है, कुछ युवा वर्ग इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ युवा वर्ग अपने मंदिर के बाहर जाकर के सेल्फी कवर कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, उससे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, और कुछ लोग आस्था, तो इस प्रकार से आस्था, धर्म, सोशल मीडिया, सोर्स ऑफ इनकम,
0: ये तमाम चीजें मिला करके, बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रही है इस चीज को। आपने बिल्कुल सही कहा। मान जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब आप किसी इस तरह के धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जिसको स्पिरिचुअल टूरिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, जब आप इस तरह की किसी यात्रा पर निकलते हैं, तो आप सिर्फ जाकर, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं कहूंगी कि मुझे ऐसा व्यतीत होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब आप जाते हैं तो सिर्फ जाकर प्रभु के दर्शन करना, साक्षात उनके दर्शन करना, सिर्फ इतना मात्र ही नहीं रहता है आपका, मतलब कहीं ना कहीं आपकी खुद की खोज होती है जब आप जाते हैं, तो वो आत्म खोज होती है, खुद को जानने की कोशिश होती है, क्योंकि ये वो समय होता है जब आपके इर्द गिर्द आसपास और कोई नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं और ईश्वर वो तत्व होता है।
2: निश्चय ही ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब कहीं भी जाते हैं तो अपने आत्मसंतुष्टि के लिए जाते हैं, और आत्मसंतुष्टि तभी मिलेगी जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे और अपने को जानेंगे, हम कौन हैं और हमारा कौन है, अहमता और ममता जिसको कहते हैं, कि मैं कौन हूँ, अहम और मेरा कौन है। तो ठाकुर जी के चरणों में जाकर के ये ज्ञान होता है कि मेरे तो श्री कृष्ण ही हैं और मैं श्री कृष्ण का ही हूँ। ये सारा संसार जो आपाधापी में भगे डोल रहे थे, ये सब संसार केवल बस कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, और होटल में ठहरते हैं जैसे ऐसे है, बाकी एक दिन तो जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे, ठाकुर जी के पास ही जाना है, उनकी सेवा में ही जाना है। तो निश्चय जैसे, अच्छा जैसे बिहारी जी जाते हैं चूंकि बिहारी जी आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, हमारे वृंदावन के जो सात ठाकुर हैं वो ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है, ये विशेष बात बताएं, बिहारी जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं, वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने उन्हें भजन के द्वारा, अपने साधन के द्वारा उनको प्रकट किया, अपने आप प्रकट हुए निधिवन राज में। ऐसे राधा वल्लभ लाल जी स्वयं अपने आप प्रकट हुए हैं, राधा रमण जी शालिग्राम शिला से स्वतः प्रकट हुए हैं, ऐसे गोविंद देव जी, श्याम सुंदर जी, मदन मोहन जी, ये जो ठाकुर अभी कुछ ठाकुर जो बाहर चले गए, जैसे गोविंद देव जी जयपुर चले गए, श्रीनाथ जी श्रीनाथ द्वारा चले गए, श्री जुगल किशोर जी पन्ना चले गए, लेकिन ये सब ठाकुर जो है हमारे वृंदावन के, ये प्रत्यक्ष हैं। तो जब प्रत्यक्ष भगवान के सामने विचार करिए, पूरा संसार एक ही बात चाहता है कि हमें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, और वृंदावन जाकर के बिहारी जी के सामने खड़े हुए और प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हो जाए, तो वहां सामने जाने के बाद में फिर निश्चय ही जीव अपने आप को भी पहचान जाता है और भगवान को भी पहचान जाता है। तो निश्चय ही

0: मनमानी क्या बोले यमुना यमदूतन तारत है भवतारत है श्री राधिकरानी। निश्चय ही ठाकुर जी के सामने जाकर के अपना उद्धार पक्का है, अपने आप को पहचानना और भगवान को जानना पक्का है, यही जीवन का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य यही है।
1: बिल्कुल प्रतीक, मुझे लग रहा है कि देखिए आप भी एक अलग ढंग से, लेकिन आप भी भजन करते हैं, गाते हैं, और महंत जी ने भी जो अभी स्टूडियो में सुनाया, मुझे लगता है कि ये माहौल इतना पवित्र, इतना भक्तिमय हो गया कि इसके बाद कुछ कहना, मुझे लगता है कि शब्द जो है वो कम पड़ेंगे कुछ कहने के। लेकिन वाकई इस तरह के भजन को सुन करके, इस तरह के जगहों में जा करके जहां पर सनातन की खूबसूरती को हम देखते हैं इस तरीके से, आपको नहीं लगता है कि हमारा चित्त एकदम से वहां पर शांत हो जाता है और उसके बाद जितनी भी तरह की लालसा है वो सब खत्म हो जाती है, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए?
2: डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि जो बात आपने बोली है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा एक तथ्य है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे इस तरीके की सभाओं में जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिस चीज का कहीं आनंद आता है वो ये आता है कि हम स्वयं स्वयं से मुलाकात कर पाते हैं। महाराज जी ने इतनी प्यारी बात बोली वृंदावन की, और गीता जी में भी छठे अध्याय का जो 16वां श्लोक है कि कौन कौन लोग जो हैं वो ठाकुर जी को भजते हैं, या व्यक्ति किस स्थिति में ईश्वर की तरफ जाता है, तो अगर हम जेंसीज या जो भी हैं हमारे, हम उनकी तरफ थोड़ा सा भी अगर रुख करें तो गीता जी में जो चैट जीपीटी नहीं बताता है वो हमको, जो चैट जीपीटी ने नहीं बताया वो हमको गीता जी ने बताया हुआ है कि चार स्थितियों में हम ईश्वर के प्रति अपना रुख करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो नोर्जना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो, कि ठाकुर जी ने बोला है कि चार तरह के लोग मुझे भजते हैं। पहला दुखी, यदि आप दुख में होते हैं तो आप भगवान की तरफ अपना रुख करते हैं। दूसरा जिज्ञासु, यदि मन में आपको कुछ जानना है कि ईश्वर कौन है, जो महक आ रही है कस्तूरी की ये कहां से आ रही है। और तीसरा अर्थ की इच्छा रखने वाले, अर्थ जीवन का भी अर्थ हो सकता है और अर्थ जिसको हम रुपया दौलत कहते हैं वो भी हो सकता है। और अंत में कहा जाता है ज्ञानी, जिसको ज्ञान चाहिए होता है, जिसको गुरु की शरण में जाना होता है। तो ये चार तरह के लोग जो है वो ठाकुर जी को पूछते हैं, और अगले ही श्लोक में ठाकुर जी ने भी बोला है कि जो ज्ञानी भक्त होता है या जो ज्ञान की इच्छा लेकर के मेरे पास में आता है, ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर आलोकित करना चाहता है, वो मेरा परम प्रिय है। तो मुझे लगता है श्वेता जी आज की जो चर्चा है ना वो यही है कि ज्ञान जिसे चाहिए, जिसको जिज्ञासा है, वो ठाकुर जी को लभ जाता है।
1: और मैं ये भी कहना चाहूंगी, आजकल जिस तरह से दुनिया समाज में बदलाव हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होने लगी है, पढ़ाई में भी देखिए एक्सपीरियंस बेस्ड पढ़ाई होने लगी है, अब किताब से रट्टा मारकर पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल्स अलग अलग खुल रहे हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड आपको पढ़ाते हैं, जो हमारी युवा है पीढ़ी उनके लिए अलग अलग ऐसे एडवेंचर के प्रोग्राम्स बन रहे हैं जहां वो एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, जाकर नेचर को खुद से जाकर महसूस करते हैं करीब से। ये वो युवा है जो महसूस करना चाहता है, खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता है, और जब यही युवा इन धार्मिक स्थलों पर जाता है, महसूस करता है, उस चमत्कार को खुद में देखता है अपने आसपास होते हुए, तो उसका मन भी मानता है, उसका चित्त भी शांत होता है। और यही सबसे बड़ी वजह हमें लगती है कि इतनी बड़ी तादाद में जो आज का युवा धार्मिक पर्यटन करने को निकला है उसके पीछे केवल और केवल यही वजह है, यही सनातन है, यही सत्य है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
4: somebody save me,
3: to timeless favorites,
4: and life is like a song,
3: and new discoveries,
4: so much more than a history. Wake up!
3: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: गुवाहाटी के विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन है। ऐसे में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। परंपरा के मुताबिक मंदिर के कपाट 26 जून को खोले जाएंगे। इस बीच मंदिर परिसर में साधु संतों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। देश दुनिया से आए लाखों साधक मंदिर परिसर में देवी कामाख्या की साधना में जुटे हुए हैं।

0: माँ कामाख्या मंदिर में शक्ति उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। परंपरा के मुताबिक मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। आज महायोग का दूसरा दिन है। माँ गर्भगृह में विश्राम कर रही हैं। बाहर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, क्योंकि ये वक्त माँ की प्रतीक्षा का है, साधना का है, माँ की आराधना का है, उनकी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने की है।
1: और हम भी अपना भजन कर रहे हैं, माता रानी हमें भी शक्ति और भक्ति दे कि हम जगत का कल्याण कर सकें। जितने भी यहाँ पे साधु संत आए वो संसार के लिए भजन करते हैं, भजन के लिए तप करते हैं और सभी भक्तों के लिए सुख शांति मांगते हैं।
2: ये जो माँ कामाख्या का पीठ है, 51 पीठों में से शक्ति पीठ ये प्रधान पीठ कहा गया है। अम्बुबासी मेले में साधु संत सभी आ रखे हैं, सभी अपनी साधना में लगे हुए हैं, माँ कामाख्या का भजन कर रहे हैं। माँ महामाई ऐसी सभी पे कृपा बनाए रखे, ऐसे भगवती सभी मेहर बनाए रखे। जय माँ कामाख्या।
3: कहने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है ना कि माँ की गोदी में आके बैठे हैं, और जो यहाँ पे आके जो माँ की ऊर्जा मिलती है उसकी तो बात ही निराली है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है।
0: आदि शक्ति के 51 शक्ति पीठों में सबसे प्रमुख माँ कामाख्या के दरबार में अम्बुबाची मेला लगा है, और इस मेले का हिस्सा बनने के लिए कोई दिल्ली से आया है तो कोई मुंबई से, कोई हरिद्वार से तो कोई गुजरात से। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु माँ की आराधना में लीन हैं। कोई नाम जप कर रहा है तो कोई ध्यान में मग्न है, कोई माँ की भक्ति में लीन भाव विभोर है। यहाँ अम्बुबाची मेले में देश विदेश से पहुँचे लाखों साधु संत और श्रद्धालु मंदिर परिसर में डेरा डाले हुए हैं, साधना और भजन कर रहे हैं, माँ के धाम में बैठकर उनकी पवित्र ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं।
4: मतलब जैसे उसकी तो महिमा परंपार है, हर बार बुलाती है, हर बार बहुत प्रेम से बुलाती है, तो माता की कृपा है। बिल्कुल,
5: बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है माँ के इस मेले में आना और इस समय में आना, और उनका आप देख रहे हैं विभिन्न पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से साधु संत आए हैं, और एक अलग तरह की ऊर्जा मैं कहूँगा माँ कामाख्या के प्रमाइसेज में आपको मिलती है। और माई सब पर दया रखें और सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, देश को समृद्धि दें।
0: वैसे तो माँ के इस पवित्र धाम में सालों भर रौनक रहती है, लेकिन अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। मानो सारी सकारात्मक शक्तियाँ मंदिर के वातावरण को अद्भुत एहसास से भर देती है, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं।
6: जो फील हो रहा है, जो एनर्जी है, उसे कोई शब्द से महसूस सिर्फ करने में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। हम जितना भी बोले वो उतना कम है, कि जो फीलिंग है, जो उनकी वाइब्रेशन है, जो वाइब फील होती है, जो लोगों की वाइब्स है, क्योंकि सब पॉजिटिव लोग हैं और एनर्जी भी पॉजिटिव है, तो जो फील हो रहा है ना वो जितने भी कहा जाए उतना कम है, वो फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं पहली बार आया हूँ, मेरी एज होगी 40 की, लेकिन 40 साल में जो पहली बार आया हूँ, जितने भी धाम घूम चुका हूँ, जो फील यहाँ पे हुआ वो मुझे अभी तक कहीं पे नहीं हुआ।
7: हर साल आते हैं, पर अम्बुबाची में दूसरी बार आ रहे हैं, पर हर साल कामाख्या तो अभी तो पीक एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन गॉडेस की। सो फॉर साधना, साधक के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे होना, फॉर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। इस समय मंदिर बंद होना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो मंत्र जाप है वो इसी समय सिद्ध होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा सब जगह है इस समय। सो जरूरी नहीं है कि गर्भगृह में दर्शन हो, शी इज एवरीवेयर राइट नाउ।
0: इनमें से कई ऐसे हैं जो कई बार माता के धाम आ चुके हैं, लेकिन अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ आना उनके लिए खास है। असल में अम्बुबाची मेला देवी कामाख्या की वार्षिक रजस्वला यानी मासिक धर्म और सृजन शक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसके प्रतीक के तौर पर माँ कामाख्या गर्भगृह में 3 दिनों तक एकांत में विश्राम करती हैं। मान्यता है कि इस दौरान माँ की आराधना से साधकों को सिद्धि मिलती है, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं और साधुओं के साथ साथ अलग अलग अखाड़ों से जुड़े नागा सन्यासी और आध्यात्मिक संत भी माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। 26 जून को पूरे विधि विधान से धाम के कपाट खुलेंगे और माँ के दर्शन से साधकों की आस पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब बात एक अनूठी पाठशाला की। गुजरात में अगरिया परिवार के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार ने एक अनूठी पहल की है। सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके तहत गुजरात के रेगिस्तानी और नमक उत्पादन वाले इलाकों में रहने वाले अगरिया परिवार के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए 28 बसों को चलते फिरते स्कूल में बदल दिया गया है।
9: शिक्षा से कोई वंचित न रह जाए, उसकी रोशनी हर किसी तक पहुंचे, इसी मकसद से गुजरात सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, खासकर उन बच्चों के लिए जो दूर दराज या नमक उत्पादन करने वाले इलाकों में रहते हैं। इस पहल के तहत करीब 28 बसों को चलते फिरते स्कूल में बदल दिया गया है और अलग अलग इलाकों में जाकर ये बसें उन बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं जिनकी पहुँच स्कूल तक नहीं है।
10: तो गुजरात एसटी द्वारा खास तौर पे एक बहुत ही इनोवेटिव प्रयास के माध्यम से दूर दराज के नीमक के जो अगरिया क्षेत्र है और उनके परिवार के बच्चों के लिए वेस्ट यानी के जो बसेस बंद हालत में पड़ी थी, भंगार परिस्थितियों में थी, वो वेस्ट में से बेस्ट के कंसेप्ट को हाथ में लेके 28 बसेस को रणशाला में बदल के आज ये बसेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुपुर्द की गई है।
9: गुजरात में स्कूल ऑन व्हील्स बसों को रणशाला नाम दिया गया है। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बसों में स्कूल वाली फील देने के लिए कड़ी मेहनत की गई है। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है। इन बसों में 3.8 KVA का ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगा है जो 48 घंटे तक चल सकता है। इसके अलावा इनमें स्मार्ट टीवी, डिजिटल लर्निंग टूल्स, पोर्टेबल स्टडी टेबल, लाइब्रेरी और पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था है। पढ़ाई के साथ साथ इनमें बच्चों के खेलने के लिए लूडो, स्लाइड, झूले और आउटडोर खेल के सामान भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकें।
10: बस को देखोगे तो पूरी तरह से स्कूल क्लासेस में जैसी व्यवस्था होती है, ऐसी ही हर बस में 20 बच्चे को बैठ के वो पढ़ पाए ऐसी व्यवस्था की गई है। पीने के पानी की बात हो, हाथ धोने की बात हो, चप्पल रखने की बात हो, या फिर बच्चों को एंटरटेन कर पाए ऐसे स्विंगिंग हो, या फिर अलग अलग खेलने की व्यवस्था की बात हो, बस के चारों ओर फसाट में खेलते खेलते पढ़ने की व्यवस्था भी की गई है।
9: समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के संयुक्त प्रयासों से शुरू की गई इस परियोजना का मकसद नमक उत्पादन वाले क्षेत्रों में मौसमी पलायन करने वाले परिवारों के 6 से 14 साल के बच्चों के सामने आने वाली शैक्षिक चुनौतियों को दूर करने की एक कोशिश है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: क्या निर्जला एकादशी पर कोई विशेष दान किया जाता है? निर्जला एकादशी का जल से क्या संबंध है और निर्जला एकादशी का गायत्री जयंती से क्या संबंध है? क्या है निर्जला एकादशी की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या निर्जला एकादशी पर कोई विशेष दान किया जाता है? निर्जला एकादशी का जल से क्या संबंध है और निर्जला एकादशी का गायत्री जयंती से क्या संबंध है? क्या है निर्जला एकादशी की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price, void in Florida.
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
4: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
3: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
5: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
8: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। सबसे पहले हम अपने पीसीआर में बोलेंगे कि एक बार लॉन्ग फ्रेम दिखाए, इसलिए क्योंकि हम बात आज करने वाले हैं मानसून की, और उससे पहले समोसा आ चुका है। शगुफ्ता,
9: बारिश भी आ चुकी है लेकिन बैकग्राउंड में।
8: मुंबई में तो रियल बारिश आई है।
9: हाँ,
8: आपने भी खबर पढ़ी होगी सुबह से।
10: मुंबई में बारिश आ गई और यहाँ पर बारिश जैसा माहौल स्टूडियो में बन चुका है। मतलब और क्या चाहिए आपको, चाय है, समोसा है, बस मानसून का इंतजार है।
8: गर्मा गर्म चाय है और आपने पी है, अदरक है इसमें?
10: बिल्कुल अदरक भी है, बहुत अच्छी बनी है।
8: तो अमेजिंग चाय, गर्मा गर्म समोसा। अब आपको खबर बता दे कितनी अच्छी खबर है। देखिए, मॉनसून जो है वो मुंबई तो पहुंच चुकी है, दस्तक दे दिया है मॉनसून ने, महाराष्ट्र कवर कर चुकी है और आपको बता दे अब मध्य प्रदेश भी पहुंच गया है। सुस्ती टूटने के बाद कैसे सुपर स्पीड से बढ़ रहा है मॉनसून आगे, बताएंगे आपको।
9: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात वैभव की भी करेंगे, जिन्हें गूगल पर सर्च करने के मामले में पाकिस्तानियों ने हदी कर डाली है। यहां वैभव के बारे में मालूमात हासिल करने की होड़ सी लगी है, तो क्यों पाकिस्तान में इतना सर्च किए जा रहे हैं वैभव, इसे भी समझेंगे।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, बात फीफा वर्ल्ड कप की भी करेंगे, जिसका क्रेज मेक्सिको में लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी नजर आ रहा है। यहाँ लोग अपने पालतू जानवरों को फुटबॉल की जर्सी पहना रहे हैं, तो क्या है ये खबर, ये भी आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
8: शिरडी के साई दरबार में सालाना 2.5 करोड़ श्रद्धालु टेकते हैं मत्था। ट्रस्ट के पास 550 किलो सोना हर साल आता है, 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए लगाए गए शेड। 3 जुलाई को शुरू होगी पवित्र यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 12.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब भी पहुंचे करीब 1.5 लाख श्रद्धालु। शिमला में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बदले मौसम का सैलानी ले रहे आनंद। शिमला में आज दिन भर रुक रुक कर होती रहेगी बरसात।
9: दिल्ली में मानसून से पहले जल भराव, बाढ़ से निपटने की तैयारी। बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ कैंप भी किए जा रहे तैयार। बार्सिलोना के तटों पर धूमधाम से मना सैन जुआन उत्सव। हजारों की संख्या में लोगों ने किया शानदार आतिशबाजी का दीदार। स्पेन में पुरानी मान्यताओं से जुड़ा है यह त्यौहार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
9: तो ये रिपोर्ट पे आने से पहले हम एक दूसरे को बोल रहे थे कि गाना गा दो, क्योंकि मौसम अच्छा यहाँ नहीं है, एटलीस्ट बॉम्बे में तो है, तो फील तो ले लो।
8: तो कौन सा गाना आपके दिमाग में आ रहा है?
10: शगुफ्ता गा दीजिए आज।
9: तो एक ही आता है,
10: मौसम मस्ताना चल गया।
9: नहीं, मौसम के अलावा इस गाने के अलावा भी बहुत सारे गाने हैं ना। अगर मूड अच्छा है होता है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, पीछे बारिश हो रही है, सामने व्यू बहुत अच्छा है, तो कौन सा गाना सुनते हुए आप जाएंगी वो बता दीजिए। प्ले लिस्ट में कौन सा है?
8: आपके कहने के बाद मैंने आंख बंद कर ली और फील कर रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ, गाना आप बजा दीजिए।
9: रिम रिम झिम गिरे साहब,
8: हाँ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा गाना है।
10: सोरे मेघा मेघा गाती थे आप।
9: हाँ, गाएंगे तो नहीं,
8: दिल ये बेचैन वे रस्ते पे नैन वे, है ना, उसमें पूरी बारिश हो रही है, ऐश्वर्या एंड वो वाओ। आगे खबर बताएं,
9: अपनी प्लेलिस्ट आपसे शेयर कर देंगे इंस्टाग्राम जहाँ आप जाएंगे। लेकिन देखिए अब मौसम ऐसा है कुछ जगहों पर, तो तस्वीरें ऐसे ही निकल कर सामने आ रही हैं जो हमारे बैकग्राउंड में है। रिमझिम और झमाझम मानसूनी फुहारों की तस्वीरें हैं, जिसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि मानसून सुपर स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। देश में मानसून ने अब स्पीड पकड़ ली है। इसकी तस्दीक सबसे पहले तो मुंबई में बारिश की फुहारें ही करती हुई नजर आ रही है।
8: देखिए, मुंबई में मानसून ने जोरदार एंट्री लेते हुए सड़कों को पानी से लबालब कर दिया, जिसके बाद उम्मीद अब ये बढ़ चली है कि मानसून अब फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए कई राज्यों को राहत देगा। ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी लोगों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है।
10: बिल्कुल, देखिए अनुमान है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून जो है वो दिल्ली पहुंच सकता है, यानी दिल्ली NCR वालों को राहत की सांस जरूर मिल सकती है। मुंबई में बारिश की दस्तक, पूरे देश में मानसून की रफ्तार और दिल्ली में बारिश का इंतजार। देखिए ये तीनों तस्वीरें ही मानसून के बदलते मिजाज को साफ तौर पर यहां पर बयां कर रही है।
8: तो देखिए मुंबई में तो मानसून ने आखिरकार अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा दी है। आसमान से बरसती बूंदों ने मायानगरी को तपती गर्मी और चिपचिपी उमस से बड़ी राहत दी है। सुबह से ही शहर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि तेज बारिश की वजह से कुछ निचले इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस बार BMC पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है।
9: बिल्कुल अच्छी बात है कि BMC अलर्ट मोड में है, नहीं होगी तो बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ का। अब पानी की निकासी के लिए देखिए पहले से किए गए इंतजामों का असर भी साफ दिखाई दे रहा है, ताकि मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली ट्रैफिक व्यवस्था या फिर लोकल ट्रेन्स में जिसमें ज्यादा लोग सफर करते हैं उस पर ज्यादा असर ना पड़े। सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां, छतरियों के नीचे सफर करते लोग और बारिश का आनंद लेते मुंबईकर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि मानसून अब पूरी तरह शहर पर मेहरबान हो गया है। और मौसम विभाग की मानी जाए तो आने वाले दिनों में बारिश का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।

0: बादल बरसे और जमकर बरसे। इन रिमझिम फुहारों ने मुंबई को सूरज की तपिश से राहत की सौगात दे दी। पूरी माया नगरी को मानसून के बादलों का बेसब्री से इंतजार था। दो दिन पहले हुई प्री मानसून की बारिश ने तो मानसून की आहट पहले ही दे दी थी, लेकिन गर्मी से राहत की असल किस्त तो मुंबई वालों को आज ही मिली। मुंबई में कल शाम से ही मौसम बदला बदला सा नजर आने लगा। आसमान में बादलों की आवाजाही मुंबई करों के चेहरों पर मुस्कान ला रही थी। सुबह होते ही मुंबई और आसपास के तमाम इलाकों में बारिश की शुरुआत हो गई। आसमान से राहत की ये बारिश शुरू होते ही मुंबई के लोग चिलचिलाती गर्मी और उमस को मानो भूल गए। आम तौर पर मुंबई में मानसून 10 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून के बादलों के आने में करीब 13 दिनों की देरी हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही इस देरी का अनुमान जता दिया था। प्री मानसून की बारिश आने वाली राहत की सौगात के सबूत दो दिन पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मुंबई को राहत का असल एहसास तो मानसून की पहली बारिश के बाद ही हुआ।
1: पिछले कई दिनों से हो रही बारिश का इंतजार आखिरकार मुंबई करों के लिए खत्म हुआ। 22 तारीख को मुंबई में मॉनसून अराइवल का अंदेशा जो है मौसम विभाग की तरफ से दिया गया। हालांकि 23 तारीख को भारी बारिश हुई, कई जगहों पर पानी भी भरा, लेकिन क्योंकि मुंबई में जिन तालाबों से पानी आता है उन तालाबों में पानी कम होता जा रहा था। एक एक दिन पानी के बिना, बारिश के बिना वाटर कट्स में गुजर रहा था। हालांकि वाटर कट्स अभी कम नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन मुंबई की जो लेक्स है वो डेफिसिट में चल रही है। यानी कि अच्छी खासी बरसात इस पूरे सीजन होगी, तब जाकर पूरे साल के लिए मुंबई करों को आसपास के इलाके में पानी, जो पीने का पानी है, नहाने का पानी है, वो मिल पाएगा। इसलिए बारिश का आना बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, वो आ चुकी है। और गर्मी जो इतने महीनों से परेशान कर रही थी, अब वो भी बारिश की वजह से थोड़ी कम होती दिख रही है।
0: हालांकि लगातार बारिश से कुछ जगहों पर जलभराव की समस्या आ गई। मुंबई के लो लाइन वाले कुछ इलाकों में तो पानी भी जमा हो गया। इस वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। हालांकि जलभराव वाले क्षेत्रों में बीएमसी ने पानी निकालने का पूरा इंतजाम जल्दी से कर लिया। तेज बारिश का कुछ असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन्स पर भी पड़ा।
2: इस वक्त आप देखेंगे मुंबई से गोरेगांव जोगेश्वरी जाने वाली ट्रैफिक है वो चल रही है धीमी गति से। सामने की तरफ मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रैफिक में भी आप कह सकते हैं कि रुकावट नहीं है, लेकिन धीमी गति से वो चल रही है। और लो लाइंग एरिया की जहां पर हम बात करें तो वहां पर पानी भरने की समस्या हुई थी। अब बीएमसी ने पंप और बाकी चीजें लगा रखी है, कुछ समय रहते ये जैसे बारिश का प्रेशर या स्पीड कम होती है तो पंपिंग स्टेशन के जरिए उन पानी को जो आप कह सकते हैं खाली करा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देर से आई है मानसून, लेकिन आप कह सकते हैं कि क्योंकि आज वर्किंग डे है, सुबह से बारिश थी, तो कहीं ना कहीं चलकर या बसों में ट्रैफिक और इस तरह की चीजें करके लोगों को दफ्तर पहुंचना पड़ रहा है।
0: फिलहाल मौसम विभाग ने मुंबई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश लगातार जारी रह सकती है। इससे गर्मी और उमस से तो राहत मिलेगी, लेकिन प्रशासन ने जलभराव वाले इलाकों में एहतियात बरतने की हिदायत भी दी है। मुंबई से मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, मॉनसून को लेकर अब बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि 28 जून के आसपास मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। कई मौसमी सिस्टम और पैटर्न इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश के बड़े हिस्सों में मॉनसून की प्रगति तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। और अगर मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान सही साबित होते हैं तो सबसे पहले इसका जो फायदा है गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिल सकता है। इन राज्यों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ सकता है और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
4: बिल्कुल, आपको बता दें यानी कि जिन इलाकों में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं वहां जल्द राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए इंतजार अभी थोड़ा और लंबा रहने वाला है। राजधानी दिल्ली में मॉनसून की एंट्री इतनी जल्दी होती नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल अनुमान है कि मॉनसून जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंच सकता है, यानी गर्मी और उमस से राहत के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है।
0: बारिश के बाद मुंबई के इन बादलों से भले ही लाख शिकायतें हों, लेकिन मन भर आए मॉनसून ने मुंबई को वो राहत दी है जिसका इंतजार यहाँ हर कोई कर रहा था। बड़े लंबे इंतजार के बाद अरब सागर से उठा बादलों का कारवा पूरी तरह से मुंबई पहुंच चुका है। बारिश की बूंदों ने यहाँ उमस से बेहाल जिंदगी को राहत दी है। हालांकि बारिश ने मुंबई की रफ्तार धीमी जरूर कर दी है, लेकिन अब खबर है कि मॉनसून की रफ्तार तेज होने वाली है। इस बार जिस अंदाज में और जिस रफ्तार से मॉनसून आगे बढ़ा है, उससे तो यही संदेश गया है कि बादलों का सफर इस बार आसान नहीं। केरल से आगे बढ़ते बढ़ते मॉनसून की चाल अचानक थम गई। कई राज्यों को बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मॉनसून के बादल मुंबई पहुंचे, मानो इन बादलों में नई जान आ गई। मुंबई के बाद मॉनसून का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश है, जहां बालाघाट छिंदवाड़ा के रास्ते इसकी एंट्री की तैयारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून मध्य प्रदेश की सरजमी पर कदम रख सकता है। उधर छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून ने देर से सही लेकिन दमदार एंट्री की है। दंतेवाड़ा के रास्ते पहुंचा मॉनसून कुछ ही घंटों में रायपुर समेत ज्यादातर इलाकों को भिगो चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मॉनसून गुजरात के तमाम हिस्सों, मध्य प्रदेश और फिर झारखंड, बिहार की ओर अपना रुख करेगा। इसके बाद मॉनसून का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ होगा, यानी बादलों का सफर अब पश्चिम से मध्य भारत और फिर पूर्व और उत्तर भारत की ओर सफर तय करेगा। इसके 28 जून तक उत्तर प्रदेश में दस्तक देने की उम्मीद है। बात दिल्ली की करें तो यहाँ के लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आमतौर पर 27 जून तक राजधानी पहुँचने वाला मॉनसून इस बार लेट चल रहा है। अनुमान है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इसकी दस्तक दिल्ली में हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली में प्री मॉनसून की गतिविधियाँ राहत की वजह बनी हुई है। दिल्ली में आंधी बारिश के साथ अभी उमस है, लेकिन मुंबई में मॉनसून की परफेक्ट पिक्चर देखने के बाद दिल्ली वालों ने भी अब उम्मीदों की खिड़की खोल ली है।
5: हालांकि दिल्ली में मॉनसून कब तक पहुंचेगा इसको लेकर कोई तारीख तो जारी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से बीते दिन यानी सोमवार को शाम में आंधी आई, तेज गति से हवाएं चली और कुछ थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें दिखाई पड़ी, इसके बाद दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली थी, वैसी ही राहत आज भी मिल सकती है। तेज हवाएं यहाँ चल सकती हैं, धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर में चल सकती है और बहुत हल्की सी बारिश भी होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे ज़्यादा फायदा मौसम के लिहाज से नहीं होने वाला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोमवार को थोड़ी बारिश और तेज़ हवाओं के बाद भी आज मंगलवार की सुबह सूर्य देवता पूरी तरीके से चमक रहे हैं, गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। ये जो छोटे छोटे रेन के स्पेल दिल्ली एनसीआर में आपको देखने को मिल रहे हैं, तेज हवाएं उसके बाद थोड़ी सी बारिश, ये अभी 1-2 दिन और चलेंगे, लेकिन मानसून पूरी तरह से दिल्ली पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला है। हालांकि मुंबई के लिए राहत की बात यही कि आने वाले 1-2 दिनों में उन्हें 1-3 दिन के लिए मानसून की भारी बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिल पाएगी। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
6: मॉनसून की रफ्तार अब देखिए आगे कैसे रहने वाली है और मुंबई के बाद उसके तेवर कैसे रहने वाले हैं, इस पर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, बात की हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने।
7: मॉनसून ने जो है पिछले 24 घंटे की प्रगति की बात करें तो मॉनसून ने आज जो है पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया है और इसके बाद दक्षिणी गुजरात का कुछ हिस्सा भी आज कवर किया है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी मानसून ने दस्तक दी है। इसके अलावा कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, कुछ हिस्सा झारखंड का आज कवर हुआ है और आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना ही है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। और अगर हम ओवरऑल वर्षा की बात करें तो अभी सामान्य से 42% वर्षा सामान्य से कम दर्ज की गई है और सबसे ज़्यादा कम वर्षा जो है सामान्य दीर्घावधि जो औसत है उससे कम जो है मध्य भारत का क्षेत्र वहाँ पर दर्ज की गई, उसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा वर्षा अगर हम देखें तो मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली है और मुंबई में खासतौर से 3 स्टेशन हैं जिसमें कोलाबा, सांताक्रूज और राम मंदिर, यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा शहर में, मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा वर्षा 247.8 कोलाबा में मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। आने वाले 24 घंटे में मुंबई में हैवी टू वेरी रेनफॉल के स्पेल बने रहने की संभावना है। हालांकि कल से वहां पर कमी आएगी, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा रहेगी और 27 तारीख को दोबारा से एक मॉडरेट से हैवी रेनफॉल की स्तर की वर्षा मुंबई और उसके आसपास के सब अर्बन क्षेत्रों में देखने की जाने की संभावना है।
4: तो मुंबई में बारिश आई नहीं कि देखिए छातों का बाजार जो है यहाँ पर पूरी तरह से गुलजार हो गया है। इस बार साधारण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक छातों के सबसे ज्यादा यहाँ पर मांग देखने को मिल रही है।
3: बिल्कुल, यानी बटन दबाते ही खुलने और बंद होने वाले छाते लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं, उन्हें काफी पसंद आ रहे हैं। तो टॉर्च वाला छाता भी लोगों को खूब भा रहा है। देखिए छातों की प्राइस रेंज की अगर बात करें तो 100 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक इसका प्राइस रेंज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन भी इन सामानों की खरीदारी कर रहे हैं।
8: मुंबई के कांदीवली के एक शॉप में इस समय मौजूद हूं, वहां के ये ओनर हैं। कैसे हैं आप?
9: बस बढ़िया सर, आप
8: बताइए। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि मस्त अच्छा खासा चल रहा है।
9: सर छाते तो बारिश के पहले ही लोग लेना चालू हो जाते हैं। बॉम्बे में ऐसा है, बारिश होने से पहले लोग छाता लेना स्टार्ट कर लेते हैं।
8: अच्छा, मैं ज्यादा यहाँ वहाँ बात ना करते हुए ये मुझे बताइए कि इस वक्त क्या सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा छाता आपके?
9: बहुत कुछ ये है, हमारा स्टोर बेसिकली ना ट्रेंडिंग छातों के हिसाब से चलता है। हम रेगुलर छाते नहीं करते, ट्रेंडिंग पीसेज है और हमारे 100 रुपए से छाते चालू होते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला बहुत चल रहा है, ऑटोमेटिकली खुलता है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है,
8: बॉक्स में आता है।
9: बकायदा ऐसे बॉक्स में आता है, देखिए पूरी पैकिंग में आता है। और इसका यूज ना बहुत लोग करते हैं जो अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, या फिर थोड़े जो हमारे बड़े पेरेंट्स होते हैं उनको रेगुलरली अम्ब्रेला ओपन करने में काफी दिक्कत होती है, जो हमने देखा था। तो देखिए ये है, हमने खाली एक बटन दबाया एंड ये छाता ओपन हो गया एंड यही बटन से क्लोज हो गया। तो आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बच्चों का छाता है ये, काफी रेगुलरली चलता है। देखिए सर पे लगा के और बच्चे चल सकते हैं, उनको अपने हाथ में ना ये ऐसे लॉक करके हम सर पे रख सकते हैं, तो चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये वाला छाता है। फिर हमारे पास में एक बहुत यूनिक छाता है, लाइट वाला छाता बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम चलते चलते अंधेरा आता है तो अंधेरे में हमें ना हो पे, तो इसके लिए ये टॉर्च वाला छाता है। देखिए पीछे से लाइट चालू हुई और टॉर्च हो गया। ये 100 रुपए वाला छाता है, ओपन करके क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा कोई ये नहीं कि हम दूसरा, मैं कलर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आप अगर डिटेल देखेंगे तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा छाता है। कि लोग दूर दूर से आते हैं सर, बॉम्बे तो ठीक है, लोग पुणे से आ रहे हैं, लोनावला से आ रहे हैं।
8: लेडीज के लिए स्पेशली क्या है?
9: बैग वाला छाता देखिए, पर्स की तरह लेके चलो और आपका छाता हो गया।
8: थोड़ा निकालिए
9: छाता। यस यस यस, ये देखिए ना इसका गोल्ड फिनिश है, इसको हम ओपन करेंगे और अंदर से भी यूनिक है। मैं आपको एक दो और छाते भी बताऊंगा जो कि बॉम्बे की बारिश के लिए बने हुए हैं स्पेशली। ये देखिए अंदर से देखिए कितने अच्छे हैं, यहाँ से देखिए कितने अच्छे हैं। ये वाला तो हैंडल वाला छाता है, अब ये देखिए इसके अंदर स्प्रिंग कितना अच्छा है। अब मुंबई की बारिश आई और ये देखिए ऐसे करके उड़ गया। अब आप स्ट्रगल करेंगे करने के लिए, एक क्लिक कीजिए आपका छाता बंद हो गया।
8: मतलब इसे अपने हाथ से?
9: यस,
8: और आराम से आप भीगेंगे।
9: एंड 435 रुपीज का है, आप इजीली इसको ऐसे करके लॉक भी कर सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, बारिश होती है तो इधर गीला हो गया। ओके, मैं आपको चाहिए तो डेमो करके भी दिखा सकता हूँ। पानी यहाँ पे आ गया एंड इसके बाद में पानी सब अंदर चले गया।
8: अच्छा,
9: मतलब गीला नहीं रहेगा, पकड़ोगे तो सूखा रहेगा।
8: क्या बात है, शानदार एकदम।
9: करेक्ट,
8: मतलब मजा आ गया। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग, एक से बढ़कर एक क्वालिटी, एक से बढ़कर एक डिमांडिंग। छतरियों की बात करें या फिर किसी और चीज की, आज ये तो बात बिल्कुल अच्छी हो गई है कि भाई बारिश के आने के बाद कम से कम लोग अपने पसंद के छाते ले सकते हैं और बहुत ही सस्ते में ले सकते हैं, 100 रुपए से लेकर के सीधे
9: 3000 रुपए तक।
8: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जय कपूर, अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीजें समझाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष डी के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
6: देखिए देश में भले ही मानसून अभी कुछ राज्यों में पहुंचा नहीं, गर्मी झेल रहे राज्य मानसूनी फुहारों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये मौसमी साइकिल आपको हैरान भी कतई नहीं करता। लेकिन अगर बेतहाशा गर्मी यूरोपीय देशों में पड़ रही हो तो आप एक बारगी हैरान जरूर होंगे।
4: बिल्कुल, आपको बता दें तो यूरोपीय देशों में इन दिनों खूब गर्मी पड़ रही है, जहां हमारे देश में 45 या फिर उससे ज्यादा डिग्री वाले गर्मी में आप और हम परेशान हो जाते हैं, वहीं 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर में इंग्लैंड समेत कई और देशों में गर्मी ने क्या हालत बनाई हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं।
10: यूरोप में जो अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है, यहाँ धरती तप रही है, कई देश भीषण गर्मी झेल रहे हैं, इनमें इंग्लैंड के लंदन, स्पेन के मैड्रिड शहर भी भयंकर तपिश से जूझ रहे हैं। लंदन में इन दिनों चिलचिलाती गर्मी के बीच तापमान 30 से 40 डिग्री के बीच झूल रहा है। ऐसे में गर्मी की तपिश से बचने के भी तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। खासकर लंदन के बाजारों में तो पंखों की नई नई वैरायटीज की खरीदारी इन दिनों खूब हो रही है। यूरोप में जो अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है। यहाँ धरती तप रही है, कई देश भीषण गर्मी झेल रहे हैं। इनमें इंग्लैंड के लंदन, स्पेन के मैड्रिड शहर भी भयंकर तपिश से जूझ रहे हैं। लंदन में इन दिनों चिलचिलाती गर्मी के बीच तापमान 30 से 40 डिग्री के बीच झूल रहा है। ऐसे में गर्मी की तपिश से बचने के भी तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। खासकर लंदन के बाजारों में तो पंखों की नई नई वैरायटीज की खरीदारी इन दिनों खूब हो रही है।
11: Every time the weather spikes, of course, our sales spike in fans and cooling. So this week we're plus 50% off across our fans and cooling range, and they're literally flying off the shelves, no question.
10: इस सीजन पंखों और कूलिंग्स की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि बाजार में इनकी कई वैरायटीज तो आउट ऑफ स्टॉक ही हो गई। खास तौर से ग्राहकों के बीच हजारों की संख्या में बिक रहे हैंड हेल्ड पंखों की डिमांड तो कुछ ज्यादा ही है। फिलहाल तो गर्मी को लेकर मौसम विभाग की माने तो बीते मंगलवार को साउथ इंग्लैंड में टेम्परेचर 37 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जिसके अभी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो जून का 35.6 डिग्री सेल्सियस का राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो 1976 में दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अधिक नमी के कारण गर्मी का असर ज्यादा महसूस होगा। केवल इंग्लैंड ही नहीं, स्पेन और फ्रांस में भी हर साल पड़ने वाली औसत गर्मी से ज्यादा तापमान लोगों को हलकान कर दे रहा है। स्पेन में तो गर्मी इतनी प्रचंड है कि बीते दिनों पारा 40 डिग्री सेल्सियस को छूता नजर आया। राजधानी मैड्रिड में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्पेन की नेशनल वेदर एजेंसी ने उत्तरी बास्क क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट दिया है। यहाँ के तटीय शहर सैन सेबेस्टियन में तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान है, जो सामान्य वर्षों में इसी समय के औसत तापमान से लगभग दो गुना है। भीषण गर्मी ने स्पेन के पड़ोसी देश बेल्जियम, इटली और स्विट्जरलैंड को भी काफी प्रभावित किया हुआ है। बेल्जियम के मौसम विभाग ने भी यहां लंबे समय तक भीषण गर्मी रहने की चेतावनी दी है। वहीं इटली में 36 डिग्री तापमान से लोग जूझ रहे हैं, जिसके चलते 15 शहरों में रेड अलर्ट दिया गया है, तो स्विट्जरलैंड जैसे ठंडे देश में भी पारा 34 से 37 डिग्री के बीच बना हुआ है। सवाल है कि आखिर यूरोप की धरती ऐसी जानलेवा और रिकॉर्ड तोड़ तपिश क्यों झेल रही है। इसके पीछे दरअसल यूरोप के ऊपर पड़ रहा हीट डोम सिस्टम है। हीट डोम जो एक वायुमंडलीय सिस्टम है, इसके बनने के कारण उत्तरी अफ्रीका से गर्म हवा उत्तर की ओर खींचकर पश्चिमी और मध्य यूरोप में फंस गई है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिक इस रूठे मौसम की वजह ओमेगा को भी मानते हैं, जो एक स्थिर एटमॉस्फेरिक पैटर्न है। ओमेगा दरअसल ग्रीक वर्णमाला का 24वां और अंतिम अक्षर है। ओमेगा ब्लॉक तब बनता है जब वायुमंडल में एक विशेष मौसमी पैटर्न बनता है। इस पैटर्न के चलते उच्च दबाव वाला क्षेत्र निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के बीच ग्रीक अक्षर ओमेगा के आकार में फंस जाता है। इस वजह से हवा एक ही जगह पर ठहर जाती है और कई दिनों तक गर्मी महसूस होती रहती है। हालांकि माना गया है कि ओमेगा अक्षर की मौजूदगी

0: हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन यही ओमेगा यूरोप के लिए इस गर्मी आफत का सबब बना हुआ है। लिहाजा यूरोप के कई देश हीट वेव ओमेगा ब्लॉक की चपेट में हैं और इस जानलेवा और अप्रत्याशित गर्मी से बचने की जद्दोजहद में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, क्रिकेट की दुनिया में एक कहावत है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। साल 2026 फीफा वर्ल्ड कप में इस बात को साबित किया है 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। देखिए, कल पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। इस जीत में सबसे बड़ा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रहा, जिन्होंने 2 गोल करके अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
2: आपको बता दें, शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। खास बात यह रही कि इस दौरान रोनाल्डो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। वो दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 6 अलग-अलग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल किया है।
3: तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ये परफॉर्मेंस आखिर खास क्यों रहा, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा देते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ पुर्तगाल के कैप्टन नहीं बल्कि टीम की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। पहले मैच के बाद उनके प्रदर्शन को लेकर काफी सवाल उठे थे। ऐसे में माहौल में उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरे रोनाल्डो पर खुद को साबित करने का बहुत प्रेशर था, लेकिन उन्होंने 2 गोल दागकर ये दिखा दिया कि बड़े मैचों में आज भी उनका जवाब नहीं।
2: बिल्कुल, आपको बता दें, उज़्बेकिस्तान के खिलाफ किया गया गोल इतिहास में दर्ज हो गया। रोनाल्डो अब फुटबॉल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल किया है। वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, इसलिए लगातार 6 संस्करणों तक खेलना ही बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल, देखिए, रोनाल्डो ने पहली बार साल 2006 वर्ल्ड कप में गोल किया था। इसके बाद साल 2010, 2014, 2018 और 2022 में भी उन्होंने गोल दागे। अब साल 2026 में भी उनका नाम स्कोर शीट पर दर्ज हुआ, यानी करीब 20 साल के अंतराल में उन्होंने हर वर्ल्ड कप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।
3: बिल्कुल, देखिए, रोनाल्डो के नाम क्लब फुटबॉल में शायद ही कोई बड़ा रिकॉर्ड या ट्रॉफी बची हो। उन्होंने इंग्लैंड, स्पेन, इटली की लीग्स जीती हैं, कई बार चैंपियंस लीग का खिताब भी जीता। व्यक्तिगत और टीम उपलब्धियों की लंबी सूची भी उनके नाम है, इसीलिए उनके करियर की चर्चा हमेशा महानतम खिलाड़ियों में की जाती है।
2: बिल्कुल, इतनी उपलब्धियों के बावजूद एक ट्रॉफी ऐसी है जो कि अब तक रोनाल्डो के हाथ नहीं लगी है, और वो है फीफा वर्ल्ड कप। और यही वजह है कि हर विश्व कप उनके लिए खास होता है। फुटबॉल में विश्व कप को सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, और रोनाल्डो के शानदार करियर में यही सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश है।
1: बिल्कुल, देखिए, रोनाल्डो के 2 गोलों की बदौलत पुर्तगाल ने न सिर्फ महत्वपूर्ण जीत दर्ज की बल्कि नॉकआउट चरण की तरफ मजबूत कदम भी बढ़ा दिया है। विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में शुरुआती दौर की जीत टीम का आत्मविश्वास बढ़ाती है और अगले मुकाबलों का दबाव भी कम करती है।
4: वर्ल्ड कप में हर साल रिकॉर्ड बनते हैं और अगले ही दिन टूट जाते हैं। अभी कल ही लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड बनाया था, जिसको अब रोनाल्डो ने तोड़ दिया है। रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि 2006 से लेकर 2026 तक हर एडिशन में गोल करने में कामयाब हुए हैं। नंबर 2 पर अब कोर्स नाम आता है लियोनेल मेसी का, क्योंकि वो 2010 का एडिशन मिस कर गए थे, उनको वहां पर गोल नहीं मिला था। उम्र की अगर बात की जाए तो 41 साल की उम्र में इस वक्त रोनाल्डो खेल रहे हैं। अगर उनसे पहले अगर खिलाड़ी की बात की जाए तो कैमरून के रोजर मिला थे, जिन्होंने 94 का वर्ल्ड कप 42 साल की उम्र में खेला था। इसी रिएक्शन को कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया गया जब रोनाल्डो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे और वहां पर उन्हें बोला आई एम बैक, क्योंकि ये कोई बड़ी छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। लगातार हर साल हर एडिशन में गोल करना वो काबिल तारीफ है, और आई थिंक रोनाल्डो ही कर सकते थे।
2: टोरंटो में क्रोएशिया के फैंस ने जबरदस्त जश्न मनाया, डांस किया, गाने गाए और झंडे लहराए, क्योंकि उनकी टीम ने वर्ल्ड कप के ग्रुप एल मैच में पनामा को 1-0 से हराया। क्रोएशिया और पनामा टूर्नामेंट में पहले पॉइंट्स की तरफ तलाश में उतरे थे। उन्हें पता था कि हारने पर उन्हें जल्दी घर लौटना पड़ सकता है, क्योंकि इसी ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड और घाना का मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा था।
3: लेक ओंटारियो दोनों देशों के झंडों के रंगों से पटा था। मैच शुरू होने से पहले क्रोएशिया के फैंस ने वैली सॉन्ग मोजा डोमोविना को दिल को छू लेने वाला अंदाज में उसको गाया, जिससे एक रोमांचक मैच का माहौल बना और फैंस को टीम क्रोएशिया ने निराश नहीं किया। पनामा को पस कर क्रोएशिया ने फैंस के जश्न में जीत की मिठास खोल दी।
1: फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार सिर्फ लोगों के सिर ही चढ़कर नहीं बोल रहा है, बल्कि अब पालतू जानवर भी अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेक्सिको में कुत्ते से लेकर घोड़ों और यहाँ तक कि एक बतख तक को राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनाई जा रही है। वर्ल्ड कप के इस अनोखे जुनून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है।

ये फुटबॉल का फीवर है। हार जीत पर फैंस के चेहरों का रंग ही नहीं बदल रहा, बल्कि ये बेजुबान भी फीफा के रंग में रंग दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवर भी अपनी अपनी टीम को अपनी पोशाकों से चीयर कर रहे हैं। कुत्ते, बत्तखें और दूसरे पालतू जानवर का टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर आ जाना फुटबॉल के फीवर की सबसे दिलचस्प तस्वीर बन गया है। अब इनसे मिलिए, ये है मर्लिन, वो बत्तख जिसने मेक्सिको में वर्ल्ड कप के बाद अपनी एक नई पहचान कायम कर ली है।

0: फुटबॉल जर्सीज बिक रही हैं, मैचिंग टोपियों की भी डिमांड है। यही नहीं, लोग अपने पालतू जानवरों के लिए हेलमेट और चश्मे तक खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि कई डिजाइन तो हाथों हाथ खरीदे जा रहे हैं। बाजार में सबसे ज्यादा नजर आ रही एडीडॉग नाम की ये जर्सीज, मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड की तर्ज पर तैयार ये जर्सीज कम कीमत में उपलब्ध हैं और खरीदारों को बेहद पसंद भी आ रही हैं। मतलब फुटबॉल के इस मेगा उत्सव में इस वक्त एक से बढ़कर एक ट्रेंड चल पड़ा है। जो ट्रेंड लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है वो है ट्विनिंग, मतलब मालिक और उसका पालतू जानवर एक जैसे रंग या एक जैसी जर्सी पहने हुए है। फुटबॉल का जोश अब ऐसे तमाम परिवारों के लिए एक अलग अलग तरह का फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। सिर्फ बाजारों में ही नहीं, पार्क्स और सड़कों पर भी जर्सी पहने पालतू जानवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वो जादू है जिसे दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार चाय पर चर्चा में आपको दिखाएंगे क्यों पाकिस्तान में गूगल पर लोग कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को सर्च।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: शिरडी के साईं दरबार में सालाना 2.5 करोड़ श्रद्धालु टेकते हैं मत्था। ट्रस्ट के पास 550 किलो सोना हर साल आता है, 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए लगाए गए शेड। 3 जुलाई को शुरू होगी पवित्र यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 12.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब भी पहुंचे करीब 1.5 लाख श्रद्धालु। ICC की वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर के टॉप बल्लेबाज बने शुभमन गिल, विराट कोहली को छोड़ा पीछे। ईशान किशन ने लगाई 21वें स्थान की छलांग। बार्सिलोना के तटों पर धूमधाम से मना सैन जुआन उत्सव, हजारों की संख्या में लोगों ने किया शानदार आतिशबाजी का दीदार। स्पेन में पुरानी मान्यताओं से जुड़ा है ये उत्सव। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वो पहचान हासिल कर ली है जिसका सपना बड़े बड़े क्रिकेटर्स अक्सर देखते हैं। रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से दुनिया का ध्यान खींचने वाले वैभव 2025 में गूगल पर भारत के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शख्सियत बन गए हैं।
7: बिल्कुल, देखिए वैभव का जलवा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान में भी उनके नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी एज और IPL प्राइस जैसे कीवर्ड्स तेजी से गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कई ब्रेकआउट कैटेगरी में पहुंच चुके हैं।

0: क्रिकेट में कहते हैं असली स्टार वो है जिसकी धमक सरहदों को भी पार कर जाए। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान के गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में वैभव को लेकर केवल चर्चा ही नहीं है बल्कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी खूब है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेट सनसनी बन चुके हैं। पिछले 3 महीनों के गूगल ट्रेंड डेटा में पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने वैभव को जमकर सर्च किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, रिकॉर्ड, आईपीएल कीमत और मैचों से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान में तेजी से खोजी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त उछाल, और वैभव से जुड़े कई कीवर्ड्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस भारतीय किशोर बल्लेबाज के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। नजर हो भी क्यों ना, क्रिकेट के पंडित वैभव की आक्रामकता से हैरान हैं। उनके सबसे तेज अर्धशतक की चर्चा हो रही है, उनके बेखौफ अंदाज पर अचरज जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो मुश्ताक मोहम्मद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 1959 में उन्होंने महज 15 साल 124 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। अब लगभग उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने कारनामों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, जब बात विस्फोटक बल्लेबाजी की आती है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सबसे पहले शाहिद अफरीदी याद आते हैं। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज कई लोगों को युवा अफरीदी की याद दिला रहा है। जाहिर है वैभव ने अभी करियर शुरू ही किया है, लेकिन उनके नाम की गूंज पहले ही स्टेडियम की सीमा रेखा पार कर चुकी है। भारत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ती सर्चिंग बता रही है कि ये बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहा बल्कि उतनी ही तेजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वैभव को पाकिस्तान में क्यों सर्च किया जा रहा है, इसकी एक नहीं हजार वजह है, लेकिन जो वजह सबसे खास है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वैभव 15 साल के हैं और वो अब तक 7 देशों में शतक जड़ चुके हैं। तो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भारत में खेले गए मुकाबले में वैभव ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली।
2: 2025 में इंग्लैंड की धरती पर मेजबान टीम के खिलाफ वैभव ने 143 रनों की दमदार पारी खेली। विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन उनकी तकनीक और मानसिक मजबूती का सबूत भी बना।
3: और ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर बल्लेबाजी करना देखिए आसान नहीं माना जाता है, लेकिन पिछले साल वैभव ने 113 रन बनाकर सभी को प्रभावित किया।
1: आपको बता दें कि कतर में आयोजित मुकाबले में वैभव ने यूएई के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 144 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी की बदौलत टीम को मजबूत स्थिति मिली
2: और यूएई की धरती पर वैभव ने 171 रनों की विशाल पारी खेलकर अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। ये उनके करियर की सबसे प्रभावशाली जूनियर पारियों में से एक गिनी जाती है।
3: तेज और उछाल भरी दक्षिण अफ्रीकी पिचों पर वैभव ने 127 रन बनाकर अपनी क्लास दिखाई। मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई ये पारी उनके टैलेंट की सबसे बड़ी मिसाल बनी।
1: आपको बता दें कि जिम्बाब्वे में खेले गए मुकाबले में वैभव ने इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 175 रनों की यादगार पारी खेली। इस धमाकेदार प्रदर्शन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बनने की क्षमता रखते हैं।
2: भाई, इस मूवी के बारे में डेफिनेटली चर्चा करनी बनती है, चाय पर चर्चा भी करनी बनती है। मूवी का नाम है मैं वापस आऊंगा। इम्तियाज अली की ये बेहतरीन मूवी है, 12 जून को रिलीज हो चुकी है। और अगर देख ली है
1: आपने? देखी
2: नहीं है मैंने। मैंने देख ली है।
1: मतलब आपको लगता है कि थिएटर जाके देखना वर्थ है?
2: डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट, ये जरूर देखिए। मतलब मैं एक लाइन में बता दूंगी, पार्टीशन के ऊपर है, उस वक्त जो त्रासदियां हुई थी उसको दर्शाती हुई ये फिल्म है। सो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट।
3: मतलब वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, इस फिल्म की सफलता से सीखिए। मतलब पहले जब ये रिलीज हुई थी ना तो 1-2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई नहीं कर रही थी, और दूसरा रविवार जो है इसने 6.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, तो ये बताता है कि इफ यू आर मेकिंग गुड फिल्म्स तो पीपल विल वॉच इट।
4: मैंने तो बस पढ़ी है इसके बारे में जो चीजें, और वो पढ़ के मुझे एकदम से लग रहा है कि मैं जरूर जाऊं, क्योंकि एक लव स्टोरी इसमें दिखाई गई है और वो रियल लाइफ में दरअसल ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। और उसमें बस मैंने कहीं पे कटिंग देखी थी पेपर की, उसमें यह है कि शादी में जो जोड़ा उस समय उस लड़की ने पहना था वो कोटी, जिसको पंजाब में क्या कहते हैं,
2: पंजाबी में कोटी कहते हैं,
4: और वो जो बना होता है वो उस पर्टिकुलर उसको क्या बुनाई को क्या कहते हैं, वो जो आप लोग दुपट्टा वगैरह लेते हैं,
2: अच्छा फुलकारी,
4: फुलकारी तो फुलकारी का वो जैकेट है जो उस लड़की ने अपनी शादी में पहना था। और जो जिस लड़के की बात है जो शायद नसीरुद्दीन शाह बने हैं, उस समय उन्होंने जो पेटी जो ट्रंक वो अपने साथ लेकर के आए थे, तो वो ट्रंक भी आपको बता दें कि ये म्यूजियम में वो कोटी और ट्रंक आज भी रखा हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो ये देख कर तो मेरा मन कर रहा है कि जितनी जल्दी मौका मिले मैं जाऊंगी देखने।
2: मेरी तरफ से तो कल ही जाइए, लेकिन देखिए अगर आपने भी मूवी अभी तक मिस कर दी है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड watch this film, it's a must watch.

0: 12 जून को सिल्वर स्क्रीन पर उतरते ही पहले दिन 1,15,00,000 रुपए। रिलीज के पहले हफ्ते में आंकड़ा पहुंचा 12,25,00,000 रुपए और दूसरे वीकेंड यानी 10वें दिन कम होकर 5,75,00,000 का कारोबार। कुछ ऐसी ही हुई इम्तियाज अली की इस पीरियड रोमांटिक ड्रामा मैं वापस आऊंगा की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत, जो थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन अब फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का काफी फायदा मिल रहा है, जिससे कमाई में अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। खास तौर पर वीकडेज पर तो फिल्म की परफॉर्मेंस, उसका कमबैक तारीफ काबिल रहा। जहां आजकल भारी भरकम फिल्में बनाई जा रही हैं, फिल्म प्रमोशंस में भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही, ऐसे में इस लो बजट फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के ट्रेंड्स को चुनौती दी है, वो खुद में हैरान करने वाला है और किसी केस स्टडी से कम भी नहीं है। फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज के दौरान जहां 1,971 स्क्रीन्स पर थी, तो वहीं दूसरे हफ्ते में इसके शो की संख्या 2,631 तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ रुपए है। अगर ये फिल्म एक हफ्ते और ठीक ठाक रफ्तार से आगे बढ़ती है तो ये अपना बजट वसूल कर सकती है। हालांकि फायदे का सौदा बनने के लिए इसे करीब 100 करोड़ का कलेक्शन करना होगा, जो कि इस फिल्म के लिए फिलहाल तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वैसे जब से फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई, तब से उसे कॉकटेल 2, गवर्नर और भारत भाग्य विधाता समेत दूसरी कई रिलीज फिल्मों से भी टक्कर मिल रही थी। बावजूद इसके देर आए दुरुस्त आए वाली लाइन पर चलते हुए ही मैं वापस आऊंगा को दर्शक, सिलेब्स और क्रिटिक्स से भी अच्छा सपोर्ट मिला, जिन्होंने फिल्म के कलाकार नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ के काम को काफी सराहा। सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू पोस्ट किए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सिनेमा घरों में फिल्म देखने की अपील की। शायद यही वजह भी रही कि माउथ पब्लिसिटी के चलते ही फिल्म की कमाई पर पॉजिटिव असर पड़ा। सिग्नल की लेटेस्ट अपडेट बता रही है कि इस फिल्म ने मंगलवार यानी 23 जून को 3,10,00,000 रुपए की कमाई की, जो पिछले दिन यानी 22 जून की 2.5 करोड़ की कमाई से सीधा सीधा डबल है। किसी फिल्म के लिए हफ्ते के बीच में ऐसी बढ़ोतरी बहुत कम ही देखने को मिलती है। जाहिर है दूसरे हफ्ते में जबरदस्त रफ्तार दिखाने वाली मैं वापस आऊंगा का भारत में अब तक कुल नेट कारोबार 29.85 करोड़ रुपए हो गया है। यानी ओपनिंग वीकेंड में ढीली ढाली परफॉर्मेंस दिखाने वाली इस फिल्म ने वीकडेज में हौले हौले ही सही जबरदस्त कमबैक किया। फिलहाल तो दर्शकों के अच्छे रिस्पॉन्स और सोशल मीडिया पर चल रही तारीफों के ट्रेंड के बूते फायदा बटोरने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा के कारोबार में और बढ़ोतरी की ही उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 26 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बनी हुई है। इसी बीच फिल्म के प्रमोशन में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अक्षरा एक्टर अक्षय कुमार के साथ दिखाई दी, पैक्स के सामने दोनों ने खूब पोजेस दिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी फिल्म के प्रमोशन को लेकर ही है, लेकिन इसमें वेलकम टू द जंगल की स्टार कास्ट पहुंची नजर आ रही है। तो फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है।
2: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो सनसेट जिसे देखने दुनिया ग्रीस पहुंचती है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या निर्जला एकादशी पर कोई विशेष दान किया जाता है? निर्जला एकादशी का जल से क्या संबंध है और निर्जला एकादशी का गायत्री जयंती से क्या संबंध है? क्या है निर्जला एकादशी की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
5: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
6: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
5: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए
15: पंचायत वाले विधायक जी आपको याद है आई एम श्योर आप सबको कौन भूल सकता है इनको ये भूलने लायक नहीं है बहुत ही बेहतरीन काम किया है आपको भी जरूर याद होंगे विधायक जी क्या पंचायत का तो हर कैरेक्टर लोगों को बखूबी याद होगा लेकिन हम यहाँ बात विधायक जी की कर रहे हैं जिनकी ठेठ देहाती अंदाज में सब्जी खरीदते हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे खुद विधायक जी मतलब पंकज झा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट किया है और हम इस तस्वीर को आपके लिए डीकोड करने वाले हैं

0: खीरे टमाटर सब्जी के इस ढेर के बीच नजर आ रहे इस शख्स को तो आप भूले नहीं होंगे, भूल भी कैसे सकते हैं, आखिर ये पंचायत वाले विधायक जी हैं। हाँ, यहाँ पर इनका अंदाज थोड़ा देसी शुद्ध गांव वाला है तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन गौर से देखने पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। मशहूर ओटीटी सीरीज पंचायत के विधायक जी यानी पंकज झा ने खुद इस तस्वीर को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। इस तस्वीर में वो शॉर्ट्स, बनियान और गले में झोला लटकाए सड़क पर सब्जियां खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी में आम लोगों की तरह खीरा सब्जी छांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी का सादगी भरा अंदाज इंटरनेट पर वायरल है और लोगों का दिल जीत रहा है। पंकज झा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर कर कैप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि ये तस्वीर कहाँ और कब की है। वैसे इस तस्वीर को देखकर दो बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि पंकज झा गांव में फुर्सत के पल बिता रहे हैं और शायद सब्जी खरीदते देख आसपास खड़े लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं है। दूसरी ये कि शायद ये शूटिंग का हिस्सा है और विधायक जी पंचायत सीजन 5 की शूटिंग कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या विधायक की जाने के बाद इनके इतने बुरे दिन आ गए कि ऐसी हालत में सब्जी खरीदनी पड़ रही है। खैर, हकीकत जो भी हो, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने विधायक जी की इस तस्वीर को देखकर मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी है। एक यूजर ने लिखा, विधायक जी पंचायत के अगले सीजन में वोट जीतने के लिए एक मजबूत संगठन बनाने के लिए जमीनी स्तर से काम शुरू कर रहे हैं। तो किसी ने कहा, विधायक की जाने के बाद इनका हालत बहुत खराब चल रहा है। एक और यूजर ने फिरकी लेते हुए कहा, पूरे सीजन लौकी का ही प्रमोशन हुआ, अब होगी खीरा टमाटर की एंट्री। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, और इन सारी बातों का सार एक ही है कि यूजर्स को पंचायत के नए सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। सादगी, देसी कॉमेडी और दिल छू लेने वाली कहानी के दम पर इस पंचायत सीरीज ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजन 5 की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। मसलन गांव के चुनावों की गर्मी अब और तेज होने वाली है। सचिव जी और रिंकी के रिश्ते में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। वहीं प्रधान जी पर हुए हमले का रहस्य भी इस बार कहानी का बड़ा हिस्सा बन सकता है। जानकारी के मुताबिक पंचायत सीजन 5 की शूटिंग जोर शोर से चल रही है और इसके जुलाई या अगस्त तक पूरे होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। हमेशा की तरह इस बार भी सीजन में कुल 8 एपिसोड्स होने की बात सामने आ रही है। मतलब ये कि चंद महीनों का इंतजार और फिर फुलेरा गांव की पंचायत ओटीटी पर आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए फिर हाजिर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
4: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
3: Big 12 Radio.
5: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
3: and
5: down.
3: Talk sports.
6: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
3: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
1: टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर से दुनिया भर से आए सैलानियों से गुलजार है। यहाँ की सिनिक ब्यूटी आपको यकीनन बेहद प्रभावित करेगी। सेंटोरिनी का एक खूबसूरत और वायरल हो रहा सनसेट एक बार फिर से साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नजारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं।
9: सफेद रंग के घर, नीला समंदर और खूबसूरत सनसेट। ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए पर्यटकों से गुलजार है। शाम होते ही सैकड़ों लोग यहाँ का स्पेशल सनसेट को देखने के लिए जुट जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर पर्यटकों के बकेट लिस्ट में ये नजारा जरूर होता है।
10: माँ बेटी की जोड़ी के रूप में ये अनुभव हमारी बकेट लिस्ट में लंबे समय से शामिल था। इसे साथ मिलकर जीना हमारे लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला खास अनुभव रहा। यहाँ हर मिनट भरपूर आनंद भरा रहा।
9: सेंटोरिनी के पत्थरों से बनी संकरी गलियां, पहाड़ियों पर बने घर और एजियन सागर का अद्भुत दृश्य पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मंगलवार को तेज धूप और गर्मी के बावजूद यहां सैलानियों की संख्या ने सभी को दंग कर दिया। जानकारों का कहना है कि यूरोप में तापमान की दुश्वारियों के बावजूद सेंटोरिनी जैसे पर्यटन स्थल अपनी अनूठी प्राकृतिक खूबसूरती और यादगार अनुभवों की वजह से दुनिया भर के यात्रियों की पहली पसंद बने हुए हैं। समुद्र में धीरे धीरे समाता सूरज और सफेद घरों पर पड़ती सुनहरी रोशनी और कैमरों में कैद होते खूबसूरत पल। सेंटोरिनी का ये सनसेट एक बार फिर साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नजारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: देखिए चाय पर चर्चा में फिलहाल तो इतना ही। इतना आपसे जरूर कहूंगी, जहां जहां बारिश हो रही है, मौसम आ चुका है, बारिश का औसम मौसम का आप आनंद लें, और हमारे जैसे लोग जो दिल्ली NCR में है वो इंतजार करें। कल मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
11: पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: शिरडी के साई दरबार में सालाना 2.5 करोड़ श्रद्धालु टेकते हैं मत्था। ट्रस्ट के पास 550 किलो सोना हर साल आता है, 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए लगाए गए शेड। 3 जुलाई को शुरू होगी ये पवित्र यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 12.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब भी पहुंचे करीब 1.5 लाख श्रद्धालु। आईसीसी के वनडे रैंकिंग में 2 नंबर के टॉप बल्लेबाज बने शुभमन गिल, विराट कोहली को छोड़ा पीछे। ईशान किशन ने लगाई 21 स्थान की छलांग। बार्सिलोना के तटों पर धूमधाम से मना सैन जुआन उत्सव, हजारों की संख्या में लोगों ने किया शानदार आतिशबाजी का दीदार। स्पेन में पुरानी मान्यताओं से जुड़ा है ये उत्सव।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 6 बजे का जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बमुश्किल 8 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों के जवान आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो देखिए, साफ है कि श्रद्धालु इस बार निर्भय होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अभूतपूर्व तैयारियों को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: ganti tutta la città dopo.
1: तीन जुलाई से शुरू हो रही अद्भुत अलौकिक अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्वर्ग की सरगोशी करने वाली परलौकिक गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन की हसरत 10 दिन बाद हकीकत में बदलने वाली है। तीर्थ यात्री जहां उत्साह में है, तो वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षित, सुगम और सकुशल यात्रा सम्पन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल और सेना ने हीला हवाला की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए इस बार पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ तक यात्रा मार्ग पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
2: इस साल की अमरनाथ यात्रा में 10 दिन से भी कम अब समय बच गया है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के साथ साथ बाकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी।
1: पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर गाइड, पालकी संचालक, घोड़े वाले या दुकानदार के रूप में किसी संदिग्ध व्यक्ति की एंट्री ना हो सके, इसके लिए इस बार तकनीक आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। तीर्थ यात्रियों को सर्विस देने वाले गाइड, पालकी संचालक और दूसरे कर्मियों और सेवादारों की पहचान के लिए QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम प्रयोग में लाया गया है। इसके तहत सभी संबंधित लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। सभी दर्शनार्थियों को इस सिस्टम के बारे में यात्रा शुरू होने से पहले ही ब्रीफिंग दे दी जाएगी, ताकि वे सिर्फ अधिकृत लोगों से सेवा ले सकें।
2: अब की बार अमरनाथ यात्रियों के पहचान पत्र के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में काम करने वाले घोड़े वालों, दुकानदारों और मजदूरों को भी एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया है, जिस पर उन सभी लोगों की सभी जानकारियां जो है वो एकजुट की गई है और सभी लोग वेरीफाइड हैं।
1: कुल 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कठुआ से श्रीनगर तक के 400 किलोमीटर नेशनल हाईवे को सुरक्षा बलों ने पहले ही कब्जे में ले रखा है। इस हाईवे के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, जम्मू में पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सघन निगरानी की जा रही है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 70,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है।
2: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी, बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी।
1: आपको बता दें कि पहलगाम या बालटाल दोनों ही मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा जाने वाले श्रद्धालु देश और दुनिया के तमाम हिस्से से आकर सबसे पहले जम्मू स्थित बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास में ठहरते हैं। बेस कैंप की सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। मंगलवार को यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज ने दस्तक दी। तेज तर्रार जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर भगवती नगर यात्री निवास और उसके आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जवानों ने तरह तरह से मॉक ड्रिल की।
0: जहां तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार यहां पर मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। आज सुबह भी यहां पर जो एनएसजी के कमांडोज हैं उन्होंने मॉक ड्रिल की यात्री निवास भवन के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल सक्षम रहे, तैयार रहे, इसीलिए मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। ये तैयारियां होती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। फिलहाल अगर हम आपको देखिए जो यात्री निवास भवन का जो बाहर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये तंबू लगे हैं, अस्थाई शेड्स बनाए गए हैं। इन्हीं अस्थाई शेड्स में और तंबुओं में जो है सीआरपीएफ के जवानों की ठहरने की व्यवस्था होती है, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी होती है। भारी संख्या में यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और अगर हम देखें तो पूरे यात्री निवास भवन को सील कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सीआरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात हैं, मोर्चे बनाए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो।
3: मंगलवार को मॉक ड्रिल तो हुई ही, लेकिन साथ ही भगवती नगर यात्री निवास को पूरी तरह सैनिटाइज भी कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है, साथ ही जगह जगह पर बंकर बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा बल के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं।
0: फिलहाल हम आपको यहां जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर मैं थोड़ा यहां आगे चलो, मैं आपको इस यात्री निवास भवन के दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यहां पर जो आप देख सकते हैं कि बंकर्स बनाए गए हैं ताकि यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो 24 घंटे यहां पर मॉनिटरिंग कर सके किसी संदिग्ध हरकत पर। यहां देखिए कैमरास लगातार लगाए गए हैं, तो हर स्थान पर यहां पर कैमरे लगाए गए हैं, तो हर हरकत पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये यात्री निवास भवन का परिसर है, पूरे यात्री निवास भवन को फिलहाल सील कर दिया गया है और सुरक्षा संबंधित बैठकें भी जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, सुरक्षा की समीक्षा भी हो रही है और जगह जगह जो सुरक्षा बल है वो मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं।
3: सेना और अर्धसैनिक बलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर काफी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात ने सोमवार को पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। डीजीपी नलीन ने मातहत अधिकारियों को किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहे।
0: जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं नलिन प्रभात, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो पारंपरिक मार्ग है वो पहलगाम से होकर जाता है और पहलगाम जो है अनंतनाग जिले में ही आता है, इसीलिए ये बैठक जो है वो अनंतनाग में हुई और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद थे और एक तरह से जो सुरक्षा की जो है समीक्षा की गई। तो अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो केंद्रीय बल जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो वहाँ पर वो तैनात होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस तो होगी ही, लेकिन साथ ही में जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो भारी संख्या में तैनात हो रहे हैं और कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा का जिम्मा जो है मुख्य तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के कंधे पर ही होगा। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो भी जगह जगह पर मौजूद रहेंगी, खासतौर पर जो ऊंची चोटियां हैं, तो पूरे समन्वय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो सुरक्षा बल है वो कार्य कर रहे हैं। ये उनको जिम्मा दिया जा रहा है कि सुरक्षा कड़ी रहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान।
3: साफ है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और अमरनाथ गुफा तक किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त यानी 57 दिनों तक चलेगी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बाबा बर्फानी का दर्शन बेहद कठिन माना जाता है। भोले के भक्तों को कश्मीर के पहाड़ियों के बीच दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाना होता है। आमतौर पर ये रास्ते वीरान होते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इन रास्तों पर रौनक ही रौनक दिखती है। दरअसल श्रद्धालुओं के आने से पहले ही देश भर के सेवादार यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे, लंगर और विश्राम की व्यवस्था कर देते हैं। सेवादारों का धर्म तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये तो यात्रा शुरू होने से पहले ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यात्रा खत्म होने तक यहीं रहते हैं। इतना कठिन कार्य करने के बाद भी इनके चेहरों पर थकान और तनाव नहीं दिखता है, बल्कि मानव सेवा का सुकून ही दिखाई देता है।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इस बीच बाबा बर्फानी ने पवित्र गुफा में अपना स्वरूप विस्तार शुरू कर दिया है। इस साल बाबा बर्फानी का ये पहला अलौकिक दर्शन है। एक ओर देश और दुनिया में बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ श्वेत आभा के साथ बाबा बर्फानी श्रद्धालुओं की अगवानी में गुफा के अंदर अपना अलौकिक आकार ग्रहण कर रहे हैं। ये जय घोष है अनादिकाल से चले आ रहे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के पावन आगाज का। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्राणित सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी ही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी झेलनी ना पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति भक्ति का आवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
1: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है, 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेल पटरी पर भंडारा लगता है, उसके लिए नया टीन शेड इस बार तैयार करके वहां से लाए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेल पटरी पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग बाग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर LG साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलो पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ तो मेल से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सबाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल रास्ते से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थ यात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहां आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना, और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
2: भंडारे में सुविधा खाने की, रहने की, सोने की, और लैट्रिन बाथरूम साफ शुद्ध खाना, और आपके बिस्कुट टॉफी हर चीज से हम संतुष्टि करना चाहते हैं यात्री की। मान लो अगर तबीयत खराब है तो मेडिसिन भी देते हैं, और समय समय पे जैसे यात्री कहीं रास्ते में फंसा हुआ है तो हमारे सेवादार उसको भी सहायता करने जाते हैं।
0: सेवा का सबाब इतना बड़ा होता है कि मुश्किल भरी तैयारियों के बीच इनके चेहरों पर अलौकिक चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ झलकता है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर 28 अगस्त को खत्म होगी। 57 दिनों की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। परंपरा कहती है कि पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी में स्थित बाबा बर्फानी की अनादिकालीन गुफा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयंभू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक खाइयों के ऊपर से गुजरता है संकरा लेकिन लंबा रास्ता। फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहाँ बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। साल 2022 में 3,04,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमर गुफा के दर्शन किए थे, जो साल 2023 में बढ़कर 4.5 लाख हो गए। साल 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और 5,12,000 हो गई। हालांकि साल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या घटकर 4,14,000 रह गई।
3: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: क्या आपने कभी सोचा कि इतना दुर्गम और असाध्य रास्ता होने के बावजूद हर साल क्यों इतने श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट होने वाले स्वयंभू शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ की यात्रा में पड़ने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पड़ाव अपने भीतर जन्म और मरण के अनंत सिलसिले से मुक्ति का गूढ़ संदेश संजोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें और आखिरी उत्तरकांड की कुछ अनमोल चौपाइयों के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के इस आध्यात्मिक पड़ावों के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनहु तात ये अखत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रसंग में परम ज्ञानी काकभुशुंडी जी मोह माया में फंसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से कहते हैं कि मैं आपको ये गूढ़ अनिर्वचनीय कहानी सुनाता हूँ, जिसे सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझा जा सकता है। इसमें गूढ़ बात ये है कि जीव ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन है, निर्मल है और आनंद राशि है। अगर ऐसा है तो फिर ये संसार इतने दुखों में क्यों फंसा है? इस सवाल का जवाब देते हुए काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य माया मोह के बंधनों में ऐसे ही फंस गया है जैसे तोता पिंजड़े में और बंदर मदारी के बंधन में फंसा रहता है। माया की महिमा ही ऐसी है कि वो इंसान को अपने इशारों पर नचाती है और इंसान माया के पाश में फंसकर सत्य और परम तत्व से विमुख हो जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो अमर कथा सुनाई उसमें माया मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर खुद को अविनाशी कर लेने का गूढ़ संदेश और संकेत छिपा है। पहलगाम से शुरू होकर पवित्र गुफा के बीच में यात्रा के जो 7 पड़ाव हैं, वो मनुष्य के अविनाशी होने के 7 रास्ते हैं। बस उन संकेतों को गहराई से समझने की जरूरत है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: क्या निर्जला एकादशी पर कोई विशेष दान किया जाता है? निर्जला एकादशी का जल से क्या संबंध है? और निर्जला एकादशी का गायत्री जयंती से क्या संबंध है? क्या है निर्जला एकादशी की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वो पहचान हासिल कर ली है जिसका सपना बड़े बड़े क्रिकेटर देखते हैं। वैभव का जलवा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान में भी उनके नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। देखिए, गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी एज और आईपीएल प्राइस जैसे कीवर्ड तेजी से सर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कई ब्रेकआउट कैटेगरी में पहुंच चुके हैं।

0: क्रिकेट में कहते हैं असली स्टार वो है जिसकी धमक सरहदों को भी पार कर जाए। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान के गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में वैभव को लेकर केवल चर्चा ही नहीं है बल्कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी खूब है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेट सनसनी बन चुके हैं। पिछले 3 महीनों के गूगल ट्रेंड डेटा में पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने वैभव को जमकर सर्च किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, रिकॉर्ड, आईपीएल कीमत और मैचों से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान में तेजी से खोजी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त उछाल, और वैभव से जुड़े कई कीवर्ड्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस भारतीय किशोर बल्लेबाज के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। नजर हो भी क्यों ना, क्रिकेट के पंडित वैभव की आक्रामकता से हैरान हैं। उनके सबसे तेज अर्धशतक की चर्चा हो रही है, उनके बेखौफ अंदाज पर अचरज जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो मुश्ताक मोहम्मद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 1959 में उन्होंने महज 15 साल 124 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। अब लगभग उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने कारनामों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, जब बात विस्फोटक बल्लेबाजी की आती है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सबसे पहले शाहिद अफरीदी याद आते हैं। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज कई लोगों को युवा अफरीदी की याद दिला रहा है। जाहिर है वैभव ने अभी करियर शुरू ही किया है, लेकिन उनके नाम की गूंज पहले ही स्टेडियम की सीमा रेखा पार कर चुकी है। भारत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ती सर्चिंग बता रही है कि ये बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहा बल्कि उतनी ही तेजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार दिखाते हैं, जो सिर्फ लोगों के सिर ही नहीं चढ़ रहा है बल्कि अब पालतू जानवर भी अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बात यहां पर हो रही है मेक्सिको की। मेक्सिको में कुत्तों से लेकर घोड़ों और यहां तक कि एक बतख तक को राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनाई जा रही है। वर्ल्ड कप के इस अनोखे जुनून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है।

ये फुटबॉल का फीवर है। हार जीत पर फैंस के चेहरों का रंग ही नहीं बदल रहा, बल्कि ये बेजुबान भी फीफा के रंग में रंग दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवर भी अपनी अपनी टीम को अपनी पोशाकों से चीयर कर रहे हैं। कुत्ते, बत्तखे और दूसरे पालतू जानवर का टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर आ जाना फुटबॉल के फीवर की सबसे दिलचस्प तस्वीर बन गया है। अब इनसे मिलिए, ये है मर्लिन, वो बत्तख जिसने मेक्सिको में वर्ल्ड कप के बाद अपनी एक नई पहचान कायम कर ली है। पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स के सामने मर्लिन के साथ तस्वीर खिंचवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। मेक्सिको की जर्सी पहने मर्लिन अब सोशल मीडिया स्टार भी बन चुका है। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्रेज को भुनाने में बाजार भी पीछे नहीं है। दुकानों पर पालतू जानवरों के लिए खास फुटबॉल जर्सीज बिक रही हैं। मैचिंग टोपियों की भी डिमांड है। यही नहीं, लोग अपने पालतू जानवरों के लिए हेलमेट और चश्मे तक खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि कई डिजाइन तो हाथों हाथ खरीदे जा रहे हैं। बाजार में सबसे ज्यादा नजर आ रही एडीडॉग नाम की ये जर्सीज, मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड की तर्ज पर तैयार ये जर्सीज कम कीमत में उपलब्ध हैं और खरीदारों को बेहद पसंद ही आ रही हैं। मतलब फुटबॉल के इस मेगा उत्सव में इस वक्त एक से बढ़कर एक ट्रेंड चल पड़ा है। जो ट्रेंड लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है वो है ट्विनिंग, मतलब मालिक और उसका पालतू जानवर एक जैसे रंग या एक जैसी जर्सी पहने हुए है। फुटबॉल का जोश अब ऐसे तमाम परिवारों के लिए एक अलग अलग तरह का फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। सिर्फ बाजारों में ही नहीं, पार्क्स और सड़कों पर भी जर्सी पहने पालतू जानवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वो जादू है जिसे दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: शिरडी के साईं दरबार में सालाना 2.5 करोड़ श्रद्धालु टेकते हैं मत्था। ट्रस्ट के पास 550 किलो सोना हर साल आता है, 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए लगाए गए शेड, 3 जुलाई को शुरू होगी पवित्र यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम की यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 12.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब भी पहुंचे करीब 1.5 लाख श्रद्धालु। ICC के वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर के टॉप बल्लेबाज बने शुभमन गिल, विराट कोहली को छोड़ा पीछे, ईशान किशन ने लगाई 21वें स्थान की छलांग। बार्सिलोना के तटों पर धूमधाम से मना सैन जुआन उत्सव, हजारों की संख्या में लोगों ने किया शानदार आतिशबाजी का दीदार, स्पेन में पुरानी मान्यताओं से जुड़ा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से होगी सुरक्षा, CCTV से होगी निगरानी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान, आने जाने वालों पर रखी जा रही नजर। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ की यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में तीर्थ राज कपाल मोचन पर आस्था परंपरा का संगम, कश्मीर के सबसे पुराने सबसे सम्मानित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है ये पवित्र स्थल। घाटी के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है तीर्थ राज कपाल मोचन, रंबी आरा नदी के किनारे अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से घिरा ये मंदिर। शिरडी साईं बाबा मंदिर में भक्त दिल खोल कर दान करते हैं, भक्त ट्रस्ट के मुताबिक हर साल आता है 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा। साईं भक्त अपने इच्छा अनुसार नकदी के अलावा देते हैं सोने और चांदी का दान, बाबा की तिजोरी में लगभग 550 किलो सोना और 7030 किलो चांदी का दान। शिरडी साईं बाबा मंदिर में देश विदेश से सालाना 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालु करते हैं दर्शन, हर हफ्ते मंगलवार शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच चढ़ावे की गिनती होती है। राजस्थान के कोटा में दुनिया का इकलौता विभीषण मंदिर, इस पवित्र स्थल पर भगवान राम के भक्त के रूप में होती है विभीषण की पूजा। 5000 साल पुरानी मान्यता के अनुसार होली के बाद हिरण्यकश्यप दहन की अनूठी परंपरा, रावण का भाई होने के बावजूद अधर्म के विरुद्ध खड़े होने के कारण होती है उसकी पूजा। कोटा के शासक महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के शासनकाल में करवाया था मंदिर का निर्माण, मंदिर के आसपास कई भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया गया है।

0: देवताल में धीरे धीरे पर्यटक और श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर है ये सरोवर। साल के करीब 8 महीने भारी बर्फ की चादर में लिपटा रहता है देवताल सरोवर। समुद्र तल से करीब 18,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये पवित्र स्थल। चार धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ यात्रा ने रचा इतिहास। 63 दिनों में 13 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 12,70,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। खराब मौसम के बीच में हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 1,35,000 भक्तों ने टेका मत्था। मुंबई में फिल्म वेलकम टू जंगल की सफलता की कामना के लिए सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंचे अक्षय कुमार और फरीदा जलाल। विधि विधान से की पूजा अर्चना। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी। पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी। 200 कारीगर बना रहे रथ। रथों के निर्माण में तकनीकी और कलात्मक दोनों पहलुओं पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। सेवक रथों के जोड़ स्थानों के लिए लोहे के उपकरण कर रहे तैयार। 29 जून को प्रभु जगन्नाथ की होगी पूर्णिमा स्नान। 15 दिनों तक भगवान का रहेगा एकांतवास। लाख की चूड़ियों की पहचान बना राजस्थान के कोटा जिले का कैथून शहर। बड़ी संख्या में होता है लाख की चूड़ियों का उत्पादन। कैथून की तंग गलियों और छोटी छोटी कार्यशालाओं में कारीगर रंगों को पिघालकर बनाते हैं खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियां। शादी विवाह और त्योहार पर इन चूड़ियों की मांग सबसे ज्यादा। पीढ़ियों से चली आ रही लाख की चूड़ियां बनाने की कला। जयपुर से मंगवाया जाता है चूड़ी बनाने के लिए उपयोग होने वाला कच्चा माल। बाल विवाह रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की नेक पहल। जल्द ही शादी के कार्ड पर जन्म स्थिति अनिवार्य करने की योजना बनाई जा रही। मुख्यमंत्री योगी ने बंगलुरु में आयोजित ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव का इसके दौरान गूगल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में सीएम विजय के जन्मदिन पर अरुलमिगु सुब्रमण्यम मंदिर में विशेष पूजा भगवान की निकाली गई भव्य रथ यात्रा। रायपुर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया पौधारोपण। खिलाड़ियों को किया सम्मानित। अगरतला में ऑल त्रिपुरा इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। सीएम माणिक साहा पहुंचे। रांची में JT20 फाइनल देखने के लिए उमड़ी भारी लोगों की भीड़। फैंस ने मैच का जमकर मजा लिया। गोवा के पारूल यूनिवर्सिटी में ग्रैंड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम प्रमोद सावंत। अरुणाचल प्रदेश के केई पेन्योर जिले में भारी बारिश के कारण अचानक से बाढ़ आ गई। बड़े पैमाने पर पानी भर गया जिससे 15 से ज्यादा रिहायशी क्वार्टर क्षतिग्रस्त हुए। बचाव राहत कार्य शुरू। SDRF को प्रभावित स्थान पर पहुंचने का निर्देश भी जारी। महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश। महाराष्ट्र के लिए अगले 5 दिन अहम। मानसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट। अगले 3 दिनों के लिए ठाणे और मुंबई में होगी जोरदार बारिश। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मानसून होगा और मजबूत। 25-26 जून को मूसलाधार बारिश की संभावना। भारी बारिश का आनंद लेते नजर आए बच्चे। पानी में जमकर की मस्ती। अकोला में भारी बारिश लोगों को गर्मी से मिली राहत। सतारा के कोयना नगर में पहली बारिश से दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा। यहां एक झरना बना उसका जलस्तर बढ़ा। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन हुआ सड़क पर आया मलबा। सड़कें बंद हो गई। पुंछ में आपदा से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल। SDRF पुलिस सेना CRPF अन्य एजेंसियों ने आपदा से निपटने के लिए सुरक्षा को परखा। दिल्ली में बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट। दिल्ली सरकार ने मानसून 2026 के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया। बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। 15 जून से 15 अक्टूबर तक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। यमुना और नजफगढ़ ड्रेन के लिए 3 स्तरीय चेतावनी प्रणाली लागू, 20 से ज्यादा संवेदनशील तत्व बंद हों और पंपिंग स्टेशनों की विशेष निगरानी। बाढ़ को लेकर 13 जिलों में राहत व्यवस्था और हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू, वाटर लॉगिंग हेल्पलाइन नंबर जारी। नेपाल में भारी बारिश से बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात। आईसीसी की ओर से ताजा वनडे रैंकिंग का ऐलान, 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शुभमन गिल ने नंबर 2 पर बनाई जगह। गिल के अलावा रूको भी टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल, विराट कोहली 3रे नंबर पर, रोहित शर्मा मजबूती से 4थे पायदान पर। ताजा आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह भी नंबर 1 स्पॉट पर बरकरार, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 शेयर कर रहे। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शुभमन गिल 7वें नंबर पर, उनके पीछे यशस्वी जायसवाल ने 8वें नंबर पर बनाई अपनी जगह। ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनकी विदाई, आईपीएल के 2 सीजन टीम की कैप्टेंसी करने के बाद वापस अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स पहुंच सकते हैं पंत। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, लगातार 6 फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोनाल्डो। 41 साल के रोनाल्डो ने अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनल मेसी को पछाड़ा, 2006, 2010, 14, 18 और 2022 के वर्ल्ड कप में गोल स्कोर कर चुके हैं रोनाल्डो। रोनाल्डो के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पुर्तगाल को मिली बड़ी जीत, फीफा वर्ल्ड कप में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे 2 गोल, रोनाल्डो को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया, फैंस ने गाए गाने, क्रोएशिया के लहराए झंडे। फिल्म दुल्हनिया ले आएंगी फर्स्ट लुक इसका जारी, 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया गाना जारी, 24 जुलाई को फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार। फरहान अख्तर की पीरियड फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान, साल 2027 में शुरू होगी इसकी शूटिंग। कमल हासन की फिल्म धर्मन में रजनीकांत का फर्स्ट लुक जारी, डेडली डॉक्टर बने रजनीकांत। फिल्म कॉकटेल 2 का नया गाना रिलीज, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की है शानदार कमाई। वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज हो गया है, फिल्म 26 जून को सिनेमाघर में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल पर लगे 18 कट, फिल्म को सीबीएफसी ने UA 16+ सर्टिफिकेट के लिए 7 मंजूरी दी। श्रद्धा कपूर ईथा का उसका टीजर रिलीज हो गया है, फिल्म 28 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे टाइगर श्रॉफ, लोगों की सेवा और गरीब बेटियों पर की बातचीत। जून के आखिरी वीकेंड पर एंटरटेनमेंट की बारिश, थिएटर ओटीटी पर एक साथ रिलीज होगी 13 नई फिल्में और सीरीज। पेरिस मेंसवेयर फैशन वीक शो में लुई विटों का शो हुआ आयोजित, ब्रांड की नई कलेक्शन शोकेस की गई। इस शो में नजर आई अमेरिकी सर्फ और स्केट कल्चर की झलक, कई मॉडल्स ने सर्फ बोर्ड पकड़े हुए वॉक किया। डिजाइनर फेरल विलियम्स ने इस शो को किया तैयार, इस नई कलेक्शन में गहरे रंग के ढीले ढाले सूट्स, कैप और जैकेट्स के साथ ये शो किस हुआ। एक विशाल आर्टिफिशियल वेव जैसा तैयार किया गया था शो का बैकग्राउंड, जिसमें गर्मियों में आयोजित इस शो को दिया गया खास लुक। पेरिस मेंस वेयर फैशन वीक शो में डियोर और रिक ओवंस जैसे ब्रांड्स भी करेंगे अपने कलेक्शन को शोकेस। चीन के हैनान में दिखी समुद्री दुनिया का शानदार झलक, विजिटर्स ने हैनान ओशन पैराडाइज रिजॉर्ट का किया दौरा। शानदार ओशन पैराडाइज रिजॉर्ट में लोगों ने लिया समुद्र को तटीय नजारों का मजा, अंडर वाटर मर्मेड के शानदार शो का लुत्फ उठाया। मर्मेड के अलावा विजिटर्स ने पेंगुइन के साथ समय बिताया, खींची प्यारी तस्वीरें। चीन का लाइन शाइन नाम का सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टॉप 500 लिस्ट में हासिल किया पहला नंबर। जर्मनी के हैमबर्ग में चल रही इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में जारी की गई रैंकिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कम्युनिटी के लिए यूरोप का एक प्रमुख सम्मेलन है ISC। रंगीन रोशनी से जगमगा उठा बार्सिलोना का समुद्र तट, बीच पर हुआ आतिशबाजी और बॉनफायर्स का कार्यक्रम। पारंपरिक सैन जुआन डे मनाने के लिए समुद्र किनारे इकट्ठा हुए हजारों लोग, गर्मियों के बीच में होता है ये त्यौहार। सेंट जॉन डे भी कहलाता है सेंट जुआन डे। बाइबल के अनुसार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म का प्रतीक ये दिन। डेनमार्क के कोपेनहेगन चिड़ियाघर में हुआ नन्हे जिराफ का जन्म, बेबी जिराफ को देखने उमड़ी भीड़। एक साल में कोपेनहेगन चिड़ियाघर में जिराफ के तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। इटली के पीसा में ऑक्टोपस से प्रेरित रोबोटिक आर्म ने पानी के अंदर काम करने की दिखाई अपनी क्षमता। जेनोआ के IIT में विकसित हुआ ये। आर्टिफिशियल सक्शन कप से रोबोटिक आर्म को मिली नई संवेदना शक्ति, पानी के अंदर जटिल काम करने में सक्षम। संपर्क दबाव दिशा भी पहचान सकती है रोबोटिक आर्म, मॉड्यूलर डिजाइन से अलग अलग कामों के लिए ये अनुकूल। हवा और पानी दोनों में काम कर सकती है नई रोबोटिक तकनीक, सॉफ्ट रोबोटिक्स में ह्यूमनॉइड भविष्य की संभावना खुली। चीन की जुआनबू झील में खिले दुर्लभ जुड़वा कमल के फूल, नानजिंग की झील में एक ही डंठल पर दो कमल खिले। मोरक्को के टैजियर्स में बिना किसी कॉन्सर्ट टी शर्ट को मिल रही दूसरी जिंदगी, पुराने टूर मर्चेंडाइज से बन रहे नए अपसाइकिल कपड़े। 4 लाख से ज्यादा बिना बिके टी शर्ट को किया गया रिसाइकिल, नैशविले के वेयरहाउस से मोरक्को तक पहुंचे गए। टैजियर्स में पुरानी टी शर्ट से बन रहा फैशन धागा, म्यूजिक टूर के लिए इको फ्रेंडली मर्चेंडाइज लॉन्च। पुराने कपड़ों से बन रहे 2,80,000 नए टी शर्ट्स और हुडीज। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप की अनोखी रिसाइकिलिंग पहल, फैशन और म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रीन क्रांति की शुरुआत। स्पेन की भीषण गर्मी ने फ्लेमेंको कलाकारों की बढ़ाई मुश्किलें, 40 डिग्री से ऊपर तापमान। सेविले के फ्लेमेंको स्टेज भट्टी जैसे बने, कलाकारों की कड़ी परीक्षा हो रही। गर्मी के बावजूद मंच पर जारी फ्लेमेंको का जुनून, फ्लेमेंको शो अप कला के साथ धैर्य की भी परीक्षा। चीन ने यांगसी फिनलेस पॉर पाइप्स के बच्चे के जन्म का दुर्लभ वीडियो जारी किया है। जन्म के समय 70 सेंटीमीटर लंबा और 5 किलो वजनी था श्याओ 26, एक महीने में लगभग दोगुना हुआ ये।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: बॉक्स ऑफिस पर स्त्री बनकर सबका दिल जीतने वाली श्रद्धा कपूर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर ऐसा किरदार जीने जा रही हैं जो अपने रोंगटे खड़े कर देगा। इस बार श्रद्धा कपूर ईठा बनी है, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया है।
3: पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।
4: बॉलीवुड में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ चुकी श्रद्धा कपूर अब ईठा के किरदार में नए अंदाज और नए तेवर के साथ हाजिर हैं। पैरों में घुंघरू की छनक है तो आंखों में जीत का जुनून। श्रद्धा कपूर का ये इंटेंस अवतार पहले ही झलक के साथ दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। मैडॉक फिल्म्स की मच अवेटेड फिल्म ईठा का टीजर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुका है और चर्चा में है ईठा के किरदार में श्रद्धा कपूर की दमदार अदाकारी, जिसने हल्की सी झलक में ही दिलों को झकझोर कर रख दिया है। ईठा में श्रद्धा एक ऐसी मिसाल पेश करने जा रही हैं जो इतिहास के पन्नों में पहले से ही दर्ज है। श्रद्धा ने महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर के किरदार को पर्दे पर साकार किया है। विठाबाई नारायण गांवकर महाराष्ट्र के एक बेहद लोकप्रिय और महान लोक कलाकार, लावणी नर्तकी और लोक गायिका थी। वो लावणी, गवलन और भेदिक जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों और गीतों को प्रस्तुत करने में बेहद माहिर थी। उनकी अद्भुत कला को देखते हुए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला था। लोक कला के क्षेत्र में उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए दो बार 1957 और 1990 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी कला का लोहा मानते हुए उन्हें तमाशा साम्राज्ञी की उपाधि दी थी। विठाबाई की स्मृति को संजोए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2006 से लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की। विठाबाई की जिंदगी संघर्षों, हिम्मत और लावण्य के प्रति पागलपन की एक ऐसी मिसाल है जिसे पर्दे पर उतारना किसी भी एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धा कपूर ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और विठाबाई के दर्द को अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया है। विठाबाई के जीवन की सबसे प्रसिद्ध और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना 1967 में शिखर श्रृंगणापुर में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हुई थी, जिसे टीजर में दिखाया भी गया है। बताया जाता है कि विठाबाई तब 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और स्टेज पर नाच रही थी। परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें अचानक लीवर पेन शुरू हो गया। तब उन्होंने मंच के पीछे जाकर बच्चे को जन्म दिया और दर्शकों की मांग पर कुछ ही मिनटों बाद फिर से स्टेज पर आकर नाचने लगी।
3: पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।
4: कला के प्रति उनके इस अनोखे और अटूट समर्पण की कहानी आज भी महाराष्ट्र के लोक इतिहास में गर्व से याद की जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि विठाबाई की जिंदगी के हर एक लम्हे को उसी शिद्दत के साथ पर्दे पर उतार कर श्रद्धा कपूर ने वाकई अभिनय के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। मेकर्स ने साफ कर दिया है कि ईठा में लावणी सिर्फ एक नाच गाना नहीं है, बल्कि ये विठाबाई की कला, उनके स्वाभिमान और विरासत की एक कभी न मिटने वाली कहानी है। ईठा 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: पंचायत वाले विधायक जी तो आपको जरूर याद होंगे। विधायक जी क्या, पंचायत का तो हर किरदार आपको याद होगा, सबको याद है। लेकिन हम यहाँ बात विधायक जी की ही कर रहे हैं, जिनकी ठेठ देहाती अंदाज में सब्जी खरीदते हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे खुद विधायक जी मतलब पंकज झा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है और हम इस तस्वीर को आपके लिए डीकोड करने वाले हैं।

0: खीरे टमाटर सब्जी के इस ढेर के बीच नजर आ रहे इस शख्स को तो आप भूले नहीं होंगे। भूल भी कैसे सकते हैं, आखिर ये पंचायत वाले विधायक जी हैं। हाँ, यहाँ पर इनका अंदाज थोड़ा देसी शुद्ध गांव वाला है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन गौर से देखने पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। मशहूर ओटीजी सीरीज पंचायत के विधायक जी यानी पंकज झा ने खुद इस तस्वीर को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। इस तस्वीर में वो शॉर्ट्स, बनियान और गले में झोला लटकाए सड़क पर सब्जियां खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी में आम लोगों की तरह खीरा सब्जी छांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी का सादगी भरा अंदाज इंटरनेट पर वायरल है और लोगों का दिल जीत रहा है। पंकज झा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर कर कैप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि ये तस्वीर कहाँ और कब की है। वैसे इस तस्वीर को देखकर दो बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि पंकज झा गांव में फुर्सत के पल बिता रहे हैं और शायद सब्जी खरीदते देख आसपास खड़े लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं है। दूसरी ये कि शायद ये शूटिंग का हिस्सा है और विधायक जी पंचायत सीजन 5 की शूटिंग कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या विधायक की जाने के बाद इनके इतने बुरे दिन आ गए कि ऐसी हालत में सब्जी खरीदनी पड़ रही है। खैर, हकीकत जो भी हो, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने विधायक जी की इस तस्वीर को देखकर मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी है। एक यूजर ने लिखा, विधायक जी पंचायत के अगले सीजन में वोट जीतने के लिए एक मजबूत संगठन बनाने के लिए जमीनी स्तर से काम शुरू कर रहे हैं। तो किसी ने कहा, विधायक की जाने के बाद इनका हालत बहुत खराब चल रहा है। एक और यूजर ने फिरकी लेते हुए कहा, पूरे सीजन लौकी का ही प्रमोशन हुआ, अब होगी खीरा टमाटर की एंट्री। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, और इन सारी बातों का सार एक ही है कि यूजर्स को पंचायत के नए सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। सादगी, देसी कॉमेडी और दिल छू लेने वाली कहानी के दम पर इस पंचायत सीरीज ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजन 5 की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। मसलन गांव के चुनाव की गर्मी अब और तेज होने वाली है। सचिव जी और रिंकी के रिश्ते में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। वहीं प्रधान जी पर हुए हमले का रहस्य भी इस बार कहानी का बड़ा हिस्सा बन सकता है। जानकारी के मुताबिक पंचायत सीजन 5 की शूटिंग जोर शोर से चल रही है और इसके जुलाई या अगस्त तक पूरे होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। हमेशा की तरह इस बार भी सीजन में कुल 8 एपिसोड्स होने की बात सामने आ रही है। मतलब ये कि चंद महीनों का इंतजार और फिर फुलेरा गांव की पंचायत ओटीटी पर आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए फिर हाजिर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
2: जाए। Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
3: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: शिरडी के साई दरबार में सालाना 2.5 करोड़ श्रद्धालु टेकते हैं माथा। ट्रस्ट के पास 550 किलो सोना, हर साल आता है 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए लगाए गए शेड। 3 जुलाई को शुरू होगी पवित्र यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 12.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब भी पहुंचे करीब 1.5 लाख श्रद्धालु। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर के टॉप बल्लेबाज बने शुभमन गिल। विराट कोहली को छोड़ा पीछे, ईशान किशन ने लगाई 21 स्थान की छलांग। बार्सिलोना के तटों पर धूमधाम से मना सैन जुआन उत्सव। हजारों की संख्या में लोगों ने किया शानदार आतिशबाजी का दीदार। स्पेन में पुरानी मान्यताओं से जुड़ा है उत्सव।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। जम्मू के कटरा में पवित्र माँ वैष्णो देवी धाम में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल 22 जून तक 50 लाख से ज्यादा भक्त माता के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में करीब 11 लाख ज्यादा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब। पिछले 6 महीने में 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने मां के दर्शन किए हैं और अभी भी भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की बढ़ी हुई संख्या माँ वैष्णो देवी में लगातार बढ़ती आस्था का प्रमाण है।
7: प्यार से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी,
8: बोलो जय माता दी,
9: जय माता दी,
10: जय माता दी,
11: जय माता दी,
12: जय माता दी।
7: इन्हीं जयकारों के साथ त्रिकुटा पर्वत की पवित्र वादियां भक्तिमय माहौल में डूबी हुई हैं। माँ वैष्णो देवी का दरबार श्रद्धालुओं के जय घोष से गूंज रहा है। हर ओर जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। लाखों श्रद्धालु अपार श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ वैष्णो के चरणों में शीश नवाने पहुँच रहे हैं।
9: श्राइन बोर्ड ने कल ही जो है श्रद्धालुओं के आंकड़े जारी किए हैं, यानी कि इस वर्ष जो अब तक श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आए हैं उनके आंकड़े जारी हुए हैं और 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा कर ली है। ये जो आंकड़ा है काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि पिछले वर्ष अगर हम इसी समय की बात करें यानी कि जून महीने तक, जनवरी से जून 2025 तक की बात करें, तो 39.84 लाख श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आए थे और इस वर्ष अगर हम देखें तो 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, यानी कि 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं।
7: यात्रा बेस कैंप से लेकर भवन तक आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर कोना भक्तों से गुलजार है। कोई पैदल माता के दरबार की ओर बढ़ रहा है तो कोई हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और रोपवे जैसी सुविधाओं का सहारा लेकर भवन पहुंच रहा है। माता के दर्शन की चाह में भक्तों का उत्साह और भक्ति दोनों चरम पर है।
9: ये कहाँ से आए हैं?
10: यमुनानगर से।
9: हरियाणा से?
10: हाँ जी।
9: तो आप आते रहते हैं दर्शनों के लिए, पहली बार
10: आते रहते हैं? आते रहते हैं।
9: अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं कि इस वर्ष 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुँच गए हैं इस बार।
10: अच्छा। बहुत अच्छा, क्योंकि ये तो भक्तों की श्रद्धा है। बोल सच्चे दरबार की जय।
7: ये उत्साह और विश्वास है कि इस साल की यात्रा ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। 22 जून तक 50,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं, यानी अभी आधा साल ही बीता है, लेकिन दर्शन के आंकड़ों के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 जून 2025 तक करीब 39,84,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए थे, जबकि इस साल इसी अवधि में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 50,70,000 पहुंच गई है, यानी सिर्फ एक साल में 10,86,000 अतिरिक्त श्रद्धालुओं ने यात्रा की है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 27% ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई है। आंकड़ों में ये बढ़ोतरी माता वैष्णो देवी के प्रति भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास को दर्शाती है।
11: नहीं, हम सेकंड टाइम आए हैं।
9: सेकंड टाइम आए, मन में कितनी प्रसन्नता?
11: बहुत ज्यादा।
12: बहुत एक्साइटमेंट थी बचपन से।
7: माँ वैष्णो के धाम में बढ़ते श्रद्धालु की संख्या आस्था तो है, साथ ही एक वजह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से किए गए व्यापक प्रबंध भी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक आवास, बेहतर स्वच्छता व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, भीड़ प्रबंधन, बैटरी कार सेवा, रोपवे सुविधा और डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाया गया है। साथ ही आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी पहले से अधिक प्रभावी बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल रहा है।
9: लगातार भक्तों की भीड़ है यहाँ पर, लगातार भक्तों की कतार देख सकते हैं आप। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। तो यहाँ धर्मनगरी कटरा में हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस वर्ष अगर हम देखें पिछले वर्ष की तुलना में अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी जून का महीना पूरा भी नहीं हुआ है और 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, यानी कि 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, धर्मनगरी कटरा, रियासी, जम्मू कश्मीर, गुड न्यूज टुडे।
13: और बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए इस बार की अमरनाथ यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और भव्य होने जा रही है। पवित्र अमरनाथ गुफा के बाहर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है अमरनाथ यात्रा के लिए सुपर सुरक्षा कवच तैयार। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सुविधाओं को हर स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
14: बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में शिवलिंग की ये तस्वीर श्रद्धा और भक्ति से भर देने वाली है। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम शिवलिंग भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये तस्वीर किसी उत्सव से कम नहीं है। मान्यता है कि बाबा बर्फानी के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आस्था, भक्ति और अध्यात्म का ये अद्भुत संगम अमरनाथ धाम को एक बार फिर शिव भक्तों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र बना रहा है। 3 जुलाई से यात्रा का शुभारंभ होगा और बाबा बर्फानी के भक्त उनके दर्शन कर पाएंगे। और खास बात यह है कि इस साल भक्तों के लिए यात्रा मार्ग पर खास व्यवस्था भी की जा रही है। पहली बार पवित्र गुफा तक जाने वाली सीढ़ियों को छत से ढका जा रहा है। सीढ़ियों के ऊपर कैनोपी लगाने का काम तेजी से जारी है, जिससे श्रद्धालुओं को तेज धूप, बारिश और खराब मौसम से राहत मिलेगी।
15: अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ साथ BSF, ITBP और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी।
14: प्रशासन का लक्ष्य है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले हर श्रद्धालु को सुगम, सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव मिल सके।
15: अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, BSF और ITBP के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी।
14: इतना ही नहीं, भक्तों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। यात्रा से पहले यात्री निवास से लेकर यात्रा मार्ग तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में CRPF तैनात है, CCTV लगा दिए गए हैं। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जम्मू में यात्री निवास भवन में NSG कमांडोज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना और सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाना है। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बल हर परिस्थितियों में तेज कार्रवाई और समन्वय का प्रदर्शन कर रहे हैं।
9: यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है जो कि अधिकृत लोग हैं, जो कि अधिकारी हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद जो है श्रद्धालु आना शुरू होंगे। श्रद्धालुओं के रहने की, ठहरने की व्यवस्था इसी यात्री निवास भवन में होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि यहाँ पर रंग रोगन चल रहा था, साफ सफाई चल रही थी और रंग रोगन का कार्य पूरा हो चुका है, साफ सफाई का कार्य भी पूरा हो चुका है। और अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर कड़े इंतजाम, कड़े कदम उठाए गए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहती है। यहाँ पर CRPF तो खासतौर पर तैनात ही है, साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, भारतीय सेना के भी कई बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। तो सुरक्षा के जो इंतजाम देखें, हम तो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
14: आस्था के इस महापर्व को लेकर सुरक्षा बल चौकन्ने हैं और यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि देश भर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, शांतिपूर्ण यात्रा का अनुभव मिले। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: और राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद नई दिल्ली के प्रशासनिक और ऐतिहासिक क्षेत्रों तक पहुंच और अधिक आसान हो सकती है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है मेट्रो से जुड़ेगा सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर। देखिए, दिल्ली मेट्रो के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। ये कॉरिडोर मेट्रो के चौथे नहीं बल्कि पांचवें चरण के तहत विकसित किया जा रहा है और मेजेंटा लाइन के विस्तार का हिस्सा है। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत कॉरिडोर में कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन होगा, जो कि ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नई मेजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वायलेट लाइन से सीधे जुड़ जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, कार्यालयों में आने जाने वाले लोगों और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। दरअसल हर रोज लगभग 60,000 केंद्र कर्मचारी इस इलाके से सफर करते हैं, उनके लिए भी ये यात्रा अब आसान हो जाएगी। साथ ही 2,00,000 लोग अलग अलग मंत्रालय और विभागों में अपने काम के लिए आते जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पहुंचना मेट्रो के जरिए आसान हो जाएगा।
9: सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को उन्होंने अंजाम दिया, जिसके बाद यहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर है क्या? दरअसल लुटियंस दिल्ली में आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले किस तरह से सरकार ने कर्तव्य भवन बनाया। उस कर्तव्य भवन में अलग अलग मंत्रालयों को, जो कि अलग अलग लोकेशन में दिल्ली के हुआ करते थे, उनको एक ही जगह सबको कर्तव्य भवन में लाने की कोशिश की गई और लगभग 9 मंत्रालय को अब तक कर्तव्य भवन में शिफ्ट भी किया जा चुका है। लेकिन इसी कर्तव्य भवन तक पहुंचने में, लुटियंस दिल्ली तक पहुंचने में, कई बार आम आदमी को कई जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चेंज करना पड़ता था। इसके अलावा जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो इन मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, अलग अलग ऑफिसेस में काम करते हैं, उन्हें भी घर से दफ्तर आने के लिए और दफ्तर से घर जाने के लिए अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब वो सभी आसानी से अपने घर से चलकर सीधे मेट्रो के जरिए इस इलाके में पहुंचेंगे, कर्तव्य भवन तक पहुंचेंगे।
13: भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ने वाले राम वन गमन मार्ग बनकर करीब करीब तैयार हो गया है। इस मार्ग से प्रयागराज का श्रृंगवेरपुर भी जुड़ रहा है और यहां भी मार्ग का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में आज की हमारी अगली, यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है, वो इसी से जुड़ी है और वो है राम वन गमन मार्ग तैयार। आपको बता दें कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम जिन जगहों से गुजरे थे, अब उन मार्गों का नाम राम वन गमन मार्ग रख दिया गया है और इस सड़क के बन जाने से प्रयागराज के लोगों को अयोध्या और चित्रकूट पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा।

0: प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर से जुड़ रहा है राम वन गमन मार्ग। 3000 करोड़ की लागत से बना ये मार्ग बनकर करीब करीब तैयार हो चुका है। साल 2023 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। दरअसल भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिन जगहों से गुजरे थे, अब उन सारे मार्गों को एक मार्ग में तब्दील कर दिया गया है और इसी का नाम रखा गया है राम वन गमन मार्ग। अयोध्या से चित्रकूट तक बनने वाला ये राम वन गमन मार्ग प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर से होकर भी गुजर रहा है। इस मार्ग पर 2 पुल पड़ते हैं, जिनमें से एक पुल श्रृंगवेरपुर में लगभग बनकर तैयार हो गया है। गंगा नदी पर बने इस पुल की लंबाई लगभग 1100 मीटर है और इसको बनाने में 1200 करोड़ लगे हैं।
1: इस राम गमन मार्ग की खास बात, 200 से अधिक किलोमीटर की दूरी रखी गई है। सबसे बड़ी बात, भगवान राम ने वनवास के दौरान जिन जगहों पर रुके थे, उन जगहों को एक ही रास्ते पर कनेक्ट किया गया है, यानी अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट जाने वाले श्रद्धालुओं को अब कोई अलग रास्ता नहीं बल्कि राम गमन मार्ग से होकर दर्शन करना होगा।
0: जहां से भी ये मार्ग गुजर रहा है, वहां उनके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे बरगद, अशोक, नीम, पीपल, जामुन जैसे पेड़ों से इन इलाकों में हरियाली बरकरार रहे। इस पर अच्छी खासी रकम भी खर्च की जा रही है।
2: राम भक्तों के लिए तो आप समझिए कि सोने पे सुहागा है। अब जो चित्रकूट जाते थे, अब वो एक अयोध्या से श्रृंगवेरपुर धाम, चित्रकूट, तीनों का दर्शन करेंगे। श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि का और यहाँ पर जहाँ भगवान ने राम ने विश्राम किया उसका, और चित्रकूट में कामतानाथ स्वामी का और अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन, तीनों एक साथ हो जाएंगे, एक ही रूट पे है।
0: प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर एक प्राचीन पौराणिक स्थल है। रामायण में श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान यहाँ गंगा पार करने आए थे। यहीं पर निषाद राज ने श्री राम के चरण गंगा के जल से धोकर वही जल पीकर भक्ति दिखाई थी।
3: अब राम भक्त आसानी से और बहुत ही आस्था के साथ अयोध्या पहुंच सकते हैं और सीधे न केवल अयोध्या बल्कि श्रृंगवेरपुर धाम में दर्शन करते हुए सीधे चित्रकूट जा सकते हैं।
4: एक ही जगह पे एक ही रोड से जहाँ जहाँ राम भगवान गए थे वहाँ वहाँ दर्शन आराम से कर सकते हैं। अयोध्या है, श्रृंगवेरपुर है, चित्रकूट है। हम लोग पहले घूम के जाते थे, उल्टा हम लोग को पड़ जाता था। अब है एक ही रोड से हर एक जगह के दर्शन कर सकते हैं।
0: यहाँ पर राम वन गमन मार्ग बनने से स्थानीय लोगों में भी खुशी है। उनका मानना है कि राम वन गमन मार्ग से लोगों को न केवल आने जाने में सुविधा मिलेगी बल्कि वो भगवान राम के बारे में और सरल तरीके से जान सकेंगे। साथ में अयोध्या के बाद उन जगहों के भी दर्शन कर सकेंगे जहाँ जहाँ पर वनवास के दौरान भगवान राम ठहरे थे। आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
5: पढ़ने और परीक्षा देकर डिग्री लेने की कोई उम्र नहीं होती, इसे बेगूसराय के 90 वर्षीय आचार्य सीताराम शास्त्री ने साबित किया है। उम्र के अंतिम पड़ाव में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन के प्रति गहरी रुचि दिखाते हुए उन्होंने जीडी कॉलेज में इग्नू से श्रीमद भगवद गीता अध्ययन में एमए की परीक्षा दी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। 90 की उम्र में एमए की परीक्षा। आपको बता दें कि सफेद बाल, चेहरे पर अनुभव की लकीरें और आंखों में ज्ञान की चमक लिए सैकड़ों परीक्षार्थियों के बीच बैठे बुजुर्ग आचार्य सीताराम शास्त्री हैं। 90 वर्षीय शास्त्री जी बेगूसराय के चट्टी रोड निवासी हैं, जो कि उम्र के अंतिम पड़ाव में श्रीमद् भगवद गीता में एमए की डिग्री ले रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी आचार्य सीताराम शास्त्री का पढ़ाई के प्रति जबरदस्त उत्साह है। 9 जून से 18 जून तक उन्होंने इग्नू के माध्यम से परीक्षा दी। सीताराम शास्त्री एक छोटे से कमरे में अपनी किताबों के बीच जीवन यापन करते हैं। सर्टिफिकेट में उनका डेट ऑफ बर्थ 1943 दर्ज है, हालांकि ये अपनी उम्र 90 साल बताते हैं। इन्होंने बेगूसराय में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी मंच साझा किया। सीताराम शास्त्री जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे और जेपी आंदोलन के दौरान ये लगभग 2.5 साल तक जेल में भी रहे थे।
6: इसके लिए सबसे पहले मैंने निर्णय किया, ये 90 की मेरी अवस्था हो रही है, पहले स्वयं मैं ही इस परीक्षा को मैं दूं और तो आगे आने वाली पीढ़ी उसे प्रेरणा प्राप्त करेगी। मूलतः परीक्षा देने का मेरा उद्देश्य था कि ज्ञान का अर्जन हो और गीता का अध्ययन जो है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में अपने भाषण में रखा था और उन्होंने कहा था कि जिस देश में गीता उपलब्ध हो, कृष्ण का कर्मयोग का संदेश हो, वो भारतवर्ष गुलाम कैसे रह गया इतने दिनों तक, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था।
7: सारे जो भी न्यू लर्नर है उसके लिए तो वो कम से कम प्रेरणा के स्रोत ही है और जो भी अध्येता है बढ़िया उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत है। हम तो सबसे बड़ा बात है कि आज के छात्र में लिखने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, और वो लिखते हैं धड़ल्ले के साथ लिखते हैं और एकदम सुडौल अक्षर में लिखते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिसके बाद वैश्विक तेल बाजार में नरमी देखने को मिली है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही तेज होने पर दुनिया भर में तेल आपूर्ति को लेकर चिंता कम हुई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है, और वो है शांति की उम्मीद गिरे कच्चे तेल के भाव। अमेरिका ईरान के बीच शांति की उम्मीद के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल आपूर्ति फिर पटरी पर लौट आई है। हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना तेज हो गया है, इससे पूरी दुनिया में वैश्विक सप्लाई को लेकर चिंता घटी है। दोनों देशों के बीच बातचीत में हुई प्रगति का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच तनाव के वक्त कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई थी।
8: ईरान और अमेरिका में शांति समझौते पर सहमति के बाद एक तरफ पश्चिम एशिया का संकट खत्म हुआ, तनाव खत्म हुआ, तो उसका असर सकारात्मक रूप से वैश्विक बाजार पर दिख रहा है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में, जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। बीते 24 घंटे में अगर देखें तो 1.1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिली है, WTI क्रूड में देखने को मिली है। यहां तक कि जो वैश्विक बेंचमार्क है वो डेटा ये बताता है कि वायदा भाव अगस्त में 0.45% गिरकर $46.73 प्रति बैरल पर आ गया था। और इसी के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो अब एक रास्ता ये खुल जाता है, दरअसल अमेरिका ने ईरान पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है, यानी वो भी अगले 60 दिनों तक अपना कच्चा तेल दुनिया के बाजार में बेच पाएगा। तो उससे असर क्या हो रहा है, अगर हम स्टॉक देख रहे हैं तो WTI जो ट्रेड है उसमें आज भी अगर जो कीमतें गिरी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अब ये 72.52 पर आ चुका है। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $77 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है। अगर आप देखें तो 76.38 हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड की कीमतें।
5: मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही छातों का बाजार भी पूरी तरह से गुलजार हो गया है। इस बार साधारण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक छातों की सबसे ज्यादा मांग देखने को मिली। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, मुंबई में मानसून छातों की बढ़ी डिमांड। देखिए मुंबई में मानसून के दस्तक देते ही छातों की डिमांड बढ़ गई है। बटन दबाते ही खुलने और बंद होने वाले छाते लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इनकी कीमत ₹100 से लेकर 3,000 तक है। सिर्फ छाते ही नहीं बल्कि शू, रेनकोट और वन टाइम यूज रेनकोट भी बाजार में धूम मचा रहे हैं। महंगे जूतों को बारिश से बचाने वाला शू रेनकोट लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। वहीं मात्र ₹18 का डिस्पोजेबल रेनकोट भी खूब बिक रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लोग वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन भी इन सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की ये खास रिपोर्ट।
9: मुंबई के कांदीवली के एक शॉप में इस समय मौजूद हूँ, वहाँ के ये ओनर हैं। कैसे हैं आप?
10: बस बढ़िया सर, आप बताएं।
9: आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि मस्त अच्छा खासा चल रहा है।
10: सर छाते तो बारिश के पहले ही लोग लेना चालू हो जाते हैं। बॉम्बे में ऐसा है, बारिश होने से पहले लोग छाता लेना स्टार्ट कर लेते हैं।
9: अच्छा, मैं ज्यादा यहाँ वहाँ बात ना करते हुए ये मुझे बताइए कि इस वक्त क्या सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा छाता आपके?
10: बहुत कुछ ये है, हमारा स्टोर बेसिकली ना ट्रेंडिंग छातों के हिसाब से चलता है। हम रेगुलर छाते नहीं करते, ट्रेंडिंग पीसेज है और हमारे ₹100 से छाते चालू होते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला बहुत चल रहा है, ऑटोमेटिकली खुलता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है,
9: बॉक्स में आता है।
10: बकायदा ऐसे बॉक्स में आता है, देखिए पूरी पैकिंग में आता है। और इसका यूज ना बहुत लोग करते हैं जो अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, या फिर थोड़े जो हमारे बड़े पेरेंट्स होते हैं उनको रेगुलरली अम्ब्रेला ओपन करने में काफी दिक्कत होती है, जो हमने देखा था। तो देखिए ये है, हमने खाली बटन दबाया एंड ये छाता ओपन हो गया एंड यही बटन से क्लोज हो गया, तो आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बच्चों का छाता है ये, काफी रेगुलरली चलता है, देखिए सर पे लगा के और बच्चे चल सकते हैं। उनको अपने हाथ में ना ये ऐसे लॉक करके हम सर पे रख सकते हैं, तो चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये वाला छाता है। फिर हमारे पास में एक बहुत यूनिक छाता है, लाइट वाला छाता बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम चलते चलते अंधेरा आता है, तो अंधेरे में हमें ना हो पे, तो इसके लिए ये टॉर्च वाला छाता है। देखिए पीछे से लाइट चालू हुई और टॉर्च हो गया। ये ₹100 वाला छाता है, ओपन करके क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा कोई ये नहीं कि हम दूसरा, मैं कलर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आप अगर डिटेल देखेंगे तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा छाता है। कि लोग दूर दूर से आते हैं सर, बॉम्बे तो ठीक है, लोग पुणे से आ रहे हैं, लोनावला से आ रहे हैं।
9: लेडीज के लिए स्पेशली क्या है,
10: बैग वाला छाता देखिए, पर्स की तरह लेके चलो और आपका छाता हो गया।
9: निकालिए,
10: यस यस यस, ये देखिए ना इसका गोल्ड फिनिश है, इसको हम ओपन करेंगे और अंदर से भी यूनिक है। मैं आपको एक दो और छाते भी बताऊंगा जो कि बॉम्बे की बारिश के लिए बने हुए हैं स्पेशली। ये देखिए अंदर से देखिए कितने अच्छे हैं, यहाँ से देखिए कितने अच्छे हैं। ये वाला तो हैंडल वाला छाता है। अब ये देखिए इसके अंदर स्प्रिंग कितना अच्छा है। अब मुंबई की बारिश आई और ये देखिए ऐसे करके उड़ गया। अब आप स्ट्रगल करेंगे करने के लिए, एक क्लिक कीजिए आपका छाता बंद हो गया।
11: मतलब इसे अपने हाथ से
10: yes.
11: और आराम से आप भीगेंगे।
10: एंड 435 रुपीज का है, आप इजीली इसको ऐसे करके लॉक भी कर सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, बारिश होती है तो इधर गीला हो गया। ओके मैं आपको चाहिए तो डेमो करके भी दिखा सकता हूँ। पानी यहाँ पे आ गया एंड इसके बाद में पानी सब अंदर चले गया। अच्छा। मतलब गीला नहीं रहेगा, पकड़ोगे तो सूखा रहेगा।
11: क्या बात है, शानदार एकदम। मतलब मजा आ गया, एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग, एक से बढ़कर एक क्वालिटी, एक से बढ़कर एक डिमांडिंग। छतरियों की बात करें या फिर किसी और चीज की, आज ये तो बात बिल्कुल अच्छी हो गई है कि भाई बारिश के आने के बाद कम से कम लोग अपने पसंद के छाते ले सकते हैं और बहुत ही सस्ते में ले सकते हैं, 100 रुपए से लेकर के सीधे
10: 3000 रुपए तक।
11: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जय कपूर, अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीजें समझाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष डी के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
5: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
13: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
14: Swing and a foul out of play off to the left.
13: Big 12 Radio.
15: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
13: Talk Sport.
16: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
13: And more. Search sports to find the stations covering your team.
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में

0: शिरडी के साई दरबार में सालाना 2.5 करोड़ श्रद्धालु टेकते हैं मत्था। ट्रस्ट के पास 550 किलो सोना हर साल आता है 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां। श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए लगाए गए शेड। 3 जुलाई को शुरू होगी पवित्र यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 12.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब भी पहुंचे करीब 1.5 लाख श्रद्धालु। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर के टॉप बल्लेबाज बने शुभमन गिल। विराट कोहली को छोड़ा पीछे। ईशान किशन ने लगाई 21 स्थान की छलांग।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी जानकारियां, सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं और कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला सा कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए हुए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में ओमान में मरे एक भारतीय नागरिक के शव को बांधकर भारत भेज दिया गया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। वहीं दूसरी खबर में हम उस वायरल वीडियो की जांच करेंगे जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के उन गौरक्षकों का है जिन्हें हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। क्या है वायरल दावे और वीडियो की पूरी सच्चाई, दिखाएंगे आपको। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति को जहाज पर घायल अवस्था में लेटा हुआ दिखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ओमान में मरे एक भारतीय नागरिक के शव को बांधकर भारत भेज दिया। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस रिपोर्ट में देखिए।
3: एक भारतीय नाविक के शव को बताकर एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो किसी पानी के जहाज का है जहां पर एक आदमी लेटा हुआ है और उसके हाथ पैर बंधे हैं। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक भारतीय नाविक का शव है जिसे अमेरिका ने इस हाल में भारत भेजा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील कर रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ओमान के डुक्कम बंदरगाह पर खड़े एक जहाज पर सवार एक भारतीय नागरिक की स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं के कारण मौत हो गई। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार 13 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि मृतक की पहचान निशांत उथनाथन के रूप में की गई है। दरअसल ओमान की खाड़ी में 10 जून को हुए अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इसी संदर्भ में ये वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है।
2: दरअसल ओमान की खाड़ी में 10 जून को हुए अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जहाज पर एक आदमी लेटा हुआ है और उसके हाथ पैर भी बंधे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एक भारतीय नाविक का शव है जिसे अमेरिका ने इस हालत में भारत भेज दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमने ये देखा कि जो आदमी लेटा हुआ है उसमें हरकत हो रही है। अगर वीडियो किसी नाविक के शव का है तो इसमें हरकत क्यों देखने को मिल रहा है, यह हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि डुकम बंदरगाह पर खड़े एमटी सेलेस्टियल जहाज पर एक भारतीय नाविक निशांत

0: उर्फ नाथन की स्वास्थ्य कारणों से मौत हो गई थी। इसी दौरान मस्कट में भारतीय दूतावास के एक्स हैंडल से 14 जून 2026 को एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी गई थी कि निशांत के शव को अस्पताल में भेज दिया गया। दूतावास पीड़ित परिवार ओमान के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अगर दावा सच है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकलकर क्यों नहीं आई? दूसरा सवाल कि किसी और घटना से संबंधित वीडियो के जरिए गलत जानकारी फैलाने की कोशिश तो यहां नहीं की जा रही, आखिर सच्चाई क्या है? चलिए आपको दिखाते हैं।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ये वीडियो मिला जिसे 10 जून 2026 को पोस्ट किया गया था। इसमें लिखा है, ऑनबोर्ड शिप पर फायर ड्रिल के दौरान चोट लग गई। इस प्रोफाइल से 15 जून 2026 को इसी मॉक ड्रिल की एक और तस्वीर शेयर की गई थी। इस पर एक यूजर्स ने कमेंट कर इसे मॉक ड्रिल की तस्वीर बताया। 17 जून 2026 को इसी अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें स्ट्रेचर पर लेटे हुए एक युवक को देखा जा सकता है। इंसिडेंट में वायरल वीडियो का की फ्रेम भी दिखाया गया है। पोस्ट में कहा गया है कि वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया गया है, ये ड्रिल का वीडियो है। 17 जून को ही एक अन्य वीडियो में यूजर्स ने वीडियो को मिसयूज करने वाले पर केस करने की चेतावनी दी है।
2: ड्रिल वाला एक वीडियो अपलोड किया था, ये लड़का स्ट्रक्चर ड्रिल पर सोया था लेकिन लोगों ने गलत मिसयूज कर रहा है क्योंकि वो वीडियो 1.5 मिलियन क्रॉस कर रहा है। तो प्लीज भाई इसको आप गलत मिसयूज मत करो, ये लड़का देखो सही सलामत है, देखो खाना खा रहा है, जिंदा है, ठीक है, दिख रहा है ना, यही फेस है। स्ट्रक्चर ड्रिल होता है हम लोग का जहाज पे जो सिखाया जाता है कि इंजर्ड होने पे कैसे उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो प्लीज भाई उसको आप गलत मिसयूज मत करो, ठीक है ना, नहीं तो मालूम है ना, अगर गलत मिस करो यूज करोगे तो मैं आपके ऊपर FIR कर सकता है, इसलिए प्लीज उसको गलत मिसयूज मत करो, ये लड़का सही सलामत जिंदा है।
1: प्रोफाइल में जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की तस्वीरें और वीडियो भी देखने को मिले। इस प्रोफाइल में दिए हुए एक यूट्यूब चैनल के लिंक को भी हमने चेक किया। इस पर 21 जनवरी 2026 को एक मॉक ड्रिल का वीडियो अपलोड किया गया था। फैक्ट चेक टीम ने वीडियो पोस्ट करने वाले दिलीप कुमार चंद्रवंश से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो मुंबई के एक छोटे जहाज पर टेक्नीशियन है। 15-20 दिन पहले उनके जहाज पर एक स्ट्रक्चर ड्रिल हुई थी जिसमें बताया गया था कि किसी घायल को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाएं। उसी ड्रिल के वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जो व्यक्ति घायल बना है वो डेक के रखरखाव, स्टीयरिंग और कार्गो हैंडलिंग जैसे जमीनी कार्य करने वाला कर्मी है। साफ है वायरल वीडियो एक मॉक ड्रिल का है, इसका ओमान में हुई भारतीय नाविकों की मौत के मामले से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो को शेयर कर यूजर्स गलत दावा कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: पुलिस हिरासत में लिए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो मध्य प्रदेश के उन गौरक्षकों का है जिन्हें हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वायरल हो रहे वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस रिपोर्ट में देखिए।
3: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की एक सेशंस कोर्ट ने हाल ही में मॉब लिंचिंग से जुड़े एक मामले में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 2022 में नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में नजीर अहमद नाम के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने फैसला इसी मामले में सुनाया था। अब कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लिए जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़के को कॉलर से पकड़कर जबरन पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी के आसपास काफी भीड़ नजर आ जाती है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये मध्य प्रदेश का वीडियो है और इसमें वही गौरक्षक नजर आ रहे हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि हिंदुओं के नाम पर चुनी हुई सरकारों से लेकर हिंदुओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करने वाले संगठनों तक किसी एक को भी फर्क नहीं पड़ रहा इन 14 गौरक्षकों के जीने या मरने से, जिसका हम दूध पीते हैं, जिसकी महिमा का बखान हमारे वेद और शास्त्रों में किया जाता है, वो हमारी गौ माता है और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। उसी धर्म को निभाने वाले मध्य प्रदेश के इन 14 गौ रक्षकों को एक धर्म विशिष्ट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जज द्वारा उम्र कैद की सजा दे दी गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़के को कॉलर से पकड़कर जबरन पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी के आसपास काफी भीड़ नजर आ रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का वीडियो है और इसमें वही गौरक्षक नजर आ रहे हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यही वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच छूट जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो के आखिरी हिस्से में एक बोर्ड नजर आया जिस पर राजस्थान जैसा लिखा हुआ देखने को मिला। अब वायरल वीडियो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, तो इसमें राजस्थान का बोर्ड क्यों दिख रहा है? इसके अलावा पुलिस की गाड़ी के आसपास कुछ झंडे भी देखने को मिले जो कांग्रेस के झंडे जैसे दिखाई दे रहे थे। ऐसे में हमें ये इशारा तो मिल गया कि किसी प्रदर्शन का ही ये वीडियो हो सकता है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल इसी के साथ जोड़ते हुए आपके सामने है कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं किसी प्रदर्शन के बाद हुई गिरफ्तारी के वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। चलिए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको सच्चाई क्या है।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की। विजयपाल अंडरस्कोर कुरी अंडरस्कोर रू नाम का एक हैंडल नजर आता है। सर्च करने पर पता चलता है ये विजयपाल कुड़ी नाम के एक व्यक्ति का इंस्टाग्राम अकाउंट है। विजयपाल कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ता हैं और एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने 3 अप्रैल को ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान का है, जहां उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के संबंधित एक कार्यक्रम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इससे संबंधित उन्होंने कई वीडियोस अपने अकाउंट पर पोस्ट किए थे। इसमें NSUI के कार्यकर्ता RSS के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेती हुई दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में मरुधरा नारी संगठन के बैनर तले 3 अप्रैल को नारी सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम होना था। NSUI के कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया। NSUI ने आरोप लगाया कि यह कार्यक्रम RSS समर्थित है और इसके जरिए एक खास विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मामला बढ़ने पर पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के लिए विजयपाल कुड़ी से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वायरल दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये 3 अप्रैल को हुए प्रोटेस्ट का वीडियो है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो NSUI के कार्यकर्ताओं का है, जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS से संबंधित एक कार्यक्रम के आयोजन का विरोध किया था। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए इसके साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे भारत वर्ल्ड की हलचल। देखते रहिए GMT।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now. Come.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: लेसे के साथ वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंतिम दौर में ले जाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक छोटे बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अपनी गजब की फुटबॉल स्किल से इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। वायरल क्लिप में ये बच्चा जिस अंदाज में फुटबॉल को अपने इशारों पर नचा रहा है, उसे देखकर पब्लिक हैरान है और उसकी तुलना दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ियों से कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बच्चा फुटबॉल के साथ कमाल के करतब दिखा रहा है। वो फुटबॉल को एक पल के लिए भी जमीन पर गिरने नहीं देता और लगातार हवा में ही उसे पैरों से कंट्रोल करता रहता है। बच्चे का ये बैलेंस और फुटवर्क देखकर अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैरान रह जाए।
2: कभी किसी के घर जा रही, अपने घर नहीं रह सकती।
1: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो अपनी सादगी और मासूमियत की वजह से सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। ये वीडियो भी उन्हें में से एक है जिसने हंसी के साथ साथ बचपन की प्यारी यादें भी ताजा कर दी है।
2: खेल सकते हो, बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन टाइम होता है हर चीज का खेलने का, ऐसे नहीं कि आप कभी।
1: वीडियो में एक माँ अपनी बेटी को समझाती हुई नजर आती है। माँ प्यार से शिकायत करती है कि वो हर समय बाहर खेलने चली जाती है, कभी अपनी सहेलियों को घर बुला लेती है तो कभी खुद उनके घर पहुँच जाती है।
2: कभी किसी के घर जा रही, अपने घर नहीं रह सकती। कभी किसी को अपने घर ले आती है।
1: माँ बच्ची से कहती है कि उसे थोड़ा समय घर पर भी बिताना चाहिए और हर वक्त बाहर खेलना ठीक नहीं है। माँ की बात सुनकर बच्ची पहले तो भावुक हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद वो अपनी मासूम आवाज में ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई मुस्कुरा उठता है। बच्ची कहती है, क्या मैं अपनी दोस्तों को भी नहीं बुला सकती? जब माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर समय बाहर जाना अच्छी बात नहीं है, तब बच्ची तुरंत जवाब देती है, जब आप जाती हो तभी तो मैं भी जाती हूँ।
2: क्या होता है,
3: मैं अपनी फ्रेंड को नहीं ला सकती अपने घर।
2: बिल्कुल नहीं ला सकते आप अपनी फ्रेंड को घर।
3: बाहर खेल सकते हैं,
2: बाहर खेल सकते हो, बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन टाइम होता है हर चीज का खेलने का, ऐसे नहीं कि आप कभी भी चले जाओ किसी के घर पे भी।
1: बेटी की ये बात सुनकर माँ खुद भी हंस पड़ती है। कभी कभी सबसे प्यारी कहानियाँ बिना किसी प्लानिंग के बन जाती है। एक डिलीवरी पार्टनर जब पार्सल देने पहुंची तो दरवाजा खोलने आया एक नन्हा बच्चा। डिलीवरी प्रूफ के लिए जैसे ही कैमरा निकाला, बच्चे ने मुस्कुराते हुए ऐसा क्यूट पोज दिया कि तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसकी मासूमियत, आत्मविश्वास और विक्ट्री साइन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। ये फोटो याद दिलाती है कि खुशी अक्सर जिंदगी के सबसे छोटे और अनपेक्षित पलों में छिपी होती है। भाई बहन के इस क्यूट रिश्ते ने हजारों लोगों के दिल को खुश कर दिया है। वीडियो किसी स्कूल का है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा हाथ में टिफिन बॉक्स को लेकर चला जा रहा है। स्कूल की टीचर बच्चे से पूछती है, किसका लंच देने आए हो? बच्चा अपनी तोतली जबान में कुछ कहता है। टीचर कुछ समझ नहीं पाती है, फिर पूछती है, क्लास आपको पता है? बच्चा सिर हिलाता है और चलने लगता है और फिर क्लास में पहुँच कर अपनी बहन को टिफिन दे देता है। भाई बहन के इस खूबसूरत पल को देखकर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि बेजुबान जानवर भी इंसानों की तरह ही भावनाएं महसूस करते हैं, और ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स सोफे पर बैठकर अपने छोटे से बच्चे को बड़े प्यार से दुलार रहा है। वही पास में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता बैठा है। बच्चे को मिल रहे प्यार को देखकर डॉगी का चेहरा ऐसा उतर गया है मानो उसका दिल ही टूट गया हो। उसे लग रहा है कि बच्चे के आने से उसका प्यार बढ़ गया है। वीडियो में सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात डॉगी के चेहरे के एक्सप्रेशन है। उसकी आंखें पूरी तरह से डबडबाई हुई है और वो बिना पलक झपकाए बस अपने मालिक को देखा जा रहा है। मालिक अपने बच्चे में खोया हुआ है और इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसका वफादार दोस्त बगल में बैठकर रोने को हो रहा है। वीडियो के आखिर में जब कैमरे को डॉगी की आंखों पर जूम किया जाता है तो साफ दिखता है कि वो कितना उदास है। ऐसा लगता है कि वो बस अभी रो पड़ेगा मानो अपने मालिक से कह रहा हो कि एक बार मुझे भी देख लो। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये कहानी है तमिलनाडु के रहने वाली 76 साल की एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मालती की, जो पिछले 10 सालों से सैकड़ों भूखे बंदरों का पेट भर रही है। मालती ने तमिलनाडु पुलिस में पूरे 33 साल तक अपनी सेवाएं दी और साल 2010 में रिटायर हुई। रिटायरमेंट के बाद जहां लोग आराम की जिंदगी चुनते हैं, वहीं मालती जी ने बेजुबान जानवरों का सहारा बनने का फैसला किया। साल 2015 से उन्होंने मदुरई के तिरुपरम कुंडरम इलाके में बंदरों को खाना खिलाना शुरू किया और तब से ये सिलसिला आज तक नहीं रुका। मालती हर शनिवार दोपहर को इलाके के अलग अलग 6 ठिकानों जैसे मुरुगन मंदिर, सरवण पोई गई और गुफा मंदिर पर जाती है। वहाँ करीब 350 से 400 बंदर रहते हैं। कमाल की बात यह है कि बंदर मालती जी की आवाज़ को पहचानते हैं। जैसे ही वो आवाज़ लगाती है, सारे बंदर बिना किसी डर के उनके पास दौड़े चले आते हैं। बढ़ती उम्र और सेहत की दिक्कतों के बाद भी वो हर हफ्ते बिना छूके इस नियम को निभाती है। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल करनी शुरू कर दी, लेकिन मजाक धीरे धीरे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ही मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं। एक बुजुर्ग शख्स का अनोखा देसी जुगाड़ इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। कम चीजों से तैयार की गई ये अनोखी तकनीक देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और इसके पीछे की सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने साधारण साइकिल को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि वो किसी छोटी जेसीबी मशीन जैसी दिखाई देने लगती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि साइकिल के आगे एक खास ढांचा लगाया गया है, जिसकी मदद से मिट्टी उठाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जा रहा है। ये देसी तकनीक देखने वालों को काफी अलग लग रही है। आमतौर पर मिट्टी खोदने या उठाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी कीमत लाखों रुपए होती है। लेकिन इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा जुगाड़ ये साबित करता है कि क्रिएटिव सोच और मेहनत से कई मुश्किल काम आसान बनाए जा सकते हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: क्या निर्जला एकादशी पर कोई विशेष दान किया जाता है? निर्जला एकादशी का जल से क्या संबंध है और निर्जला एकादशी का गायत्री जयंती से क्या संबंध है? क्या है निर्जला एकादशी की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: No ticket, no line, just showtime. Qwelo Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwelo Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि आज आप देखेंगे प्रयागराज तक राम वन गमन पथ, 14 वर्ष के वनवास में जिस पथ चले थे श्री राम, साथ ही अटूट श्रद्धा विश्वास और भक्ति की झांकी। 1 साल के अंदर मां वैष्णो देवी का धाम में 50 लाख भक्तों को मां का बुलावा। इसके अलावा वनस्पति वैज्ञानिकों ने दिखाई नई राह, खेती में आमदनी की बहार लाने वाला फंगस का ट्रायल रहा सफल। तमाम खबरें होंगी लेकिन पहले हेडलाइंस।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जमकर बरसे बादल, बारिश से तापमान में आई गिरावट। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। आईसीसी के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। वाराणसी में जल्द शुरू होगा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक सिर्फ 50 रुपए किराया, श्रद्धालुओं का विश्वनाथ धाम आना भी होगा आसान। शिरडी के साई दरबार में सालाना 2.5 करोड़ श्रद्धालु टेकते हैं मत्था, ट्रस्ट के पास 550 किलो सोना, हर साल आता है 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए लगाए गए शेड, 3 जुलाई को शुरू होगी पवित्र यात्रा। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात राम वन गमन मार्ग की, जी हाँ, जो कि बनकर करीब करीब तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो सकता है। अयोध्या से चित्रकूट तक बनने वाला ये राम वन गमन मार्ग प्रयागराज से होकर गुजर रहा है, जिसे श्रृंगवेरपुर धाम से जोड़ा गया है। ये वही धाम है जहां पर 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण रुके थे।

0: श्रृंगवेरपुर धाम, ये वही जगह है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण गुजरे थे। यही वो अपने मित्र निषाद राज से मिले थे। माता सीता ने यहीं पर गंगा मैया की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। केवट राज ने इसी जगह से राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव से गंगा नदी पार कराई थी। इसलिए कहा जाता है कि श्रृंगवेरपुर धाम से भगवान राम का गहरा नाता है। इतनी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली जगह को भी राम वन गमन मार्ग से जोड़ा गया है, जिससे इलाके के लोग बेहद खुश हैं।
1: राम भक्तों के लिए तो आप समझिए कि सोने पे सुहागा है। और जो चित्रकूट जाते थे, अब वो एक अयोध्या से श्रृंगवेरपुर धाम, चित्रकूट तीनों का दर्शन करेंगे। श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि का, और यहाँ पर जहाँ भगवान ने राम में विश्राम किया उसका, और चित्रकूट में कामतानाथ स्वामी का, और अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन, तीनों एक साथ हो जाएंगे, एक ही रूट पे है।
2: राम भक्तों के लिए अच्छी पहल।
1: राम भक्तों के लिए आप समझिए कि उनके लिए प्राण तत्व जैसे होता है ना, कि हमारे लिए वो मिल गया जो हमको चाहिए था। अब मतलब एक सहज रूप से हमारा चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर धाम और अयोध्या तीनों का दर्शन सहज हो जाएगा।
0: आपको बता दें कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जिन जगहों से होकर गुजरे, उन्हें मिलाकर राम वन गमन मार्ग बनाया जा रहा है। यूपी में ये राम वन गमन मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। करीब 170 किलोमीटर लंबे इस राम वन गमन मार्ग को बनाने की शुरुआत साल 2023 में हुई थी, जिसका काम अब पूरा होने को है। इस मार्ग पर दो पुल भी पड़ते हैं, जिनमें से एक पुल श्रृंगवेरपुर में लगभग बनकर तैयार है। गंगा नदी पर बने इस पुल की लंबाई 1100 मीटर है और इसको बनाने में 1200 करोड़ रुपए लगे हैं। राम वन गमन मार्ग का बचा हुआ काम भी तेजी से निपटाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं।
3: राम गमन मार्ग बनकर तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। इस रामगमन मार्ग की खास बात, 200 से अधिक किलोमीटर की दूरी रखी गई है। सबसे बड़ी बात, भगवान राम ने वनवास के दौरान जिन जगहों पर रुके थे, उन जगहों को एक ही रास्ते पर कनेक्ट किया गया है, यानी अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट जाने वाले श्रद्धालुओं को अब कोई अलग रास्ता नहीं, बल्कि रामगमन मार्ग से होकर दर्शन करना होगा। यानी ये रामगमन मार्ग भगवान राम में आस्था रखने वालों के लिए गिफ्ट है, और भगवान राम के हर एक जगह जहां पर उन्हें वनवास के दौरान रुके थे, उन जगहों को कनेक्ट किया गया है।
0: अयोध्या से चित्रकूट तक राम वन गमन मार्ग के पूरा होने से इन इलाकों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के साथ ही आर्थिक लिहाज से भी तस्वीर बदलेगी। इसका एक फायदा ये भी होगा कि भक्तों को राम मंदिर के साथ साथ राम वन गमन के पूरे पथ को देखने और समझने का मौका भी मिलेगा।
4: पहले तो घूम के जाते थे हर एक जगह पे, अब ये है कि अब एक ही जगह पे, एक ही रोड से जहाँ जहाँ राम भगवान गए थे वहाँ वहाँ दर्शन आराम से कर सकते हैं। अयोध्या है, श्रृंगवेरपुर है, चित्रकूट है, हम लोग पहले घूम के जाते थे, उल्टा हम लोग को पड़ जाता था। अब है एक ही रोड से हर एक जगह के दर्शन कर सकते हैं। अब जब से ये अच्छा बन गया, एक रोड से ही घूम लेते हैं, अब श्रृंगवेरपुर आते हैं, अयोध्या जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, हम लोग को बहुत बहुत अच्छा, यानी बहुत सबके लिए अच्छा हो गया।
5: पहले हम लोग को जब अयोध्या जाना होता था, चित्रकूट जाना होता था तो हम अलग अलग मार्गों से जाते थे, लंबी दूरी तय करते थे। लेकिन केंद्र सरकार, या तो ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो ये राम वन गमन मार्ग बना हुआ है, हम लोगों को एक ही मार्ग से पहुँचा दे रहा है अयोध्या। और ये जो दूरी थी पहले, वह कम हो चुकी है। अब राम भक्त आसानी से और बहुत ही आस्था के साथ अयोध्या पहुंच सकते हैं, और सीधे न केवल अयोध्या बल्कि श्रृंगवेरपुर धाम में दर्शन करते हुए सीधे चित्रकूट जा सकते हैं।
0: इस राम वन गमन मार्ग के बनने से श्रृंगवेरपुर, कौशाम्बी और चित्रकूट जैसे स्थलों पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में न सिर्फ भारी बढ़ोतरी होगी, बल्कि इन शहरों में विकास तेज होगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड स्टूडियो।
6: और अगली खबर माँ वैष्णो देवी के धाम कटरा से आई है। देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक इस देवी धाम में इस साल श्रद्धालुओं ने अपनी मौजूदगी से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल 22 जून तक 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने मां के दर पर जाकर हाजिरी लगाई है। ये उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक भी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों की संख्या में आम दिनों के मुकाबले जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
2: न कोई तीज त्योहार और न ही नवरात्रि, बावजूद इसके माँ वैष्णो देवी के पवित्र धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब हर रोज यूं ही उमड़ रहा है।
7: कहाँ से आए हो?
2: यमुनानगर। देश के अलग अलग राज्यों से आए इन श्रद्धालुओं में कोई जयकारे लगाते हुए भवन की तरफ जा रहा है तो कोई भजनों के जरिए माँ की महिमा गा रहा है।
8: चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। चलो बुलावा
2: माँ वैष्णो के प्रति भक्तों की इसी अटूट आस्था की बदौलत इस साल इस देवी धाम के नाम एक उपलब्धि जुड़ी है। ये उपलब्धि है 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु की। आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल 22 जून तक 50,70,000 श्रद्धालु माता रानी के दरबार में माथा टेक चुके हैं।
7: इस समय हम मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में, जो कि बेस कैंप है माता वैष्णो देवी यात्रा का। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल ही जो है श्रद्धालुओं के आंकड़े जारी किए हैं, यानी कि इस वर्ष जो अब तक श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आए हैं उनके आंकड़े जारी हुए हैं और 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा कर ली है। 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग भागों से यहां पहुंच रहे।
2: एक दिन पहले श्राइन बोर्ड की तरफ से सोशल मीडिया एक्सपर्ट जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार पिछले साल 2025 में इसी अवधि तक करीब 39,84,000 श्रद्धालुओं ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए थे, जबकि इस साल ये संख्या बढ़कर 50,70,000 पहुंच गई है। यानी एक साल में करीब 10,86,000 से ज्यादा श्रद्धालु माता रानी के दरबार में पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या में इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे वजह है यात्री सुविधाओं में लगातार किया गया विस्तार। श्राइन बोर्ड ने ठहरने की सुविधाएं, साफ सफाई, क्राउड मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सर्विस, बैटरी कार, रोपवे और आपदा प्रबंधन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए RFID जैसी सुविधा भी लागू की गई, जिसके चलते वैष्णो देवी आने वाले भक्तों की न सिर्फ यात्रा आरामदायक हुई बल्कि सुरक्षित भी हुई।
7: ये जो आंकड़ा है काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि पिछले वर्ष अगर हम इसी समय की बात करें, यानी कि जून महीने तक, जनवरी से जून 2025 तक की बात करें, तो 39.84 लाख श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आए थे और इस वर्ष अगर हम देखें तो 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, यानी कि 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो है एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि श्रद्धालु जो हैं भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। और यहां अगर हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, उनका कहना है कि पिछले कुछ समय में यहां पर जो सुविधाएं हैं, चाहे यात्रा मार्ग हो, भवन का क्षेत्र हो, सुविधा जो है वो बढ़ाई गई है, सुविधाओं में जो है बढ़ावा हुआ है, चाहे नए भवनों का निर्माण हो या दूसरी सुविधाएं हो। इस समय अगर आप देखें तो मेरे पीछे ये दर्शनी द्योड़ी है, यहीं से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो शुरू होती है।
9: कश्मीर जाने के लिए आया था और मुझे खुद को पता नहीं, कटरा की बस मिल गई और कटरा बस मिलने मेरे को इतना खुश हुआ कि माता ने मेरे को मतलब इतना बिना बुलाए बुलावा आया है, तो मेरे को धर्म से ज्यादा खुशी महसूस हो रही है।
2: वैसे तो साल भर ही वैष्णो देवी धाम भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन अगर मौका नवरात्रि का हो या फिर त्योहार का, तो यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये श्रद्धालु भी मानते हैं कि बीते कुछ सालों में यहां यात्री सुविधाओं में अच्छा खासा विस्तार हुआ है, जिसका फायदा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और दिव्यांगों से लेकर बीमार व्यक्तियों तक को हुआ है।
7: जो लोग चलने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, उनके लिए यहाँ पर कई व्यवस्थाएं हैं। यहाँ घोड़ा है, पिट्ठू रहते हैं, पिट्ठू की सुविधा रहती है, पालकी की सुविधा रहती है, और बाकी यहाँ चॉपर सर्विस तो रहती है दिन में, कि जो लोग चॉपर के जरिए पहुँचना चाहते हैं चॉपर की भी यहाँ पर सुविधा रहती है। और अर्धकुमारी से देखिए, अर्धकुमारी जो है लगभग 6 किलोमीटर दूर है यहाँ प्रवेश द्वार, जो यात्रा मार्ग है, जहाँ यात्रा मार्ग शुरू होता है यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर अर्धकुमारी है। और अर्धकुमारी से बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है भवन तक, यानी कि अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी कार की भी सुविधा है।
10: पहले भी आए हैं दर्शनों के लिए,
11: पहली बार आए हैं।
12: मेरी माता जी दूसरी बार आ रही हैं।
10: अच्छा, पहले आ चुकी
12: हैं। हाँ, पहले आ चुकी हैं माता जी।
10: तो क्या भाव है मन में?
12: बहुत बहुत बहुत बढ़िया भाव है मन में, और बड़े दिनों से मन में तमन्ना थी कि माता जी का दर्शन हो, और आज ये पूरा हो रहा है।
2: माँ वैष्णो देवी के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में आने वाले 2 महीनों में उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे भक्त भी हैं जो अमरनाथ यात्रा के साथ साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा में और तेजी देखने को मिल सकती है। कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब बात ऐसे फंगस की जिसको लेकर दावा है कि वो खरीफ और रबी फसलों की पैदावार बढ़ाने की ताकत रखता है। राजस्थान के थार मरुस्थल में उगने वाले खेजड़ी के पौधे की जड़ों में पाई जाने वाली इस फंगस से विकसित की गई रूटोनिक तकनीक किसानों के लिए आमदनी की नई उम्मीद जगा रही है। फसलों की पैदावार में 15-40% तक इजाफे के साथ रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 25-50% तक कमी का दावा किया गया है।

0: गेहूं, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कहने को तो ये अनाज है, लेकिन इनकी शक्ल में आपकी थाली तक कैंसर भी पहुंच सकता है और उसकी वजह है उर्वरक या कीटनाशक। पर अब खेतों में ज्यादा उपज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशकों से छुटकारा मिलने की आस पैदा हुई है।
1: खेती और किसानी को लेकर अक्सर दो बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, पहले किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए और दूसरी जो तमाम तरह के उर्वरक और कीटनाशक हैं जो कि विदेशों से मंगाए जाते हैं उन पर भारतीय किसानों की निर्भरता कम कैसे हो। इन दोनों ही समस्याओं का हल एक भारतीय वैज्ञानिक ने खोज निकाला है।
0: ऐसा दावा किया है कि नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लैब में खेती के लिए रूटोनिक नाम की एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिसकी मदद से माइकोराइजा जैसे मित्र फंगस पौधों की जड़ों और मिट्टी के बीच एक बेहतर स्वस्थ रिश्ता बनाता है। इस स्वस्थ संबंध के लिए वो पौधों या फसलों की जड़ों में रहकर उनके विकास में सहयोग करता है। आमतौर पर ये मित्र फंगस राजस्थान के थार मरुस्थल में उगने वाले खेजड़ी के पौधों की जड़ों में पाया जाता है जिसे कृत्रिम तरीके से लैब यानी प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, जिसके बाद ट्रायल के लिए पौधों के बीज, नवजात पौधे और मिट्टी में मिलाया गया ताकि फसलों के बेहतर विकास के लिए फंगस के महीन रेशे मिट्टी के पोषक तत्व और पानी को सोख लें। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि रूटोनिक तकनीक से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है।
2: इस फंगस को हमने अलग से कल्चर किया और फिर इसको पौधे के बीज से और सीडलिंग से और सॉइल में अप्लाई किया तो हमने क्या पाया कि ये जो फंगस है ये पौधे की जड़ों को कॉलोनाइज करता है, यानी कि इनकी जड़ों के अंदर जाके रहता है और अपने बहुत ही महीन रेशे जिनको हम अंग्रेजी में हाइफे कहते हैं उनको जड़ों के साथ मिट्टी में निकालता है। इससे क्या होता है कि ये हाइफे मिट्टी से पोषक तत्व सोखते हैं और साथ में पानी को सोखते हैं, तो इससे पौधों की ग्रोथ जो है बढ़ जाती है, पौधों का प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बढ़ता है और इस प्रक्रिया से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इन सभी सतत चीजों से पौधों की जो नेट यील्ड होती है वह बढ़ जाती है।
0: जैसे पंजाब, हिमाचल के अलावा राजस्थान के कई खेतों में भी रूटोनिक तकनीक का ट्रायल किया गया। इस दौरान 15-40% तक फसलों की पैदावार में इजाफा दर्ज किया गया। इसके अलावा यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 25-50% तक चौंकाने वाली कमी दर्ज की गई। दावा है कि गर्म से गर्म इलाके से लेकर बेहद ठंडे लद्दाख तक माइकोराइजा जैसे इस फंगस ने अपनी क्षमता साबित की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कम बारिश और सूखे वाले इलाकों में भी ये काम करता है जिसके बाद सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 148 तरह के पौधों पर ट्रायल किया गया जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, जौ जैसी अनाज की फसल शामिल रही।
2: इसको हमने टोटल 148 पौधों में टेस्ट किया है और उन 148 पौधों में हमने ये पाया कि ये एक वाइड होस्ट रेंज प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग फंगस है। इसको हमने सीरियल्स में लिया, हमने इसको पल्सेस में लिया, ऑयल सीड्स में लिया और वेजिटेबल्स में लिया और शुगर केन में लिया, पोटैटो में लिया, सभी तरह की ग्वार गम में लिया, सभी तरह की मेजर क्रॉप्स में हमने इसको अप्लाई किया है, ना सिर्फ अपने ग्रीन हाउस में बल्कि फील्ड कंडीशंस में भी हमने इसको अप्लाई किया है और हमने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं इसकी एप्लीकेशन में और वह सब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं।
0: खेतों में रूटोनिक के कई फायदे हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि ये किसानों की जेब पर भारी पड़ेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि एक एकड़ फसल के लिए इसका खर्च सिर्फ 1,000 से 1,500 के बीच आता है। वहीं आलू, टमाटर या कोई भी सब्जी उगाने में इस तकनीक के इस्तेमाल की कीमत ना के बराबर आती है।
2: हम जब जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो सीड ट्रीटमेंट है। अगर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बड़े से बड़े सीड एप्लीकेशन रेट जहां होते हैं जैसे गेहूं है, आलू है, शुगर केन है, तो वहां 1 किलो प्रति एकड़ की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जब छोटे सीड आते हैं जैसे टमाटर है और अलग सीड है तो हमें 20 से 25 ग्राम में भी वो काम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉस्ट इसकी जो मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम रेंज भी ले लें, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 1,000-1,500 रुपये में मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ। अलग अलग कंपनीज के अपने अपने अलग अलग प्राइस होते हैं, तो ये मैक्सिमम आपको कॉस्ट जाएगी।
0: खेती में बढ़ती लागत और जलवायु की चुनौतियों के बीच अब उम्मीद ऐसी तकनीकों से जुड़ रही है जो कम संसाधनों में बेहद उत्पादन दे। नोएडा से निकली रूटोनिक जैसी पहल आने वाले समय में खेती का तरीका बदल सकती है।
1: खर्चा कम, कमाई ज्यादा, और सबसे बड़ी बात कि जो भी इसका रूटोनिक का इस्तेमाल करके जो भी फसल या सब्जी उगाई जाएगी उसमें न्यूट्रिशंस भी ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें कीटनाशक और उर्वरक कम होगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये आपकी हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ मामला है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस तक पहुंच पाए और इसका इस्तेमाल कर पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
3: 12 जून को रिलीज हुई इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा ने पहले हफ्ते में थोड़ी धीमी शुरुआत की, लेकिन अब दर्शकों की तारीफ और मजबूत वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की है। दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई में 134% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। इसी के साथ भारत में फिल्म मैं वापस आऊंगा का अब तक कुल नेट कारोबार 29 करोड़ 85,000 रुपए हो गया है।

0: 12 जून को सिल्वर स्क्रीन पर उतरते ही पहले दिन 1,15,00,000 रुपए। रिलीज के पहले हफ्ते में आंकड़ा पहुंचा 12,25,00,000 रुपए और दूसरे वीकेंड यानी 10वें दिन कम होकर 5,75,00,000 का कारोबार। कुछ ऐसी ही हुई इम्तियाज अली की इस पीरियड रोमांटिक ड्रामा मैं वापस आऊंगा की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत, जो थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन अब फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का काफी फायदा मिल रहा है, जिससे कमाई में अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। खास तौर पर वीकडेज पर तो फिल्म की परफॉर्मेंस, उसका कमबैक तारीफ काबिल रहा। जहां आजकल भारी भरकम फिल्में बनाई जा रही हैं, फिल्म प्रमोशंस में भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही, ऐसे में इस लो बजट फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के ट्रेंड्स को चुनौती दी है, वो खुद में हैरान करने वाला है और किसी केस स्टडी से कम भी नहीं है। फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज के दौरान जहां 1,971 स्क्रीन्स पर थी, तो वहीं दूसरे हफ्ते में इसके शो की संख्या 2,631 तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ रुपए है। अगर ये फिल्म एक हफ्ते और ठीक ठाक रफ्तार से आगे बढ़ती है तो ये अपना बजट वसूल कर सकती है। हालांकि फायदे का सौदा बनने के लिए इसे करीब 100 करोड़ का कलेक्शन करना होगा, जो कि इस फिल्म के लिए फिलहाल तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वैसे जब से फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई, तब से उसे कॉकटेल 2, गवर्नर और भारत भाग्य विधाता समेत दूसरी कई रिलीज फिल्मों से भी टक्कर मिल रही थी। बावजूद इसके देर आए दुरुस्त आए वाली लाइन पर चलते हुए ही मैं वापस आऊंगा को दर्शक, सेलेब्स और क्रिटिक्स से भी अच्छा सपोर्ट मिला, जिन्होंने फिल्म के कलाकार नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ के काम को काफी सराहा। सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू पोस्ट किए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सिनेमा घरों में फिल्म देखने की अपील की। शायद यही वजह भी रही कि माउथ पब्लिसिटी के चलते ही फिल्म की कमाई पर पॉजिटिव असर पड़ा। सिग्नल की लेटेस्ट अपडेट बता रही है कि इस फिल्म ने मंगलवार यानी 23 जून को 3,10,00,000 रुपए की कमाई की, जो पिछले दिन यानी 22 जून की 2,50,000 की कमाई से सीधा सीधा डबल है। किसी फिल्म के लिए हफ्ते के बीच में ऐसी बढ़ोतरी बहुत कम ही देखने को मिलती है। जाहिर है दूसरे हफ्ते में जबरदस्त रफ्तार दिखाने वाली मैं वापस आऊंगा का भारत में अब तक कुल नेट कारोबार 29.85 करोड़ रुपए हो गया है। यानी ओपनिंग वीकेंड में ढीली ढाली परफॉर्मेंस दिखाने वाली इस फिल्म ने वीकडेज में हौले हौले ही सही जबरदस्त कमबैक किया। फिलहाल तो दर्शकों के अच्छे रिस्पॉन्स और सोशल मीडिया पर चल रही तारीफों के ट्रेंड के बूते फायदा बटोरने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा के कारोबार में और बढ़ोतरी की ही उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें न्यूज पथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
4: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
5: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
6: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
7: हमारी जिम्मेदारी। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

मिनट तक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 4:29 तक चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, साल में वैसे तो बहुत सारी एकादशियां पड़ती हैं, लगभग 24 एकादशी, अधिक मास में 26 हो जाती हैं। तो उसमें 2 एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है देवोत्थान एकादशी और एक है निर्जला एकादशी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के एक भाई थे भीम, वो अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उन्होंने केवल मात्र एक बार इसी एकादशी का उपवास रखा और मारे भूख के बेहाल होकर मूर्छित हो गए। तो भीम के नाम पर निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर अगर वास्तव में आप बिना जल के निर्जल उपवास रखते हैं तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी पर उपवास रखकर आप पूजा, उपासना, ध्यान और साधना अगर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निर्जला एकादशी पर अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे जीवन का, सुखी जीवन का वरदान मिलता है। निर्जला एकादशी पर तपती गर्मी में व्रत रखना बिना जल के एक बड़ी कठोर तपस्या है। जब आप ये तपस्या करके प्रार्थना करते हैं शुद्ध और सात्विक मन से, तो आप अपनी कोई भी मनोकामना जो रीजनेबल हो उसे पूरी कर सकते हैं। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। घर में कोई शुभ कार्य होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं।

0: दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अतिथि का आगमन होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, तनाव से इस समय बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में विवादों से बचें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी का उपवास रखने का सही तरीका क्या है। प्रातः काल कोशिश करें 12 बजे के पहले कम से कम स्नान कर लें और स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ दें, जल दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरिः। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करेंगे। भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का दान करें, जल पिलाएं, अन्न वस्त्र का दान करें या जूते छाते का दान करना अच्छा होगा। देखिए, नियम ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर आप जल नहीं पिएंगे। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक बिना जल की एक घूंट पिए, बिना कुछ खाए हुए आप उपवास रखेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप बीमार हैं, आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं, इंसुलिन लेना पड़ता है, बीपी की दवाई चल रही है, तो आप आवश्यकता पड़ने पर लिक्विड ले सकते हैं, नींबू पानी, दूध, फलों का रस या फल ग्रहण करके भी उपवास रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है और निर्जल उपवास रखें, पता चला बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, शुगर लो हो गया, बीपी शूट अप हो गई, ये सब मत करिएगा। यानी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तभी निर्जल उपवास रखिएगा। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो लिक्विड ग्रहण करके, फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं। सिंह राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, परिवार में समस्या हो सकती है। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन से काम करें, क्या क्या करें। निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो बिना जल पिए, बिना कुछ खाए निर्जल उपवास रखिए। और अगर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। दोनों समय सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। रात में जग करके 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें तो विशेष लाभ होगा। खास तौर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा अपना समय मंत्र जप करने में और ध्यान में इस दिन लगाएं। भगवान विष्णु का मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरि हरि, इस नाम का भी मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना ही कल्याण होगा। जल का दान करिएगा निर्जला एकादशी पर, बहुत शुभ होगा। लोगों को ठंडा पानी, शरबत, फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, लोगों को जल पिलाएं। और आप जल के पात्र का भी दान कर सकते हैं, लोटा है, गिलास है, सुराही है, घड़ा है, इसका दान करना भी बहुत शुभ होगा। तो कुल मिलाकर आप ये जानिए कि निर्जला एकादशी की महिमा इसलिए है कि ज्येष्ठ के महीने में ये व्रत रखना एक तपस्या है, और ज्येष्ठ के प्रचंड गर्मी के महीने में लोगों को जल पिलाना पुण्य अर्जित करने का काम है। लोगों को जल पिलाइए, पुण्य लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करिए, भगवान में ध्यान लगाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। धनुराशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, निर्जला एकादशी के साथ गायत्री जयंती का पर्व भी आता है। क्या है इसका महत्व? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी, एकादशी या पूर्णिमा को गायत्री जयंती मनाई जाती है। बहुत सारे लोग एकादशी को मनाते हैं और कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर भी गायत्री जयंती मनाई जाती है। ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा मंत्र है, सन्मार्ग पर ले जाने वाला सबसे बड़ा मंत्र है, वेद की आत्मा है। इसीलिए हमने इस मंत्र को मातृवत समझा है, माता के समान करुणा करने वाला समझा, और इस मंत्र से वेद माता गायत्री को जोड़ा गया। तो ऐसा मानते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या पूर्णिमा को वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, ज्ञान देने वाला, ईश्वर की उपलब्धि कराने वाला, भौतिक जीवन में संपन्नता देने वाला माना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी पर यानी गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का जप करें तो आप अपनी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा है। वो गुरु की तलाश में लगे हुए हैं कि कोई सद्गुरु मिले और भव सागर से पार करा दे, मुक्ति मोक्ष का द्वार दिखा दे। जिनको भी गुरु प्राप्ति की कामना है वो निर्जला एकादशी पर गायत्री जयंती वाले दिन 11 माला कम से कम गायत्री मंत्र का जप करेंगे सुबह के समय। और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय 11-11 माला या जितना आप कर सकें यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करिएगा। परमात्मा की विशेष कृपा होगी और सद्गुरु की प्राप्ति होगी। देखिए, साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी पर उपवास रखें या न रखें, लेकिन जल का या जलीय पदार्थों का दान जरूर करें। लोगों को जल पिलाएं, शरबत पिलाएं, लस्सी छाछ पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। लोगों को जल का दान अगर निर्जला एकादशी पर करें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। कि अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां हमेशा परेशान करती हों तो क्या करेंगे? रोज सुबह एक पात्र में, कटोरी गिलास या लोटे में शुद्ध जल ले लें। इसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल लेंगे और जल को सामने रख करके एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। पाठ के 10 मिनट के बाद इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर निरंतर करें तो आपका स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, आपका मन भी पवित्र होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए
9: ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए सैलानियों से गुलजार है यहाँ की सीनिक ब्यूटी आपको यकीनन बेहद प्रभावित करेगी सेंटोरिनी का ये खूबसूरत और वायरल हो रहा सनसेट एक बार फिर से साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नजारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं

0: सफेद रंग के घर, नीला समंदर और खूबसूरत सनसेट। ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए पर्यटकों से गुलजार है। शाम होते ही सैकड़ों लोग यहाँ का स्पेशल सनसेट को देखने के लिए जुट जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर पर्यटकों के बकेट लिस्ट में ये नज़ारा जरूर होता है।
1: माँ बेटी की जोड़ी के रूप में ये अनुभव हमारी बकेट लिस्ट में लंबे समय से शामिल था। इसे साथ मिलकर जीना हमारे लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला खास अनुभव रहा। यहाँ हर मिनट भरपूर आनंद भरा रहा।
0: सेंटोरिनी के पत्थरों से बनी संकरी गलियाँ, पहाड़ियों पर बने घर और एजियन सागर का अद्भुत दृश्य पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मंगलवार को तेज धूप और गर्मी के बावजूद यहां सैलानियों की संख्या ने सभी को दंग कर दिया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जमकर बरसे बादल, बारिश से तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जल भराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर। यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। आईसीसी के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। आज क्रिकेटर आकाशदीप की शादी, वाराणसी में अक्षता राज के साथ लेंगे फेरे, बिहार के रोहतास से धूमधाम से निकली बारात। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जुआओ महोत्सव। वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा महाराष्ट्र में मॉनसून की एंट्री और कुदरत के हसीन नजारों की भी है।
7: मुंबई में मॉनसून की एंट्री के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लगातार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, साथ में बारिश के बीच लोग मस्ती भी कर रहे हैं। मुंबई में तेज बारिश के बीच कुछ नौजवान खेलते और पानी में कूदते नजर आए, तो कुछ ऐसा ही नजारा ठाणे में भी दिखा, जहां कुछ बच्चे तेज बारिश में नहाते और सड़क पर भरे पानी के बीच खेलते दिखे। सुबह से ही शहर के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। हालांकि तेज बारिश की वजह से कुछ निचले इलाकों में जल भराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सतारा जिले के कोयना नगर इलाके में हुई पहली जोरदार बारिश के बाद कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। कोयना नगर के पास मौजूद मशहूर ओझरडे झरना अब पूरे शबाब पर बहने लगा है। करीब 800 से 900 फीट की ऊंचाई से गिरता ये विशाल झरना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। झरने के तेज बहाव, पानी के छींटों और चारों तरफ फैली धुंध ने यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत बना दिया है। झरने का ये अद्भुत दृश्य पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मुंबई में मॉनसून की दस्तक के साथ ही छातों का बाजार भी पूरी तरह गुलजार हो गया है। इस बार साधारण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक छातों की सबसे ज्यादा मांग देखने को मिल रही है। बटन दबाते ही खुलने और बंद होने वाले छाते लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है। सिर्फ छाते ही नहीं बल्कि शू रेनकोट और वन टाइम यूज रेनकोट भी बाजार में धूम मचा रहे हैं। महंगे जूतों को बारिश से बचाने वाले शू रेनकोट लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। वही मात्र 18 रुपए का डिस्पोजेबल रेनकोट भी खूब बिक रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लोग वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन भी इन सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। ये बदला हुआ मौसम सैलानियों को भी खूब भा रहा है। लोग इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं और बारिश के बीच शिमला की वादियों में घूम रहे हैं। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत मिलने की तलाश में शिमला पहुंचे पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहाना होने के बाद मॉल रोड और रिज पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले कई दिनों से शिमला में भी गर्मी का असर दिख रहा था। मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे थे। भारत चीन सीमा पर मौजूद 18,600 फीट की ऊंचाई पर विराजमान देवताल का नजारा इन दिनों देखने लायक है। देवताल हिमालय की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर ये पवित्र सरोवर अब पर्यटकों और श्रद्धालुओं की पसंदीदा मंजिल बन चुका है। हालांकि यहां पहुंचने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आसानी से लिया जा सकता है। परमिट के लिए मेडिकल चेकअप और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। रोजाना 100 से 200 यात्री देवताल पहुंच रहे हैं और इन हसीन नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। देवताल सरोवर साल के करीब 8 महीने भारी बर्फ की चादर में लिपटा रहता है। ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन कम होती है, फिर भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच कर स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
4: और अब बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट की। दुनिया की नजरें पिछले 4 महीनों में अमेरिका ईरान टकराव पर टिकी हुई थी। दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया था, जिसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और तेल की कीमतें भारी उछाल आया। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिला। ताजा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते 4 महीने में सबसे नीचे आ चुका है।

0: अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है। यूएस ईरान पीस डील के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यानी पिछले कई दिनों से आसमान छू रहे कच्चे तेल के तेवर अब ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। ताज़ा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते 4 महीने में सबसे नीचे आ चुका है। युद्ध के दौरान $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंचकर दुनिया को डराने वाला ये तेल अब $77 से भी नीचे आ चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस नरमी की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस समुद्री रास्ते से तेल टैंकर्स की आवाजाही एक बार फिर बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है।
1: अब हॉर्मुज संकट का समाधान आते ही, ईरान अमेरिका के बीच शांति स्थिति होते ही ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं। और अनुमान ये भी जताया गया है कि अगर ये स्थिति जिस तरह 60 दिनों की अनुमति दी गई है, वैसे में ईरान की ओर से जो कच्चा तेल कई सालों से प्रतिबंधित था वो खुले बाजार में आ चुका है, तो ईरान की ओर से एक तो समय भी कम लगेगा, तेल भी पहुंच पाएगा, तो ऐसे में कीमतें और भी नीचे गिर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे विकासशील जो देश हैं उनको इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
0: यूएस ईरान डील के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल से नीचे लुढ़क गया है और अमेरिकी WTI क्रूड भी $73 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ये कच्चे तेल की कीमतों का बीते 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और दुनिया अब कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह है। वहीं बाजार में सप्लाई बढ़ाने की उम्मीदों को तब और पंख लग गए जब अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने के लिए 60 दिनों की छूट दे दी। अब भारतीय और अमेरिकी रिफाइनरी समेत दुनिया भर के खरीदार सीधे ईरान से कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैध खरीद कर पाएंगे।
1: ईरान और अमेरिका में शांति समझौते पर सहमति के बाद एक तरफ पश्चिम एशिया का संकट खत्म हुआ, तनाव खत्म हुआ, तो उसका असर सकारात्मक रूप से वैश्विक बाजार पर दिख रहा है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। बीते 24 घंटे में अगर देखें तो 1.1% से ज्यादा की गिरावट ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिली है, WTI क्रूड में देखने को मिली है। यहां तक कि जो वैश्विक बेंचमार्क है वो डेटा ये बताता है कि वायदा भाव अगस्त में 0.45% गिरकर $46.73 प्रति बैरल पर आ गया था। और इसी के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो अब एक रास्ता ये खुल जाता है, दरअसल अमेरिका ने ईरान पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है, यानी वो भी अगले 60 दिनों तक अपना कच्चा तेल दुनिया के बाजार में बेच पाएगा, तो उससे असर क्या हो रहा है। अगर हम स्टॉक देख रहे हैं तो WTI जो ट्रेड है उसमें आज भी अगर जो कीमतें गिरी हुई है वो काफी ज्यादा है, तो अब ये 72.52 पर आ चुका है। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $77 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है।
0: तेल की कीमतों में उछाल के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन और भारत तक में तेल गैस का भारी संकट देखने को मिला। भारत की बात करें तो क्रूड महंगा होने के कारण करीब 4 साल सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा और ये एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार किया गया। अब जबकि क्रूड के दाम क्रैश हो गए हैं तो पेट्रोल डीजल प्राइस कट की उम्मीद भी बढ़ रही है। ऐसे में सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे।
1: इसका एक असर पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में ₹74 की कमी की है तो डीजल की कीमतों में भी ₹64 की कमी है, भारी कटौती की है। हालांकि उसको लेकर के जो ऑयल ट्रेडर्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो नाराज हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका सीधा फायदा जनता को वहां की सरकार ने दिया है। तो भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि पर जो डॉलर बैरल की कीमत है वो अगर नीचे आ रही है तो हाल फिलहाल में हमने जो कीमतें देखी डीजल पेट्रोल में उसमें कोई कमी आ जाए तो क्या वो कमी आएगी, क्या इस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कोई फैसला लेंगी, क्योंकि राहत की जब बात होगी तो सरकार ये देखेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान हो रहा था, वो नुकसान की अगर भरपाई हो चुकी है तो अब सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर अगर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं ब्रेंट ऑयल वो अगर 77 के नीचे हैं तो ऐसे में दुनिया की नजर इस पर होगी कि उनकी सरकारें क्या अब लोगों पर वो फायदा जो है पहुंचाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी फायदा अगर होगा तो क्या जनता की जेब पर भी होगा।
0: बीते 28 फरवरी को पहली बार अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की शुरुआत की थी और इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। साथ ही दुनिया की तेल गैस जरूरतों के 20% की भरपाई करने वाले महत्वपूर्ण समुद्री रूट हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट क्लोज होने के बाद अचानक अप्रैल महीने के दौरान कच्चा तेल $120 के आसपास पहुंच गया। इसका असर ये हुआ कि तमाम देशों में ईंधन गैस की कीमतों में तगड़ा इजाफा हो गया, महंगाई की मार पड़ी और इससे खुद अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति के बाद तेल की कीमतों में अचानक गिरावट शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और तेल कंपनीज को हो रहे घाटे के चलते उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा था, तो क्या अब तेल सस्ता होने से ईंधन की कीमतों में भी कटौती की जाएगी?
1: अगर आज आप देखें तो WTI क्रूड जो है वो 73 बाज आ चुका है, ब्रेंट क्रूड जो है वो 77 के नीचे आ चुका है। और अगर ये परिस्थितियां बनती रहीं तो एक वैश्विक रिपोर्ट ये भी दरअसल कहती है कि प्रगति का ये जो संकेत है ये मार्केट पर, यानी अभी कम से कम 3% ये और नीचे ले जा सकता है, यानी 60 दिनों की जो अवधि है। ऐसे में हमने देखा कि भारत के कई सारे जो जहाज हैं LNG लेकर के, क्रूड ऑयल लेकर के, वो रवाना हुए हैं। आमतौर पर प्रतिदिन अब 90 से 95 जहाज जो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे हैं, जिसके चलते जो सप्लाई लाइन है वो सकारात्मक हो चुकी है, यानी भारत का जो ऊर्जा संकट वो भी खत्म होने के आसार हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, जहां इसकी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करना पड़ता है। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि अभी भी 10 भारतीय झंडे वाले जहाज इस क्षेत्र में इंतजार में लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून से अभी तक 11 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं।
2: जब से अमेरिका और ईरान के बीच में MOU दस्तखत हुआ है, साइन हुआ है, तब से जो तेल के बाजार के अंदर थोड़ी राहत मिली है, और राहत जो इस समय थोड़ी ज्यादा ही है, और लग रहा है उनको कि भाई शायद शांति रहने वाली है। बहुत दिनों से तनाव चल रहा था, जब बहुत लगातार तनाव रहे, बहुत ज्यादा अंधेरा हो, बहुत शोर हो, बहुत बमबारी हो, उसके बाद एक शांति का MOU साइन हो जाए तो बाजार के अंदर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए तेल आप देख रहे हैं जो ब्रेंट है, कच्चा तेल जो ब्रेंट है, जो भारत में जिस उसको यूज करा जाता है पैरामीटर को, तो वो तो अब लगभग $75 पर बैरल पे आ गया है। मैं इसको कहूंगा ये उत्सव की कीमत है ये।
0: अब सवाल ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट का सिर्फ आर्थिक महत्व ही नहीं बल्कि सामरिक महत्व भी है। दुनिया का करीब 25-30% कच्चा तेल इसी जलमार्ग से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के उत्पादक और निर्यातक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, UAE और कतर जैसे देशों का कच्चा तेल इसी जलमार्ग से निर्यात होता है। माना जाता है कि अगर इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और भारत भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है।
2: हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं हम। लगभग अपनी जरूरत का 89% तेल आयात करते हैं, और हमारा जो चाहे वो रुपए की कीमत हो, चाहे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, चाहे हमारा फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, सबके लिए ऊपर बोझ पड़ता है अगर जब तेल महंगा हो जाता है। तो अब तेल चूंकि सस्ता है, वजह उसकी MOU साइन हो गया वो है, एक बाजार के अंदर उत्सव का माहौल है, तो कीमतें $75 के आसपास आ गई, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी कम हो जाए।
0: एक तरफ जहां तेल की कीमतों का गिरना राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर एक नई आशंका ने भी जन्म ले लिया है। ईरान और ओमान ने दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क पर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। यानी दोनों देशों की मंशा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम है। इस साल चारधाम के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जो इस साल का एक नया रिकॉर्ड है। वहीं केदारनाथ धाम में भी 12 लाख से कहीं ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो गंगोत्री में 6 लाख से ज्यादा और यमुनोत्री धाम में लगभग 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी करीब 1.5 लाख श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। यहां इस बार श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से सुरक्षा की तैयारी है, साथ ही यात्रा की निगरानी CCTV से की जाएगी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने सघन जाँच अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखे हुए है। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा मंदिर में साई भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर साल यहां 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसके अलावा साई भक्त अपनी इच्छा के अनुरूप नकदी के अलावा सोने और चांदी की वस्तुएं आभूषणों का भी दान करते हैं। अब तक साई बाबा की तिजोरी में लगभग 550 किलो सोना और 7030 किलो चांदी का दान किया जा चुका है। हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को यहां कड़ी सुरक्षा के बीच चढ़ावे की गिनती की जाती है। महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर विवाह पत्रिकाओं यानी शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शादी के समय वर वधु की सही उम्र की जांच करना आसान हो जाएगा और नाबालिगों की शादी को रोका जा सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल परिवार ही नहीं बल्कि शादी के कार्ड छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय और विवाह आयोजन से जुड़े दूसरे संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये कॉरिडोर मेट्रो के 5वें चरण के तहत विकसित किया जा रहा है और मैजेंटा लाइन के विस्तार का हिस्सा है। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत कॉरिडोर में कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन होगा, जो ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नई मैजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, कार्यालय में आने जाने वाले लोगों और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
3: जब आस्था और विश्वास का सैलाब उमड़ता है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। कुछ ऐसा अलौकिक और विहंगम नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अकोला की सड़कों पर देखने को मिली, जहां शेगांव के राजा संत शिरोमणि गजानन महाराज की पवित्र पालकी का स्वागत करने जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा। जैसे ही पालकी अकोला की सीमा में दाखिल हुई, लाखों श्रद्धालुओं की आंखों से भक्ति के आंसू छलक पड़े। पावली खेलते भक्तों के इस कारवां का अकोला वासियों ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया।

भक्ति का ऐसा समंदर, आस्था का ऐसा सैलाब जिसने पूरे अकोला शहर को अपने रंग में सराबोर कर दिया। ये तस्वीरें गवाह हैं उस अटूट श्रद्धा की जो संत गजानन महाराज के चरणों में उमड़ पड़ी है। हाथों में झंडे, जिस्म पर सफेद लिबास, सिर पर टोपी और चेहरे पर भक्ति का भाव।

आस्था की गूंज है जो आज अकोला की सड़कों पर गूंज रही है। संत गजानन महाराज की पालकी के आगमन पर भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है। मृदंग की हर थाप पर और ताल की हर खनक पर भक्तों के पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। ये पावली खेलते भजन कीर्तन करते भक्त इस भव्य और दिव्य आयोजन को और भी खास बना रहे हैं। इनके चेहरों पर जो खुशी है, जो भक्ति है, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एक आयोजन भर नहीं बल्कि एक उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जहां आस्था और भक्ति का संगम होता है।

0: संत गजानन महाराज की पालकी का कारवां आगे बढ़ता रहा। भक्तों का जोश और उत्साह आसमान छूता रहा। गजानन महाराज की पालकी के स्वागत में जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। फूलों का यह अनूठा श्रृंगार भक्तों के अगाध प्रेम और कला का वो अद्भुत संगम है जिसे देख हर आंख ठहर जाती है और हर शीश श्रद्धा से झुक जाता है। फूलों से सजी इस पालकी का वजन भी इन कंधों को भारी नहीं लगता, क्योंकि भक्तों के लिए ये साक्षात गजानन महाराज का वो रथ है जो उनके दुखों को हरने निकला है। अनुशासन ऐसा कि हजारों भीड़ के बावजूद सब लोग एक कतार में आगे बढ़ते गए, बिना रुके बिना थके, सिर्फ भक्त की इस धारा में जैसे हर कोई बहता चला जा रहा हो। केसरिया ध्वज कंधे पर लिए वार करी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, भक्ति का ये रंग और भी गहराता चला गया। आषाढ़ी एकादशी के पावन मौके पर शेगांव के राजा संत गजानन महाराज की पवित्र पालकी जैसे ही अकोला की सीमा में दाखिल हुई, पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठा।
1: महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी के एक महीना पहले ही जो है हर वारकरियों को, हर किसान को यही आस लगती है कि जिसे मराठी में कहते हैं कि पाऊले चालती पंढरी ची वाटो, मानो पंढरी मानो अकोला का नहीं तो संपूर्ण महाराष्ट्र का जो है आराध्य दैवत है पांडुरंग। उस पांडुरंग की मुलाकात के लिए, उनके भेंट के लिए जो है हर वारकरियों के पैर उस ओर जाते हैं। हम फिलहाल अकोला में है। अकोला में बुलढाणा जिले के सेगांव की जो संत गजानन महाराज की जो शिस्तबद्ध और अनुशासित जो पालकी है वो पहुंची है। आप देख सकते हो कि केसरिया पताका लेकर सभी युवा जो वारकरी है इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ताल मृदंग के चल पर ये पावली, जिसे पावली कहा जाता है, ये वारकरी पावली खेलते नजर आ रहे हैं। पूरा शहर जो है वो आज गजाननमय होता नजर आ रहा है। लगभग 1 किलोमीटर तक पूरी तरीके से ये 600 से अधिक जो वारकरी है ये पावली खेलते हुए और संत गजानन महाराज की जो पालकी है वो अगले 2 दिनों तक जो है अकोला शहर में जो है वास्तव करेगी।
0: हर कोई जैसे भक्ति रस में डूब गया हो। संत गजानन महाराज की पवित्र पालकी के स्वागत में जैसे पूरा अकोला शहर ही उमड़ आया हो। हर कोई अपने तरीके से स्वागत को इस अद्भुत पल का साक्षी बनने के लिए उमड़ पड़ा। मंत्रों की गूंज, ढोल की थाप और उस पर आस्था में लबरेज भक्तों का उत्साह। स्वागत के लिए सड़क पर रंगों का संसार भी सजाया गया। भव्य रंगोली की दिव्य छटा इस दौरान देखते ही बन रही थी। गुलाबी और लाल रंग से सजी ये रंगोली अद्भुत और अलौकिक नजर आ रही थी। कड़ी धूप में मीलों का सफर तय कर रहे वारकरियों के लिए जगह जगह सेवा स्टॉल्स लगाए गए। पानी, शरबत और भोजन के स्टॉल्स दिखे, जैसे अकोला का हर नागरिक ही इस समय स्वागत में अपनी भागीदारी निभाना चाहता हो। शेगांव से शुरू हुई ये पावन यात्रा पंढरपुर की ओर बढ़ रही है। करीब 600 किलोमीटर का ये सफर पैदल पूरा करने में लगभग 1 महीना लग जाता है, लेकिन इस दौरान भक्तों का उत्साह और उल्लास कम नहीं होता। पूरे भक्ति भाव के साथ तमाम भक्त पूरे अनुशासन के साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं। वारकरी संप्रदाय की इस परंपरा को दुनिया की सबसे अनुशासित और भक्ति से परिपूर्ण पद यात्रा माना गया है। न पैरों में छाले रोक पाते हैं, न थकावट कदम डिगा पाती है। इस अलौकिक रूप के दर्शन पाकर अकोला की धरती धन्य हो गई। फूलों की महक और ढोल मंजीरों की गूंज ने इस पल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। लेकिन अकोला को भक्ति रस से सराबोर कर ये कारवां अब पंढरपुर की ओर बढ़ेगा और लगभग 27 दिन के बाद ये पवित्र यात्रा समाप्त होगी। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
3: बुधवार यानी आज शेयर बाजार में उछाल देखा गया। सेंसेक्स 790.54 अंक उछल कर 76,991.22 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 197.55 अंक चढ़कर 24,021.65 पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि शियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों, हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही बेहतर होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट और भारत अमेरिका के बीच जल्द ही किसी ट्रेड डील की बढ़ती उम्मीदों के चलते घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। आज दिल्ली में फिर सोने और चांदी के भाव गिर गए। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत 1200 रुपए घटकर 1,48,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रहा और ये 4,000 रुपए गिरकर 2,31,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट के चलते रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत होकर 94.65 रुपए पर बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक घरेलू इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट और FII के निवेश ने रुपए को मजबूती दी।
2: वेलकम टू द जंगल का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
4: कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज से पहले चर्चा में है। फिल्म का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है जिसमें अक्षय कुमार ने भी अपनी आवाज दी। गाने में फरहाद भिवंडी वाला रूबई और संगीतकार विक्रम मोन्ट्रोस भी शामिल है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कई बड़े सितारे नजर आएंगे। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये मल्टी स्टारर फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी जबकि 25 जून को इसके पेड प्रीव्यूज रखे गए हैं। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का पहला पोस्टर सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। पोस्टर में खुशहाली कुमार दुल्हन के पारंपरिक लिबास में नजर आ रही हैं, लेकिन उनके स्टाइलिश अंदाज ने सबका ध्यान खींचा है। आकाशादित्य लामा के निर्देशन में बनी ये फैमिली एंटरटेनर एक ऐसे दुल्हन की कहानी है जो अपने खास मिशन पर निकलती है। फिल्म में पीयूष मिश्रा और महेश मांजरेकर भी अहम भूमिकाओं में है। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांगराना और नसीरुद्दीन शाह स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 12 दिनों में दुनिया भर से 48 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। भारत में फिल्म की नेट कमाई लगभग 30 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है जबकि विदेशी बाजारों में भी इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। विभाजन के पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी दर्शकों को भावुक कर रही है।

0: मिलन जवेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं का टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। ये गाना दोस्ती, प्यार और रिश्तों की भावनात्मक झलक पेश करता है। फिल्म से अमन इंद्र कुमार अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं और उनके साथ आकांक्षा शर्मा मुख्य भूमिका में है। परेश रावल, जॉनी लीवर और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है। पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान जल्द ही एक बड़े पीरियड ड्रामा का हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस महत्वाकांक्षी फिल्म को राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और अपने किरदार से वो काफी प्रभावित हैं। फिल्म में वो इतिहास के एक बेहद लोकप्रिय किरदार को निभाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने लुक और बॉडी पर खास मेहनत करनी होगी। फिल्म की शूटिंग साल 2027 में शुरू होने की संभावना है।
1: न्यूज़ पत में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
1: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जमकर बरसे बादल, बारिश से तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर। यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। ICC के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। आज क्रिकेटर आकाशदीप की शादी, वाराणसी में अक्षता राज के साथ लेंगे फेरे, बिहार के रोहतास से धूमधाम से निकली बारात।

0: गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जुआओ महोत्सव। वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: ये नन्हा पपी अपनी अनोखी अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क किनारे बैठा पपी ऐसे चलने की कोशिश करता है मानो उसके पैर काम नहीं कर रहे हो। राहगीर भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करता है अचानक सामान्य तरीके से दौड़ने लगता है। उसकी इस मजेदार हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो देख

0: पक्षियों से प्रेम की कई कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। एक महिला कौए को अपनी गोद में सुलाकर उसे दुलार करती हुई नजर आती है। वो बड़े प्यार से उसके सिर और पंखों पर हाथ फेरती है और उसकी मालिश भी करती है। कौआ भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उसके पास आराम करता हुआ दिखाई देता है। इंसान और पक्षी के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। बिहार का एक मासूम बच्चा अपनी नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। डांट पड़ने के बाद बच्चा गुस्से में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी देता नजर आता है। वो मासूम अंदाज में कहता है कि वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। हालांकि उसकी बातों में गुस्से से ज्यादा बचपन की मासूमियत झलकती है। प्रिंसिपल भी बच्चे की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो देखकर लोग बच्चे की भोली भाली नाराजगी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। माँ की सीख को गंभीरता से लेने वाला ये छोटा बच्चा इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चे को सिखाया गया था कि कोई भी चीज खाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि रसगुल्ला खाने से पहले उसे पानी में धोने लगा। हाथ में रसगुल्ला लेकर वो नल के पास रखे पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे खाता है। उसकी मासूम समझ और भोलेपन को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी माया नगरी मुंबई में हो रही बारिश की। पूरे महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। मुंबई में मानसून के पहुंचने के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। आसमान से बरसती बूंदों ने माया नगरी मुंबई को तपती गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है। सुबह से ही शहर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। हालांकि जल जमाव और ट्रैफिक की समस्या हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून की बारिश की शुरुआत में ही नजर आ रही है। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के लोलाइन वाले कुछ इलाकों में पानी जमा हो गया है। इस वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। हालांकि जलभराव वाले इलाकों में बीएमसी ने पानी निकालने का पूरा इंतजाम जल्दी ही कर लिया। वहीं पानी की निकासी के लिए पहले से किए गए इंतजामों का असर भी दिखाई दे रहा है, ताकि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रैफिक व्यवस्था पर ज्यादा असर न पड़े। बीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि शहर में जल निकासी के लिए लगाए गए डी वाटरिंग पंप, स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन और बाढ़ नियंत्रण प्रणालियां लगातार काम कर रही हैं, जिससे कई इलाकों में पानी तेजी से निकाला जा सका।
2: जल जलाओ, आप जो दिखा रहे हो विजुअल्स, वो अंधेरी सबवे दिखा रहे हो। मालाड है, उसके बाद में गांधी मार्केट है, मिलन सबवे, वहाँ पे मैंने पूरा ब्यौरा लिया है। पानी पूरा वहाँ पे पूरा निकाला गया है। वहाँ पे जो स्टैग्नेंट वाटर था अभी नहीं है, पूरा रोड क्लियर है। वहाँ की वाहतूक व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। अंधेरी सबवे, अगर वहाँ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे वाटर स्टैग्नेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हमने एडिशनल पंप और पूरी हमारी प्रशासन की यंत्रणा काम करने के लिए लगाई है।
1: हाँ मैम, यहाँ पे कुछ अलग व्यवस्था दिख रही है गांधी मार्केट में, क्या है थोड़ा इसके बारे में बताएंगे?
2: ये पूरा जो आप देख रहे हैं पंपिंग स्टेशन यहाँ पे है, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 पंप लगे हुए हैं। ये जो गांधी मार्केट है ये लो लाइन एरिया है पूरा, यहाँ पे वाटर स्टैग्नेंट रहता है, तो पूरा पानी है ये जाने के लिए ये एडिशनल पंप यहाँ पे हम लोग ने रिस्टेट किए हैं और वाटर भी पूरा वाटर पूरा इसमें जा रहा है।
1: मैम आखिरी सवाल, वाटर लॉगिंग एक बड़ी वजह देखने को मिलती है नाले सफाई की वजह से, कितने प्रतिशत काम पूरा हो चुका है?
2: नाले सफाई परिमंडल जो जोन 5 है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे 100% नाले सफाई नहीं हुए, लेकिन बाकी के जो जोन है वहाँ पे कम्प्लीटली नाली सफाई हुई है। जो फोटो और वीडियो आ रहे हैं वो फ्लोटिंग मटेरियल की दिखा रहे हैं बार बार, क्योंकि पूरे डिप क्लीन होने के बाद जो ऊपर से वापस पानी आ रहा है उसमें जो फ्लोटिंग मटेरियल आ रहा है वो हम लोग मॉनसून में निकालने का पूरा काम कर रहे हैं।
1: हम इस वक्त मुंबई के गांधी मार्केट परिसर में खड़े हैं, जहाँ पर लोगों को हर साल जल जमाव की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और हर साल इस नजारे को अपनी आंखों से देखते हैं और ये कई सालों से नजारा कायम है। सर आपका नाम क्या और आप सब लोग यहीं रहते हैं?
3: सब यहीं रहते हैं जी।
1: सर आपका नाम क्या और
3: मेरा नाम महेंद्र सिंह है। ऐसा है बीएमसी बोलती है हमने काम किया, पर काम तो कुछ ऐसा लगता है नहीं, रात को तो

0: पूरा पानी चढ़ा ही हुआ था, पूरा वीडियो भी है इसका मेरे पास, और इधर बाजू में ब्रिज के नीचे भी पूरा पानी चढ़ा हुआ था। अभी पता किया तो बोलते हैं जी पंप खराब था। पहले दिन ही पंप कैसे खराब था, पंप तो पहले चेक करके लगाना चाहिए ना। बस मेरे को इतना ही बोलना है, अभी ठीक है लेकिन रात भर तो पानी चढ़ा ही हुआ था।
1: मतलब ज्यादा बारिश होगी तो और दिक्कतें होंगी,
0: तो सवाल ही नहीं ना, ज्यादा बारिश होगी तो और दिक्कतें होंगी ना।
1: मेयर आई हैं, वो तो कह रही हैं काम पूरा हो चुका है, लोगों को परेशानी नहीं।
0: काम पूरा हो चुका है लेकिन पानी तो चढ़ा हुआ था। अभी देख लो क्या करना है भाई, उसका ध्यान रखें बस, और पंप वगैरह का जो भी है।
1: सर क्या कहेंगे, हर साल इस दिक्कत से अब आदत हो गई है कहीं ना कहीं?
2: इधर तो बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है, इसका हल है ही नहीं। अभी इन्होंने अच्छा बड़ी बड़ी अपनी मोटर लगाई है, पानी के पंप लगाए हैं, तो लगता है अभी इस बार पानी शायद नहीं चढ़ेगा। दिक्कत ये है हर साल ऐसा ही रहता है इधर। कभी अभी शायद भगवान की कृपा होगी, बारिश आएगी, मालूम पड़ेगा कितने टाइम में ये सब खत्म होता है। मेरे को लगता है होप सब ठीक हो जाएगा। इतने साल से लगातार ये पानी भर रहे हैं इधर, हम लोग भी इतना पीछे ही रहते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं।
1: बिल्कुल, तो एक चीज़ है जिस पर दुनिया कायम है, वो है उम्मीद जो यहाँ के लोगों को है। हर साल तो परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन उम्मीद है कि इस साल कुछ परिस्थिति बदलेगी, कुछ सुधार होगा, लोगों को दिक्कतें कम होगी। अब देखना होगा जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या लोगों की उम्मीदें खरी उतर पूरी होती हैं या नहीं।
3: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात बेगूसराय के 90 साल के एक बुजुर्ग की, जो कि संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र से एमए की परीक्षा में सम्मिलित हुए और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। इस उम्र में भी पढ़ने के लिए लगन, उत्साह और निरंतर सीखने की भावना आज की पीढ़ी के लिए मिसाल से कम नहीं।

0: सफेद बाल, चेहरे पर अनुभव की लकीरें, आंखों में ज्ञान की चमक और उम्र 90 साल। सैकड़ों परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा दे रहे ये बेगूसराय के एक बुजुर्ग आचार्य सीताराम शास्त्री हैं। जेपी क्रांति का हिस्सा रहे सीताराम शास्त्री श्रीमद् भगवद गीता में एमए की डिग्री पाने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर शिक्षा और धार्मिक अध्ययन के लिए गहरी रुचि रखते हुए जीडी कॉलेज में इग्नू से संस्कृत के श्रीमद् भगवद गीता में एमए की परीक्षा इन्होंने दी है। यूं तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 90 साल की उम्र में जीवन को पूरा पढ़ बैठे ऐसे बुजुर्ग आज के दौर के लोगों के लिए किसी मिसाल से भी कम नहीं। विवेकानंद को प्रेरणा मानने वाले सीताराम शास्त्री मानते हैं कि गीता का ज्ञान जीवन में सबके लिए जरूरी है, क्योंकि महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है।
1: मेरी इच्छा जगी कि गीता शास्त्र जो है वह कर्म योग है, ज्ञान योग है और भी सभी चीजों से उपलब्ध है। भारत के जवानों को, तरुण शक्ति को गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने निर्णय किया कि 90 की मेरी अवस्था हो रही है, पहले स्वयं मैं ही इस परीक्षा को मैं दूं और तो आगे आने वाली पीढ़ी उसे प्रेरणा प्राप्त करेगी।
0: गीता कर्म योग है, गीता ज्ञान योग है, गीता श्री कृष्ण का वो संदेश है जो जीवन को राह दिखाता है, जिसके उपदेशों में जीवन का सच्चा सार छिपा है। गीता की पहली शिक्षा ये है कि भीड़ किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विजय उसी की होती है जिसके साथ ईश्वर होते हैं। दूसरी अहम शिक्षा कर्मों के फल से जुड़ी है। इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है, इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तीसरी शिक्षा मृत्यु के भय से मुक्ति के बारे में है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसलिए इंसान को मौत से नहीं बल्कि मौत के डर से बचना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए कि मृत्यु भी गर्व करे। चौथी शिक्षा ये है कि मनुष्य को रोगी या भोगी बनने के बजाय कर्मयोगी बनना चाहिए। जीवन में मिलने वाली ठोकरें इंसान को मजबूत और महान बनाती हैं, इसलिए बिना डरे निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सीताराम शास्त्री का इस उम्र में गीता शास्त्र की परीक्षा देना आज के युवाओं का गीता के प्रति मार्ग प्रशस्त करता है। सीताराम शास्त्री गांधी जी के आजादी के आंदोलनों के अलावा संपूर्ण क्रांति के भागीदार हैं, गवाह हैं, सनातन परंपरा के संरक्षक और पोषक हैं। खाली समय में वो अपने घर के कमरे में अकेले बैठकर पुरानी एल्बम को देखते हुए वक्त गुजारते हैं और अतीत की यादों में खो जाते हैं। इस उम्र में भी उनका ज्ञान के प्रति समर्पण, शिक्षा के प्रति उत्साह और निरंतर सीखने की भावना युवाओं के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है।
2: उम्र के इस पड़ाव में भी आप पढ़ने की जो लालसा है और डिग्री लेने की जो आलसा है, हम हतप्रभ हैं। अगर यही बात है और सब नए लड़के में न्यू कमर में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी न्यू लर्नर है उसके लिए तो वो कम से कम प्रेरणा के स्रोत ही है, और जो भी अध्येता है बढ़िया उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत है। हम तो सबसे बड़ा बात है कि आज के छात्र में लिखने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, और वो लिखते हैं धड़ल्ले के साथ लिखते हैं और एकदम सुडौल अक्षर में लिखते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं।
0: सीताराम शास्त्री जैसे बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। सच भी तो यही है कि आप चाहे कितने भी थके हों, हारे बुझे या टूटे हों, बस चंद लम्हों के लिए उन दरख्तों की छाव में बैठ जाएं जिन्हें हम अपने बुजुर्ग कहते हैं तो सारे मसले काफूर हो जाते हैं। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चीन के हैनान में समुद्री दुनिया की एक शानदार झलक देखने को मिली। मशहूर मरीन वंडरलैंड में ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिला जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण पानी के भीतर खूबसूरत मर्मेड परफॉर्मेंस यानी जल परियों का अद्भुत नृत्य रहा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद लोगों को पेंगुइन्स को करीब से देखने और उन्हें खाना खिलाने का एक बेहद अनोखा अनुभव भी मिला। हैनान का ये मरीन पार्क पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्लोबल टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं। चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। लाइनशाइन ने आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टॉप 500 लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि चीन ने बिना किसी अमेरिकी चिप के सिर्फ साधारण दिखने वाले सीपीयूज की बदौलत ये करिश्मा कर दिखाया है। इससे पहले अमेरिका के ईआई कैप्टन नाम का सुपर कंप्यूटर पहले नंबर पर था। स्पेन में पारंपरिक सेंजुआन फेस्टिवल बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बार्सिलोना का पूरा तट रंग बिरंगी आतिशबाजी और पटाखों की रोशनी से नहा उठा। नाइट ऑफ फायर यानी आग की इस जादुई रात को सेलिब्रेट करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर से आए लाखों सैलानी समंदर किनारे जमा हुए। मान्यता है कि इस रात समंदर किनारे बॉनफायर करने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। बाइबल के अनुसार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म का प्रतीक है। लोग संगीत की धुन पर थिरकते हैं, आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हैं और पूरी रात बार्सिलोना के समुद्र तट पर रोशनी, संगीत और आस्था का ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन चिड़ियाघर में नन्हे जिराफ का जन्म हुआ है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। जिसके जन्म के साथ ही कोपेनहेगन जू ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना लिया। पिछले महज 12 महीनों के भीतर यहां जन्म लेने वाला ये तीसरा बेबी जिराफ है। चिड़ियाघर के विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरे बेबी जिराफ का जन्म और उनका पूरी तरह स्वस्थ रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये जू के बेहतरीन माहौल और उनकी शानदार देखरेख का नतीजा है। दरअसल पिछले कुछ दशकों में जंगलों के कटने और अवैध शिकार के कारण दुनिया भर में जिराफों की आबादी तेजी से घटी है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत कोपेनहेगन जू की ये कामयाबी उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। पेरिस मेंसवेयर फैशन वीक शो में लुई विटॉन ने अपनी खास थीम को लॉन्च किया, जिसको देख हर कोई हैरान रह गया। इस खास शो की थीम कॉर्पोरेट लाइफ और समंदर के एडवेंचर का एक अनोखा मेल था, जिसको पूरी दुनिया के फैशन लवर्स देखते रह गए। इस विशेष शो में कई मॉडल्स सर्फ बोर्ड और स्केट बोर्ड के साथ वॉक करते नजर आए। डिजाइनर फेरल विलियम्स ने इस शो को तैयार किया था। इस नई कलेक्शन में गहरे रंग के ढीले ढाले सूट, कैप और जैकेट के साथ जीन्स और शर्ट्स शामिल थी। शो की खासियत इसके लिए तैयार किया गया सेट भी रही, जिसे एक विशाल आर्टिफिशियल वेव जैसा तैयार किया गया था, जिसने गर्मियों में आयोजित शो को एक खास कूल एहसास दिया। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: Tune in Tao 2, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
3: आईसीसी वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल ने 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर जगह बनाई है। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
10: आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया के वनडे कैप्टन शुभमन गिल ने लंबी छलांग लगाई है। 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शुभमन ने रैंकिंग में नंबर 2 पर जगह बनाई है। गिल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, जो अब एक पायदान नीचे खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि रोहित शर्मा चौथे स्थान पर बने हुए हैं। इसके अलावा बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शुभमन गिल 7वें स्थान पर हैं, उनके पीछे यशस्वी जायसवाल 8वें और ऋषभ पंत 12वें पायदान पर है। जबकि ताज़ा आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी के साथ टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। टी20 रैंकिंग्स में भी भारत का दबदबा कायम है। जहां वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में भारतीय टीम नंबर 1 टीम है, वहीं टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का कब्जा है। 875 पॉइंट्स के साथ अभिषेक टॉप पर हैं, जबकि 871 पॉइंट्स के साथ ईशान किशन नंबर 2 बल्लेबाज हैं। 6वें और 7वें नंबर पर इस लिस्ट में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव का नाम है, जबकि टी20 ऑलराउंडर्स की सूची में हार्दिक पांड्या दूसरे पायदान पर है। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत की युवा स्टार स्पिनर श्री चरणी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की नई नंबर 1 गेंदबाज बन गई हैं। टूर्नामेंट में भारतीय टीमों के लिए शानदार प्रदर्शन कर रही चरणी ने अब तक केवल 3 मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में 24 रन देकर 3 विकेट लेने के उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंचा दिया, जबकि बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर बरकरार हैं और 6वें नंबर पर शेफाली वर्मा है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया। उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में इकलौते ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग अलग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल किया है। रोनाल्डो 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप में भी गोल स्कोर कर चुके हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल किए हैं। मौजूदा टूर्नामेंट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल हो चुके हैं। वो पहले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ गोल नहीं कर सके थे। हालांकि रोनाल्डो अब वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए विश्व कप में अब तक 10 गोल किए हैं। फिलहाल इस मैच में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया और जीत के हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टोरंटो में क्रोएशिया के फैंस ने जबरदस्त जश्न मनाया, डांस किया, गाने गाए और झंडे लहराए, क्योंकि उनकी टीम ने वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में पनामा को 1-0 से हराया। क्रोएशिया और पनामा टूर्नामेंट में अपने पहले पहले पॉइंट्स की तलाश में उतरे थे। उन्हें पता था कि हारने पर उन्हें जल्दी घर लौटना पड़ सकता है, क्योंकि इसी ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड और घाना का मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा था। लेक ओंटारियो दोनों देशों के झंडों के रंगों से पटा था। मैच शुरू होने से पहले क्रोएशिया के फैंस ने रैली सॉन्ग्स मोजा डोमोविना को दिल को छू लेने वाले अंदाज में गाया, जिससे एक रोमांचक मैच का माहौल बन गया और फैंस को टीम क्रोएशिया ने निराश नहीं किया। पनामा को पस्त कर क्रोएशिया ने फैंस के जश्न में जीत की मिठास घोल दी।
3: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
5: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffeehouse, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
2: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। ICC के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं श्रद्धा की। देश में इस समय भक्ति, विश्वास और आध्यात्म का माहौल है। उत्तर में माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और इस साल 6 महीने में ही यात्रियों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो पूर्वोत्तर में कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला साधना और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वहीं कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले रथ निर्माण का काम पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। देश के अलग अलग कोनों से आस्था की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। आज आपको इन सभी धामों की तस्वीरें दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार से, जहां पहुंचने के लिए इन दिनों श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन बात सिर्फ मई जून की नहीं, पिछले 6 महीने में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता रानी के दरबार पहुंचे हैं और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। देश के कोने कोने से रोज हजारों श्रद्धालु कटरा से भवन की यात्रा शुरू करते हैं और दर्शन के बाद जब वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। असल में ऊंचे पर्वत की ये यात्रा ट्रस्ट के शानदार इंतजाम की वजह से आसान हो जाती है। देखिए माता रानी के धाम से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।

0: माँ ने बुलाया तो कदम कटरा की ओर चल पड़े, गांव से, शहर से, ट्रेन या गाड़ी से, घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, बाल बच्चों को लिए माता रानी के भक्त कटरा की राह पर हैं। यूं समझ लीजिए कि पहले कटरा और फिर भवन पहुंचने की होड़ लगी है। छुट्टियों के दिन है इसलिए भी भीड़ ज्यादा है, लेकिन मोटे तौर पर इस साल अभी तक वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों की तादाद बेहिसाब रही है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि जनवरी से जून तक यानी 6 महीने में श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख पार कर चुकी है।
1: जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा कर ली है। ये जो आंकड़ा है काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि पिछले वर्ष अगर हम इसी समय की बात करें यानी कि जून महीने तक, जनवरी से जून 2025 तक की बात करें, तो 39.84 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आए थे, और इस वर्ष अगर हम देखें तो 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, यानी कि 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है।
0: बेस कैंप यानी कटरा से लेकर भवन तक आस्था का सैलाब है। रोज हजारों की संख्या में यात्री एंट्री वाले रास्ते पर यूं ही जमा होते हैं और अपनी बारी आने पर यहां से सफर शुरू करते हैं। ऊंचा पर्वत, लंबा रास्ता, लेकिन कोई भी बाधा इन भक्तों को रोक नहीं पाती।
1: कहाँ से आए हैं?
2: यमुनानगर से।
1: हरियाणा से?
2: हाँ जी।
1: तो आप आते रहते हैं दर्शनों के लिए, पहली बार
2: आते रहते हैं?
1: अभी जो आंकड़े जारी हुए कि इस वर्ष 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुँच गए हैं इस बार।
3: अच्छा। बहुत अच्छा, क्योंकि ये तो भक्तों की श्रद्धा है। बोल सच्चे दरबार की जय।
0: वैष्णो देवी से जुड़ी इसी आस्था ने अब एक नया इतिहास रचा है। अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 जून 2025 तक करीब 39,84,000 श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए थे, जबकि इसी साल इसी अवधि में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 50,70,000 पहुंच गई है। यानी इस अवधि में 10,86,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी की यात्रा की है, जो पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है। बीते सालों में सिर्फ 2011 और 2012 में ऐसा हुआ है जब यात्रियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा दर्ज की गई, जबकि साल 2023 और 2024 में करीब 95 लाख यात्री वैष्णो देवी पहुंचे। पर इस साल जून तक अगर आंकड़ा 50 लाख पार है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल के आखिर में ये आसानी से 1 करोड़ पार कर जाएगा।
1: आते रहते हैं, पहली बार आए?
2: नहीं, हम सेकंड टाइम आए हैं।
1: सेकंड टाइम आए, मन में कितनी प्रसन्नता?
2: बहुत ज्यादा।
1: भाव है मन में?
2: आप मेरी फ्लम्बिंग से समझ ही सकते हो कि मैं कितनी एक्साइटेड।
1: दर्शनों के लिए आए हैं माता जी के?
4: बहुत एक्साइटमेंट थी बचपन से।
1: अच्छा, पहली बार आ रहे हैं?
4: हाँ, पहली बार।
1: अच्छा, तो एक बार जयघोष लगा दीजिए माता रानी का।
5: जोर से बोलो जय माता दी।
0: माँ वैष्णो के धाम में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या की बड़ी वजह आस्था है, पर इसके साथ ही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से किए गए अच्छे इंतजाम भी यात्रियों को प्रभावित करते हैं। कटरा से लेकर भवन तक यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होती, न रहने या ठहरने की, न खाने पीने की। यहाँ भीड़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता है और यात्रा को सुगम बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर बैटरी कार और रोपवे की सुविधा है। ये इंतजाम ही वैष्णो देवी यात्रा को यादगार बनाते हैं और भक्त हंसते मुस्कुराते वापस आते हैं।
1: लगातार भक्तों की भीड़ है यहाँ पर, लगातार भक्तों की कतार देख सकते हैं आप। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। तो यहाँ धर्मनगरी कटरा में हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, और इस वर्ष अगर हम देखें पिछले वर्ष की तुलना में अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और अभी जून का महीना पूरा भी नहीं हुआ है और 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, यानी कि 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं, और यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ने जा रहा है।
0: देवी माँ के दर्शन का ये जोश उत्तर से लेकर पूरब तक एक जैसा है। जम्बू में त्रिकुटा जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। तो गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत कामाख्या माई के जय घोष से गुलजार है। कामाख्या देवी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और शाक्त परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र। 22 जून से यहां अम्बुबाची मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शामिल होने और कामाख्या देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने देश के कोने कोने से भक्त उमड़ पड़े हैं, जिनमें बड़ी तादाद तांत्रिकों, अघोरियों और साधु संतों की है। अंदाजा है कि 26 जून तक चलने वाले इस मेले में आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा होगा। कटरा से सुनील जी भट्ट और कामाख्या मंदिर से अचिंत्य पतंगिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भीड़ है, तो वहीं कश्मीर में जल्दी ही बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है। जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पवित्र गुफा के पास सीढ़ियों को छतदार बनाया जा रहा है, तो वहीं पहलगाम के बेस कैंप को दुरुस्त किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हो चुके हैं और इनके साथ ही भंडारा लगाने वाले सेवादार शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। तो चलिए आपको नुनवान बेस कैंप और पवित्र गुफा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में।

0: अमरनाथ की पवित्र गुफा, गुफा में आकार ले चुके बाबा बर्फानी, ये वो तस्वीर है जो हर शिव भक्त को श्रद्धा और भक्ति से भर देती है। हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जोश भर देती है।
1: भोले,
2: भोले,
3: करे वीर बजरंग बली,
2: भोले
3: की बात, करे वीर बजरंग
2: बली।
0: श्रद्धालु तैयार हैं, भोले की फौज चलने ही वाली है, इसलिए पवित्र गुफा के पास भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। यात्रा शुरू होने से पहले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पवित्र गुफा तक जाने वाली सीढ़ियों को छत से ढका जा रहा है और सीढ़ियों के ऊपर कैनोपी लगाने का काम तेजी से जारी है। ये इंतजाम इसलिए है ताकि श्रद्धालुओं को तेज धूप, बारिश और खराब मौसम से राहत मिले।
4: अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। अब की बार अमरनाथ यात्रियों के पहचान पत्र के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में काम करने वाले घोड़े वालों, दुकानदारों और मजदूरों को भी एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया है, जिस पर उन सभी लोगों की सभी जानकारियां जो हैं वो एकजुट की गई है और सभी लोग वेरिफाइड हैं।
0: पवित्र गुफा के पास ही नहीं, पहलगाम के बेस कैंप निनवाल में भी जबरदस्त तैयारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की मौजूदगी, जर्रे जर्रे पर निगाह और रास्तों से लेकर कैंप तक हर जरूरी इंतजाम। अमरनाथ जाने वाला पहलगाम का रास्ता लंबा मगर आसान माना जाता है। आतंकी हमले के बावजूद पिछले साल यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी तस्वीर उसी तरह रहेगी। हालांकि प्रशासन पिछले साल से भी बेहतर इंतजाम में जुटा है।
4: अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी। इस बीच अब की बार सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अमरनाथ यात्रा से जुड़े लोगों के लिए एक विशेष पहचान पत्र यानी पहचान ऐप जारी किया गया है, ताकि अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी लोगों की पहचान श्रद्धालुओं के लिए उनके पास उपलब्ध रहे।
0: पूरे अनंतनाग में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। रास्ते पर जवान अभी से मुस्तैद है। बेस कैंप पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रा मार्ग पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी है। यात्रा के लिए एक ओर प्रशासन दिन रात जुटा है तो दूसरी ओर सेवादार भी पीछे नहीं। श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले ही सेवादार देश के अलग अलग हिस्से से मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँच कर भंडारे की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन, पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी न झेलनी पड़े। पहलगाम वाले रूट पर कई सेवादार हैं, जो बरसों से शिव भक्तों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं।
5: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है। 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेल पटरी पर भंडारा लगता है, उसके लिए नया टीन शेड इस बार तैयार करके वहां से लाए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेल पटरी पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग बाग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर एलजी साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलों पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ 2 मील से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है, वही पुण्य महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को भी प्राप्त होता है। तीर्थ यात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहाँ आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा उपलब्ध कराना और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है। 57 दिनों की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक खुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं पुरी की रथ यात्रा की, जो कि 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है, पर उससे पहले यात्रा की जबरदस्त तैयारी शुरू हो चुकी है। पवित्र लकड़ियों से भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष रथ, बलभद्र के लिए तल ध्वज रथ और सुभद्रा के लिए दर्प दलन रथ बनाया जा रहा है। तो चलिए इस महान धार्मिक यात्रा की तैयारी करीब से देखते और समझते हैं इस रिपोर्ट में।
6: सजे रथ अद्भुत, प्रभु पधारे द्वार, भक्त खड़े निहारने जग के पालनहार। खींचे रथ को प्रेम से जो नर और जो नार, कृपा उनकी पाकर सदा हो भवसागर से पार। कहते हैं जब भक्त अपने आराध्य से मिलने के लिए व्याकुल हो जाएं, तब ईश्वर भी दूरी नहीं रखते। वो अपने दरबार से निकलते हैं और चल पड़ते हैं अपने चाहने वालों के बीच। पुरी में इन दिनों कुछ ऐसा ही भाव दिखाई दे रहा है। यहाँ सिर्फ रथ ही नहीं बन रहे, बल्कि विश्वास आकार ले रहा है। यहाँ लकड़ियों को नहीं जोड़ा जा रहा, यहाँ सदियों पुरानी परंपरा को फिर से जीवंत किया जा रहा है।
7: हम विश्वकर्मा के परिवार से हैं, मुख्य विश्वकर्मा के परिवार से हैं, जो ताल ध्वज रथ का मुख्य परिवार है हमारा। अभी तो अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक 3 महीने काम होता है रथ का, लेकिन इस साल पुरुषोत्तम महीना 1 महीना ज़्यादा है, तो इसलिए 3 महीना काम हो रहा है। अभी रथ का शेष पर यह काम चल रहा है, जो रथ के चारों तरफ चार द्वार भड़ा जो है, अभी 3 बन चुका है और 1 बनना बाकी है। अभी रथ के ऊपर का काम जो है, पोर्टल बढ़धरा पोर्टल लगाया गया है, उसके बाद जो 13 परस्त पोर्टल में 12 परस्त पोर्टल और पाराभाड़ी वो सब लगाया जाएगा।
6: किसी के हाथ में हथौड़ा है, किसी के पास छेनी, कोई पहियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो कोई नक्काशी में अपनी कला उकेर रहा है। माथे पर पसीना है, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, क्योंकि ये श्रम किसी साधारण कार्य के लिए नहीं है, बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ के स्वागत के लिए है।
7: जो कलश लगाएंगे वो कोटोश्वासिया सेवक है, उनका काम आएगा। इस तरह के 7 तरीके के कारीगर मिलकर एक रथ बनाते हैं।
8: तो आप कब से पूरा काम कर रहे हैं, मतलब आप कब से ये रथ देख रहे हैं, कब से ये काम कर रहे हैं, बचपन से मतलब कब से ये रथ है?
7: देखिए, हमारा तो घर का काम है, हम मुख्य रूप से हम लोगों के निगरानी में ये काम होता है, हम लोगों को लाकर ये काम में लगाते हैं। मुख्य रूप से हम यहाँ के हेड हैं।
8: आप कितने लेकिन सालों से यहाँ?
7: लेकिन हमें 1992 से यहाँ से काम कर रहा हूँ, 34 साल हो गया है काम करने में। तो मुझे जब 14 साल हुआ था, मैं इस सेवा में नियोजित हुआ हूँ।
6: हर साल जब आषाढ़ का महीना आता है, तब पुरी का वातावरण बदल जाता है। गली गली में उत्साह दिखाई देता है, हर घर में चर्चा होती है, हर मन में प्रतीक्षा होती है और हर आंख उसी पल का इंतजार करती है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे।
8: हर प्रांतों से लोग पुरी में आते हैं, सालों में एक बार ये यात्रा होता है और ये यात्रा के लिए कई दिनों से काम शुरू होता है और ये यात्रा में जुड़ने के लिए लाखों लोग यहाँ रथ यात्रा के दिन जुड़ते हैं। इस साल 2026 जुलाई 16 तारीख को रथ यात्रा मनाया जाएगा और इसके लिए पुरी में पूरी तैयारी हो चुकी है और आप देख सकते हैं, मैं अब जहाँ पर रथ बनाया जाता है, भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा होगा इस रथ यात्रा के लिए जो रथ तीनों रथ बनाया जाता है, ये तीनों रथ का काम अब शुरू हो चुका है। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये काम अभी शुरू हो गया है। काम में अब पूरे जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं और दिन रात पूरा यहाँ काम हो रहा है। कैसे भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है और मात्र कुछ ही दिन बाकी है और इसलिए काम अब तेजी से चल रहा है। कैसे काम तुरंत खत्म होगा और रथ यात्रा से पहले ये काम को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है।
6: ये केवल एक यात्रा नहीं, ये भावनाओं का महासागर है। ये वो अवसर है जब भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। साल भर लोग मंदिरों के द्वार पर पहुंचकर दर्शन करते हैं, लेकिन इस महापर्व में नजारा बदल जाता है। यहां प्रभु अपने भक्तों के साथ होते हैं। इस साल 16 जुलाई से शुरू होने वाली ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 24 जुलाई तक चलेगी। इससे पहले स्नान पूर्णिमा का आयोजन होता है, जब 108 पवित्र कलशों के जल से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का अभिषेक किया जाता है। लोक मान्यता है कि इसके बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं, औषधीय सेवा की जाती है और श्रद्धालु धैर्य के साथ उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब महाप्रभु फिर से दर्शन देंगे। यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा श्री मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। इसे महाप्रभु की मौसी का घर माना जाता है। वहां कुछ दिनों तक प्रवास करने के बाद वापसी होती है। रथ यात्रा का दिन आते ही पूरी मानो आस्था के सागर में बदल जाता है। बस जय जगन्नाथ का उद्घोष सुनाई देता है। विशाल रथ आगे बढ़ता है तो हजारों हाथ रस्सियां थाम लेते हैं, लाखों आंखें भक्ति भाव से नम हो जाती हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ, बलभद्र का तल ध्वज और सुभद्रा का दर्पद दलन, ये केवल रथ नहीं, सनातन परंपरा की चलती फिरती पहचान है। हर साल नई लकड़ियों से निर्माण, हर बार नई सजावट, लेकिन भाव वही, विश्वास वही, समर्पण वही। यही भावना रथ के पहियों को गति देती है और यही भक्ति लोगों को प्रभु से जोड़ती है।
9: पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right fields, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
4: गुड न्यूज टुडे
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right fields, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ballgame.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम इंडिया के लिए टीम मीटिंग और

तूफान की जताई आशंका। जून के आखिर तक राजधानी समेत आसपास के इलाकों में मॉनसून के दस्तक देने की संभावना। इस हफ्ते आंधी बारिश के तौर पर जारी रहेगी मौसम की आंख मिचौली। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट। प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर। यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। दिल्ली सरकार ने मॉनसून 2026 के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया। बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। 15 जून से 15 अक्टूबर तक होगा सक्रिय। महाराष्ट्र में मॉनसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश। महाराष्ट्र के लिए अगले 5 दिन अहम। मॉनसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट। अगले 3 दिनों के लिए ठाणे और मुंबई होगी जोरदार बारिश। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मॉनसून होगा और मजबूत। 25-26 जून को मूसलाधार बारिश की संभावना। भारी बारिश का आनंद लेते नजर आए बच्चे। पानी में जमकर की मस्ती। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भरा पानी। ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। अमरावती में मॉनसून की एंट्री। जबरदस्त बारिश के बीच गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों की राहत। सतारा के कोयना नगर में पहली बारिश से दिखा प्रकृति का खूबसूरत नजारा। ओजडेड झरना का बढ़ा जलस्तर। गुजरात के नर्मदा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई नदियों में उफान से सड़क मार्ग बंद। अरुणाचल के कई पेन्योर जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़। बड़े पैमाने पर पानी भरने के कारण 15 से ज्यादा रिहायशी क्वार्टर क्षतिग्रस्त। अचानक आई बाढ़ से एनईपीसीओ परियोजना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र प्रभावित। भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से सड़क मार्ग अवरुद्ध। प्राकृतिक आपदा के बीच बचाव और राहत कार्य जारी। प्रभावित स्थान पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से कर रही काम। अलर्ट पर एनडीआरएफ। बाढ़ और भूस्खलन के बीच पन्योर बांध के बीच फंसे एक व्यक्ति और डॉग तस्वीरें वायरल। पूर्वोत्तर राज्यों में बीते 48 घंटे से ज्यादा समय से हो रही है लगातार बारिश। बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड। अब और आधुनिक और टिकाऊ होगी दिल्ली की सड़कें। रेखा सरकार ने 658 करोड़ रुपए की लागत से 270 किलोमीटर लंबी सड़कें पुनर्विकास को दी मंजूरी। बिहार में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का होगा विस्तार। अब 12 शहर होंगे सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित। समस्तीपुर के प्रसिद्ध चकोटी मठ पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। पूजा अर्चना कर राज्य में सुख शांति समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ विष्णु महायज्ञ और संत महाकुंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम। श्री महाविष्णु जी के 24वें अवतार धाम का किया लोकार्पण। आज क्रिकेटर आकाशदीप की शादी। वाराणसी में अक्षिता राज के साथ लेंगे फेरे। बिहार के रोहतास से धूमधाम से निकली बारात। आगरमालवा में सलोनी जैन की शादी बनी चर्चा का विषय। शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए बनाया विशाल आशियाना। 6 मंजिला है पक्षियों के लिए बनाया गया आशियाना नाम का टावर। हर मंजिल पर पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर। रोज दाना डालने जाता है परिवार। हर मंजिल पर बनाई गई है एक छत जिससे पक्षियों को मिलती है छाव। साथ ही तालाब किनारे होने के कारण पक्षियों के लिए पानी की भी पूरी व्यवस्था। श्रद्धालुओं का विश्वनाथ धाम आना भी होगा आसान। वाराणसी में जल शुरू होगा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। मात्र 50 रुपए होगा वाराणसी कैंट से गौदौलिया चौक तक की पूरी यात्रा का किराया। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी किराए में 20% की विशेष छूट। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जुआओ महोत्सव। इस दौरान शानदार डोंगी परेड का भी किया गया आयोजन। वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग। नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है ये त्यौहार। मॉनसून की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है यह पर्व। गोवा के पारुल विश्वविद्यालय में ग्रैंड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत।
रायपुर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे

0: सीएम विष्णुदेव साय ने किया पौधारोपण, खिलाड़ियों को किया सम्मानित। लाख की चूड़ियों की पहचान बना राजस्थान के कोटा जिले का कैथून शहर, बड़ी संख्या में होता है लाख की चूड़ियों का उत्पादन। कैथून की तंगलियों और छोटी छोटी कार्यशालाओं में कारीगर रंगों को पिघलाकर बनाते हैं खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियां, शादी विवाह और त्यौहार पर इन चूड़ियों की मांग सबसे अधिक। पीढ़ियों से चली आ रही है लाख की चूड़ियां बनाने की कला, जयपुर से मंगवाया जाता है चूड़ी बनाने के लिए उपयोग होने वाला कच्चा माल। बाल विवाह रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की नेक पहल, जल्द ही शादी के कार्ड पर जन्मतिथि अनिवार्य करने की बनाई जा रही योजना। मुख्यमंत्री योगी ने बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान गूगल के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, रोजगार सृजन के अवसरों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में तीर्थराज कपाल मोचन पर आस्था और परंपरा का संगम, कश्मीर के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है यह पवित्र स्थल। घाटी के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है तीर्थराज कपाल मोचन, रंबी आरा नदी के किनारे अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है यह पवित्र मंदिर। शिरडी साई बाबा मंदिर में भक्त दिल खोलकर करते हैं दान, मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर साल आता है 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा। साई भक्त अपनी इच्छा अनुसार नकदी के अलावा देते हैं सोने और चांदी का दान, बाबा की तिजोरी से लगभग 550 किलो सोना और 7030 किलो चांदी का दान। शिरडी साई बाबा मंदिर में देश विदेश से सालाना 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालु करते हैं दर्शन, हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच होती है चढ़ावे की गिनती। राजस्थान के कोटा में है दुनिया का इकलौता विभीषण मंदिर, इस पवित्र स्थल पर भगवान राम के भक्त के रूप में होती है विभीषण की पूजा। 5000 साल पुरानी मान्यता के अनुसार होली के बाद हिरण्यकश्यप दहन की अनूठी परंपरा, रावण का भाई होने के बावजूद अधर्म के विरुद्ध खड़े होने के कारण होती है विभीषण की पूजा। कोटा के शासक महाराव उमेद सिंह प्रथम के शासनकाल में कराया था मंदिर का निर्माण, मंदिर के आसपास कई भगवान की प्रतिमा को किया गया था स्थापित। देवताल में धीरे धीरे पर्यटक और श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी, बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर है यह पवित्र सरोवर। साल के करीब 8 महीने भारी बर्फ की चादर में लिपटा रहता है देवताल सरोवर, समुद्र तल से करीब 18,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह पवित्र स्थल। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ यात्रा ने रचा इतिहास, 63 दिनों में 13 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 12,70,000 से अधिक लोगों ने किए दर्शन। खराब मौसम के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, 1,35,000 भक्तों ने टेका मत्था। मुंबई में फिल्म वेलकम टू जंगल की सफलता की कामना के लिए सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंचे अक्षय कुमार और फरीदा जलाल, विधि विधान से की पूजा। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से होगी सुरक्षा, सीसीटीवी से होगी यात्रा की निगरानी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान, आने जाने वाले लोगों पर पुलिस रख रही विशेष नजर। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, 200 कारीगर बना रहे रथ। रथों के निर्माण में तकनीकी और कलात्मक दोनों पहलुओं पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान, सेवक रथों के जोड़ स्थानों के लिए लोहे के उपकरण का कर रहे हैं तैयार। 29 जून को प्रभु जगन्नाथ की होगी पूर्णिमा स्नान, 15 दिनों तक भगवान का रहेगा एकांतवास। आईसीसी की ओर से ताजा वनडे रैंकिंग का ऐलान, 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शुभमन गिल ने नंबर 2 पर बनाई जगह। गिल के अलावा रूक को भी टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल, विराट कोहली 3रे और रोहित शर्मा मजबूती से 4th स्थान पर काबिज। ताजा आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह अब भी नंबर वन स्पॉट पर बरकरार। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी साथ संयुक्त रूप से नंबर वन पायदान पर काबिज है बुमराह। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शुभमन गिल सातवें स्थान पर बरकरार। उनके पीछे यशस्वी जायसवाल ने आठवें स्थान पर बनाई जगह, वहीं बारहवें पायदान पर ऋषभ पंत का कब्जा। ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स से विदाई। आईपीएल के दो सीजन टीम की कप्तानी करने के बाद वापस अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स पहुंच गए पंत। टी20 रैंकिंग्स में भी भारत का दबदबा कायम। टी20 फॉर्मेट में नंबर वन टीम है भारतीय क्रिकेट टीम। टी20 में बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का कब्जा। 875 पॉइंट्स के साथ अभिषेक टॉप पर, जबकि 871 पॉइंट्स के साथ ईशान किशन नंबर दो बल्लेबाज। टी20 फॉर्मेट के टॉप 10 बैट्समैन में छठे पर तिलक वर्मा और सातवें पर सूर्य कुमार यादव का नाम। ऑलराउंडर्स की सूची में हार्दिक पांड्या दूसरे पायदान पर कब्जे। भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने भी रैंकिंग में मारी बाजी। भारत की युवा स्टार स्पिनर श्री चरनी बनी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की नई नंबर वन गेंदबाज। बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना पांचवें स्थान पर बरकरार और छठे नंबर पर शेफाली वर्मा का कब्जा। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास। लगातार 6 फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए रोनाल्डो। 41 साल के रोनाल्डो ने अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को पछाड़ा। 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप में भी गोल स्कोर कर चुके हैं रोनाल्डो। रोनाल्डो के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पुर्तगाल को मिली बड़ी जीत। फीफा वर्ल्ड कप में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे दो गोल। रोनाल्डो को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया। फैंस ने गाए गाने, क्रोएशिया के लहराए झंडे। फिल्म दुल्हनिया ले आएंगी फर्स्ट लुक जारी। 24 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में देगी दस्तक। फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया गाना जारी। 24 जुलाई को फिल्म सिनेमा घरों में होगी रिलीज। फरहान अख्तर की पीरियड फिल्म में नजर आएंगे सलमान। साल 2027 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। कमल हासन की फिल्म धर्मन ने रजनीकांत का फर्स्ट लुक जारी। डेडली डॉक्टर बने रजनीकांत। फिल्म कॉकटेल 2 का नया गाना रिलीज। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की शानदार कमाई। पेरिस मेंसवेयर फैशन शो में लुई विटॉन का शो हुआ आयोजित। ब्रांड की नई कलेक्शन पहनकर कैटवॉक करते नजर आए मॉडल्स। शो में नजर आया अमेरिकी सर्फ और स्केट कल्चर की झलक। कई मॉडल्स ने सर्फ बोर्ड पकड़े हुए किया वॉक। डिजाइनर फेरल विलियम्स ने इस शो को किया तैयार। इस नई कलेक्शन में गहरे रंग के ढीले ढाले सूट, कैप और जैकेट के साथ जीन शॉर्ट्स शामिल। एक विशाल आर्टिफिशियल वेव जैसा तैयार किया गया शो का बैकग्राउंड, जिसने गर्मियों में आयोजित शो को दिया एक खास कूल एहसास। पेरिस मेंसवेयर फैशन वीक शो में डियोर और रिक ओवेंस जैसे ब्रांड्स भी करेंगे अपने कलेक्शन शोकेस। 28 जून तक चलेगा फैशन वीक। चीन के हैनान में दिखी समुद्री दुनिया का शानदार झलक। विजिटर्स ने हैरान ओशन पैराडाइज रिजॉर्ट का किया दौरा। शानदार ओशन पैराडाइज रिजॉर्ट में लोगों ने लिया समुद्र को, तटीय नजारों का मजा, अंडर वाटर मर्मेड के शानदार शो का उठाया लुत्फ। मर्मेड के अलावा विजिटर्स ने पेंगुइन के साथ समय बिताया, खींची प्यारी तस्वीरें। चीन का लाइनशाइन नाम का सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टॉप 500 लिस्ट में हासिल किया पहला स्थान। जर्मनी के हैमबर्ग में चल रही है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में जारी की गई रैंकिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कम्युनिटी के लिए यूरोप का एक प्रमुख सम्मेलन और प्रदर्शनी है ISC। रंगीन रोशनी से जगमगा उठा बार्सिलोना का समुद्र तट। बीच पर हुआ आतिशबाजी और बॉनफायर का शानदार कार्यक्रम। पारंपरिक सैन जुआन डे मनाने के लिए समुद्र किनारे इकट्ठा हुए हजारों लोग। गर्मियों के बीच में मनाया जाता है यह त्यौहार। सेंट जॉन डे भी कहलाता है सैन जुआन डे। बाइबल के अनुसार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म का प्रतीक है यह दिन। डेनमार्क के कॉपेनहेगन चिड़ियाघर में हुआ नन्हे जिराफ का जन्म, बेबी जिराफ को देखने उमड़ी भीड़। एक साल में कॉपेनहेगन चिड़ियाघर में जिराफ के तीसरे बच्चे का जन्म, फिलहाल क्वारंटीन में है बेबी जिराफ।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: बॉक्स ऑफिस पर स्त्री बनकर सबका दिल जीतने वाली श्रद्धा कपूर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर ऐसा किरदार जीने जा रही हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस बार श्रद्धा कपूर ईठा बनी है जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया है।
2: पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।
3: बॉलीवुड में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ चुकी श्रद्धा कपूर अब ईठा के किरदार में नए अंदाज और नए तेवर के साथ हाजिर हैं। पैरों में घुंघरू की छनक है तो आंखों में जीत का जुनून। श्रद्धा कपूर का ये इंटेंस अवतार पहले ही झलक के साथ दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। मैडॉक फंस की मच अवेटेड फिल्म ईठा का टीजर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुका है और चर्चा में है ईठा के किरदार में श्रद्धा कपूर की दमदार अदाकारी जिसने हल्की सी झलक में ही दिलों को झकझोर कर रख दिया है। ईठा में श्रद्धा एक ऐसी मिसाल पेश करने जा रही हैं जो इतिहास के पन्नों में पहले से ही दर्ज है। श्रद्धा ने महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर के किरदार को पर्दे पर साकार किया है। विठाबाई नारायण गांवकर महाराष्ट्र के एक बेहद लोकप्रिय और महान लोक कलाकार लावणी नर्तकी और लोक गायिका थी। वो लावणी गवलन और भेदिक जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों और गीतों को प्रस्तुत करने में बेहद माहिर थी। उनकी अद्भुत कला को देखते हुए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला था। लोक कला के क्षेत्र में उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए दो बार 1957 और 1990 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी कला का लोहा मानते हुए उन्हें तमाशा साम्राज्ञी की उपाधि दी थी। विठाबाई की स्मृति को संजोए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2006 से लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की। विठाबाई की जिंदगी संघर्षों, हिम्मत और लावणी के प्रति पागलपन की एक ऐसी मिसाल है जिसे पर्दे पर उतारना किसी भी एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धा कपूर ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और विठाबाई के दर्द को अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया है। विठाबाई के जीवन की सबसे प्रसिद्ध और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना 1967 में शिखर श्रृंगणापुर में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हुई थी जिसे टीजर में दिखाया भी गया है। बताया जाता है कि विठाबाई तब 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और स्टेज पर नाच रही थी। परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें अचानक लीवर पेन शुरू हो गया। तब उन्होंने मंच के पीछे जाकर बच्चे को जन्म दिया और दर्शकों की मांग पर कुछ ही मिनटों बाद फिर से स्टेज पर आकर नाचने लगी।
2: पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।
3: कला के प्रति उनके इस अनोखे और अटूट समर्पण की कहानी आज भी महाराष्ट्र के लोक इतिहास में गर्व से याद की जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि विठाबाई की जिंदगी के हर एक लम्हे को उसी शिद्दत के साथ पर्दे पर उतार कर श्रद्धा कपूर ने वाकई अभिनय के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। मेकर्स ने साफ कर दिया है कि ईठा में लावणी सिर्फ एक नाच गाना नहीं है बल्कि ये विठाबाई की कला, उनके स्वाभिमान और विरासत की एक कभी न मिटने वाली कहानी है। ईठा 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या निर्जला एकादशी पर बिना जल के ही उपवास रखना चाहिए? क्या बीमार व्यक्ति निर्जला एकादशी का उपवास ना रखें? क्या निर्जला एकादशी पर किसी दान का विशेष महत्व है? क्या है निर्जला एकादशी की महिमा जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे, ICC के U16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुडलक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। किस तरीके से, कौन सा वो तरीका है जिस तरीके से हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और गायत्री जयंती का निर्जला एकादशी से क्या है संबंध, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी पर उपवास रखें या न रखें, लेकिन जल का या जलीय पदार्थों का दान जरूर करें। लोगों को जल पिलाएं, शरबत पिलाएं, लस्सी छाछ पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। लोगों को जल का दान अगर निर्जला एकादशी पर करें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे।
0: और आइए अब जान लेते हैं 25 जून 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:09 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 4:29 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं क्या है निर्जला एकादशी और क्या है इसका महत्व।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, साल में वैसे तो बहुत सारी एकादशियां पड़ती हैं, लगभग 24 एकादशी, अधिक मास में 26 हो जाती हैं। तो उसमें दो एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है देवोत्थान एकादशी और एक है निर्जला एकादशी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के एक भाई थे भीम, वो अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उन्होंने केवल मात्र एक बार इसी एकादशी का उपवास रखा और मारे भूख के बेहाल होकर मूर्छित हो गए। तो भीम के नाम पर निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर अगर वास्तव में आप बिना जल के निर्जल उपवास रखते हैं तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी पर उपवास रखकर आप पूजा उपासना ध्यान और साधना अगर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निर्जला एकादशी पर अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे जीवन का, सुखी जीवन का वरदान मिलता है। निर्जला एकादशी पर तपती गर्मी में व्रत रखना बिना जल के एक बड़ी कठोर तपस्या है। जब आप ये तपस्या करके प्रार्थना करते हैं शुद्ध और सात्विक मन से, तो आप अपनी कोई भी मनोकामना जो रीजनेबल हो उसे पूरी कर सकते हैं।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, घर में कोई शुभ कार्य होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अतिथि का आगमन होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
0: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि क्या है विधि निर्जला एकादशी के उपवास की, हमें किस तरह से ये व्रत रखना चाहिए।
1: अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी का उपवास रखने का सही तरीका क्या है। प्रातः काल कोशिश करें 12 बजे के पहले कम से कम स्नान कर लें और स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ दें, जल दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरिहि। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करेंगे। भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का दान करें, जल पिलाएं, अन्न वस्त्र का दान करें या जूते छाते का दान करना अच्छा होगा। देखिए नियम ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर आप जल नहीं पिएंगे। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक बिना जल की एक घूंट पिए, बिना कुछ खाए हुए आप उपवास रखेंगे। लेकिन देखिए अगर आप बीमार हैं, आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं, इंसुलिन लेना पड़ता है, बीपी की दवाई चल रही है, तो आप आवश्यकता पड़ने पर लिक्विड ले सकते हैं, नींबू पानी, दूध, फलों का रस या फल ग्रहण करके भी उपवास रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है और निर्जल उपवास रखें, पता चला बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, शुगर लो हो गया, बीपी शूट अप हो गई, ये सब मत करिएगा। यानी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तभी निर्जल उपवास रखिएगा। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो लिक्विड ग्रहण करके, फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, मानसिक तनाव से इस समय बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में विवादों से बचें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: लोग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न रागिनी जी ने हमें लिखा है और रागिनी जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 फरवरी 1995। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म स्थान है सोनीपत, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने का योग क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रागिनी, आपकी कुंडली में विवाह होने का योग चल रहा है और आपका विवाह अब किसी भी समय तय हो सकता है, साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। जब भी विवाह करिए कुंडली एक बार जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि आपके शुक्र के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक बार कुंडली मिला करके अगर आप विवाह करेंगी तो जीवन बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका आपको जवाब दें, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न धर्मवीर ने हमें लिखा है और धर्मवीर जी हमें मेल लिखते हैं जोधपुर, राजस्थान से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 10 अप्रैल 2004। जन्म का समय शाम के 5:00। जन्म स्थान है जोधपुर। ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे साथ मिलकर के व्यापार करे, तो क्या बेटे को मेरे व्यापार में लाना ठीक होगा या बेटे को कोई अलग से व्यापार कराना चाहिए। देखिए धर्मवीर जी, आपके पुत्र की कुंडली कहती है कि वो अपने पिता के साथ मिल करके पिता के व्यापार को ही आगे बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, लोहा, मशीनरी, इस तरह के क्षेत्रों में इनके व्यापार करने की संभावना बनती है। आपके बेटे की कुंडली में दुर्घटनाओं के योग बहुत हैं, जिससे इनको बचना चाहिए। तो आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाएं और अपने पुत्र से कहें कि रोज सुबह शाम एक एक बार अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी पर ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से हमें विशेष लाभ हो सकता है।
0: अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन से काम करें, क्या क्या करें। निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो बिना जल पिए, बिना कुछ खाए निर्जल उपवास रखिए। और अगर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। दोनों समय सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। रात में जग करके 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें तो विशेष लाभ होगा। खास तौर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा अपना समय मंत्र जप करने में और ध्यान में इस दिन लगाएं। भगवान विष्णु का मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरि हरि, इस नाम का भी मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना ही कल्याण होगा। जल का दान करिएगा निर्जला एकादशी पर, बहुत शुभ होगा। लोगों को ठंडा पानी, शरबत, फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, लोगों को जल पिलाएं। और आप जल के पात्र का भी दान कर सकते हैं, लोटा है, गिलास है, सुराही है, घड़ा है, इसका दान करना भी बहुत शुभ होगा। तो कुल मिलाकर आप ये जानिए कि निर्जला एकादशी की महिमा इसलिए है कि ज्येष्ठ के महीने में ये व्रत रखना एक तपस्या है और ज्येष्ठ के प्रचंड गर्मी के महीने में लोगों को जल पिलाना पुण्य अर्जित करने का काम है। लोगों को जल पिलाइए, पुण्य लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करिए, भगवान में ध्यान लगाइए तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, परिवार में समस्या हो सकती है। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं क्या है गायत्री जयंती की महिमा।
0: देखिए, निर्जला एकादशी के साथ गायत्री जयंती का पर्व भी आता है। क्या है इसका महत्व? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी, एकादशी या पूर्णिमा को गायत्री जयंती मनाई जाती है। बहुत सारे लोग एकादशी को मनाते हैं और कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर भी गायत्री जयंती मनाई जाती है। ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा मंत्र है, सन्मार्ग पर ले जाने वाला सबसे बड़ा मंत्र है, वेद की आत्मा है। इसीलिए हमने इस मंत्र को मातृवत समझा है, माता के समान करुणा करने वाला समझा, और इस मंत्र से वेद माता गायत्री को जोड़ा गया। तो ऐसा मानते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या पूर्णिमा को वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, ज्ञान देने वाला, ईश्वर की उपलब्धि कराने वाला, भौतिक जीवन में संपन्नता देने वाला माना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी पर यानी गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का जप करें तो आप अपनी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा है। वो गुरु की तलाश में लगे हुए हैं कि कोई सदगुरु मिले और भव सागर से पार करा दे, मुक्ति मोक्ष का द्वार दिखा दे। जिनको भी गुरु प्राप्ति की कामना है वो निर्जला एकादशी पर गायत्री जयंती वाले दिन 11 माला कम से कम गायत्री मंत्र का जप करेंगे सुबह के समय। और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय 11-11 माला या जितना आप कर सकें यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करिएगा। परमात्मा की विशेष कृपा होगी और सद्गुरु की प्राप्ति होगी।
1: और गुडलक में आप जानेंगे आज के अंतिम राशियों के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न निधि जी ने हमें लिखा है और निधि जी हमें मेल लिखती हैं आगरा से। जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1982, दोपहर में 1 बजे, जन्म स्थान है आगरा। निधि जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में मेरे दिक्कतें बहुत रहती हैं और पति परिवार पर मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, इधर उधर के चक्करों में लगे रहते हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो, पति मेरे ऊपर बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकें। देखिए निधि, आपकी कुंडली में जो बृहस्पति के हालात हैं उसको बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और बृहस्पति के हाल गड़बड़ होने की वजह से मैरिटल लाइफ में चैन नहीं है, सुकून नहीं है। तो अगर बृहस्पति को बेहतर किया जाए तो मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें और एक ओपल लगभग 10-12 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें तो आपकी मुश्किलें धीरे धीरे कम हो जाएंगी।
1: गुड लक। में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मोहन लाल जी ने हमें लिखा है और मोहन लाल जी हमें हरियाणा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1970, शाम के 7:35, जन्म स्थान है हरियाणा, चंडीगढ़ लिखा है इन्होंने, चंडीगढ़ का जन्म है इनका। तो ये पूछ रहे हैं मोहन जी कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी। मोहनलाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके कर्ज के हालात में अक्टूबर 2026 के बाद सुधार होगा, चीजें बेहतर होने लगेंगी और अगस्त 2027 के बाद से चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। रोज सुबह शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, संभव हो तो मंगलवार का व्रत रखें और मंगलवार को गुड़ का दान करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: पंडित जी, एक सवाल था, लोगों का ऐसा मानना है कि एकादशी पर व्रत करने से, दान पुण्य करने से उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से क्या हमें सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है?
0: जी देखिए, एकादशी की तिथि पर अगर आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो निसंदेह आपका मन पवित्र होता है और पवित्र मन से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है या पवित्र मन से आप ईश्वर से जल्दी जुड़ पाते हैं। कोई भी एकादशी हो, निर्जला एकादशी तो खैर साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसीलिए अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, मन को शुद्ध और पवित्र करना चाहते हैं, तो आप इतना जरूर करिए कि निर्जला एकादशी पर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। पूरी गीता तो संभवतः नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए और निर्जला एकादशी पर जल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप शरबत, ठंडा पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आसानी से आप अफोर्ड कर सकते हो, लोगों को पिलाएं, लोगों को दान करें। अगर ये दो काम करें तो पापों का प्रायश्चित भी होगा, मन और विचारों की शुद्धि भी होगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी

0: जन्मदिन 25 जून को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, करियर और धन के मामलों में सुधार होगा, इस साल संपत्ति के लाभ होने के योग भी बन रहे हैं, पूरे साल भर काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, आज की जिज्ञासा है नाम राशि, महीने की राशि या चंद्र राशि में से किसका असर सबसे ज्यादा होता है। देखिए, जो राशि आपकी कुंडली में लिखी है यानी चंद्रमा जिस राशि में है, चंद्र राशि जो है उसका असर सबसे ज्यादा होता है। अगर आपकी कुंडली नहीं है, चंद्र राशि पता नहीं है, तो इसके अभाव में नाम राशि का प्रयोग करना चाहिए। जो महीने के हिसाब से राशि देखते हैं, सन साइन, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है।
1: और आइए अब जानते हैं 25 जून 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, शिक्षा और संतान संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: गुड लक में अब जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में, तो आइए जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि राशियों की विशिष्टता क्या है। आज की गुड लक राशि है कुंभ। ये अत्यधिक बुद्धिमान और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन वाली राशि है, लेकिन कुंभ राशि वालों को डिप्रेशन होने की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना काफी ज्यादा होती है।
1: और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज आपको एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां हमेशा परेशान करती हों तो क्या करेंगे। रोज सुबह एक पात्र में, कटोरी, गिलास या लोटे में शुद्ध जल ले लें। इसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल लेंगे और जल को सामने रख करके एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। पाठ के 10 मिनट के बाद इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर निरंतर करें तो आपका स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, आपका मन भी पवित्र होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: Traditional universities weren't made for everyone. WGU breaks with tradition. With programs designed for busy working adults, you can get classroom ready on your schedule. Start your journey today. Learn more at wgu.edu.
3: Good news today is really good. In this, there is no more news. And chilla-chilli. Less than people have to listen to the news.
1: और अब बात माँ वैष्णो देवी के धाम की करेंगे। देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक देवी धाम में इस साल श्रद्धालुओं ने अपनी मौजूदगी से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल 22 जून तक 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने माँ के दर पर जाकर हाजिरी लगाई है।
4: न कोई तीज त्योहार और न ही नवरात्रि, बावजूद इसके माँ वैष्णो देवी के पवित्र धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब हर रोज यूं ही उमड़ रहा है।
5: जी बताइए कहाँ से आए हैं?
6: यमुनानगर से।
4: देश के अलग अलग राज्यों से आए इन श्रद्धालुओं में कोई जयकारे लगाते हुए भवन की तरफ जा रहा है, तो कोई भजनों के जरिए माँ की महिमा गा रहा है।
7: चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
4: माँ वैष्णो के प्रति भक्तों की इसी अटूट आस्था की बदौलत इस साल इस देवी धाम के नाम एक उपलब्धि जुड़ी है। ये उपलब्धि है 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु की। आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल 22 जून तक 50 लाख 70 हजार श्रद्धालु माता रानी के दरबार में माथा टेक चुके हैं।
8: इस समय हम मौजूद हैं धर्म नगरी कटरा में, जो कि बेस कैंप है माता वैष्णो देवी यात्रा का। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल ही जो है श्रद्धालुओं के आंकड़े जारी किए हैं, यानी कि इस वर्ष जो अब तक श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आए हैं उनके आंकड़े जारी हुए हैं। और 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा कर ली है। 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग भागों से यहां पहुंच रहे हैं।
4: एक दिन पहले श्राइन बोर्ड की तरफ से सोशल मीडिया एक्सपर्ट जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार पिछले साल 2025 में इसी अवधि तक करीब 39,84,000 श्रद्धालुओं ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए थे, जबकि इस साल ये संख्या बढ़कर 50,70,000 पहुँच गई है। यानी एक साल में करीब 10,86,000 से ज्यादा श्रद्धालु माता रानी के दरबार में पहुँचे हैं। माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या में इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे वजह है यात्री सुविधाओं में लगातार किया गया विस्तार। श्राइन बोर्ड ने ठहरने की सुविधाएं, साफ सफाई, क्राउड मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सर्विस, बैटरी कार, रोपवे और आपदा प्रबंधन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए RFID जैसी सुविधा भी लागू की गई, जिसके चलते वैष्णो देवी आने वाले भक्तों की न सिर्फ यात्रा आरामदायक हुई बल्कि सुरक्षित भी हुई।
8: ये जो आंकड़ा है काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि पिछले वर्ष अगर हम इसी समय की बात करें, यानी कि जून महीने तक, जनवरी से जून 2025 तक की बात करें, तो 39.84 लाख श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आए थे और इस वर्ष अगर हम देखें तो 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। यानी कि 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो है एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि श्रद्धालु जो हैं भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। और यहां अगर हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, उनका कहना है कि पिछले कुछ समय में यहां पर जो सुविधाएं हैं, चाहे यात्रा मार्ग हो, भवन का क्षेत्र हो, सुविधा जो है वो बढ़ाई गई है, सुविधाओं में जो है बढ़ावा हुआ है, चाहे नए भवनों का निर्माण हो या दूसरी सुविधाएं हो। इस समय अगर आप देखें तो मेरे पीछे ये दर्शनी द्योड़ी है, यहीं से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो शुरू होती है।
0: कश्मीर जाने के लिए आया था और मुझे खुद को पता नहीं कटरा की बस मिल गई, और कटरा बस मिलने मेरे को इतना खुश हुआ कि माता ने मेरे को मतलब इतना बिना बुलाए बुलावा आया है, तो मेरे को ज़रा से ज्यादा खुशी महसूस हो रही है।
4: वैसे तो साल भर ही वैष्णो देवी धाम भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन अगर मौका नवरात्रि का हो या फिर त्योहार का, तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये श्रद्धालु भी मानते हैं कि बीते कुछ सालों में यहाँ यात्री सुविधाओं में अच्छा खासा विस्तार हुआ है, जिसका फायदा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और दिव्यांगों से लेकर बीमार व्यक्तियों तक को हुआ है।
8: जो लोग चलने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, उनके लिए यहाँ पर कई व्यवस्थाएं हैं। यहाँ घोड़ा है, पिट्ठू रहते हैं, पिट्ठू की सुविधा रहती है, पालकी की सुविधा रहती है, और बाकी यहाँ चॉपर सर्विस तो रहती है दिन में, कि जो लोग चॉपर के जरिए पहुँचना चाहते हैं चॉपर की भी यहाँ पर सुविधा रहती है। और अजकुमारी से देखिए, अजकुमारी जो है लगभग 6 किलोमीटर दूर है यहाँ प्रवेश द्वार, जो यात्रा मार्ग है, जहाँ यात्रा मार्ग शुरू होता है, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर अजकुमारी है। और अजकुमारी से बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है भवन तक, यानी कि अधकुमारी से भवन तक बैटरी कार की भी सुविधा है।
5: पहले भी आए हैं दर्शनों के लिए,
6: पहली बार आ रहे हैं।
9: मेरी माता जी दूसरी बार आ रही हैं।
5: अच्छा, पहले आ चुकी हैं।
9: हाँ, पहले आ चुकी हैं माता जी।
5: तो क्या भाव है मन में?
9: बहुत बहुत बहुत बढ़िया भाव है मन में, और बड़े दिनों से मन में तमन्ना थी कि माता जी का दर्शन हो, और आज ये पूरा हो रहा है।
4: माँ वैष्णो देवी के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में आने वाले 2 महीनों में उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे भक्त भी हैं जो अमरनाथ यात्रा के साथ साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा में और तेजी देखने को मिल सकती है। कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात ऐसे फंगस की जिसको लेकर दावा है कि वो खरीफ और रबी फसलों की पैदावार बढ़ाने की ताकत रखता है। राजस्थान के थार मरुस्थल में उगने वाले खेजड़ी के पौधे की जड़ों में पाई जाने वाली इस फंगस से विकसित की गई रूटोनिक तकनीक किसानों के लिए आमदनी की नई उम्मीद जगा रही है। फसलों की पैदावार में 15-40% तक इजाफे के साथ रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 25-50% तक कमी का दावा किया गया है।

0: चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कहने को तो ये अनाज है, लेकिन इनकी शक्ल में आपकी थाली तक कैंसर भी पहुंच सकता है और उसकी वजह है उर्वरक या कीटनाशक। पर अब खेतों में ज्यादा उपज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशकों से छुटकारा मिलने की आस पैदा हुई है।
1: खेती और किसानी को लेकर अक्सर दो बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, पहले किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए और दूसरी जो तमाम तरह के उर्वरक और कीटनाशक हैं जो कि विदेशों से मंगाए जाते हैं उन पर भारत की भारतीय किसानों की निर्भरता कम कैसे हो। इन दोनों ही समस्याओं का हल एक भारतीय वैज्ञानिक ने खोज निकाला है।
0: ऐसा दावा किया है कि नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लैब में खेती के लिए रूटोनिक नाम की एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिसकी मदद से माइकोराइजा जैसे मित्र फंगस पौधों की जड़ों और मिट्टी के बीच एक बेहतर स्वस्थ रिश्ता बनाता है। इस स्वस्थ संबंध के लिए वो पौधों या फसलों की जड़ों में रहकर उनके विकास में सहयोग करता है। आमतौर पर ये मित्र फंगस राजस्थान के थार मरुस्थल में उगने वाले खेजड़ी के पौधों की जड़ों में पाया जाता है जिसे कृत्रिम तरीके से लैब यानी प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, जिसके बाद ट्रायल के लिए पौधों के बीज, नवजात पौधे और मिट्टी में मिलाया गया ताकि फसलों के बेहतर विकास के लिए फंगस के महीन रेशे मिट्टी के पोषक तत्व और पानी को सोख लें। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि रूटोनिक तकनीक से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है।
2: इस फंगस को हमने अलग से कल्चर किया और फिर इसको पौधे के बीज से और सीडलिंग से और सॉइल में अप्लाई किया तो हमने क्या पाया कि ये जो फंगस है ये पौधे की जड़ों को कॉलोनाइज करता है, यानी कि इनकी जड़ों के अंदर जाके रहता है और अपने बहुत ही महीन रेशे जिनको हम अंग्रेजी में हाइफे कहते हैं उनको जड़ों के साथ मिट्टी में निकालता है। इससे क्या होता है कि ये हाइफे मिट्टी से पोषक तत्व सोखते हैं और साथ में पानी को सोखते हैं, तो इससे पौधों की ग्रोथ जो है बढ़ जाती है, पौधों का प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बढ़ता है और इस प्रक्रिया से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इन सभी सतत चीजों से पौधों की जो नेट यील्ड होती है वह बढ़ जाती है।
0: जैसे पंजाब, हिमाचल के अलावा राजस्थान के कई खेतों में भी रूटोनिक तकनीक का ट्रायल किया गया। इस दौरान 15-40% तक फसलों की पैदावार में इजाफा दर्ज किया गया। इसके अलावा यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 25-50% तक चौंकाने वाली कमी दर्ज की गई। दावा है कि गर्म से गर्म इलाके से लेकर बेहद ठंडे लद्दाख तक माइकोराइजा जैसे इस फंगस ने अपनी क्षमता साबित की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कम बारिश और सूखे वाले इलाकों में भी ये काम करता है जिसके बाद सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 148 तरह के पौधों पर ट्रायल किया गया जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, जौ जैसी अनाज की फसल शामिल रही।
2: इसको हमने टोटल 148 पौधों में टेस्ट किया है और उन 148 पौधों में हमने ये पाया कि ये एक वाइड होस्ट रेंज प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग फंगस है। इसको हमने सीरियल्स में लिया, हमने इसको पल्सेस में लिया, ऑयल सीड्स में लिया और वेजिटेबल्स में लिया और शुगर केन में लिया, पोटैटो में लिया, सभी तरह की ग्वार गम में लिया, सभी तरह की मेजर क्रॉप्स में हमने इसको अप्लाई किया है, ना सिर्फ अपने ग्रीन हाउस में बल्कि फील्ड कंडीशंस में भी हमने इसको अप्लाई किया है और हमने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं इसकी एप्लीकेशन में और वह सब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं।
0: खेतों में रूटोनिक के कई फायदे हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि ये किसानों की जेब पर भारी पड़ेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि एक एकड़ फसल के लिए इसका खर्च सिर्फ 1,000 से 1,500 के बीच आता है। वहीं आलू, टमाटर या कोई भी सब्जी उगाने में इस तकनीक के इस्तेमाल की कीमत ना के बराबर आती है।
2: हम जब जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो सीड ट्रीटमेंट है। अगर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बड़े से बड़े सीड एप्लीकेशन रेट जहां होते हैं जैसे गेहूं है, आलू है, शुगर केन है, तो वहां 1 किलो प्रति एकड़ की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जब छोटे सीड आते हैं जैसे टमाटर है और अलग सीड है तो हमें 20 से 25 ग्राम में भी वो काम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉस्ट इसकी जो मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम रेंज भी ले लें, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 1,000-1,500 रुपये, मैं मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनीज के अपने अपने अलग अलग प्राइस होते हैं, तो ये मैक्सिमम आपको कॉस्ट जाएगी।
0: खेती में बढ़ती लागत और जलवायु की चुनौतियों के बीच अब उम्मीद ऐसी तकनीकों से जुड़ रही है जो कम संसाधनों में बेहद उत्पादन दे। नोएडा से निकली रूटोनिक जैसी पहल आने वाले समय में खेती का तरीका बदल सकती है।
1: खर्चा कम, कमाई ज्यादा, और सबसे बड़ी बात कि जो भी इसका रूटोनिक का इस्तेमाल करके जो भी फसल या सब्जी उगाई जाएगी उसमें न्यूट्रिशंस भी ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें कीटनाशक उर्वरक कम होगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये आपकी हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ मामला है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस तक पहुंच पाए और इसका इस्तेमाल कर पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
3: 12 जून को रिलीज हुई इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा ने पहले हफ्ते में थोड़ी धीमी शुरुआत की, लेकिन अब दर्शकों की तारीफ और मजबूत वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की है। दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई में 134% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। इसी के साथ भारत में फिल्म मैं वापस आऊंगा का अब तक कुल नेट कारोबार 29 करोड़ 85,000 रुपए हो गया है।

नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 6 बजे का जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बमुश्किल 8 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वही सुरक्षा बलों के जवान आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो देखिए, साफ है कि श्रद्धालु इस बार निर्भय होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अभूतपूर्व तैयारियों को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अद्भुत अलौकिक अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्वर्ग की सरगोशी करने वाली परलौकिक गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन की हसरत 10 दिन बाद हकीकत में बदलने वाली है। तीर्थयात्री जहां उत्साह में हैं, तो वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षित, सुगम और सकुशल यात्रा सम्पन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल और सेना ने हीला हवाला की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए इस बार पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ तक यात्रा मार्ग पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
1: इस साल की अमरनाथ यात्रा में 10 दिन से भी कम अब समय बच गया है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के साथ साथ बाकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी।
0: पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर गाइड, पालकी संचालक, घोड़े वाले या दुकानदार के रूप में किसी संदिग्ध व्यक्ति की एंट्री ना हो सके, इसके लिए इस बार तकनीक आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। तीर्थयात्रियों को सर्विस देने वाले गाइड, पालकी संचालक और दूसरे कर्मियों और सेवादारों की पहचान के लिए QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम प्रयोग में लाया गया है। इसके तहत सभी संबंधित लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। सभी दर्शनार्थियों को इस सिस्टम के बारे में यात्रा शुरू होने से पहले ही ब्रीफिंग दे दी जाएगी, ताकि वे सिर्फ अधिकृत लोगों से सेवा ले सकें।
1: अब की बार अमरनाथ यात्रियों के पहचान पत्र के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में काम करने वाले घोड़े वालों, दुकानदारों और मजदूरों को भी एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया है, जिस पर उन सभी लोगों की सभी जानकारियां जो है वो एक जुट की गई है और सभी लोग वेरिफाइड हैं।
0: कुल 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कठुआ से श्रीनगर तक के 400 किलोमीटर नेशनल हाईवे को सुरक्षा बलों ने पहले ही कब्जे में ले रखा है। इस हाईवे के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, जम्मू में पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सघन निगरानी की जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 70,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है।
1: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी, बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी।
0: आपको बता दें कि पहलगाम या बालटाल दोनों ही मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा जाने वाले श्रद्धालु देश और दुनिया के तमाम हिस्से से आकर सबसे पहले जम्मू स्थित बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास में ठहरते हैं। बेस कैंप की सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। मंगलवार को यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज ने दस्तक दी। तेज तर्रार जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर भगवती नगर यात्री निवास और उसके आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जवानों ने तरह तरह से मॉक ड्रिल की।
2: जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार यहां पर मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। आज सुबह भी यहां पर जो एनएसजी के कमांडोज हैं, उन्होंने मॉक ड्रिल की यात्री निवास भवन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल सक्षम रहे, तैयार रहें, इसीलिए मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। ये तैयारियां होती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। फिलहाल अगर हम आपको देखिए जो यात्री निवास भवन का जो बाहर का क्षेत्र है, यहां पर ये तंबू लगे हैं, अस्थाई शेड्स बनाए गए हैं। इन्हीं अस्थाई शेड्स में और तंबुओं में जो है सीआरपीएफ के जवानों की ठहरने की व्यवस्था होती है, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी होती है। भारी संख्या में यहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और अगर हम देखें तो पूरे यात्री निवास भवन को सील कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सीआरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात हैं, मोर्चे बनाए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो।
0: मंगलवार को मॉक ड्रिल तो हुई है, लेकिन साथ ही भगवती नगर यात्री निवास को पूरी तरह सैनिटाइज भी कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है, साथ ही जगह जगह पर बंकर बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा बल के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं।
2: फिलहाल हम आपको यहां जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर मैं थोड़ा यहां आगे चलूं, मैं आपको इस यात्री निवास भवन के दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यहां पर जो आप देख सकते हैं कि बंकर्स बनाए गए हैं ताकि यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो 24 घंटे यहां पर मॉनिटरिंग कर सके किसी संदिग्ध हरकत पर। यहां देखिए कैमरास लगातार लगाए गए हैं, तो हर स्थान पर यहां पर कैमरे लगाए गए हैं, तो हर हरकत पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये यात्री निवास भवन का परिसर है, पूरे यात्री निवास भवन को फिलहाल सील कर दिया गया है और सुरक्षा संबंधित बैठकें भी जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, सुरक्षा की समीक्षा भी हो रही है और जगह जगह जो सुरक्षा बल है वो मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं।
0: सेना और अर्धसैनिक बलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर काफी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात ने सोमवार को पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। डीजीपी नलीन ने मातहत अधिकारियों को किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहे।
2: जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं नलिन प्रभात, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो पारंपरिक मार्ग है वो पहलगाम से होकर जाता है और पहलगाम जो है अनंतनाग जिले में ही आता है, इसीलिए ये बैठक जो है वो अनंतनाग में हुई और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद थे और एक तरह से जो सुरक्षा की जो है समीक्षा की गई। तो अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो केंद्रीय बल जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो वहाँ पर वो तैनात होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस तो होगी ही, लेकिन साथ ही में जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो भारी संख्या में तैनात हो रहे हैं और कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा का जिम्मा जो है मुख्य तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के कंधे पर ही होगा। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो भी जगह जगह पर मौजूद रहेंगी, खासतौर पर जो ऊंची चोटियां हैं, तो पूरे समन्वय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो सुरक्षा बल है वो कार्य कर रहे हैं। ये उनको जिम्मा दिया जा रहा है कि सुरक्षा कड़ी रहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान।
0: साफ है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और अमरनाथ गुफा तक किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त यानी 57 दिनों तक चलेगी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बाबा बर्फानी का दर्शन बेहद कठिन माना जाता है। भोले के भक्तों को कश्मीर के पहाड़ियों के बीच दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाना होता है। आमतौर पर ये रास्ते वीरान होते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इन रास्तों पर रौनक ही रौनक दिखती है। दरअसल श्रद्धालुओं के आने से पहले ही देश भर के सेवादार यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे, लंगर और विश्राम की व्यवस्था कर देते हैं। सेवादारों का धर्म तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये तो यात्रा शुरू होने से पहले ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यात्रा खत्म होने तक यहीं रहते हैं। इतना कठिन कार्य करने के बाद भी इनके चेहरों पर थकान और तनाव नहीं दिखता है, बल्कि मानव सेवा का सुकून ही दिखाई देता है।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इस बीच बाबा बर्फानी ने पवित्र गुफा में अपना स्वरूप विस्तार शुरू कर दिया है। इस साल बाबा बर्फानी का ये पहला अलौकिक दर्शन है। एक ओर देश और दुनिया में बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ श्वेत आभा के साथ बाबा बर्फानी श्रद्धालुओं की अगवानी में गुफा के अंदर अपना अलौकिक आकार ग्रहण कर रहे हैं। ये जय घोष है अनादिकाल से चले आ रहे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के पावन आगाज का। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्राणित सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी ही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी झेलनी ना पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति भक्ति का आवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
1: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है, 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेलपत्री पर भंडारा लगता है, उसके लिए नए टीन शेड इस बार तैयार करके वहां से लाए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेलपत्री पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग बाग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर एलजी साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलो पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ तो मेल से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सबाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल रास्ते से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थ यात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहां आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना, और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
2: भंडारे में सुविधा खाने की, रहने की, सोने की, और लैट्रिन बाथरूम साफ शुद्ध खाना, और आपके बिस्कुट टॉफी हर चीज से हम संतुष्टि करना चाहते हैं यात्री की। मान लो अगर तबीयत खराब है तो मेडिसिन भी देते हैं, और समय समय पे जैसे यात्री कहीं रास्ते में फंसा हुआ है तो हमारे सेवादार उसको भी सहायता करने जाते हैं।
0: सेवा का सबाब इतना बड़ा होता है कि मुश्किल भरी तैयारियों के बीच इनके चेहरों पर अलौकिक चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ झलकता है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर 28 अगस्त को खत्म होगी। 57 दिनों की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। परंपरा कहती है कि पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी में स्थित बाबा बर्फानी की अनादिकालीन गुफा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयंभू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक खाइयों के ऊपर से गुजरता है संकरा लेकिन लंबा रास्ता। फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहाँ बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। साल 2022 में 3,04,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमर गुफा के दर्शन किए थे, जो साल 2023 में बढ़कर 4.5 लाख हो गए। साल 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और 5,12,000 हो गई। हालांकि साल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या घटकर 4,14,000 रह गई।
3: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: क्या आपने कभी सोचा कि इतना दुर्गम और असाध्य रास्ता होने के बावजूद हर साल क्यों इतने श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट होने वाले स्वयंभू शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ की यात्रा में पड़ने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पड़ाव अपने भीतर जन्म और मरण के अनंत सिलसिले से मुक्ति का गूढ़ संदेश संजोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें और आखिरी उत्तरकांड की कुछ अनमोल चौपाइयों के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के इस आध्यात्मिक पड़ावों के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनहु तात ये अखत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रसंग में परम ज्ञानी काकभुशुंडी जी मोह माया में फंसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से कहते हैं कि मैं आपको ये गूढ़ अनिर्वचनीय कहानी सुनाता हूँ, जिसे सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझा जा सकता है। इसमें गूढ़ बात ये है कि जीव ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन है, निर्मल है और आनंद राशि है। अगर ऐसा है तो फिर ये संसार इतने दुखों में क्यों फंसा है? इस सवाल का जवाब देते हुए काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य माया मोह के बंधनों में ऐसे ही फंस गया है जैसे तोता पिंजरे में और बंदर मदारी के बंधन में फंसा रहता है। माया की महिमा ही ऐसी है कि वो इंसान को अपने इशारों पर नचाती है और इंसान माया के पाश में फंसकर सत्य और परम तत्व से विमुख हो जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो अमर कथा सुनाई उसमें माया मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर खुद को अविनाशी कर लेने का गूढ़ संदेश और संकेत छिपा है। पहलगाम से शुरू होकर पवित्र गुफा के बीच में यात्रा के जो 7 पड़ाव हैं, वो मनुष्य के अविनाशी होने के 7 रास्ते हैं। बस उन संकेतों को गहराई से समझने की जरूरत है। श्रीनगर से अश्रवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वो पहचान हासिल कर ली है जिसका सपना बड़े बड़े क्रिकेटर देखते हैं। वैभव का जलवा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान में भी उनके नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। देखिए, गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी एज और आईपीएल प्राइस जैसे कीवर्ड तेजी से सर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कई ब्रेकआउट कैटेगरी में पहुंच चुके हैं।

0: क्रिकेट में कहते हैं असली स्टार वो है जिसकी धमक सरहदों को भी पार कर जाए। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान के गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में वैभव को लेकर केवल चर्चा ही नहीं है बल्कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी खूब है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेट सनसनी बन चुके हैं। पिछले 3 महीनों के गूगल ट्रेंड डेटा में पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने वैभव को जमकर सर्च किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, रिकॉर्ड, आईपीएल कीमत और मैचों से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान में तेजी से खोजी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त उछाल, और वैभव से जुड़े कई कीवर्ड्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस भारतीय किशोर बल्लेबाज के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। नजर हो भी क्यों ना, क्रिकेट के पंडित वैभव की आक्रामकता से हैरान हैं। उनके सबसे तेज अर्धशतक की चर्चा हो रही है, उनके बेखौफ अंदाज पर अचरज जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो मुश्ताक मोहम्मद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 1959 में उन्होंने महज 15 साल 124 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। अब लगभग उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने कारनामों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, जब बात विस्फोटक बल्लेबाजी की आती है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सबसे पहले शाहिद अफरीदी याद आते हैं। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज कई लोगों को युवा अफरीदी की याद दिला रहा है। जाहिर है वैभव ने अभी करियर शुरू ही किया है, लेकिन उनके नाम की गूंज पहले ही स्टेडियम की सीमा रेखा पार कर चुकी है। भारत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ती सर्चिंग बता रही है कि ये बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहा बल्कि उतनी ही तेजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार दिखाते हैं, जो सिर्फ लोगों के सिर ही नहीं चढ़ रहा है बल्कि अब पालतू जानवर भी अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बात यहां पर हो रही है मेक्सिको की। मेक्सिको में कुत्तों से लेकर घोड़ों और यहां तक कि एक बतख तक को राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनाई जा रही है। वर्ल्ड कप के इस अनोखे जुनून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है।

0: ये फुटबॉल का फीवर है। हार जीत पर फैंस के चेहरों का रंग ही नहीं बदल रहा, बल्कि ये बेजुबान भी फीफा के रंग में रंग दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवर भी अपनी अपनी टीम को अपनी पोशाकों से चीयर कर रहे हैं। कुत्ते, बत्तखें और दूसरे पालतू जानवर का टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर आ जाना फुटबॉल के फीवर की सबसे दिलचस्प तस्वीर बन गया है। अब इनसे मिलिए, ये है मर्लिन, वो बत्तख जिसने मेक्सिको में वर्ल्ड कप के बाद अपनी एक नई पहचान कायम कर ली है। पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स के सामने मर्लिन के साथ तस्वीर खिंचवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। मेक्सिको की जर्सी पहने मर्लिन अब सोशल मीडिया स्टार भी बन चुका है। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्रेज को भुनाने में बाजार भी पीछे नहीं है। दुकानों पर पालतू जानवरों के लिए खास फुटबॉल जर्सीज बिक रही हैं, मैचिंग टोपियों की भी डिमांड है। यही नहीं, लोग अपने पालतू जानवरों के लिए हेलमेट और चश्मे तक खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि कई डिजाइन तो हाथों हाथ खरीदे जा रहे हैं। बाजार में सबसे ज्यादा नजर आ रही एडीडॉग नाम की ये जर्सीज, मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड की तर्ज पर तैयार ये जर्सीज कम कीमत में उपलब्ध हैं और खरीदारों को बेहद पसंद भी आ रही हैं। मतलब फुटबॉल के इस मेगा उत्सव में इस वक्त एक से बढ़कर एक ट्रेंड चल पड़ा है। जो ट्रेंड लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है वो है ट्विनिंग, मतलब मालिक और उसका पालतू जानवर एक जैसे रंग या एक जैसी जर्सी पहने हुए है। फुटबॉल का जोश अब ऐसे तमाम परिवारों के लिए एक अलग अलग तरह का फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। सिर्फ बाजारों में ही नहीं, पार्क्स और सड़कों पर भी जर्सी पहने पालतू जानवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वो जादू है जिसे दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover,
3: because we all just wanna be big rock stars,
2: interested in what's going on around the world,
4: I have no idea how this election is gonna play out,
2: or wanna catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। आईसीसी के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
5: और अब बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट की। दुनिया की नजरें पिछले चार महीनों में अमेरिका ईरान टकराव पर टिकी हुई थी। दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया था, जिसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और तेल की कीमतें भारी उछाल आया। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिला। ताजा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते 4 महीने में सबसे नीचे आ चुका है।

0: अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है। यूएस ईरान पीस डील के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यानी पिछले कई दिनों से आसमान छू रहे कच्चे तेल के तेवर अब ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। ताज़ा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते 4 महीने में सबसे नीचे आ चुका है। युद्ध के दौरान $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंचकर दुनिया को डराने वाला ये तेल अब $77 से भी नीचे आ चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस नरमी की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस समुद्री रास्ते से तेल टैंकर्स की आवाजाही एक बार फिर बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है।
1: अब हॉर्मुज संकट का समाधान आते ही ईरान अमेरिका के बीच शांति स्थिति होते ही ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं और अनुमान ये भी जताया गया है कि अगर ये स्थिति जिस तरह 60 दिनों की अनुमति दी गई है वैसे में ईरान की ओर से जो कच्चा तेल कई सालों से प्रतिबंधित था वो खुले बाजार में आ चुका है तो ईरान की ओर से एक तो समय भी कम लगेगा तेल भी पहुंच पाएगा तो ऐसे में कीमतें और भी नीचे गिर सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे विकासशील जो देश हैं उनको इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
0: यूएस ईरान डील के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल से नीचे लुढ़क गया है और अमेरिकी WTI क्रूड भी $73 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ये कच्चे तेल की कीमतों का बीते 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और दुनिया अब कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह है। वहीं बाजार में सप्लाई बढ़ाने की उम्मीदों को तब और पंख लग गए जब अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने के लिए 60 दिनों की छूट दे दी। अब भारतीय और अमेरिकी रिफाइनरी समेत दुनिया भर के खरीदार सीधे ईरान से कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैध खरीद कर पाएंगे।
1: ईरान और अमेरिका में शांति समझौते पर सहमति के बाद एक तरफ पश्चिम एशिया का संकट खत्म हुआ, तनाव खत्म हुआ तो उसका असर सकारात्मक रूप से वैश्विक बाजार पर दिख रहा है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। बीते 24 घंटे में अगर देखें तो 1.1% से ज्यादा की गिरावट ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिली है, WTI क्रूड में देखने को मिली है। यहां तक कि जो वैश्विक बेंचमार्क है वो डेटा ये बताता है कि वायदा भाव अगस्त में 0.45% गिरकर $76.73 प्रति बैरल पर आ गया था और इसी के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो अब एक रास्ता ये खुल जाता है। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है यानी वो भी अगले 60 दिनों तक अपना कच्चा तेल दुनिया के बाजार में बेच पाएगा तो उससे असर क्या हो रहा है। अगर हम स्टॉक देख रहे हैं तो WTI जो ट्रेड है उसमें आज भी अगर जो कीमतें गिरी हुई हैं वो काफी ज्यादा हैं तो अब ये 72.52 पर आ चुका है। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $77 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है।
0: तेल की कीमतों में उछाल के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन और भारत तक में तेल गैस का भारी संकट देखने को मिला। भारत की बात करें तो क्रूड महंगा होने के कारण करीब 4 साल सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा और ये एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार किया गया। अब जबकि क्रूड के दाम क्रैश हो गए हैं तो पेट्रोल डीजल प्राइस कट की उम्मीद भी बढ़ रही है। ऐसे में सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे।
1: इसका एक असर पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में ₹74 की कमी की है तो डीजल की कीमतों में भी ₹64 की कमी है, भारी कटौती की है। हालांकि उसको लेकर के जो ऑयल ट्रेडर्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो नाराज हैं लेकिन पाकिस्तान में इसका सीधा फायदा जनता को वहां की सरकार ने दिया है। तो भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि पर जो डॉलर बैरल की कीमत है वो अगर नीचे आ रही है तो हाल फिलहाल में हमने जो कीमतें देखी डीजल पेट्रोल में उसमें कोई कमी आ जाए तो क्या वो कमी आएगी, क्या इस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कोई फैसला लेंगी, क्योंकि राहत की जब बात होगी तो सरकार ये देखेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान हो रहा था, वो नुकसान की अगर भरपाई हो चुकी है तो अब सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर अगर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं ब्रेंट ऑयल वो अगर 77 के नीचे हैं तो ऐसे में दुनिया की नजर इस पर होगी कि उनकी सरकारें क्या अब लोगों पर वो फायदा जो है पहुंचाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी फायदा अगर होगा तो क्या जनता की जेब पर भी होगा।

0: कीमतों में तगड़ा इजाफा हो गया। महंगाई की मार पड़ी और इससे खुद अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति के बाद तेल की कीमतों में अचानक गिरावट शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और तेल कंपनीज को हो रहे घाटे के चलते उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा था, तो क्या अब तेल सस्ता होने से ईंधन की कीमतों में भी कटौती की जाएगी?
1: अगर आज आप देखें तो WTI क्रूड जो है वो 73 बाज आ चुका है, ब्रेंट क्रूड जो है वो 77 के नीचे आ चुका है। और अगर ये परिस्थितियां बनती रहीं तो एक वैश्विक रिपोर्ट ये भी दरअसल कहती है कि प्रगति का ये जो संकेत है ये मार्केट पर, यानी अभी कम से कम 3% ये और नीचे ले जा सकता है, यानी 60 दिनों की जो अवधि है। ऐसे में हमने देखा कि भारत के कई सारे जो जहाज हैं LNG लेकर के, क्रूड ऑयल लेकर के, वो रवाना हुए हैं। आमतौर पर प्रतिदिन अब 90 से 95 जहाज जो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे हैं, जिसके चलते जो सप्लाई लाइन है वो सकारात्मक हो चुकी है, यानी भारत का जो ऊर्जा संकट वो भी खत्म होने के आसार हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, जहां इसकी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करना पड़ता है। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि अभी भी 10 भारतीय झंडे वाले जहाज इस क्षेत्र में इंतजार में लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून से अभी तक 11 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं।
2: जब से अमेरिका और ईरान के बीच में MOUs दस्तखत हुआ है, साइन हुआ है, तब से जो तेल के बाजार के अंदर थोड़ी राहत मिली है, और राहत जो इस समय थोड़ी ज्यादा ही है, और लग रहा है उनको कि भाई शायद शांति रहने वाली है। बहुत दिनों से तनाव चल रहा था, जब बहुत लगातार तनाव रहे, बहुत ज्यादा अंधेरा हो, बहुत शोर हो, बहुत बमबारी हो, उसके बाद एक शांति का MOU साइन हो जाए तो बाजार के अंदर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए तेल आप देख रहे हैं जो ब्रेंट है, कच्चा तेल जो ब्रेंट है, जो भारत में जिस उसको यूज कराया जाता है पैरामीटर को, तो वो तो अब लगभग $75 पर बैरल पे आ गया है। मैं इसको कहूंगा ये उत्सव की कीमत है ये।
0: अब सवाल ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट का सिर्फ आर्थिक महत्व ही नहीं बल्कि सामरिक महत्व भी है। दुनिया का करीब 25-30% कच्चा तेल इसी जलमार्ग से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के उत्पादक और निर्यातक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, UAE और कतर जैसे देशों का कच्चा तेल इसी जलमार्ग से निर्यात होता है। माना जाता है कि अगर इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और भारत भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है।
2: हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं हम। लगभग अपनी जरूरत का 89% तेल आयात करते हैं, और हमारा जो चाहे वो रुपए की कीमत हो, चाहे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, चाहे हमारा फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, सबके लिए ऊपर बोझ पड़ता है अगर जब तेल महंगा हो जाता है। तो अब तेल चूंकि सस्ता है, वजह उसकी MOU साइन हो गया वो है, एक बाजार के अंदर उत्सव का माहौल है, तो कीमतें $75 के आसपास आ गई, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी कम हो जाए।
0: एक तरफ जहां तेल की कीमतों का गिरना राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर एक नई आशंका ने भी जन्म ले लिया है। ईरान और ओमान ने दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क पर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। यानी दोनों देशों की मंशा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम है। इस साल चारधाम के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जो इस साल का एक नया रिकॉर्ड है। वहीं केदारनाथ धाम में भी 12 लाख से कहीं ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो गंगोत्री में 6 लाख से ज्यादा और यमुनोत्री धाम में लगभग 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी करीब 1.5 लाख श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच चुके हैं।

0: अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। यहां इस बार श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से सुरक्षा की तैयारी है, साथ ही यात्रा की निगरानी CCTV से की जाएगी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखे हुए है। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा मंदिर में साई भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर साल यहां 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसके अलावा साई भक्त अपनी इच्छा के अनुरूप नकदी के अलावा सोने और चांदी की वस्तुएं आभूषणों का भी दान करते हैं। अब तक साई बाबा की तिजोरी में लगभग 550 किलो सोना और 7030 किलो चांदी का दान किया जा चुका है। हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को यहां कड़ी सुरक्षा के बीच चढ़ावे की गिनती की जाती है। महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर विवाह पत्रिकाओं यानी शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्म तिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शादी के समय वर वधु की सही उम्र की जांच करना आसान हो जाएगा और नाबालिगों की शादी को रोका जा सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल परिवार ही नहीं बल्कि शादी के कार्ड छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय और विवाह आयोजन से जुड़े दूसरे संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये कॉरिडोर मेट्रो के 5वें चरण के तहत विकसित किया जा रहा है और मैजेंटा लाइन के विस्तार का हिस्सा है। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत कॉरिडोर में कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन होगा, जो ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नई मैजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, कार्यालय में आने जाने वाले लोगों और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
1: वेलकम टू द जंगल का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज से पहले चर्चा में है। फिल्म का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें अक्षय कुमार ने भी अपनी आवाज दी। गाने में फरहाद भिवंडी वाला, रूबई और संगीतकार विक्रम मोन्ट्रोस भी शामिल है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कई बड़े सितारे नजर आएंगे। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये मल्टी स्टारर फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि 25 जून को इसके पेड प्रीव्यूज रखे गए हैं। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का पहला पोस्टर सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। पोस्टर में खुशहाली कुमार दुल्हन के पारंपरिक लिबास में नजर आ रही हैं, लेकिन उनके स्टाइलिश अंदाज ने सबका ध्यान खींचा है। आकाश आदित्य लामा के निर्देशन में बनी ये फैमिली एंटरटेनर एक ऐसे दुल्हन की कहानी है जो अपने खास मिशन पर निकलती है। फिल्म में पीयूष मिश्रा और महेश मांजरेकर भी अहम भूमिकाओं में है। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांगराना और नसीरुद्दीन शाह स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 12 दिनों में दुनिया भर से 48 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। भारत में फिल्म की नेट कमाई लगभग 30 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जबकि विदेशी बाजारों में भी इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। विभाजन के पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी दर्शकों को भावुक कर रही है।

0: गुलाब मिलन जवेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं का टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। ये गाना दोस्ती, प्यार और रिश्तों की भावनात्मक झलक पेश करता है। फिल्म से अमन इंद्र कुमार अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं और उनके साथ आकांक्षा शर्मा मुख्य भूमिका में है। परेश रावल, जॉनी लीवर और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है। पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान जल्द ही एक बड़े पीरियड ड्रामा का हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस महत्वाकांक्षी फिल्म को राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और अपने किरदार से वो काफी प्रभावित हैं। फिल्म में वो इतिहास के एक बेहद लोकप्रिय किरदार को निभाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने लुक और बॉडी पर खास मेहनत करनी होगी। फिल्म की शूटिंग साल 2027 में शुरू होने की संभावना है।
1: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: ये नन्हा पपी अपनी अनोखी अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क किनारे बैठा पपी ऐसे चलने की कोशिश करता है मानो उसके पैर काम नहीं कर रहे हो। राहगीर भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करता है अचानक सामान्य तरीके से दौड़ने लगता है। उसकी इस मजेदार हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो देखकर कई लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग के मामले में ये पपी बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दे सकता है। गाँव की एक महिला ने देसी जुगाड़ से आइसक्रीम बनाने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। महिला ने पंखे में रस्सी बांधकर एक बाल्टी लटका दी और उसके चारों तरफ बर्फ जमा दी। पंखा घूमते ही बाल्टी भी घूमने लगी और कुछ ही समय में दूध से स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो गई। बिना किसी महंगी मशीन के अपनाई गई ये तकनीक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर इस देसी हुनर की जमकर तारीफ हो रही है। पक्षियों से प्रेम की कई कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। एक महिला कौए को अपनी गोद में सुलाकर उसे दुलार करती हुई नजर आती है। वो बड़े प्यार से उसके सिर और पंखों पर हाथ फेरती है और उसकी मालिश भी करती है। कौआ भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उसके पास आराम करता हुआ दिखाई देता है। इंसान और पक्षी के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। बिहार का एक मासूम बच्चा अपनी नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। डांट पड़ने के बाद बच्चा गुस्से में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी देता नजर आता है। वो मासूम अंदाज में कहता है कि वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। हालांकि उसकी बातों में गुस्से से ज्यादा बचपन की मासूमियत झलकती है। प्रिंसिपल भी बच्चे की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो देखकर लोग बच्चे की भोली भाली नाराजगी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। माँ की सीख को गंभीरता से लेने वाला ये छोटा बच्चा इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चे को सिखाया गया था कि कोई भी चीज खाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि रसगुल्ला खाने से पहले उसे पानी में धोने लगा। हाथ में रसगुल्ला लेकर वो नल के पास रखे पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे खाता है। उसकी मासूम समझ और भोलेपन को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
1: चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चीन के हैनान में समुद्री दुनिया की एक शानदार झलक देखने को मिली। मशहूर मरीन वंडरलैंड में ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिला जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण पानी के भीतर खूबसूरत मरमेड परफॉर्मेंस यानी जल परियों का अद्भुत नृत्य रहा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद लोगों को पेंगुइन्स को करीब से देखने और उन्हें खाना खिलाने का एक बेहद अनोखा अनुभव भी मिला। हैनान का ये मरीन पार्क पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्लोबल टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यह सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। लाइनशाइन ने आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टॉप 500 लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि चीन ने बिना किसी अमेरिकी चिप के सिर्फ साधारण दिखने वाले सीपीयूज की बदौलत ये करिश्मा कर दिखाया है। इससे पहले अमेरिका के ईआई कैप्टन नाम का सुपर कंप्यूटर पहले नंबर पर था। स्पेन में पारंपरिक सैन जुआन फेस्टिवल बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बार्सिलोना का पूरा तट रंग बिरंगी आतिशबाजी और पटाखों की रोशनी से नहा उठा। नाइट ऑफ फायर यानी आग की इस जादुई रात को सेलिब्रेट करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर से आए लाखों सैलानी समंदर किनारे जमा हुए। मान्यता है कि इस रात समंदर किनारे बॉनफायर करने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। बाइबल के अनुसार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म का प्रतीक है। लोग संगीत की धुन पर थिरकते हैं, आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हैं और पूरी रात बार्सिलोना के समुद्र तट पर रोशनी, संगीत और आस्था का ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन चिड़ियाघर में नन्हे जिराफ का जन्म हुआ है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। जिसके जन्म के साथ ही कोपेनहेगन जू ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना लिया। पिछले महज 12 महीनों के भीतर यहां जन्म लेने वाला ये तीसरा बेबी जिराफ है। चिड़ियाघर के विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरे बेबी जिराफ का जन्म और उनका पूरी तरह स्वस्थ रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये जू के बेहतरीन माहौल और उनकी शानदार देखरेख का नतीजा है। दरअसल पिछले कुछ दशकों में जंगलों के कटने और अवैध शिकार के कारण दुनिया भर में जिराफों की आबादी तेजी से घटी है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत कोपेनहेगन जू की ये कामयाबी उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। पेरिस मेंसवेयर फैशन वीक शो में लुई वुइटन ने अपनी खास थीम को लॉन्च किया, जिसको देख हर कोई हैरान रह गया। इस खास शो की थीम कॉर्पोरेट लाइफ और समंदर के एडवेंचर का एक अनोखा मेल था, जिसको पूरी दुनिया के फैशन लवर्स देखते रह गए। इस विशेष शो में कई मॉडल्स सर्फ बोर्ड और स्केट बोर्ड के साथ वॉक करते नजर आए। डिजाइनर फेरल विलियम्स ने इस शो को तैयार किया था। इस नई कलेक्शन में गहरे रंग के ढीले ढाले सूट, कैप और जैकेट के साथ जीन्स और शर्ट शामिल थी। शो की खासियत इसके लिए तैयार किया गया सेट भी रही, जिसे एक विशाल आर्टिफिशियल वेव जैसा तैयार किया गया था, जिसने गर्मियों में आयोजित शो को एक खास कूल एहसास दिया।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
3: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's Best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए सैलानियों से गुलजार है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी आपको यकीनन बेहद प्रभावित करेगी। सेंटोरिनी का ये खूबसूरत और वायरल हो रहा सनसेट एक बार फिर से साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नजारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं।

0: सफेद रंग के घर, नीला समंदर और खूबसूरत सनसेट। ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए पर्यटकों से गुलजार है। शाम होते ही सैकड़ों लोग यहाँ का स्पेशल सनसेट को देखने के लिए जुट जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर पर्यटकों के बकेट लिस्ट में ये नज़ारा जरूर होता है।
1: माँ बेटी की जोड़ी के रूप में ये अनुभव हमारी बकेट लिस्ट में लंबे समय से शामिल था। इसे साथ मिलकर जीना हमारे लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला खास अनुभव रहा। यहाँ हर मिनट भरपूर आनंद भरा रहा।
0: सेंटोरिनी के पत्थरों से बनी संकरी गलियाँ, पहाड़ियों पर बने घर और एजियन सागर का अद्भुत दृश्य पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मंगलवार को तेज धूप और गर्मी के बावजूद यहां सैलानियों की संख्या ने सभी को दंग कर दिया। जानकारों का कहना है कि यूरोप में तापमान की दुश्वारियों के बावजूद सेंटोरिनी जैसे पर्यटन स्थल अपनी अनूठी प्राकृतिक खूबसूरती और यादगार अनुभवों की वजह से दुनिया भर के यात्रियों की पहली पसंद बने हुए हैं। समुद्र में धीरे धीरे समाता सूरज और सफेद घरों पर पड़ती सुनहरी रोशनी और कैमरों में कैद होते खूबसूरत पल। सेंटोरिनी का ये सनसेट एक बार फिर साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नज़ारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
5: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
6: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। आईसीसी के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।

नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 6 बजे का जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बमुश्किल 8 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों के जवान आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो देखिए, साफ है कि श्रद्धालु इस बार निर्भय होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अभूतपूर्व तैयारियों को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: tutta la città dopo.
1: तीन जुलाई से शुरू हो रही अद्भुत अलौकिक अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्वर्ग की सरगोशी करने वाली परलौकिक गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन की हसरत 10 दिन बाद हकीकत में बदलने वाली है। तीर्थयात्री जहां उत्साह में है, तो वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षित, सुगम और सकुशल यात्रा सम्पन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल और सेना ने हीला हवाला की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए इस बार पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ तक यात्रा मार्ग पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
2: इस साल की अमरनाथ यात्रा में 10 दिन से भी कम अब समय बच गया है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के साथ साथ बाकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी।
1: पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर गाइड, पालकी संचालक, घोड़े वाले या दुकानदार के रूप में किसी संदिग्ध व्यक्ति की एंट्री ना हो सके, इसके लिए इस बार तकनीक आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। तीर्थयात्रियों को सर्विस देने वाले गाइड, पालकी संचालक और दूसरे कर्मियों और सेवादारों की पहचान के लिए QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम प्रयोग में लाया गया है। इसके तहत सभी संबंधित लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। सभी दर्शनार्थियों को इस सिस्टम के बारे में यात्रा शुरू होने से पहले ही ब्रीफिंग दे दी जाएगी, ताकि वे सिर्फ अधिकृत लोगों से सेवा ले सकें।
2: अब की बार अमरनाथ यात्रियों के पहचान पत्र के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में काम करने वाले घोड़े वालों, दुकानदारों और मजदूरों को भी एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया है, जिस पर उन सभी लोगों की सभी जानकारियां जो है वो एक जुट की गई है और सभी लोग वेरिफाइड हैं।
1: कुल 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कठुआ से श्रीनगर तक के 400 किलोमीटर नेशनल हाईवे को सुरक्षा बलों ने पहले ही कब्जे में ले रखा है। इस हाईवे के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, जम्मू में पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सघन निगरानी की जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 70,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है।
2: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी, बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी।
1: आपको बता दें कि पहलगाम या बालटाल दोनों ही मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा जाने वाले श्रद्धालु देश और दुनिया के तमाम हिस्से से आकर सबसे पहले जम्मू स्थित बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास में ठहरते हैं। बेस कैंप की सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। मंगलवार को यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज ने दस्तक दी। तेज तर्रार जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर भगवती नगर यात्री निवास और उसके आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जवानों ने तरह तरह से मॉक ड्रिल की।
0: जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार यहां पर मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। आज सुबह भी यहां पर जो एनएसजी के कमांडोज हैं, उन्होंने मॉक ड्रिल की यात्री निवास भवन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल सक्षम रहे, तैयार रहें, इसीलिए मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। ये तैयारियां होती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। फिलहाल अगर हम आपको देखिए जो यात्री निवास भवन का जो बाहर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये तंबू लगे हैं, अस्थाई शेड्स बनाए गए हैं। इन्हीं अस्थाई शेड्स में और तंबुओं में जो है सीआरपीएफ के जवानों की ठहरने की व्यवस्था होती है, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी होती है। भारी संख्या में यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और अगर हम देखें तो पूरे यात्री निवास भवन को सील कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सीआरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात हैं, मोर्चे बनाए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो।
1: मंगलवार को मॉक ड्रिल तो हुई ही, लेकिन साथ ही भगवती नगर यात्री निवास को पूरी तरह सैनिटाइज भी कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है, साथ ही जगह जगह पर बंकर बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा बल के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं।
0: फिलहाल हम आपको यहां जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर मैं थोड़ा यहां आगे चलूं, मैं आपको इस यात्री निवास भवन के दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यहां पर जो आप देख सकते हैं कि बंकर्स बनाए गए हैं ताकि यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो 24 घंटे यहां पर मॉनिटरिंग कर सके किसी संदिग्ध हरकत पर। यहां देखिए कैमरास लगातार लगाए गए हैं, तो हर स्थान पर यहां पर कैमरे लगाए गए हैं, तो हर हरकत पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये यात्री निवास भवन का परिसर है, पूरे यात्री निवास भवन को फिलहाल सील कर दिया गया है और सुरक्षा संबंधित बैठकें भी जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, सुरक्षा की समीक्षा भी हो रही है और जगह जगह जो सुरक्षा बल है वो मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं।
1: सेना और अर्धसैनिक बलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर काफी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात ने सोमवार को पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। डीजीपी नलीन ने मातहत अधिकारियों को किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहे।
0: जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं नलिन प्रभात, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो पारंपरिक मार्ग है वो पहलगाम से होकर जाता है और पहलगाम जो है अनंतनाग जिले में ही आता है, इसीलिए ये बैठक जो है वो अनंतनाग में हुई और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद थे और एक तरह से जो सुरक्षा की जो है समीक्षा की गई। तो अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो केंद्रीय बल जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो वहाँ पर वो तैनात होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस तो होगी ही, लेकिन साथ ही में जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो भारी संख्या में तैनात हो रहे हैं और कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा का जिम्मा जो है मुख्य तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के कंधे पर ही होगा। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो भी जगह जगह पर मौजूद रहेंगी, खासतौर पर जो ऊंची चोटियां हैं, तो पूरे समन्वय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो सुरक्षा बल है वो कार्य कर रहे हैं। ये उनको जिम्मा दिया जा रहा है कि सुरक्षा कड़ी रहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान।
1: साफ है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और अमरनाथ गुफा तक किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त यानी 57 दिनों तक चलेगी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
3: बाबा बर्फानी का दर्शन बेहद कठिन माना जाता है। भोले के भक्तों को कश्मीर के पहाड़ियों के बीच दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाना होता है। आमतौर पर ये रास्ते वीरान होते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इन रास्तों पर रौनक ही रौनक दिखती है। दरअसल श्रद्धालुओं के आने से पहले ही देश भर के सेवादार यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे, लंगर और विश्राम की व्यवस्था कर देते हैं। सेवादारों का धर्म तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये तो यात्रा शुरू होने से पहले ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यात्रा खत्म होने तक यहीं रहते हैं। इतना कठिन कार्य करने के बाद भी इनके चेहरों पर थकान और तनाव नहीं दिखता है, बल्कि मानव सेवा का सुकून ही दिखाई देता है।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इस बीच बाबा बर्फानी ने पवित्र गुफा में अपना स्वरूप विस्तार शुरू कर दिया है। इस साल बाबा बर्फानी का ये पहला अलौकिक दर्शन है। एक ओर देश और दुनिया में बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ श्वेत आभा के साथ बाबा बर्फानी श्रद्धालुओं की अगवानी में गुफा के अंदर अपना अलौकिक आकार ग्रहण कर रहे हैं। ये जय घोष है अनादिकाल से चले आ रहे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के पावन आगाज का। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्राणित सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी ही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी झेलनी ना पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति भक्ति का आवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
1: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है, 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेलपत्री पर भंडारा लगता है, उसके लिए नया टीन शेड इस बार तैयार करके वहां से लाए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेलपत्री पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग मग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर LG साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलो पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ तो मेल से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सबाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल रास्ते से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थयात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहां आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
2: भंडारे में सुविधा खाने की, रहने की, सोने की और लैट्रिन बाथरूम साफ शुद्ध खाना और आपके बिस्कुट टॉफी हर चीज से हम संतुष्टि करना चाहते हैं यात्री की। मान लो अगर तबीयत खराब है तो मेडिसिन भी देते हैं और समय समय पे जैसे यात्री कहीं रास्ते में फंसा हुआ है तो हमारे सेवादार उसको भी सहायता करने जाते हैं।
0: सेवा का सबाब इतना बड़ा होता है कि मुश्किल भरी तैयारियों के बीच इनके चेहरों पर अलौकिक चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ झलकता है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर 28 अगस्त को खत्म होगी। 57 दिनों की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। परंपरा कहती है कि पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी में स्थित बाबा बर्फानी की अनादिकालीन गुफा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयंभू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक खाइयों के ऊपर से गुजरता है संकरा लेकिन लंबा रास्ता। फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहाँ बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। साल 2022 में 3,04,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमर गुफा के दर्शन किए थे, जो साल 2023 में बढ़कर 4.5 लाख हो गए। साल 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और 5,12,000 हो गई। हालांकि साल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या घटकर 4,14,000 रह गई।
3: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: क्या आपने कभी सोचा कि इतना दुर्गम और असाध्य रास्ता होने के बावजूद हर साल क्यों इतने श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट होने वाले स्वयंभू शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ की यात्रा में पड़ने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पड़ाव अपने भीतर जन्म और मरण के अनंत सिलसिले से मुक्ति का गूढ़ संदेश संजोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें और आखिरी उत्तरकांड की कुछ अनमोल चौपाइयों के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के इस आध्यात्मिक पड़ावों के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनहु तात ये अखत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रसंग में परम ज्ञानी काकभुशुंडी जी मोह माया में फंसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से कहते हैं कि मैं आपको ये गूढ़ अनिर्वचनीय कहानी सुनाता हूँ, जिसे सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझा जा सकता है। इसमें गूढ़ बात ये है कि जीव ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन है, निर्मल है और आनंद राशि है। अगर ऐसा है तो फिर ये संसार इतने दुखों में क्यों फंसा है? इस सवाल का जवाब देते हुए काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य माया मोह के बंधनों में ऐसे ही फंस गया है जैसे तोता पिंजड़े में और बंदर मदारी के बंधन में फंसा रहता है। माया की महिमा ही ऐसी है कि वो इंसान को अपने इशारों पर नचाती है और इंसान माया के पाश में फंसकर सत्य और परम तत्व से विमुख हो जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो अमर कथा सुनाई उसमें माया मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर खुद को अविनाशी कर लेने का गूढ़ संदेश और संकेत छिपा है। पहलगाम से शुरू होकर पवित्र गुफा के बीच में यात्रा के जो 7 पड़ाव हैं, वो मनुष्य के अविनाशी होने के 7 रास्ते हैं। बस उन संकेतों को गहराई से समझने की जरूरत है। श्रीनगर से अश्रवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
2: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
1: to live sports action.
3: To the near side corner, to wrap around, he scores!
1: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वो पहचान हासिल कर ली है जिसका सपना बड़े बड़े क्रिकेटर देखते हैं। वैभव का जलवा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान में भी उनके नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। देखिए, गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी एज और आईपीएल प्राइस जैसे कीवर्ड तेजी से सर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कई ब्रेकआउट कैटेगरी में पहुंच चुके हैं।

0: क्रिकेट में कहते हैं असली स्टार वो है जिसकी धमक सरहदों को भी पार कर जाए। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान के गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में वैभव को लेकर केवल चर्चा ही नहीं है बल्कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी खूब है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेट सनसनी बन चुके हैं। पिछले 3 महीनों के गूगल ट्रेंड डेटा में पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने वैभव को जमकर सर्च किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, रिकॉर्ड, आईपीएल कीमत और मैचों से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान में तेजी से खोजी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त उछाल, और वैभव से जुड़े कई कीवर्ड्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस भारतीय किशोर बल्लेबाज के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। नजर हो भी क्यों ना, क्रिकेट के पंडित वैभव की आक्रामकता से हैरान हैं। उनके सबसे तेज अर्धशतक की चर्चा हो रही है, उनके बेखौफ अंदाज पर अचरज जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो मुश्ताक मोहम्मद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 1959 में उन्होंने महज 15 साल 124 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। अब लगभग उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने कारनामों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, जब बात विस्फोटक बल्लेबाजी की आती है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सबसे पहले शाहिद अफरीदी याद आते हैं। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज कई लोगों को युवा अफरीदी की याद दिला रहा है। जाहिर है वैभव ने अभी करियर शुरू ही किया है, लेकिन उनके नाम की गूंज पहले ही स्टेडियम की सीमा रेखा पार कर चुकी है। भारत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ती सर्चिंग बता रही है कि ये बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहा बल्कि उतनी ही तेजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार दिखाते हैं, जो सिर्फ लोगों के सिर ही नहीं चढ़ रहा है बल्कि अब पालतू जानवर भी अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बात यहां पर हो रही है मेक्सिको की। मेक्सिको में कुत्तों से लेकर घोड़ों और यहां तक कि एक बतख तक को राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनाई जा रही है। वर्ल्ड कप के इस अनोखे जुनून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है।

0: ये फुटबॉल का फीवर है। हार जीत पर फैंस के चेहरों का रंग ही नहीं बदल रहा, बल्कि ये बेजुबान भी फीफा के रंग में रंग दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवर भी अपनी अपनी टीम को अपनी पोशाकों से चीयर कर रहे हैं। कुत्ते, बत्तखें और दूसरे पालतू जानवर का टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर आ जाना फुटबॉल के फीवर की सबसे दिलचस्प तस्वीर बन गया है। अब इनसे मिलिए, ये है मर्लिन, वो बत्तख जिसने मेक्सिको में वर्ल्ड कप के बाद अपनी एक नई पहचान कायम कर ली है। पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स के सामने मर्लिन के साथ तस्वीर खिंचवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। मेक्सिको की जर्सी पहने मर्लिन अब सोशल मीडिया स्टार भी बन चुका है। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्रेज को भुनाने में बाजार भी पीछे नहीं है। दुकानों पर पालतू जानवरों के लिए खास फुटबॉल जर्सी बिक रही हैं, मैचिंग टोपियों की भी डिमांड है। यही नहीं, लोग अपने पालतू जानवरों के लिए हेलमेट और चश्मे तक खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि कई डिजाइन तो हाथों हाथ खरीदे जा रहे हैं। बाजार में सबसे ज्यादा नजर आ रही एडीडॉग नाम की ये जर्सीज, मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड की तर्ज पर तैयार ये जर्सीज कम कीमत में उपलब्ध हैं और खरीदारों को बेहद पसंद भी आ रही हैं। मतलब फुटबॉल के इस मेगा उत्सव में इस वक्त एक से बढ़कर एक ट्रेंड चल पड़ा है। जो ट्रेंड लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है वो है ट्विनिंग, मतलब मालिक और उसका पालतू जानवर एक जैसे रंग या एक जैसी जर्सी पहने हुए है। फुटबॉल का जोश अब ऐसे तमाम परिवारों के लिए एक अलग अलग तरह का फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। सिर्फ बाजारों में ही नहीं, पार्क्स और सड़कों पर भी जर्सी पहने पालतू जानवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वो जादू है जिसे दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। आईसीसी के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: और अब बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट की। दुनिया की नजरें पिछले चार महीनों में अमेरिका ईरान टकराव पर टिकी हुई थी। दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया था, जिसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और तेल की कीमतें भारी उछाल आया। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिला। ताजा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते चार महीने में सबसे नीचे आ चुका है।

0: अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है। यूएस ईरान पीस डील के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यानी पिछले कई दिनों से आसमान छू रहे कच्चे तेल के तेवर अब ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। ताज़ा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते 4 महीने में सबसे नीचे आ चुका है। युद्ध के दौरान $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंचकर दुनिया को डराने वाला ये तेल अब $77 से भी नीचे आ चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस नरमी की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस समुद्री रास्ते से तेल टैंकर्स की आवाजाही एक बार फिर बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है।
1: अब हॉर्मुज संकट का समाधान आते ही ईरान अमेरिका के बीच शांति स्थिति होते ही ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं और अनुमान ये भी जताया गया है कि अगर ये स्थिति जिस तरह 60 दिनों की अनुमति दी गई है वैसे में ईरान की ओर से जो कच्चा तेल कई सालों से प्रतिबंधित था वो खुले बाजार में आ चुका है तो ईरान की ओर से एक तो समय भी कम लगेगा तेल भी पहुंच पाएगा तो ऐसे में कीमतें और भी नीचे गिर सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे विकासशील जो देश हैं उनको इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
0: यूएस ईरान डील के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल से नीचे लुढ़क गया है और अमेरिकी WTI क्रूड भी $73 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ये कच्चे तेल की कीमतों का बीते 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और दुनिया अब कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह है। वहीं बाजार में सप्लाई बढ़ाने की उम्मीदों को तब और पंख लग गए जब अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने के लिए 60 दिनों की छूट दे दी। अब भारतीय और अमेरिकी रिफाइनरी समेत दुनिया भर के खरीदार सीधे ईरान से कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैध खरीद कर पाएंगे।
1: ईरान और अमेरिका में शांति समझौते पर सहमति के बाद एक तरफ पश्चिम एशिया का संकट खत्म हुआ, तनाव खत्म हुआ तो उसका असर सकारात्मक रूप से वैश्विक बाजार पर दिख रहा है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। बीते 24 घंटे में अगर देखें तो 1.1% से ज्यादा की गिरावट ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिली है, WTI क्रूड में देखने को मिली है। यहां तक कि जो वैश्विक बेंचमार्क है वो डेटा ये बताता है कि वायदा भाव अगस्त में 0.45% गिरकर $76.73 प्रति बैरल पर आ गया था और इसी के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो अब एक रास्ता ये खुल जाता है। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है यानी वो भी अगले 60 दिनों तक अपना कच्चा तेल दुनिया के बाजार में बेच पाएगा तो उससे असर क्या हो रहा है। अगर हम स्टॉक देख रहे हैं तो WTI जो ट्रेड है उसमें आज भी अगर जो कीमतें गिरी हुई हैं वो काफी ज्यादा हैं तो अब ये 72.52 पर आ चुका है। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $77 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है।
0: तेल की कीमतों में उछाल के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन और भारत तक में तेल गैस का भारी संकट देखने को मिला। भारत की बात करें तो क्रूड महंगा होने के कारण करीब 4 साल सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा और ये एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार किया गया। अब जबकि क्रूड के दाम क्रैश हो गए हैं तो पेट्रोल डीजल प्राइस कट की उम्मीद भी बढ़ रही है। ऐसे में सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे।
1: इसका एक असर पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में ₹74 की कमी की है तो डीजल की कीमतों में भी ₹64 की कमी है, भारी कटौती की है। हालांकि उसको लेकर के जो ऑयल ट्रेडर्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो नाराज हैं लेकिन पाकिस्तान में इसका सीधा फायदा जनता को वहां की सरकार ने दिया है। तो भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि पर जो डॉलर बैरल की कीमत है वो अगर नीचे आ रही है तो हाल फिलहाल में हमने जो कीमतें देखी डीजल पेट्रोल में उसमें कोई कमी आ जाए तो क्या वो कमी आएगी, क्या इस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कोई फैसला लेंगी, क्योंकि राहत की जब बात होगी तो सरकार ये देखेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान हो रहा था, वो नुकसान की अगर भरपाई हो चुकी है तो अब सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर अगर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं ब्रेंट ऑयल वो अगर 77 के नीचे हैं तो ऐसे में दुनिया की नजर इस पर होगी कि उनकी सरकारें क्या अब लोगों पर वो फायदा जो है पहुंचाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी फायदा अगर होगा तो क्या जनता की जेब पर भी होगा।
0: बीते 28 फरवरी को पहली बार अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की शुरुआत की थी और इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। साथ ही दुनिया की तेल गैस जरूरतों के 20% की भरपाई करने वाले महत्वपूर्ण समुद्री रूट हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट क्लोज होने के बाद अचानक अप्रैल महीने के दौरान कच्चा तेल $120 के आसपास पहुंच गया। इसका असर ये हुआ कि तमाम देशों में ईंधन गैस की कीमतों में तगड़ा इजाफा हो गया, महंगाई की मार पड़ी और इससे खुद अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति के बाद तेल की कीमतों में

0: अचानक गिरावट शुरू हो गई।
1: अब सवाल ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और तेल कंपनीज को हो रहे घाटे के चलते उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा था, तो क्या अब तेल सस्ता होने से ईंधन की कीमतों में भी कटौती की जाएगी?
2: अगर आज आप देखें तो WTI क्रूड जो है वो 73 बाज आ चुका है, ब्रेंट क्रूड जो है वो 77 के नीचे आ चुका है। और अगर ये परिस्थितियां बनती रहीं तो एक वैश्विक रिपोर्ट ये भी दरअसल कहती है कि प्रगति का ये जो संकेत है ये मार्केट पर, यानी अभी कम से कम 3% ये और नीचे ले जा सकता है, यानी 60 दिनों की जो अवधि है। ऐसे में हमने देखा कि भारत के कई सारे जो जहाज हैं LNG लेकर के, क्रूड ऑयल लेकर के, वो रवाना हुए हैं। आमतौर पर प्रतिदिन अब 90 से 95 जहाज जो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे हैं, जिसके चलते जो सप्लाई लाइन है वो सकारात्मक हो चुकी है, यानी भारत का जो ऊर्जा संकट वो भी खत्म होने के आसार हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, जहां इसकी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करना पड़ता है। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि अभी भी 10 भारतीय झंडे वाले जहाज इस क्षेत्र में इंतजार में लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून से अभी तक 11 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं।
3: जब से अमेरिका और ईरान के बीच में MOU दस्तखत हुआ है, साइन हुआ है, तब से जो तेल के बाजार के अंदर थोड़ी राहत मिली है, और राहत जो इस समय थोड़ी ज्यादा ही है, और लग रहा है उनको कि भाई शायद शांति रहने वाली है। बहुत दिनों से तनाव चल रहा था, जब बहुत लगातार तनाव रहे, बहुत ज्यादा अंधेरा हो, बहुत शोर हो, बहुत बमबारी हो, उसके बाद एक शांति का MOU साइन हो जाए तो बाजार के अंदर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए तेल आप देख रहे हैं जो ब्रेंट है, कच्चा तेल जो ब्रेंट है, जो भारत में जिस उसको यूज कराया जाता है पैरामीटर को, तो वो तो अब लगभग $75 पर बैरल पे आ गया है। मैं इसको कहूंगा ये उत्सव की कीमत है ये।
1: अब सवाल ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट का सिर्फ आर्थिक महत्व ही नहीं बल्कि सामरिक महत्व भी है। दुनिया का करीब 25-30% कच्चा तेल इसी जलमार्ग से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के उत्पादक और निर्यातक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, UAE और कतर जैसे देशों का कच्चा तेल इसी जलमार्ग से निर्यात होता है। माना जाता है कि अगर इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और भारत भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है।
3: हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं हम। लगभग अपनी जरूरत का 89% तेल आयात करते हैं, और हमारा जो चाहे वो रुपए की कीमत हो, चाहे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, चाहे हमारा फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, सबके लिए ऊपर बोझ पड़ता है अगर जब तेल महंगा हो जाता है। तो अब तेल चूंकि सस्ता है, वजह उसकी MOU साइन हो गया वो है, एक बाजार के अंदर उत्सव का माहौल है, तो कीमतें $75 के आसपास आ गई, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी कम हो जाए।
1: एक तरफ जहां तेल की कीमतों का गिरना राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर एक नई आशंका ने भी जन्म ले लिया है। ईरान और ओमान ने दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क पर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। यानी दोनों देशों की मंशा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम है। इस साल चारधाम के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जो इस साल का एक नया रिकॉर्ड है। वहीं केदारनाथ धाम में भी 12 लाख से कहीं ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो गंगोत्री में 6 लाख से ज्यादा और यमुनोत्री धाम में लगभग 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी करीब 1.5 लाख श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। यहां इस बार श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा

0: सुरक्षा में सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से सुरक्षा की तैयारी है, साथ ही यात्रा की निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखे हुए है। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा मंदिर में साई भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर साल यहां 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसके अलावा साई भक्त अपनी इच्छा के अनुरूप नकदी के अलावा सोने और चांदी की वस्तुएं आभूषणों का भी दान करते हैं। अब तक साई बाबा की तिजोरी में लगभग 550 किलो सोना और 7030 किलो चांदी का दान किया जा चुका है। हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को यहां कड़ी सुरक्षा के बीच चढ़ावे की गिनती की जाती है। महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर विवाह पत्रिकाओं यानी शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्म तिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शादी के समय वर वधु की सही उम्र की जांच करना आसान हो जाएगा और नाबालिगों की शादी को रोका जा सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल परिवार ही नहीं बल्कि शादी के कार्ड छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय और विवाह आयोजन से जुड़े दूसरे संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये कॉरिडोर मेट्रो के 5वें चरण के तहत विकसित किया जा रहा है और मैजेंटा लाइन के विस्तार का हिस्सा है। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत कॉरिडोर में कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन होगा, जो ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नई मैजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, कार्यालय में आने जाने वाले लोगों और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
1: वेलकम टू द जंगल का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज से पहले चर्चा में है। फिल्म का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें अक्षय कुमार ने भी अपनी आवाज दी। गाने में फरहाद भिवंडीवाला, रूबई और संगीतकार विक्रम मोंट्रोस भी शामिल है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कई बड़े सितारे नजर आएंगे। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये मल्टी स्टारर फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि 25 जून को इसके पेड प्रीव्यूज रखे गए हैं। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का पहला पोस्टर सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। पोस्टर में खुशहाली कुमार दुल्हन के पारंपरिक लिबास में नजर आ रही हैं, लेकिन उनके स्टाइलिश अंदाज ने सबका ध्यान खींचा है। आकाश आदित्य लामा के निर्देशन में बनी ये फैमिली एंटरटेनर एक ऐसे दुल्हन की कहानी है जो अपने खास मिशन पर निकलती है। फिल्म में पीयूष मिश्रा और महेश मांजरेकर भी अहम भूमिकाओं में है। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांगराना और नसीरुद्दीन शाह स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 12 दिनों में दुनिया भर से 48 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। भारत में फिल्म की नेट कमाई लगभग 30 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जबकि विदेशी बाजारों में भी इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। विभाजन के पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी दर्शकों को भावुक कर रही है।

0: मिलाप मिलन जवेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं का टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। ये गाना दोस्ती, प्यार और रिश्तों की भावनात्मक झलक पेश करता है। फिल्म से अमन इंद्र कुमार अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं और उनके साथ आकांक्षा शर्मा मुख्य भूमिका में है। परेश रावल, जॉनी लीवर और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है। पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान जल्द ही एक बड़े पीरियड ड्रामा का हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस महत्वाकांक्षी फिल्म को राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और अपने किरदार से वो काफी प्रभावित है। फिल्म में वो इतिहास के एक बेहद लोकप्रिय किरदार को निभाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने लुक और बॉडी पर खास मेहनत करनी होगी। फिल्म की शूटिंग साल 2027 में शुरू होने की संभावना है।
1: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: ये नन्हा पपी अपनी अनोखी अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क किनारे बैठा पपी ऐसे चलने की कोशिश करता है मानो उसके पैर काम नहीं कर रहे हो। राहगीर भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करता है अचानक सामान्य तरीके से दौड़ने लगता है। उसकी इस मजेदार हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो देखकर कई लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग के मामले में ये पपी बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दे सकता है। गांव की एक महिला ने देसी जुगाड़ से आइसक्रीम बनाने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। महिला ने पंखे में रस्सी बांधकर एक बाल्टी लटका दी और उसके चारों तरफ बर्फ जमा दी। पंखा घूमते ही बाल्टी भी घूमने लगी और कुछ ही समय में दूध से स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो गई। बिना किसी महंगी मशीन के अपनाई गई ये तकनीक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर इस देसी हुनर की जमकर तारीफ हो रही है। पक्षियों से प्रेम की कई कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। एक महिला कौए को अपनी गोद में सुलाकर उसे दुलार करती हुई नजर आती है। वो बड़े प्यार से उसके सिर और पंखों पर हाथ फेरती है और उसकी मालिश भी करती है। कौआ भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उसके पास आराम करता हुआ दिखाई देता है। इंसान और पक्षी के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। बिहार का एक मासूम बच्चा अपनी नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। डांट पड़ने के बाद बच्चा गुस्से में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी देता नजर आता है। वो मासूम अंदाज में कहता है कि वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। हालांकि उसकी बातों में गुस्से से ज्यादा बचपन की मासूमियत झलकती है। प्रिंसिपल भी बच्चे की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो देखकर लोग बच्चे की भोली भाली नाराजगी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। माँ की सीख को गंभीरता से लेने वाला ये छोटा बच्चा इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चे को सिखाया गया था कि कोई भी चीज खाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि रसगुल्ला खाने से पहले उसे पानी में धोने लगा। हाथ में रसगुल्ला लेकर वो नल के पास रखे पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे खाता है। उसकी मासूम समझ और भोलेपन को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
1: चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
2: चीन के हैनान में समुद्री दुनिया की एक शानदार झलक देखने को मिली। मशहूर मरीन वंडरलैंड में ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिला जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण पानी के भीतर खूबसूरत मरमेड परफॉर्मेंस यानी जल परियों का अद्भुत नृत्य रहा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद लोगों को पेंगुइन्स को करीब से देखने और उन्हें खाना खिलाने का एक बेहद अनोखा अनुभव भी मिला। हैनान का ये मरीन पार्क पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्लोबल टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यह सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। लाइनशाइन ने आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टॉप 500 लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि चीन ने बिना किसी अमेरिकी चिप के सिर्फ साधारण दिखने वाले सीपीयूज की बदौलत ये करिश्मा कर दिखाया है। इससे पहले अमेरिका के ईआई कैप्टन नाम का सुपर कंप्यूटर पहले नंबर पर था। स्पेन में पारंपरिक सैन जुआन फेस्टिवल बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बार्सिलोना का पूरा तट रंग बिरंगी आतिशबाजी और पटाखों की रोशनी से नहा उठा। नाइट ऑफ फायर यानी आग की इस जादुई रात को सेलिब्रेट करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर से आए लाखों सैलानी समंदर किनारे जमा हुए। मान्यता है कि इस रात समंदर किनारे बॉनफायर करने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। बाइबल के अनुसार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म का प्रतीक है। लोग संगीत की धुन पर थिरकते हैं, आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हैं और पूरी रात बार्सिलोना के समुद्र तट पर रोशनी, संगीत और आस्था का ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन चिड़ियाघर में नन्हे जिराफ का जन्म हुआ है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। जिसके जन्म के साथ ही कोपेनहेगन जू ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना लिया। पिछले महज 12 महीनों के भीतर यहां जन्म लेने वाला ये तीसरा बेबी जिराफ है। चिड़ियाघर के विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरे बेबी जिराफ का जन्म और उनका पूरी तरह स्वस्थ रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये जू के बेहतरीन माहौल और उनकी शानदार देखरेख का नतीजा है। दरअसल पिछले कुछ दशकों में जंगलों के कटने और अवैध शिकार के कारण दुनिया भर में जिराफों की आबादी तेजी से घटी है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत कोपेनहेगन जू की ये कामयाबी उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। पेरिस मेंसवेयर फैशन वीक शो में लुई वुइटन ने अपनी खास थीम को लॉन्च किया, जिसको देख हर कोई हैरान रह गया। इस खास शो की थीम कॉर्पोरेट लाइफ और समंदर के एडवेंचर का एक अनोखा मेल था, जिसको पूरी दुनिया के फैशन लवर्स देखते रह गए। इस विशेष शो में कई मॉडल्स सर्फ बोर्ड और स्केट बोर्ड के साथ वॉक करते नजर आए। डिजाइनर फेरल विलियम्स ने इस शो को तैयार किया था। इस नई कलेक्शन में गहरे रंग के ढीले ढाले सूट, कैप और जैकेट के साथ जीन्स और शर्ट शामिल थी। शो की खासियत इसके लिए तैयार किया गया सेट भी रही, जिसे एक विशाल आर्टिफिशियल वेव जैसा तैयार किया गया था, जिसने गर्मियों में आयोजित शो को एक खास कूल एहसास दिया।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
4: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
5: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए सैलानियों से गुलजार है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी आपको यकीनन बेहद प्रभावित करेगी। सेंटोरिनी का ये खूबसूरत और वायरल हो रहा सनसेट एक बार फिर से साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नजारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं।

0: सफेद रंग के घर, नीला समंदर और खूबसूरत सनसेट। ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए पर्यटकों से गुलजार है। शाम होते ही सैकड़ों लोग यहाँ का स्पेशल सनसेट को देखने के लिए जुट जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर पर्यटकों के बकेट लिस्ट में ये नजारा जरूर होता है।
1: माँ बेटी की जोड़ी के रूप में ये अनुभव हमारी बकेट लिस्ट में लंबे समय से शामिल था। इसे साथ मिलकर जीना हमारे लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला खास अनुभव रहा। यहाँ हर मिनट भरपूर आनंद भरा रहा।
0: सेंटोरिनी के पत्थरों से बने संकरी गलियाँ, पहाड़ियों पर बने घर और एजियन सागर का अद्भुत दृश्य पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मंगलवार को तेज धूप और गर्मी के बावजूद यहां सैलानियों की संख्या ने सभी को दंग कर दिया। जानकारों का कहना है कि यूरोप में तापमान की दुश्वारियों के बावजूद सेंटोरिनी जैसे पर्यटन स्थल अपनी अनूठी प्राकृतिक खूबसूरती और यादगार अनुभवों की वजह से दुनिया भर के यात्रियों की पहली पसंद बने हुए हैं। समुद्र में धीरे धीरे समाता सूरज और सफेद घरों पर पड़ती सुनहरी रोशनी और कैमरों में कैद होते खूबसूरत पल। सेंटोरिनी का ये सनसेट एक बार फिर साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नज़ारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
4: समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: Good News Today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। ICC के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।

नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 6 बजे का जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बमुश्किल 8 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों के जवान आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो देखिए, साफ है कि श्रद्धालु इस बार निर्भय होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अभूतपूर्व तैयारियों को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: ट्रक की तलाशी ले लो।
1: तीन जुलाई से शुरू हो रही अद्भुत अलौकिक अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्वर्ग की सरगोशी करने वाली परलौकिक गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन की हसरत 10 दिन बाद हकीकत में बदलने वाली है। तीर्थयात्री जहां उत्साह में है, तो वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षित, सुगम और सकुशल यात्रा सम्पन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल और सेना ने हीला हवाला की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए इस बार पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ तक यात्रा मार्ग पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
2: इस साल की अमरनाथ यात्रा में 10 दिन से भी कम अब समय बच गया है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के साथ साथ बाकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी।
1: पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर गाइड, पालकी संचालक, घोड़े वाले या दुकानदार के रूप में किसी संदिग्ध व्यक्ति की एंट्री ना हो सके, इसके लिए इस बार तकनीक आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। तीर्थयात्रियों को सर्विस देने वाले गाइड, पालकी संचालक और दूसरे कर्मियों और सेवादारों की पहचान के लिए QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम प्रयोग में लाया गया है। इसके तहत सभी संबंधित लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। सभी दर्शनार्थियों को इस सिस्टम के बारे में यात्रा शुरू होने से पहले ही ब्रीफिंग दे दी जाएगी, ताकि वे सिर्फ अधिकृत लोगों से सेवा ले सकें।
2: अब की बार अमरनाथ यात्रियों के पहचान पत्र के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में काम करने वाले घोड़े वालों, दुकानदारों और मजदूरों को भी एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया है, जिस पर उन सभी लोगों की सभी जानकारियां जो है वो एकजुट की गई है और सभी लोग वेरिफाइड हैं।
1: कुल 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कठुआ से श्रीनगर तक के 400 किलोमीटर नेशनल हाईवे को सुरक्षा बलों ने पहले ही कब्जे में ले रखा है। इस हाईवे के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, जम्मू में पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सघन निगरानी की जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 70,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है।
2: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी, बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी।
1: आपको बता दें कि पहलगाम या बालटाल दोनों ही मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा जाने वाले श्रद्धालु देश और दुनिया के तमाम हिस्से से आकर सबसे पहले जम्मू स्थित बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास में ठहरते हैं। बेस कैंप की सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। मंगलवार को यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज ने दस्तक दी। तेज तर्रार जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर भगवती नगर यात्री निवास और उसके आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जवानों ने तरह तरह से मॉक ड्रिल की।
0: जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार यहां पर मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। आज सुबह भी यहां पर जो एनएसजी के कमांडोज हैं, उन्होंने मॉक ड्रिल की यात्री निवास भवन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल सक्षम रहे, तैयार रहें, इसीलिए मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। ये तैयारियां होती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। फिलहाल अगर हम आपको देखिए जो यात्री निवास भवन का जो बाहर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये तंबू लगे हैं, अस्थाई शेड्स बनाए गए हैं। इन्हीं अस्थाई शेड्स में और तंबुओं में जो है सीआरपीएफ के जवानों की ठहरने की व्यवस्था होती है, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी होती है। भारी संख्या में यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और अगर हम देखें तो पूरे यात्री निवास भवन को सील कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सीआरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात हैं, मोर्चे बनाए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो।
1: मंगलवार को मॉक ड्रिल तो हुई ही, लेकिन साथ ही भगवती नगर यात्री निवास को पूरी तरह सैनिटाइज भी कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है, साथ ही जगह जगह पर बंकर बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा बल के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं।
0: फिलहाल हम आपको यहां जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर मैं थोड़ा यहां आगे चलूं, मैं आपको इस यात्री निवास भवन के दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यहां पर जो आप देख सकते हैं कि बंकर्स बनाए गए हैं ताकि यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो 24 घंटे यहां पर मॉनिटरिंग कर सके किसी संदिग्ध हरकत पर। यहां देखिए कैमरास लगातार लगाए गए हैं, तो हर स्थान पर यहां पर कैमरे लगाए गए हैं, तो हर हरकत पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये यात्री निवास भवन का परिसर है, पूरे यात्री निवास भवन को फिलहाल सील कर दिया गया है और सुरक्षा संबंधित बैठकें भी जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, सुरक्षा की समीक्षा भी हो रही है और जगह जगह जो सुरक्षा बल है वो मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं।
1: सेना और अर्धसैनिक बलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर काफी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात ने सोमवार को पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। डीजीपी नलीन ने मातहत अधिकारियों को किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहे।
0: जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं नलिन प्रभात, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो पारंपरिक मार्ग है वो पहलगाम से होकर जाता है और पहलगाम जो है अनंतनाग जिले में ही आता है, इसीलिए ये बैठक जो है वो अनंतनाग में हुई और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद थे और एक तरह से जो सुरक्षा की जो है समीक्षा की गई। तो अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो केंद्रीय बल जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो वहाँ पर वो तैनात होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस तो होगी ही, लेकिन साथ ही में जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो भारी संख्या में तैनात हो रहे हैं और कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा का जिम्मा जो है मुख्य तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के कंधे पर ही होगा। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो भी जगह जगह पर मौजूद रहेंगी, खासतौर पर जो ऊंची चोटियां हैं, तो पूरे समन्वय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो सुरक्षा बल है वो कार्य कर रहे हैं। ये उनको जिम्मा दिया जा रहा है कि सुरक्षा कड़ी रहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान।
1: साफ है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और अमरनाथ गुफा तक किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त यानी 57 दिनों तक चलेगी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
3: बाबा बर्फानी का दर्शन बेहद कठिन माना जाता है। भोले के भक्तों को कश्मीर के पहाड़ियों के बीच दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाना होता है। आमतौर पर ये रास्ते वीरान होते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इन रास्तों पर रौनक ही रौनक दिखती है। दरअसल श्रद्धालुओं के आने से पहले ही देश भर के सेवादार यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे, लंगर और विश्राम की व्यवस्था कर देते हैं। सेवादारों का धर्म तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये तो यात्रा शुरू होने से पहले ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यात्रा खत्म होने तक यहीं रहते हैं। इतना कठिन कार्य करने के बाद भी इनके चेहरों पर थकान और तनाव नहीं दिखता है, बल्कि मानव सेवा का सुकून ही दिखाई देता है।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इस बीच बाबा बर्फानी ने पवित्र गुफा में अपना स्वरूप विस्तार शुरू कर दिया है। इस साल बाबा बर्फानी का ये पहला अलौकिक दर्शन है। एक ओर देश और दुनिया में बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ श्वेत आभा के साथ बाबा बर्फानी श्रद्धालुओं की अगवानी में गुफा के अंदर अपना अलौकिक आकार ग्रहण कर रहे हैं। ये जय घोष है अनादिकाल से चले आ रहे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के पावन आगाज का। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्राणित सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी ही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी झेलनी ना पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति भक्ति का आवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
1: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है, 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेल पटरी पर भंडारा लगता है, उसके लिए नया टीन शेड इस बार तैयार करके वहां से लाए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेल पटरी पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग बाग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर LG साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलो पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ तो मेल से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सबाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल रास्ते से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थयात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहां आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
2: भंडारे में सुविधा खाने की, रहने की, सोने की और लैट्रिन बाथरूम साफ शुद्ध खाना और आपके बिस्कुट टॉफी हर चीज से हम संतुष्टि करना चाहते हैं यात्री की। मान लो अगर तबीयत खराब है तो मेडिसिन भी देते हैं और समय समय पे जैसे यात्री कहीं रास्ते में फंसा हुआ है तो हमारे सेवादार उसको भी सहायता करने जाते हैं।
0: सेवा का सबाब इतना बड़ा होता है कि मुश्किल भरी तैयारियों के बीच इनके चेहरों पर अलौकिक चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ झलकता है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर 28 अगस्त को खत्म होगी। 57 दिनों की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। परंपरा कहती है कि पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी में स्थित बाबा बर्फानी की अनादिकालीन गुफा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयंभू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक खाइयों के ऊपर से गुजरता है संकरा लेकिन लंबा रास्ता। फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहाँ बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। साल 2022 में 3,04,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमर गुफा के दर्शन किए थे, जो साल 2023 में बढ़कर 4.5 लाख हो गए। साल 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और 5,12,000 हो गई। हालांकि साल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या घटकर 4,14,000 रह गई।
3: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: क्या आपने कभी सोचा कि इतना दुर्गम और असाध्य रास्ता होने के बावजूद हर साल क्यों इतने श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट होने वाले स्वयंभू शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ की यात्रा में पड़ने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पड़ाव अपने भीतर जन्म और मरण के अनंत सिलसिले से मुक्ति का गूढ़ संदेश संजोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें और आखिरी उत्तरकांड की कुछ अनमोल चौपाइयों के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के इस आध्यात्मिक पड़ावों के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनहु तात ये अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रसंग में परम ज्ञानी काकभुशुंड जी मोह माया में फंसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से कहते हैं कि मैं आपको ये गूढ़ अनिर्वचनीय कहानी सुनाता हूँ, जिसे सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझा जा सकता है। इसमें गूढ़ बात ये है कि जीव ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन है, निर्मल है और आनंद राशि है। अगर ऐसा है तो फिर ये संसार इतने दुखों में क्यों फंसा है? इस सवाल का जवाब देते हुए काकभुशुंड जी कहते हैं कि मनुष्य माया मोह के बंधनों में ऐसे ही फंस गया है जैसे तोता पिंजड़े में और बंदर मदारी के बंधन में फंसा रहता है। माया की महिमा ही ऐसी है कि वो इंसान को अपने इशारों पर नचाती है और इंसान माया के पाश में फंसकर सत्य और परम तत्व से विमुख हो जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो अमर कथा सुनाई उसमें माया मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर खुद को अविनाशी कर लेने का गूढ़ संदेश और संकेत छिपा है। पहलगाम से शुरू होकर पवित्र गुफा के बीच में यात्रा के जो 7 पड़ाव हैं, वो मनुष्य के अविनाशी होने के 7 रास्ते हैं। बस उन संकेतों को गहराई से समझने की जरूरत है। श्रीनगर से अश्रवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वो पहचान हासिल कर ली है जिसका सपना बड़े बड़े क्रिकेटर देखते हैं। वैभव का जलवा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान में भी उनके नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। देखिए, गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी एज और आईपीएल प्राइस जैसे कीवर्ड तेजी से सर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कई ब्रेकआउट कैटेगरी में पहुंच चुके हैं।

0: क्रिकेट में कहते हैं असली स्टार वो है जिसकी धमक सरहदों को भी पार कर जाए। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान के गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में वैभव को लेकर केवल चर्चा ही नहीं है बल्कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी खूब है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेट सनसनी बन चुके हैं। पिछले 3 महीनों के गूगल ट्रेंड डेटा में पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने वैभव को जमकर सर्च किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, रिकॉर्ड, आईपीएल कीमत और मैचों से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान में तेजी से खोजी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त उछाल, और वैभव से जुड़े कई कीवर्ड्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस भारतीय किशोर बल्लेबाज के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। नजर हो भी क्यों ना, क्रिकेट के पंडित वैभव की आक्रामकता से हैरान हैं। उनके सबसे तेज अर्धशतक की चर्चा हो रही है, उनके बेखौफ अंदाज पर अचरज जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो मुश्ताक मोहम्मद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 1959 में उन्होंने महज 15 साल 124 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। अब लगभग उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने कारनामों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, जब बात विस्फोटक बल्लेबाजी की आती है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सबसे पहले शाहिद अफरीदी याद आते हैं। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज कई लोगों को युवा अफरीदी की याद दिला रहा है। जाहिर है वैभव ने अभी करियर शुरू ही किया है, लेकिन उनके नाम की गूंज पहले ही स्टेडियम की सीमा रेखा पार कर चुकी है। भारत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ती सर्चिंग बता रही है कि ये बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहा बल्कि उतनी ही तेजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार दिखाते हैं, जो सिर्फ लोगों के सिर ही नहीं चढ़ रहा है बल्कि अब पालतू जानवर भी अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बात यहां पर हो रही है मेक्सिको की। मेक्सिको में कुत्तों से लेकर घोड़ों और यहां तक कि एक बतख तक को राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनाई जा रही है। वर्ल्ड कप के इस अनोखे जुनून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है।

0: ये फुटबॉल का फीवर है। हार जीत पर फैंस के चेहरों का रंग ही नहीं बदल रहा, बल्कि ये बेजुबान भी फीफा के रंग में रंग दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवर भी अपनी अपनी टीम को अपनी पोशाकों से चीयर कर रहे हैं। कुत्ते, बत्तखें और दूसरे पालतू जानवर का टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर आ जाना फुटबॉल के फीवर की सबसे दिलचस्प तस्वीर बन गया है। अब इनसे मिलिए, ये है मर्लिन, वो बत्तख जिसने मेक्सिको में वर्ल्ड कप के बाद अपनी एक नई पहचान कायम कर ली है। पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स के सामने मर्लिन के साथ तस्वीर खिंचवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। मेक्सिको की जर्सी पहने मर्लिन अब सोशल मीडिया स्टार भी बन चुका है। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्रेज को भुनाने में बाजार भी पीछे नहीं है। दुकानों पर पालतू जानवरों के लिए खास फुटबॉल जर्सीज बिक रही हैं, मैचिंग टोपियों की भी डिमांड है। यही नहीं, लोग अपने पालतू जानवरों के लिए हेलमेट और चश्मे तक खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि कई डिजाइन तो हाथों हाथ खरीदे जा रहे हैं। बाजार में सबसे ज्यादा नजर आ रही एडीडॉग नाम की ये जर्सीज, मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड की तर्ज पर तैयार ये जर्सीज कम कीमत में उपलब्ध है और खरीदारों को बेहद पसंद भी आ रही है। मतलब फुटबॉल के इस मेगा उत्सव में इस वक्त एक से बढ़कर एक ट्रेंड चल पड़ा है। जो ट्रेंड लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है वो है ट्विनिंग, मतलब मालिक और उसका पालतू जानवर एक जैसे रंग या एक जैसी जर्सी पहने हुए है। फुटबॉल का जोश अब ऐसे तमाम परिवारों के लिए एक अलग अलग तरह का फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। सिर्फ बाजारों में ही नहीं, पार्क्स और सड़कों पर भी जर्सी पहने पालतू जानवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वो जादू है जिसे दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: खबरें, खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। आईसीसी के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: और अब बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट की। दुनिया की नजरें पिछले चार महीनों में अमेरिका ईरान टकराव पर टिकी हुई थी। दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया था, जिसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और तेल की कीमतें भारी उछाल आया। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिला। ताजा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते चार महीने में सबसे नीचे आ चुका है।

0: अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है। यूएस ईरान पीस डील के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यानी पिछले कई दिनों से आसमान छू रहे कच्चे तेल के तेवर अब ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। ताज़ा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते 4 महीने में सबसे नीचे आ चुका है। युद्ध के दौरान $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंचकर दुनिया को डराने वाला ये तेल अब $77 से भी नीचे आ चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस नरमी की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस समुद्री रास्ते से तेल टैंकर्स की आवाजाही एक बार फिर बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है।
1: अब हॉर्मुज संकट का समाधान आते ही, ईरान अमेरिका के बीच शांति स्थिति होते ही ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं। और अनुमान ये भी जताया गया है कि अगर ये स्थिति जिस तरह 60 दिनों की अनुमति दी गई है, वैसे में ईरान की ओर से जो कच्चा तेल कई सालों से प्रतिबंधित था वो खुले बाजार में आ चुका है, तो ईरान की ओर से एक तो समय भी कम लगेगा, तेल भी पहुंच पाएगा, तो ऐसे में कीमतें और भी नीचे गिर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे विकासशील जो देश हैं उनको इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
0: यूएस ईरान डील के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल से नीचे लुढ़क गया है और अमेरिकी WTI क्रूड भी $73 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ये कच्चे तेल की कीमतों का बीते 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और दुनिया अब कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह है। वहीं बाजार में सप्लाई बढ़ाने की उम्मीदों को तब और पंख लग गए जब अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने के लिए 60 दिनों की छूट दे दी। अब भारतीय और अमेरिकी रिफाइनरी समेत दुनिया भर के खरीदार सीधे ईरान से कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैध खरीद कर पाएंगे।
1: ईरान और अमेरिका में शांति समझौते पर सहमति के बाद एक तरफ पश्चिम एशिया का संकट खत्म हुआ, तनाव खत्म हुआ, तो उसका असर सकारात्मक रूप से वैश्विक बाजार पर दिख रहा है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। बीते 24 घंटे में अगर देखें तो 1.1% से ज्यादा की गिरावट ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिली है, WTI क्रूड में देखने को मिली है। यहां तक कि जो वैश्विक बेंचमार्क है वो डेटा ये बताता है कि वायदा भाव अगस्त में 0.45% गिरकर $76.73 प्रति बैरल पर आ गया था। और इसी के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो अब एक रास्ता ये खुल जाता है, दरअसल अमेरिका ने ईरान पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है, यानी वो भी अगले 60 दिनों तक अपना कच्चा तेल दुनिया के बाजार में बेच पाएगा, तो उससे असर क्या हो रहा है। अगर हम स्टॉक देख रहे हैं तो WTI जो ट्रेड है उसमें आज भी अगर जो कीमतें गिरी हुई हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो अब ये 72.52 पर आ चुका है। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $77 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है।
0: तेल की कीमतों में उछाल के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन और भारत तक में तेल गैस का भारी संकट देखने को मिला। भारत की बात करें तो क्रूड महंगा होने के कारण करीब 4 साल सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा और ये एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार किया गया। अब जबकि क्रूड के दाम क्रैश हो गए हैं तो पेट्रोल डीजल प्राइस कट की उम्मीद भी बढ़ रही है। ऐसे में सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे।
1: इसका एक असर पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में ₹74 की कमी की है तो डीजल की कीमतों में भी ₹64 की कमी है, भारी कटौती की है। हालांकि उसको लेकर के जो ऑयल ट्रेडर्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो नाराज हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका सीधा फायदा जनता को वहां की सरकार ने दिया है। तो भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि पर जो डॉलर बैरल की कीमत है वो अगर नीचे आ रही है तो हाल फिलहाल में हमने जो कीमतें देखी डीजल पेट्रोल में उसमें कोई कमी आ जाए तो क्या वो कमी आएगी, क्या इस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कोई फैसला लेंगी, क्योंकि राहत की जब बात होगी तो सरकार ये देखेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान हो रहा था, वो नुकसान की अगर भरपाई हो चुकी है तो अब सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर अगर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, ब्रेंट ऑयल, वो अगर 77 के नीचे हैं तो ऐसे में दुनिया की नजर इस पर होगी कि उनकी सरकारें क्या अब लोगों पर वो फायदा जो है पहुंचाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी फायदा अगर होगा तो क्या जनता की जेब पर भी होगा।
0: बीते 28 फरवरी को पहली बार अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की शुरुआत की थी और इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। साथ ही दुनिया की तेल गैस जरूरतों के 20% की भरपाई करने वाले

0: अचानक गिरावट शुरू हो गई।
1: अब सवाल ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और तेल कंपनीज को हो रहे घाटे के चलते उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा था, तो क्या अब तेल सस्ता होने से ईंधन की कीमतों में भी कटौती की जाएगी?
2: अगर आज आप देखें तो WTI क्रूड जो है वो 73 बाज आ चुका है, ब्रेंट क्रूड जो है वो 77 के नीचे आ चुका है। और अगर ये परिस्थितियां बनती रहीं तो एक वैश्विक रिपोर्ट ये भी दरअसल कहती है कि प्रगति का ये जो संकेत है ये मार्केट पर, यानी अभी कम से कम 3% ये और नीचे ले जा सकता है, यानी 60 दिनों की जो अवधि है। ऐसे में हमने देखा कि भारत के कई सारे जो जहाज हैं LNG लेकर के या क्रूड ऑयल लेकर के वो रवाना हुए हैं। आमतौर पर प्रतिदिन अब 90 से 95 जहाज जो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे हैं, जिसके चलते जो सप्लाई लाइन है वो सकारात्मक हो चुकी है, यानी भारत का जो ऊर्जा संकट वो भी खत्म होने के आसार हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, जहां इसकी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करना पड़ता है। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि अभी भी 10 भारतीय झंडे वाले जहाज इस क्षेत्र में इंतजार में लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून से अभी तक 11 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं।
3: जब से अमेरिका और ईरान के बीच में MOU दस्तखत हुआ है, साइन हुआ है, तब से जो तेल के बाजार के अंदर थोड़ी राहत मिली है, और राहत जो इस समय थोड़ी ज्यादा ही है, और लग रहा है उनको कि भाई शायद शांति रहने वाली है। बहुत दिनों से तनाव चल रहा था, जब बहुत लगातार तनाव रहे, बहुत ज्यादा अंधेरा हो, बहुत शोर हो, बहुत बमबारी हो, उसके बाद एक शांति का MOU साइन हो जाए तो बाजार के अंदर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए तेल आप देख रहे हैं जो ब्रेंट है, कच्चा तेल जो ब्रेंट है, जो भारत में जिस उसको यूज कराया जाता है पैरामीटर को, तो वो तो अब लगभग $75 पर बैरल पे आ गया है। मैं इसको कहूंगा ये उत्सव की कीमत है ये।
1: अब सवाल ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट का सिर्फ आर्थिक महत्व ही नहीं बल्कि सामरिक महत्व भी है। दुनिया का करीब 25-30% कच्चा तेल इसी जलमार्ग से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के उत्पादक और निर्यातक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, UAE और कतर जैसे देशों का कच्चा तेल इसी जलमार्ग से निर्यात होता है। माना जाता है कि अगर इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और भारत भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है।
3: हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं हम। लगभग अपनी जरूरत का 89% तेल आयात करते हैं, और हमारा जो चाहे वो रुपए की कीमत हो, चाहे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, चाहे हमारा फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, सबके लिए ऊपर बोझ पड़ता है अगर तेल महंगा हो जाता है। तो अब तेल चूंकि सस्ता है, वजह उसकी MOU साइन हो गया वो है, एक बाजार के अंदर उत्सव का माहौल है, तो कीमतें $75 के आसपास आ गई, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी कम हो जाए।
1: एक तरफ जहां तेल की कीमतों का गिरना राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर एक नई आशंका ने भी जन्म ले लिया है। ईरान और ओमान ने दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क पर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। यानी दोनों देशों की मंशा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम है। इस साल चारधाम के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जो इस साल का एक नया रिकॉर्ड है। वहीं केदारनाथ धाम में भी 12 लाख से कहीं ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो गंगोत्री में 6 लाख से ज्यादा और यमुनोत्री धाम में लगभग 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी करीब 1.5 लाख श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। यहां इस बार श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा

0: में सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से सुरक्षा की तैयारी है, साथ ही यात्रा की निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखे हुए है। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा मंदिर में साई भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर साल यहां 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसके अलावा साई भक्त अपनी इच्छा के अनुरूप नकदी के अलावा सोने और चांदी की वस्तुएं आभूषणों का भी दान करते हैं। अब तक साई बाबा की तिजोरी में लगभग 550 किलो सोना और 7030 किलो चांदी का दान किया जा चुका है। हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को यहां कड़ी सुरक्षा के बीच चढ़ावे की गिनती की जाती है। महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर विवाह पत्रिकाओं यानी शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्म तिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शादी के समय वर वधु की सही उम्र की जांच करना आसान हो जाएगा और नाबालिगों की शादी को रोका जा सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल परिवार ही नहीं बल्कि शादी के कार्ड छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय और विवाह आयोजन से जुड़े दूसरे संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये कॉरिडोर मेट्रो के 5वें चरण के तहत विकसित किया जा रहा है और मैजेंटा लाइन के विस्तार का हिस्सा है। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत कॉरिडोर में कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन होगा, जो ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नई मैजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, कार्यालय में आने जाने वाले लोगों और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
1: वेलकम टू द जंगल का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज से पहले चर्चा में है। फिल्म का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है, जिसमे अक्षय कुमार ने भी अपनी आवाज दी। गाने में फरहाद भिवंडी वाला, रूबई और संगीतकार विक्रम मोन्ट्रोस भी शामिल है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कई बड़े सितारे नजर आएंगे। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये मल्टी स्टारर फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि 25 जून को इसके पेड प्रीव्यूज रखे गए हैं। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का पहला पोस्टर सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। पोस्टर में खुशहाली कुमार दुल्हन के पारंपरिक लिबास में नजर आ रही हैं, लेकिन उनके स्टाइलिश अंदाज ने सबका ध्यान खींचा है। आकाशादित्य लामा के निर्देशन में बनी ये फैमिली एंटरटेनर एक ऐसे दुल्हन की कहानी है जो अपने खास मिशन पर निकलती है। फिल्म में पीयूष मिश्रा और महेश मांजरेकर भी अहम भूमिकाओं में है। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांगराना और नसीरुद्दीन शाह स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 12 दिनों में दुनिया भर से 48 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। भारत में फिल्म की नेट कमाई लगभग 30 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जबकि विदेशी बाजारों में भी इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। विभाजन के पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी दर्शकों को भावुक कर रही है।

0: मिलाप मिलन जवेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं का टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। ये गाना दोस्ती, प्यार और रिश्तों की भावनात्मक झलक पेश करता है। फिल्म से अमन इंद्र कुमार अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं और उनके साथ आकांक्षा शर्मा मुख्य भूमिका में है। परेश रावल, जॉनी लीवर और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है। पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान जल्द ही एक बड़े पीरियड ड्रामा का हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस महत्वाकांक्षी फिल्म को राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और अपने किरदार से वो काफी प्रभावित हैं। फिल्म में वो इतिहास के एक बेहद लोकप्रिय किरदार को निभाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने लुक और बॉडी पर खास मेहनत करनी होगी। फिल्म की शूटिंग साल 2027 में शुरू होने की संभावना है।
1: चलिए, न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: ये नन्हा पपी अपनी अनोखी अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क किनारे बैठा पपी ऐसे चलने की कोशिश करता है मानो उसके पैर काम नहीं कर रहे हो। राहगीर भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करता है अचानक सामान्य तरीके से दौड़ने लगता है। उसकी इस मजेदार हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो देखकर कई लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग के मामले में ये पपी बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दे सकता है। गांव की एक महिला ने देसी जुगाड़ से आइसक्रीम बनाने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। महिला ने पंखे में रस्सी बांधकर एक बाल्टी लटका दी और उसके चारों तरफ बर्फ जमा दी। पंखा घूमते ही बाल्टी भी घूमने लगी और कुछ ही समय में दूध से स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो गई। बिना किसी महंगी मशीन के अपनाई गई ये तकनीक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर इस देसी हुनर की जमकर तारीफ हो रही है। पक्षियों से प्रेम की कई कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। एक महिला कौए को अपनी गोद में सुलाकर उसे दुलार करती हुई नजर आती है। वो बड़े प्यार से उसके सिर और पंखों पर हाथ फेरती है और उसकी मालिश भी करती है। कौआ भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उसके पास आराम करता हुआ दिखाई देता है। इंसान और पक्षी के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती।
2: आज भाई स्कूलिया हमारा तू देगा।
0: बिहार का एक मासूम बच्चा अपनी नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। डांट पड़ने के बाद बच्चा गुस्से में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी देता नजर आता है। वो मासूम अंदाज में कहता है कि वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। हालांकि उसकी बातों में गुस्से से ज्यादा बचपन की मासूमियत झलकती है। प्रिंसिपल भी बच्चे की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो देखकर लोग बच्चे की भोली भाली नाराजगी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। माँ की सीख को गंभीरता से लेने वाला ये छोटा बच्चा इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चे को सिखाया गया था कि कोई भी चीज खाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि रसगुल्ला खाने से पहले उसे पानी में धोने लगा। हाथ में रसगुल्ला लेकर वो नल के पास रखे पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे खाता है। उसकी मासूम समझ और भोलेपन को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
1: चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: चीन के हैनान में समुद्री दुनिया की एक शानदार झलक देखने को मिली। मशहूर मरीन वंडरलैंड में ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिला जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण पानी के भीतर खूबसूरत मर्मेड परफॉर्मेंस यानी जल परियों का अद्भुत नृत्य रहा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद लोगों को पेंगुइन्स को करीब से देखने और उन्हें खाना खिलाने का एक बेहद अनोखा अनुभव भी मिला। हैनान का ये मरीन पार्क पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्लोबल टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं। चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। लाइनशाइन ने आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टॉप 500 लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि चीन ने बिना किसी अमेरिकी चिप के सिर्फ साधारण दिखने वाले सीपीयूज की बदौलत ये करिश्मा कर दिखाया है। इससे पहले अमेरिका के एआई कैप्टन नाम का सुपर कंप्यूटर पहले नंबर पर था। स्पेन में पारंपरिक सैन जुआन फेस्टिवल बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बार्सिलोना का पूरा तट रंग बिरंगी आतिशबाजी और पटाखों की रोशनी से नहा उठा। नाइट ऑफ फायर यानी आग की इस जादुई रात को सेलिब्रेट करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर से आए लाखों सैलानी समंदर किनारे जमा हुए। मान्यता है कि इस रात समंदर किनारे बॉनफायर करने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। बाइबल के अनुसार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म का प्रतीक है। लोग संगीत की धुन पर थिरकते हैं, आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हैं और पूरी रात बार्सिलोना के समुद्र तट पर रोशनी, संगीत और आस्था का ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन चिड़ियाघर में नन्हे जिराफ का जन्म हुआ है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। जिसके जन्म के साथ ही कोपेनहेगन जू ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना लिया। पिछले महज 12 महीनों के भीतर यहां जन्म लेने वाला ये तीसरा बेबी जिराफ है। चिड़ियाघर के विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरे बेबी जिराफ का जन्म और उनका पूरी तरह स्वस्थ रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये जू के बेहतरीन माहौल और उनकी शानदार देखरेख का नतीजा है। दरअसल पिछले कुछ दशकों में जंगलों के कटने और अवैध शिकार के कारण दुनिया भर में जिराफों की आबादी तेजी से घटी है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत कोपेनहेगन जू की ये कामयाबी उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। पेरिस मेंसवेयर फैशन वीक शो में लुई वुइटन ने अपनी खास थीम को लॉन्च किया, जिसको देख हर कोई हैरान रह गया। इस खास शो की थीम कॉर्पोरेट लाइफ और समंदर के एडवेंचर का एक अनोखा मेल था, जिसको पूरी दुनिया के फैशन लवर्स देखते रह गए। इस विशेष शो में कई मॉडल्स सर्फ बोर्ड और स्केट बोर्ड के साथ वॉक करते नजर आए। डिजाइनर फेरल विलियम्स ने इस शो को तैयार किया था। इस नई कलेक्शन में गहरे रंग के ढीले ढाले सूट, कैप और जैकेट के साथ जीन्स और शर्ट शामिल थी। शो की खासियत इसके लिए तैयार किया गया सेट भी रही, जिसे एक विशाल आर्टिफिशियल वेव जैसा तैयार किया गया था, जिसने गर्मियों में आयोजित शो को एक खास कूल एहसास दिया।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
6: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
5: Smartless.
7: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
5: Marketplace.
8: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
5: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए सैलानियों से गुलजार है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी आपको यकीनन बेहद प्रभावित करेगी। सेंटोरिनी का ये खूबसूरत और वायरल हो रहा सनसेट एक बार फिर से साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नजारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं।

0: रंग के घर, नीला समंदर और खूबसूरत सनसेट। ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए पर्यटकों से गुलजार है। शाम होते ही सैकड़ों लोग यहाँ का स्पेशल सनसेट को देखने के लिए जुट जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर पर्यटकों के बकेट लिस्ट में ये नज़ारा जरूर होता है।
1: माँ बेटी की जोड़ी के रूप में ये अनुभव हमारी बकेट लिस्ट में लंबे समय से शामिल था। इसे साथ मिलकर जीना हमारे लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला खास अनुभव रहा। यहाँ हर मिनट भरपूर आनंद भरा रहा।
0: सेंटोरिनी के पत्थरों से बनी संकरी गलियाँ, पहाड़ियों पर बने घर और एजियन सागर का अद्भुत दृश्य पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मंगलवार को तेज धूप और गर्मी के बावजूद यहां सैलानियों की संख्या ने सभी को दंग कर दिया। जानकारों का कहना है कि यूरोप में तापमान की दुश्वारियों के बावजूद सेंटोरिनी जैसे पर्यटन स्थल अपनी अनूठी प्राकृतिक खूबसूरती और यादगार अनुभवों की वजह से दुनिया भर के यात्रियों की पहली पसंद बने हुए हैं। समुद्र में धीरे धीरे समाता सूरज और सफेद घरों पर पड़ती सुनहरी रोशनी और कैमरों में कैद होते खूबसूरत पल। सेंटोरिनी का ये सनसेट एक बार फिर साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नज़ारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
4: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। ICC के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।

नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 6 बजे का जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बमुश्किल 8 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों के जवान आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो देखिए, साफ है कि श्रद्धालु इस बार निर्भय होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अभूतपूर्व तैयारियों को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: ganze Zeit lang hier noch.
1: तीन जुलाई से शुरू हो रही अद्भुत अलौकिक अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्वर्ग की सरगोशी करने वाली परलौकिक गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन की हसरत 10 दिन बाद हकीकत में बदलने वाली है। तीर्थ यात्री जहां उत्साह में है, तो वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षित, सुगम और सकुशल यात्रा सम्पन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल और सेना ने हीला हवाला की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए इस बार पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ तक यात्रा मार्ग पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
2: इस साल की अमरनाथ यात्रा में 10 दिन से भी कम अब समय बच गया है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के साथ साथ बाकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी।
1: पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर गाइड, पालकी संचालक, घोड़े वाले या दुकानदार के रूप में किसी संदिग्ध व्यक्ति की एंट्री ना हो सके, इसके लिए इस बार तकनीक आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। तीर्थ यात्रियों को सर्विस देने वाले गाइड, पालकी संचालक और दूसरे कर्मियों और सेवादारों की पहचान के लिए QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम प्रयोग में लाया गया है। इसके तहत सभी संबंधित लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। सभी दर्शनार्थियों को इस सिस्टम के बारे में यात्रा शुरू होने से पहले ही ब्रीफिंग दे दी जाएगी, ताकि वे सिर्फ अधिकृत लोगों से सेवा ले सकें।
2: अब की बार अमरनाथ यात्रियों के पहचान पत्र के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में काम करने वाले घोड़े वालों, दुकानदारों और मजदूरों को भी एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया है, जिस पर उन सभी लोगों की सभी जानकारियां जो है वो एकजुट की गई है और सभी लोग वेरीफाइड हैं।
1: कुल 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कठुआ से श्रीनगर तक के 400 किलोमीटर नेशनल हाईवे को सुरक्षा बलों ने पहले ही कब्जे में ले रखा है। इस हाईवे के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, जम्मू में पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सघन निगरानी की जा रही है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 70,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है।
2: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी, बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी।
1: आपको बता दें कि पहलगाम या बालटाल दोनों ही मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा जाने वाले श्रद्धालु देश और दुनिया के तमाम हिस्से से आकर सबसे पहले जम्मू स्थित बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास में ठहरते हैं। बेस कैंप की सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। मंगलवार को यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज ने दस्तक दी। तेज तर्रार जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर भगवती नगर यात्री निवास और उसके आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जवानों ने तरह तरह से मॉक ड्रिल की।
0: जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार यहां पर मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। आज सुबह भी यहां पर जो एनएसजी के कमांडोज हैं, उन्होंने मॉक ड्रिल की यात्री निवास भवन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल सक्षम रहे, तैयार रहें, इसीलिए मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। ये तैयारियां होती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। फिलहाल अगर आपको देखिए जो यात्री निवास भवन का जो बाहर का क्षेत्र है, यहां पर ये तंबू लगे हैं, अस्थाई शेड्स बनाए गए हैं। इन्हीं अस्थाई शेड्स में और तंबू में जो है सीआरपीएफ के जवानों की ठहरने की व्यवस्था होती है, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी होती है। भारी संख्या में यहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और अगर हम देखें तो पूरे यात्री निवास भवन को सील कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सीआरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात हैं, मोर्चे बनाए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो।
1: मंगलवार को मॉक ड्रिल तो हुई ही, लेकिन साथ ही भगवती नगर यात्री निवास को पूरी तरह सैनिटाइज भी कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है, साथ ही जगह जगह पर बंकर बनाए गए हैं जहां सुरक्षा बल के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं।
0: फिलहाल हम आपको यहां जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर मैं थोड़ा यहां आगे चलूं, मैं आपको इस यात्री निवास भवन के दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यहां पर जो आप देख सकते हैं कि बंकर्स बनाए गए हैं ताकि यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो 24 घंटे यहां पर मॉनिटरिंग कर सके किसी संदिग्ध हरकत पर। यहां देखिए कैमरास लगातार लगाए गए हैं, तो हर स्थान पर यहां पर कैमरे लगाए गए हैं, तो हर हरकत पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये यात्री निवास भवन का परिसर है, पूरे यात्री निवास भवन को फिलहाल सील कर दिया गया है और सुरक्षा संबंधित बैठकें भी जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, सुरक्षा की समीक्षा भी हो रही है और जगह जगह जो सुरक्षा बल है वो मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं।
1: सेना और अर्धसैनिक बलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर काफी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात ने सोमवार को पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। डीजीपी नलीन ने मातहत अधिकारियों को किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहे।
0: जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं नलिन प्रभात, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो पारंपरिक मार्ग है वो पहलगाम से होकर जाता है और पहलगाम जो है अनंतनाग जिले में ही आता है, इसीलिए ये बैठक जो है वो अनंतनाग में हुई और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद थे और एक तरह से जो सुरक्षा की जो है समीक्षा की गई। तो अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो केंद्रीय बल जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो वहाँ पर वो तैनात होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस तो होगी ही, लेकिन साथ ही में जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो भारी संख्या में तैनात हो रहे हैं और कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा का जिम्मा जो है मुख्य तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के कंधे पर ही होगा। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो भी जगह जगह पर मौजूद रहेंगी, खासतौर पर जो ऊंची चोटियां हैं, तो पूरे समन्वय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो सुरक्षा बल है वो कार्य कर रहे हैं। ये उनको जिम्मा दिया जा रहा है कि सुरक्षा कड़ी रहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान।
1: साफ है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और अमरनाथ गुफा तक किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त यानी 57 दिनों तक चलेगी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
3: बाबा बर्फानी का दर्शन बेहद कठिन माना जाता है। भोले के भक्तों को कश्मीर के पहाड़ियों के बीच दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाना होता है। आमतौर पर ये रास्ते वीरान होते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इन रास्तों पर रौनक ही रौनक दिखती है। दरअसल श्रद्धालुओं के आने से पहले ही देश भर के सेवादार यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे, लंगर और विश्राम की व्यवस्था कर देते हैं। सेवादारों का धर्म तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये तो यात्रा शुरू होने से पहले ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यात्रा खत्म होने तक यहीं रहते हैं।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इस बीच बाबा बर्फानी ने पवित्र गुफा में अपना स्वरूप विस्तार शुरू कर दिया है। इस साल बाबा बर्फानी का ये पहला अलौकिक दर्शन है। एक ओर देश और दुनिया में बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ श्वेत आभा के साथ बाबा बर्फानी श्रद्धालुओं की अगवानी में गुफा के अंदर अपना अलौकिक आकार ग्रहण कर रहे हैं। ये जय घोष है अनादिकाल से चले आ रहे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के पावन आगाज का। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्राणित सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी ही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी झेलनी ना पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति भक्ति का आवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
1: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है, 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेल पत्री पर भंडारा लगता है, उसके लिए नया टीन शेड इस बार तैयार करके मासल आए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेल पत्री पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग बाग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर एलजी साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलो पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ तो मेल से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सबाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल रास्ते से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थयात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहां आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना, और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
2: भंडारे में सुविधा खाने की, रहने की, सोने की, और लैट्रिन बाथरूम साफ शुद्ध खाना, और आपके बिस्कुट टॉफी हर चीज से हम संतुष्टि करना चाहते हैं यात्री की। मान लो अगर तबीयत खराब है तो मेडिसिन भी देते हैं, और समय समय पे जैसे यात्री कहीं रास्ते में फंसा हुआ है तो हमारे सेवादार उसको भी सहायता करने जाते हैं।
0: सेवा का सबाब इतना बड़ा होता है कि मुश्किल भरी तैयारियों के बीच इनके चेहरों पर अलौकिक चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ झलकता है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर 28 अगस्त को खत्म होगी। 57 दिनों की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। परंपरा कहती है कि पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं,

0: कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी में स्थित बाबा बर्फानी की अनादिकालीन गुफा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयं भू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक खाइयों के ऊपर से गुजरता है संकरा लेकिन लंबा रास्ता। फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहाँ बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। साल 2022 में 3,04,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमर गुफा के दर्शन किए थे, जो साल 2023 में बढ़कर 4.5 लाख हो गए। साल 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और 5,12,000 हो गई। हालांकि साल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या घटकर 4,14,000 रह गई।
1: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: क्या आपने कभी सोचा कि इतना दुर्गम और असाध्य रास्ता होने के बावजूद हर साल क्यों इतने श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट होने वाले स्वयंभू शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ की यात्रा में पड़ने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पड़ाव अपने भीतर जन्म और मरण के अनंत सिलसिले से मुक्ति का गूढ़ संदेश संजोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें और आखिरी उत्तरकांड की कुछ अनमोल चौपाइयों के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के इस आध्यात्मिक पड़ावों के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनहु तात ये अखत कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रसंग में परम ज्ञानी काकभुशुंड जी मोह माया में फंसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से कहते हैं कि मैं आपको ये गूढ़ अनिर्वचनीय कहानी सुनाता हूँ, जिसे सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझा जा सकता है। इसमें गूढ़ बात ये है कि जीव ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन है, निर्मल है और आनंद राशि है। अगर ऐसा है तो फिर ये संसार इतने दुखों में क्यों फंसा है? इस सवाल का जवाब देते हुए काकभुशुंड जी कहते हैं कि मनुष्य माया मोह के बंधनों में ऐसे ही फंस गया है जैसे तोता पिंजड़े में और बंदर मदारी के बंधन में फंसा रहता है। माया की महिमा ही ऐसी है कि वो इंसान को अपने इशारों पर नचाती है और इंसान माया के पाश में फंसकर सत्य और परम तत्व से विमुख हो जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो अमर कथा सुनाई उसमें माया मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर खुद को अविनाशी कर लेने का गूढ़ संदेश और संकेत छिपा है। पहलगाम से शुरू होकर पवित्र गुफा के बीच में यात्रा के जो 7 पड़ाव हैं, वो मनुष्य के अविनाशी होने के 7 रास्ते हैं। बस उन संकेतों को गहराई से समझने की जरूरत है। श्रीनगर से अश्रवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: खबरों का वक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वो पहचान हासिल कर ली है जिसका सपना बड़े बड़े क्रिकेटर देखते हैं। वैभव का जलवा अब से भारत तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान में भी उनके नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। देखिए, गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी एज और आईपीएल प्राइस जैसे कीवर्ड तेजी से सर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कई ब्रेकआउट कैटेगरी में पहुंच चुके हैं।

0: क्रिकेट में कहते हैं असली स्टार वो है जिसकी धमक सरहदों को भी पार कर जाए। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान के गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में वैभव को लेकर केवल चर्चा ही नहीं है बल्कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी खूब है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेट सनसनी बन चुके हैं। पिछले 3 महीनों के गूगल ट्रेंड डेटा में पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने वैभव को जमकर सर्च किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, रिकॉर्ड, आईपीएल कीमत और मैचों से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान में तेजी से खोजी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त उछाल, और वैभव से जुड़े कई कीवर्ड्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस भारतीय किशोर बल्लेबाज के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। नजर हो भी क्यों ना, क्रिकेट के पंडित वैभव की आक्रामकता से हैरान हैं। उनके सबसे तेज अर्धशतक की चर्चा हो रही है, उनके बेखौफ अंदाज पर अचरज जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो मुश्ताक मोहम्मद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 1959 में उन्होंने महज 15 साल 124 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। अब लगभग उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने कारनामों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, जब बात विस्फोटक बल्लेबाजी की आती है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सबसे पहले शाहिद अफरीदी याद आते हैं। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज कई लोगों को युवा अफरीदी की याद दिला रहा है। जाहिर है वैभव ने अभी करियर शुरू ही किया है, लेकिन उनके नाम की गूंज पहले ही स्टेडियम की सीमा रेखा पार कर चुकी है। भारत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ती सर्चिंग बता रही है कि ये बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहा बल्कि उतनी ही तेजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार दिखाते हैं, जो सिर्फ लोगों के सिर ही नहीं चढ़ रहा है बल्कि अब पालतू जानवर भी अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बात यहां पर हो रही है मेक्सिको की। मेक्सिको में कुत्तों से लेकर घोड़ों और यहां तक कि एक बतख तक को राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनाई जा रही है। वर्ल्ड कप के इस अनोखे जुनून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है।

0: ये फुटबॉल का फीवर है। हार जीत पर फैंस के चेहरों का रंग ही नहीं बदल रहा, बल्कि ये बेजुबान भी फीफा के रंग में रंग दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवर भी अपनी अपनी टीम को अपनी पोशाकों से चीयर कर रहे हैं। कुत्ते, बत्तखें और दूसरे पालतू जानवर का टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर आ जाना फुटबॉल के फीवर की सबसे दिलचस्प तस्वीर बन गया है। अब इनसे मिलिए, ये है मर्लिन, वो बत्तख जिसने मेक्सिको में वर्ल्ड कप के बाद अपनी एक नई पहचान कायम कर ली है। पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स के सामने मर्लिन के साथ तस्वीर खिंचवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। मेक्सिको की जर्सी पहने मर्लिन अब सोशल मीडिया स्टार भी बन चुका है। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्रेज को भुनाने में बाजार भी पीछे नहीं है। दुकानों पर पालतू जानवरों के लिए खास फुटबॉल जर्सीज बिक रही हैं। मैचिंग टोपियों की भी डिमांड है। यही नहीं, लोग अपने पालतू जानवरों के लिए हेलमेट और चश्मे तक खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि कई डिजाइन तो हाथों हाथ खरीदे जा रहे हैं। बाजार में सबसे ज्यादा नजर आ रही एडीडॉग नाम की जर्सीज, मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड की तर्ज पर तैयार ये जर्सीज कम कीमत में उपलब्ध हैं और खरीदारों को बेहद पसंद भी आ रही हैं। मतलब फुटबॉल के इस मेगा उत्सव में इस वक्त एक से बढ़कर एक ट्रेंड चल पड़ा है। जो ट्रेंड लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है वो है ट्विनिंग, मतलब मालिक और उसका पालतू जानवर एक जैसे रंग या एक जैसी जर्सी पहने हुए है। फुटबॉल का जोश अब ऐसे तमाम परिवारों के लिए एक अलग अलग तरह का फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। सिर्फ बाजारों में ही नहीं, पार्क्स और सड़कों पर भी जर्सी पहने पालतू जानवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वो जादू है जिसे दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। आईसीसी के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
5: और अब बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट की। दुनिया की नजरें पिछले चार महीनों में अमेरिका ईरान टकराव पर टिकी हुई थी। दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया था, जिसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और तेल की कीमतें भारी उछाल आया। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिला। ताजा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते चार महीने में सबसे नीचे आ चुका है।

0: अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है। यूएस ईरान पीस डील के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, यानी पिछले कई दिनों से आसमान छू रहे कच्चे तेल के तेवर अब ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। ताज़ा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते 4 महीने में सबसे नीचे आ चुका है। युद्ध के दौरान $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंचकर दुनिया को डराने वाला ये तेल अब $77 से भी नीचे आ चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस नरमी की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस समुद्री रास्ते से तेल टैंकर्स की आवाजाही एक बार फिर बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है।
1: अब हॉर्मुज संकट का समाधान आते ही, ईरान अमेरिका के बीच शांति स्थिति होते ही ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं। और अनुमान ये भी जताया गया है कि अगर ये स्थिति जिस तरह 60 दिनों की अनुमति दी गई है, वैसे में ईरान की ओर से जो कच्चा तेल कई सालों से प्रतिबंधित था वो खुले बाजार में आ चुका है, तो ईरान की ओर से एक तो समय भी कम लगेगा, तेल भी पहुंच पाएगा, तो ऐसे में कीमतें और भी नीचे गिर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे विकासशील जो देश हैं उनको इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
0: यूएस ईरान डील के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल से नीचे लुढ़क गया है और अमेरिकी WTI क्रूड भी $73 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ये कच्चे तेल की कीमतों का बीते 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और दुनिया अब कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह है। वहीं बाजार में सप्लाई बढ़ाने की उम्मीदों को तब और पंख लग गए जब अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने के लिए 60 दिनों की छूट दे दी। अब भारतीय और अमेरिकी रिफाइनरी समेत दुनिया भर के खरीदार सीधे ईरान से कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैध खरीद कर पाएंगे।
1: ईरान और अमेरिका में शांति समझौते पर सहमति के बाद एक तरफ पश्चिम एशिया का संकट खत्म हुआ, तनाव खत्म हुआ, तो उसका असर सकारात्मक रूप से वैश्विक बाजार पर दिख रहा है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। बीते 24 घंटे में अगर देखें तो 1.1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिली है, WTI क्रूड में देखने को मिली है। यहां तक कि जो वैश्विक बेंचमार्क है वो डेटा ये बताता है कि वायदा भाव अगस्त में 0.45% गिरकर $46.73 प्रति बैरल पर आ गया था। और इसी के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो अब एक रास्ता ये खुल जाता है, दरअसल अमेरिका ने ईरान पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है, यानी वो भी अगले 60 दिनों तक अपना कच्चा तेल दुनिया के बाजार में बेच पाएगा, तो उससे असर क्या हो रहा है। अगर हम स्टॉक देख रहे हैं तो WTI जो ट्रेड है उसमें आज भी अगर जो कीमतें गिरी हुई हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो अब ये 72.52 पर आ चुका है। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $77 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है।
0: तेल की कीमतों में उछाल के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन और भारत तक में तेल गैस का भारी संकट देखने को मिला। भारत की बात करें तो क्रूड महंगा होने के कारण करीब 4 साल सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा और ये एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार किया गया। अब जबकि क्रूड के दाम क्रैश हो गए हैं तो पेट्रोल डीजल प्राइस कट की उम्मीद भी बढ़ रही है। ऐसे में सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे।
1: इसका एक असर पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में ₹74 की कमी की है तो डीजल की कीमतों में भी ₹64 की कमी है, भारी कटौती की है। हालांकि उसको लेकर के जो ऑयल ट्रेडर्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो नाराज हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका सीधा फायदा जनता को वहां की सरकार ने दिया है। तो भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि पर जो डॉलर बैरल की कीमत है वो अगर नीचे आ रही है तो हाल फिलहाल में हमने जो कीमतें देखी हैं डीजल पेट्रोल में उसमें कोई कमी आ जाए तो क्या वो कमी आएगी, क्या इस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कोई फैसला लेंगी, क्योंकि राहत की जब बात होगी तो सरकार ये देखेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान हो रहा था, वो नुकसान की अगर भरपाई हो चुकी है तो अब सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर अगर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं ब्रेंट ऑयल वो अगर 77 के नीचे हैं तो ऐसे में दुनिया की नजर इस पर होगी कि उनकी सरकारें क्या अब लोगों पर वो फायदा जो है पहुंचाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी फायदा अगर होगा तो क्या जनता की जेब पर भी होगा।
0: बीते 28 फरवरी को पहली बार अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की शुरुआत की थी और इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। साथ ही दुनिया की तेल गैस जरूरतों के 20% की भरपाई करने वाले महत्वपूर्ण समुद्री रूट हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट क्लोज होने के बाद अचानक अप्रैल महीने के दौरान कच्चा तेल $120 के आसपास पहुंच गया। इसका असर ये हुआ कि तमाम

0: WTI क्रूड जो है वो 73 बाज आ चुका है, ब्रेंट क्रूड जो है वो 77 के नीचे आ चुका है। और अगर ये परिस्थितियां बनती रहीं तो एक वैश्विक रिपोर्ट ये भी दरअसल कहती है कि प्रगति का ये जो संकेत है ये मार्केट पर, यानी अभी कम से कम 3% ये और नीचे ले जा सकता है, यानी 60 दिनों की जो अवधि है। ऐसे में हमने देखा कि भारत के कई सारे जो जहाज हैं LNG लेकर के या क्रूड ऑयल लेकर के वो रवाना हुए हैं। आमतौर पर प्रतिदिन अब 90 से 95 जहाज जो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे हैं, जिसके चलते जो सप्लाई लाइन है वो सकारात्मक हो चुकी है, यानी भारत का जो ऊर्जा संकट वो भी खत्म होने के आसार हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, जहां इसकी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करना पड़ता है। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि अभी भी 10 भारतीय झंडे वाले जहाज इस क्षेत्र में इंतजार में लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून से अभी तक 11 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं।
2: जब से अमेरिका और ईरान के बीच में MOU दस्तखत हुआ है, साइन हुआ है, तब से जो तेल के बाजार के अंदर थोड़ी राहत मिली है, और राहत जो इस समय थोड़ी ज्यादा ही है, और लग रहा है उनको कि भाई शायद शांति रहने वाली है। बहुत दिनों से तनाव चल रहा था, जब बहुत लगातार तनाव रहे, बहुत ज्यादा अंधेरा हो, बहुत शोर हो, बहुत बमबारी हो, उसके बाद एक शांति का MOU साइन हो जाए तो बाजार के अंदर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए तेल आप देख रहे हैं जो ब्रेंट है, कच्चा तेल जो ब्रेंट है, जो भारत में जिस उसको यूज कराया जाता है पैरामीटर को, तो वो तो अब लगभग $75 पर बैरल पे आ गया है। मैं इसको कहूंगा ये उत्सव की कीमत है ये।
1: अब सवाल ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट का सिर्फ आर्थिक महत्व ही नहीं बल्कि सामरिक महत्व भी है। दुनिया का करीब 25-30% कच्चा तेल इसी जलमार्ग से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के उत्पादक और निर्यातक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, UAE और कतर जैसे देशों का कच्चा तेल इसी जलमार्ग से निर्यात होता है। माना जाता है कि अगर इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और भारत भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है।
2: हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं हम। लगभग अपनी जरूरत का 89% तेल आयात करते हैं, और हमारा जो चाहे वो रुपए की कीमत हो, चाहे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, चाहे हमारा फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, सबके लिए ऊपर बोझ पड़ता है अगर तेल महंगा हो जाता है। तो अब तेल चूंकि सस्ता है, वजह उसकी MOU साइन हो गया वो है, एक बाजार के अंदर उत्सव का माहौल है, तो कीमतें $75 के आसपास आ गई, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी कम हो जाए।
1: एक तरफ जहां तेल की कीमतों का गिरना राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर एक नई आशंका ने भी जन्म ले लिया है। ईरान और ओमान ने दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क पर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। यानी दोनों देशों की मंशा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम है। इस साल चारधाम के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जो इस साल का एक नया रिकॉर्ड है। वहीं केदारनाथ धाम में भी 12 लाख से कहीं ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो गंगोत्री में 6 लाख से ज्यादा और यमुनोत्री धाम में लगभग 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी करीब 1.5 लाख श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। यहां इस बार श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से सुरक्षा की तैयारी है, साथ ही यात्रा की निगरानी CCTV से की जाएगी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने सघन जाँच अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखे हुए है। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी।

0: और 28 अगस्त तक चलेगी। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा मंदिर में साई भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर साल यहां 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसके अलावा साई भक्त अपनी इच्छा के अनुरूप नकदी के अलावा सोने और चांदी की वस्तुएं आभूषणों का भी दान करते हैं। अब तक साई बाबा की तिजोरी में लगभग 550 किलो सोना और 7030 किलो चांदी का दान किया जा चुका है। हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को यहां कड़ी सुरक्षा के बीच चढ़ावे की गिनती की जाती है। महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर विवाह पत्रिकाओं यानी शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्म तिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शादी के समय वर वधु की सही उम्र की जांच करना आसान हो जाएगा और नाबालिगों की शादी को रोका जा सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल परिवार ही नहीं बल्कि शादी के कार्ड छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय और विवाह आयोजन से जुड़े दूसरे संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये कॉरिडोर मेट्रो के पांचवें चरण के तहत विकसित किया जा रहा है और मैजेंटा लाइन के विस्तार का हिस्सा है। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत कॉरिडोर में कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन होगा जो ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नई मैजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, कार्यालय में आने जाने वाले लोगों और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
1: वेलकम टू द जंगल का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज से पहले चर्चा में है। फिल्म का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है जिसमें अक्षय कुमार ने भी अपनी आवाज दी। गाने में फरहाद भिवंडी वाला, रूबई और संगीतकार विक्रम मोंट्रोस भी शामिल है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कई बड़े सितारे नजर आएंगे। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये मल्टी स्टारर फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी जबकि 25 जून को इसके पेड प्रीव्यूज रखे गए हैं। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का पहला पोस्टर सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। पोस्टर में खुशहाली कुमार दुल्हन के पारंपरिक लिबास में नजर आ रही हैं, लेकिन उनके स्टाइलिश अंदाज ने सबका ध्यान खींचा है। आकाशादित्य लामा के निर्देशन में बनी ये फैमिली एंटरटेनर एक ऐसे दुल्हन की कहानी है जो अपने खास मिशन पर निकलती है। फिल्म में पीयूष मिश्रा और महेश मांजरेकर भी अहम भूमिकाओं में है। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांगराना और नसीरुद्दीन शाह स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 12 दिनों में दुनिया भर से 48 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। भारत में फिल्म की नेट कमाई लगभग 30 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है जबकि विदेशी बाजारों में भी इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। विभाजन के पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी दर्शकों को भावुक कर रही है।

0: मिलाप मिलन जवेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं का टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। ये गाना दोस्ती, प्यार और रिश्तों की भावनात्मक झलक पेश करता है। फिल्म से अमन इंद्र कुमार अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं और उनके साथ आकांक्षा शर्मा मुख्य भूमिका में है। परेश रावल, जॉनी लीवर और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है। पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान जल्द ही एक बड़े पीरियड ड्रामा का हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस महत्वाकांक्षी फिल्म को राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और अपने किरदार से वो काफी प्रभावित है। फिल्म में वो इतिहास के एक बेहद लोकप्रिय किरदार को निभाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने लुक और बॉडी पर खास मेहनत करनी होगी। फिल्म की शूटिंग साल 2027 में शुरू होने की संभावना है।
1: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: ये नन्हा पपी अपनी अनोखी अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क किनारे बैठा पपी ऐसे चलने की कोशिश करता है मानो उसके पैर काम नहीं कर रहे हो। राहगीर भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करता है अचानक सामान्य तरीके से दौड़ने लगता है। उसकी इस मजेदार हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो देखकर कई लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग के मामले में ये पपी बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दे सकता है। गांव की एक महिला ने देसी जुगाड़ से आइसक्रीम बनाने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। महिला ने पंखे में रस्सी बांधकर एक बाल्टी लटका दी और उसके चारों तरफ बर्फ जमा दी। पंखा घूमते ही बाल्टी भी घूमने लगी और कुछ ही समय में दूध से स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो गई। बिना किसी महंगी मशीन के अपनाई गई ये तकनीक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर इस देसी हुनर की जमकर तारीफ हो रही है। पक्षियों से प्रेम की कई कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। एक महिला कौए को अपनी गोद में सुलाकर उसे दुलार करती हुई नजर आती है। वो बड़े प्यार से उसके सिर और पंखों पर हाथ फेरती है और उसकी मालिश भी करती है। कौआ भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उसके पास आराम करता हुआ दिखाई देता है। इंसान और पक्षी के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। बिहार का एक मासूम बच्चा अपनी नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। डांट पड़ने के बाद बच्चा गुस्से में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी देता नजर आता है। वो मासूम अंदाज में कहता है कि वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। हालांकि उसकी बातों में गुस्से से ज्यादा बचपन की मासूमियत झलकती है। प्रिंसिपल भी बच्चे की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो देखकर लोग बच्चे की भोली भाली नाराजगी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। माँ की सीख को गंभीरता से लेने वाला ये छोटा बच्चा इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चे को सिखाया गया था कि कोई भी चीज खाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि रसगुल्ला खाने से पहले उसे पानी में धोने लगा। हाथ में रसगुल्ला लेकर वो नल के पास रखे पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे खाता है। उसकी मासूम समझ और भोलेपन को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
3: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices. So you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए सैलानियों से गुलजार है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी आपको यकीनन बेहद प्रभावित करेगी। सेंटोरिनी का ये खूबसूरत और वायरल हो रहा सनसेट एक बार फिर से साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नजारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं।

0: सफेद रंग के घर, नीला समंदर और खूबसूरत सनसेट। ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए पर्यटकों से गुलजार है। शाम होते ही सैकड़ों लोग यहाँ का स्पेशल सनसेट को देखने के लिए जुड़ जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर पर्यटकों के बकेट लिस्ट में ये नज़ारा जरूर होता है।
1: माँ बेटी की जोड़ी के रूप में ये अनुभव हमारी बकेट लिस्ट में लंबे समय से शामिल था। इसे साथ मिलकर जीना हमारे लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला खास अनुभव रहा। यहाँ हर मिनट भरपूर आनंद भरा रहा।
0: सेंटोरिनी के पत्थरों से बनी संकरी गलियाँ, पहाड़ियों पर बने घर और एजियन सागर का अद्भुत दृश्य पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मंगलवार को तेज धूप और गर्मी के बावजूद यहां सैलानियों की संख्या ने सभी को दंग कर दिया। जानकारों का कहना है कि यूरोप में तापमान की दुश्वारियों के बावजूद सेंटोरिनी जैसे पर्यटन स्थल अपनी अनूठी प्राकृतिक खूबसूरती और यादगार अनुभवों की वजह से दुनिया भर के यात्रियों की पहली पसंद बने हुए हैं। समुद्र में धीरे धीरे समाता सूरज और सफेद घरों पर पड़ती सुनहरी रोशनी और कैमरों में कैद होते खूबसूरत पल। सेंटोरिनी का ये सनसेट एक बार फिर साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नज़ारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Die Hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे, ICC के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।

नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 6 बजे का जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बमुश्किल 8 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। पुलिस सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों के जवान आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो देखिए, साफ है कि श्रद्धालु इस बार निर्भय होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अभूतपूर्व तैयारियों को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अद्भुत अलौकिक अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्वर्ग की सरगोशी करने वाली परलौकिक गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन की हसरत 10 दिन बाद हकीकत में बदलने वाली है। तीर्थयात्री जहां उत्साह में हैं, तो वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षित, सुगम और सकुशल यात्रा सम्पन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल और सेना ने हीला हवाला की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए इस बार पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ तक यात्रा मार्ग पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
1: इस साल की अमरनाथ यात्रा में 10 दिन से भी कम अब समय बच गया है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के साथ साथ बाकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी।
0: पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर गाइड, पालकी संचालक, घोड़े वाले या दुकानदार के रूप में किसी संदिग्ध व्यक्ति की एंट्री ना हो सके, इसके लिए इस बार तकनीक आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। तीर्थयात्रियों को सर्विस देने वाले गाइड, पालकी संचालक और दूसरे कर्मियों और सेवादारों की पहचान के लिए QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम प्रयोग में लाया गया है। इसके तहत सभी संबंधित लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। सभी दर्शनार्थियों को इस सिस्टम के बारे में यात्रा शुरू होने से पहले ही ब्रीफिंग दे दी जाएगी, ताकि वे सिर्फ अधिकृत लोगों से सेवा ले सकें।
1: अब की बार अमरनाथ यात्रियों के पहचान पत्र के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में काम करने वाले घोड़े वालों, दुकानदारों और मजदूरों को भी एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया है, जिस पर उन सभी लोगों की सभी जानकारियां जो है वो एकजुट की गई है और सभी लोग वेरिफाइड हैं।
0: कुल 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कठुआ से श्रीनगर तक के 400 किलोमीटर नेशनल हाईवे को सुरक्षा बलों ने पहले ही कब्जे में ले रखा है। इस हाईवे के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, जम्मू में पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सघन निगरानी की जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 70,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है।
1: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी, बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी।
0: आपको बता दें कि पहलगाम या बालटाल दोनों ही मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा जाने वाले श्रद्धालु देश और दुनिया के तमाम हिस्से से आकर सबसे पहले जम्मू स्थित बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास में ठहरते हैं। बेस कैंप की सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। मंगलवार को यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज ने दस्तक दी। तेज तर्रार जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर भगवती नगर यात्री निवास और उसके आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जवानों ने तरह तरह से मॉक ड्रिल की।
2: जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार यहां पर मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। आज सुबह भी यहां पर जो एनएसजी के कमांडोज हैं, उन्होंने मॉक ड्रिल की यात्री निवास भवन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल सक्षम रहे, तैयार रहें, इसीलिए मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। ये तैयारियां होती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। फिलहाल अगर हम आपको देखिए जो यात्री निवास भवन का जो बाहर का क्षेत्र है, यहां पर ये तंबू लगे हैं, अस्थाई शेड्स बनाए गए हैं। इन्हीं अस्थाई शेड्स में और तंबुओं में जो है सीआरपीएफ के जवानों की ठहरने की व्यवस्था होती है, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी होती है। भारी संख्या में यहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और अगर हम देखें तो पूरे यात्री निवास भवन को सील कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सीआरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात हैं, मोर्चे बनाए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो।
0: मंगलवार को मॉक ड्रिल तो हुई ही, लेकिन साथ ही भगवती नगर यात्री निवास को पूरी तरह सैनिटाइज भी कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है, साथ ही जगह जगह पर बंकर बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा बल के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं।
2: फिलहाल हम आपको यहां जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अगर मैं थोड़ा यहां आगे चलूं, मैं आपको इस यात्री निवास भवन के दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यहां पर जो आप देख सकते हैं कि बंकर्स बनाए गए हैं ताकि यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो 2400 घंटे यहां पर मॉनिटरिंग कर सके किसी संदिग्ध हरकत पर। यहां देखिए कैमरास लगातार लगाए गए हैं, तो हर स्थान पर यहां पर कैमरे लगाए गए हैं, तो हर हरकत पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये यात्री निवास भवन का परिसर है, पूरे यात्री निवास भवन को फिलहाल सील कर दिया गया है और सुरक्षा संबंधित बैठकें भी जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, सुरक्षा की समीक्षा भी हो रही है और जगह जगह जो सुरक्षा बल है वो मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं।
0: सेना और अर्धसैनिक बलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर काफी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात ने सोमवार को पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। डीजीपी नलीन ने मातहत अधिकारियों को किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहे।
2: जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं नलिन प्रभात, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो पारंपरिक मार्ग है वो पहलगाम से होकर जाता है और पहलगाम जो है अनंतनाग जिले में ही आता है, इसीलिए ये बैठक जो है वो अनंतनाग में हुई और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद थे और एक तरह से जो सुरक्षा की जो है समीक्षा की गई। तो अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो केंद्रीय बल जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो वहाँ पर वो तैनात होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस तो होगी ही, लेकिन साथ ही में जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो भारी संख्या में तैनात हो रहे हैं और कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा का जिम्मा जो है मुख्य तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के कंधे पर ही होगा। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो भी जगह जगह पर मौजूद रहेंगी, खासतौर पर जो ऊंची चोटियां हैं, तो पूरे समन्वय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो सुरक्षा बल है वो कार्य कर रहे हैं। ये उनको जिम्मा दिया जा रहा है कि सुरक्षा कड़ी रहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान।
0: साफ है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और अमरनाथ गुफा तक किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त यानी 57 दिनों तक चलेगी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
3: बाबा बर्फानी का दर्शन बेहद कठिन माना जाता है। भोले के भक्तों को कश्मीर के पहाड़ियों के बीच दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाना होता है। आमतौर पर ये रास्ते वीरान होते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इन रास्तों पर रौनक ही रौनक दिखती है। दरअसल श्रद्धालुओं के आने से पहले ही देश भर के सेवादार यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे, लंगर और विश्राम की व्यवस्था कर देते हैं। सेवादारों का धर्म तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये तो यात्रा शुरू होने से पहले ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यात्रा खत्म होने तक यहीं रहते हैं। इतना कठिन कार्य करने के बाद भी इनके चेहरों पर थकान और तनाव नहीं दिखता है, बल्कि मानव सेवा का सुकून ही दिखाई देता है।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इस बीच बाबा बर्फानी ने पवित्र गुफा में अपना स्वरूप विस्तार शुरू कर दिया है। इस साल बाबा बर्फानी का ये पहला अलौकिक दर्शन है। एक ओर देश और दुनिया में बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ श्वेत आभा के साथ बाबा बर्फानी श्रद्धालुओं की अगवानी में गुफा के अंदर अपना अलौकिक आकार ग्रहण कर रहे हैं। ये जय घोष है अनादिकाल से चले आ रहे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के पावन आगाज का। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्राणित सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी ही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी झेलनी ना पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति भक्ति का आवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
1: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है, 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेल पत्री पर भंडारा लगता है, उसके लिए नया टीन शेड इस बार तैयार करके वहां से लाए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेल पत्री पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग बाग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर LG साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलों पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ 2 मील से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सबाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल रास्ते से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थयात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहां आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना, और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
2: भंडारे में सुविधा खाने की, रहने की, सोने की, और लैट्रिन बाथरूम साफ शुद्ध खाना, और आपके बिस्कुट टॉफी हर चीज से हम संतुष्टि करना चाहते हैं यात्री की। मान लो अगर तबीयत खराब है तो मेडिसिन भी देते हैं, और समय समय पे जैसे यात्री कहीं रास्ते में फंसा हुआ है तो हमारे सेवादार उसको भी सहायता करने जाते हैं।
0: सेवा का सबाब इतना बड़ा होता है कि मुश्किल भरी तैयारियों के बीच इनके चेहरों पर अलौकिक चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ झलकता है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर 28 अगस्त को खत्म होगी। 57 दिनों की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। परंपरा कहती है कि पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी में स्थित बाबा बर्फानी की अनादिकालीन गुफा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयंभू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक खाइयों के ऊपर से गुजरता है संकरा लेकिन लंबा रास्ता। फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहाँ बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। साल 2022 में 3,04,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमर गुफा के दर्शन किए थे, जो साल 2023 में बढ़कर 4.5 लाख हो गए। साल 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और 5,12,000 हो गई। हालांकि साल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या घटकर 4,14,000 रह गई।
3: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: क्या आपने कभी सोचा कि इतना दुर्गम और असाध्य रास्ता होने के बावजूद हर साल क्यों इतने श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट होने वाले स्वयंभू शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ की यात्रा में पड़ने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पड़ाव अपने भीतर जन्म और मरण के अनंत सिलसिले से मुक्ति का गूढ़ संदेश संजोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें और आखिरी उत्तरकांड की कुछ अनमोल चौपाइयों के माध्यम से अमरनाथ यात्रा तात ये अखत कहानी समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयउ गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रसंग में परम ज्ञानी काकभुशुंडी जी मोह माया में फंसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से कहते हैं कि मैं आपको ये गूढ़ अनिर्वचनीय कहानी सुनाता हूँ जिसे सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझा जा सकता है। इसमें गूढ़ बात ये है कि जीव ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन है, निर्मल है और आनंद राशि है। अगर ऐसा है तो फिर ये संसार इतने दुखों में क्यों फंसा है? इस सवाल का जवाब देते हुए काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य माया मोह के बंधनों में ऐसे ही फंस गया है जैसे तोता पिंजड़े में और बंदर मदारी के बंधन में फंसा रहता है। माया की महिमा ही ऐसी है कि वो इंसान को अपने इशारों पर नचाती है और इंसान माया के पाश में फंसकर सत्य और परम तत्व से विमुख हो जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो अमर कथा सुनाई उसमें माया मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर खुद को अविनाशी कर लेने का गूढ़ संदेश और संकेत छिपा है। पहलगाम से शुरू होकर पवित्र गुफा के बीच में यात्रा के जो 7 पड़ाव हैं वो मनुष्य के अविनाशी होने के 7 रास्ते हैं। बस उन संकेतों को गहराई से समझने की जरूरत है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वो पहचान हासिल कर ली है जिसका सपना बड़े बड़े क्रिकेटर देखते हैं। वैभव का जलवा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान में भी उनके नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। देखिए, गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी एज और आईपीएल प्राइस जैसे कीवर्ड तेजी से सर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कई ब्रेकआउट कैटेगरी में पहुंच चुके हैं।

0: क्रिकेट में कहते हैं असली स्टार वो है जिसकी धमक सरहदों को भी पार कर जाए। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान के गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में वैभव को लेकर केवल चर्चा ही नहीं है बल्कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी खूब है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेट सनसनी बन चुके हैं। पिछले 3 महीनों के गूगल ट्रेंड डेटा में पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने वैभव को जमकर सर्च किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, रिकॉर्ड, आईपीएल कीमत और मैचों से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान में तेजी से खोजी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त उछाल, और वैभव से जुड़े कई कीवर्ड्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस भारतीय किशोर बल्लेबाज के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। नजर हो भी क्यों ना, क्रिकेट के पंडित वैभव की आक्रामकता से हैरान हैं। उनके सबसे तेज अर्धशतक की चर्चा हो रही है, उनके बेखौफ अंदाज पर अचरज जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो मुश्ताक मोहम्मद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 1959 में उन्होंने महज 15 साल 124 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। अब लगभग उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने कारनामों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, जब बात विस्फोटक बल्लेबाजी की आती है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सबसे पहले शाहिद अफरीदी याद आते हैं। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज कई लोगों को युवा अफरीदी की याद दिला रहा है। जाहिर है वैभव ने अभी करियर शुरू ही किया है, लेकिन उनके नाम की गूंज पहले ही स्टेडियम की सीमा रेखा पार कर चुकी है। भारत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ती सर्चिंग बता रही है कि ये बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहा बल्कि उतनी ही तेजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार दिखाते हैं, जो सिर्फ लोगों के सिर ही नहीं चढ़ रहा है बल्कि अब पालतू जानवर भी अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बात यहां पर हो रही है मेक्सिको की। मेक्सिको में कुत्तों से लेकर घोड़ों और यहां तक कि एक बतख तक को राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनाई जा रही है। वर्ल्ड कप के इस अनोखे जुनून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है।

0: ये फुटबॉल का फीवर है। हार जीत पर फैंस के चेहरों का रंग ही नहीं बदल रहा, बल्कि ये बेजुबान भी फीफा के रंग में रंग दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवर भी अपनी अपनी टीम को अपनी पोशाकों से चीयर कर रहे हैं। कुत्ते, बत्तखे और दूसरे पालतू जानवर का टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर आ जाना फुटबॉल के फीवर की सबसे दिलचस्प तस्वीर बन गया है। अब इनसे मिलिए, ये है मर्लिन, वो बत्तख जिसने मेक्सिको में वर्ल्ड कप के बाद अपनी एक नई पहचान कायम कर ली है। पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स के सामने मर्लिन के साथ तस्वीर खिंचवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। मेक्सिको की जर्सी पहने मर्लिन अब सोशल मीडिया स्टार भी बन चुका है। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्रेज को भुनाने में बाजार भी पीछे नहीं है। दुकानों पर पालतू जानवरों के लिए खास फुटबॉल जर्सी बिक रही हैं। मैचिंग टोपियों की भी डिमांड है। यही नहीं, लोग अपने पालतू जानवरों के लिए हेलमेट और चश्मे तक खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि कई डिजाइन तो हाथों हाथ खरीदे जा रहे हैं। बाजार में सबसे ज्यादा नजर आ रही एडीडॉग नाम की ये जर्सी, मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड की तर्ज पर तैयार ये जर्सी कम कीमत में उपलब्ध है और खरीदारों को बेहद पसंद ही आ रही है। मतलब फुटबॉल के इस मेगा उत्सव में इस वक्त एक से बढ़कर एक ट्रेंड चल पड़ा है। जो ट्रेंड लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है वो है ट्विनिंग, मतलब मालिक और उसका पालतू जानवर एक जैसे रंग या एक जैसी जर्सी पहने हुए है। फुटबॉल का जोश अब ऐसे तमाम परिवारों के लिए एक अलग अलग तरह का फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। सिर्फ बाजारों में ही नहीं, पार्क्स और सड़कों पर भी जर्सी पहने पालतू जानवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वो जादू है जिसे दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसे राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग चेंजिंग रूम, टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स के साथ रहेंगे। आईसीसी के अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत फैसला। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जोआओ महोत्सव, वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
3: अब बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट की। दुनिया की नजरें पिछले चार महीनों में अमेरिका ईरान टकराव पर टिकी हुई थी। दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया।